मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 की श्रावण मास की 10वीं तिथि, तदनुसार 1 अगस्त 2026। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:57 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा। इस सभा में आपके साथ है आपकी रेडियो मित्र स्मिता। आप सभी को हमारा नमस्कार, सुप्रभात।

0: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखानी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत मां के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा है और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
2: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
1: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। उनसे एल्गोरिथम में पूर्वाग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मेटा की ग्लोबल टीम से अगले सप्ताह के मध्य में पूछताछ होने की संभावना है। टीम को संसदीय समिति के समक्ष भी पेश होना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित इस हवाई अड्डे को प्रतिवर्ष 60 लाख यात्रियों को संभालने के लिए तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री इस दौरान विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूर पहुंचेंगे। यहां वो स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। मंत्रिमंडल ने 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह निर्णय युवा विकास और राष्ट्र निर्माण के लिए खेलों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
3: कंप्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा, स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो।

0: ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 ईयर्स के लिए और ये सीधा वीविन करेगी ओलंपिक, पैरालंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले हैं 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीविन करेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम से बात कर उन्हें पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी। कल सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बताया कि बातचीत के दौरान दोनों नेता प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, शिक्षा और जनधन संबंधों जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने और भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर सहमत हुए। दिल्ली सरकार ने बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा का लाभ उठाने के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के अनिवार्य उपयोग की समय सीमा 16 अगस्त तक बढ़ा दी है। संशोधित निर्णय के अंतर्गत 15 अगस्त तक पिंक टिकट जारी किए जाएंगे। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने जूडो में पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में स्वर्ण पदक जीते। भारत के अब तक कुल 23 पदक हो गए हैं, जिसमें 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। वंदना का शुभारंभ करते हैं समूह स्वर में गाए इस देशभक्ति गीत से।

वंदना में अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज़ में ये भजन। अब लीजिए सुनते हैं सुलक्षणा पंडित मंधीर और प्रीति निहाल की आवाज़ों में ये भक्ति रचना।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सुलक्षणा पंडित, मंधीर और प्रीति निहाल की आवाज़ों में ये भजन। आप आनंद ले रहे हैं भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का। वंदना का समापन करते हैं हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में गाए इस भक्ति रचना के साथ।

0: हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति के गाए इस भजन के साथ ही आज की वंदना यहीं संपन्न होती है। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। चिंतन के अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं उमा शंकर नगाइच के विचार। वाचक स्वर अरविंद सोनी का है। आज के चिंतन का विषय है समाज।
1: मनुष्य व्यक्तिगत रूप से एक स्वतंत्र और एकाकी प्राणी है। मनुष्य की मूल प्रवृत्तियां और उसकी आवश्यकताएं उसे सामाजिक प्राणी और समाज का अंग बनाती हैं। अपने जन्म, पालन पोषण, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, विवाह आदि के लिए व्यक्ति को समाज की आवश्यकता होती है। समाज के माध्यम से ही व्यक्ति अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अपनी सुरक्षा के लिए भी व्यक्ति समाज पर निर्भर है। समाज में ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर उसकी पूर्णता प्राप्त करता है। व्यक्ति की आवश्यकताओं, इच्छाओं और आशाओं की पूर्ति के लिए किए गए प्रयत्नों का परिणाम ही समाज है। सामाजिकता व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। डॉक्टर रामजी सिंह के अनुसार अरस्तु भी अफलातून के विचार से सहमत है कि समाज का आधार मानव प्रकृति है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। सामाजिकता मानव की जन्मजात और प्राकृतिक प्रवृत्ति है। मनुष्य की प्रकृति है कि वह समाज बनाएगा। इस प्रकार मनुष्य के स्वभाव के आधार पर एक प्राकृतिक संस्था के रूप में समाज संस्था का उद्भव हुआ है। समाज के अनेक अर्थ और परिभाषाएं प्रचलित हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने व्यक्तियों के सामूहिक रूप को समाज माना है, यथा समाज मनुष्यों का समष्टिकृत या सामूहिक रूप है और उस रूप में ही मनुष्य प्रकृति के साथ संघर्ष कर सकता है और

0: जीवित रह सकता है। जबकि राइट के अनुसार समाज का अर्थ सिर्फ व्यक्तियों का समूह ही नहीं है, बल्कि समूह में रहने वाले व्यक्तियों के आपस में जो संबंध हैं, उन संबंधों का संगठित रूप ही समाज है। प्रसिद्ध समाज शास्त्री गिन्सबर्ग ने व्यक्तियों के उस समूह को समाज माना है जो किन्हीं खास संबंधों या खास व्यवहारों द्वारा आपस में बंधे होते हैं। वहीं टॉलकॉट पार्सन्स के अनुसार समाज तो केवल सामाजिक संबंधों का संकुल है तथा सामाजिक व्यवस्था का निर्माण परस्पर अंतःक्रिया करते हुए अनेक व्यक्तियों द्वारा होता है, और ये कि सामाजिक व्यवस्था आवश्यक रूप से अंतःक्रियात्मक संबंधों का जाल है। समाज की विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि समाज व्यक्तियों की एक सामूहिक व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति की सुरक्षा, शिक्षा और विकास संबंधी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने और उसके जीवन को सुखी, सुरुचिपूर्ण, समृद्ध एवं सफल बनाने का समुचित प्रबंध किया जाता है। समाज निर्माण के मूल में अंतर्निहित उद्देश्य को समझने के लिए पार्सन्स द्वारा प्रस्तुत ये विचार अत्यंत उपयोगी है कि प्रत्येक व्यक्ति की इच्छाएं, भावनाएं तथा आशाएं उसके व्यक्तित्व की संरचना के अनुसार होती हैं। व्यक्तित्व इच्छाओं आदि को जन्म देता है और उसकी पूर्ति या तृप्ति चाहता है, और सामाजिक क्रिया इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति करने के उद्देश्य से किए गए प्रयत्नों का ही फल होती है। अपने उद्भव के मूल में विद्यमान कारणों एवं उद्देश्यों के अनुसार समाज के लिए ये आवश्यक है कि वो व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक सभी साधन, सुविधाएं और अच्छा वातावरण उपलब्ध कराए। महात्मा गांधी के अनुसार समाज को व्यक्ति के लिए इस प्रकार की परिस्थितियों तथा सुविधाओं को उपलब्ध करवाना चाहिए जिससे कि व्यक्ति अपने सामाजिक व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सके। समाज निर्माण का उद्देश्य सामान्य रूप से सभी व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति, सर्वसामान्य मूल्यों एवं आदर्शों की सिद्धि तथा व्यक्तियों के बीच आपसी संबंधों एवं व्यवहारों का सम्यक्तया निर्धारण करना है। डॉक्टर सत्यपाल गौतम के अनुसार समाज का अभिप्राय किसी भी ऐसे मानवीय समुदाय से है जिसमें व्यक्तियों के आपसी संबंधों, अपेक्षाओं तथा व्यवहार का निर्धारण तथा मूल आवश्यकताओं की पूर्ति साझे आदर्शों तथा मूल्यों द्वारा निर्देशित तथा संचालित होती है। इस विवेचन से स्पष्ट होता है कि समाज नामक संगठन का निर्माण सुव्यवस्था के लिए किया गया है जिससे आवश्यक साधन सुविधाओं और अच्छे वातावरण में रहते हुए व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का समुचित विकास कर सके और अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन का सम्यक्तया निर्वाह कर सके।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन के अंतर्गत समाज विषय पर उमाशंकर नगाइच के विचार। वाचक स्वर अरविंद सोनी का था। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

राक्षसों तथा पापाचारियों से आतंकित पृथ्वी तथा ब्रह्मा सहित देवताओं ने परम पिता की स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया। तब गंभीर आकाशवाणी हुई, हे मुनिसिद्ध और देवताओं के स्वामी, भयभीत न हो। तुम्हारे कल्याण के लिए मनुष्य रूप धारण करके मैं सूर्यवंश में अवतरित होऊंगा। अदिति तथा कश्यप ने कठोर तपस्या करके मेरा वरदान प्राप्त किया और वे ही कौशल्या तथा दशरथ के रूप में अयोध्या में प्रकट हुए हैं। उन्हीं के घर श्रेष्ठ चार भाइयों के रूप में मैं अपनी परम शक्ति समेत पैदा होऊंगा। आकाश में गूंजती ब्रह्मवाणी अपने कानों सुनकर सभी देवता आश्वस्त हुए।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कृषि चर्चा। आज की सामायिक चर्चा का विषय है बरसात के मौसम में पौध रोपण। जानकारी दे रहे हैं श्री सोहन सिंह।
1: किसान भाइयों, बरसात के मौसम में फलदार पौधों की पौध रोपण करें। पौध रोपण के लिए बरसात का मौसम अधिक उपयुक्त रहता है। इस मौसम में रोपे गए पौधे कम हो जाते हैं। भूमि के अनुसार पौध रोपण के लिए पौधों का चयन करना चाहिए। जहाँ पर ढलान वाली भूमि हो, वहाँ पर ढलान के विपरीत दिशा में ऐसे पौधों का रोपण करें जिनके फल नवंबर दिसंबर तक तोड़ाई युग तैयार हो जाते हों। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि ग्रीष्म ऋतु में इनकी पत्तियां नीचे गिर जाती हों, जैसे आंवला, सीताफल, करौंदा, इमली, बेर। फल वृक्षों के अतिरिक्त ऐसी भूमि में बान की पौधे, यूकेलिप्टस, सुबबूल, बांस,

0: महुआ का भी रोपण कर सकते हैं। पौध रोपण के लिए उचित दूरी पर गड्ढे खोदने के साथ साथ सीढ़ी नुमा नालियाँ भी बना देनी चाहिए, जिससे पौधों के पास अधिक समय तक पानी थलई में एकत्रित न हो। पानी के बहाव का वेग कम होगा, मिट्टी क्षरण भी रुकेगा। यदि मिट्टी की गहराई पर्याप्त है, पानी अधिक समय तक रुकता हो, वहाँ पर आम, कटहल, अमरूद का रोपण करें और बाद में उन्हें कलमी पौधों में परिवर्तित करें। पौध रोपण सही समय पर करें, जिससे बारिश का अधिक से अधिक लाभ पौधों को मिल सके। पौधों की बढ़वार के अनुसार पौधों की दूरी निर्धारित की जाती है, जैसे आम, कटहल, महुआ, आंवला। ये पौधे बड़े आकार के होते हैं और इनकी दूरी 10 मीटर रखी जाती है। इसी प्रकार कम आकार के बनने वाले पौधे नींबू वर्गी, अमरूद, सीताफल, इनकी दूरी 6 मीटर रखी जाती है। यदि निर्धारित दूरी से पौध कम दूरी पर रोपण करेंगे तो डालियां आपस में मिल जाएंगी और इन्हें सूर्य का प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलेगा। फलस्वरूप बगीचे के किनारे के पौधों को छोड़कर शेष पौधों में फलन न की बराबर होगी। पर्याप्त मात्रा में सिंचाई न मिल पाने के कारण फल अधिक झड़ेंगे, कीट और बीमारियों का प्रकोप अधिक होगा। इसलिए पौध रोपण निर्धारित दूरी पर ही करनी चाहिए। पौध रोपण के बाद गड्ढों की भराई के लिए अच्छी पकी गोबर की खाद और मिट्टी बराबर मात्रा में, साथ ही कोई भी कीटनाशक चूर्ण, फेनवाल, फलीडाल या नीमयुक्त दवा मिलाकर अवश्य गड्ढों की भराई करें, जिससे पौधों में दीमक लगने की संभावना न रहे। पौध रोपण के लिए क्यारियों में एक या दो बार बदला हुआ पौधा ही होना चाहिए। ऐसे पौधों में फाइब्रस रूट्स, जिन्हें झकड़ा जड़ कहते हैं, उनकी संख्या ज़्यादा पाई जाती है और ये जल्दी ही भूमि से पोषक तत्व अवशोषित करने लगते हैं, जिससे जड़ों का जमाव शीघ्र होता है। जलग्रहण क्षेत्रों में बीजू पौधा ही लगाएं, बाद में उन्नत किस्म के पौधों में परिवर्तित करें। बीजू पौधों में टैप रूट पाई जाती हैं, जो काफ़ी गहराई तक जाकर भूमि में उपलब्ध खाद्य पदार्थों का अवशोषण करती हैं, जिससे पौधों में प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है। वर्षा का मौसम समाप्त होने के बाद पौधों की नियमित अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पौधों के बीच में उगे खरपतवारों को निकालते रहें, जिससे पौधों में कीट और बीमारियों से बचत होगी। साथ ही खरपतवार भूमि से पोषक तत्व भी अवशोषित करते हैं, जिससे मुख्य पौधे कमजोर हो जाते हैं। पौध रोपण के 4-5 वर्ष तक पौधों के बीच में अधिकांश भूमि खाली रहती है। ऐसी भूमि में अंतर्वर्ती फसलें सब्जी के रूप में उगाकर आय का स्रोत स्थापित कर सकते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा। आज की सामयिक चर्चा का विषय था बरसात के मौसम में पौध रोपण। जानकारी दे रहे थे श्री सोहन सिंह। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है सूचना परक कार्यक्रम दर्पण।

0: अब इतना पानी कहाँ कि पानी के साथ खेला जाए।
1: पानी के छींटे व्यर्थ में न उड़ाएं।
0: पानी का उपयोग सजगता के साथ करें।
1: ब्रश करते समय, दाढ़ी बनाते समय नल खुला न रखें।
0: सीधे नल के नीचे बर्तन न धोएं।
1: कपड़े धोते समय जमा पानी का ही उपयोग करें।
0: शावर के बजाय बाल्टी के पानी से नहाएं।
1: सब्जी फल धुले और पोछा लगे पानी को गमले में डालें।
0: जितनी प्यास हो ग्लास में उतना पानी ही लें।
1: अपने वाहन को पाइप से न धोएं।
0: शौचालय में फ्लश के बजाय बाल्टी के पानी का प्रयोग करें।
1: घर के टपकते नल को तुरंत ठीक करवाएं।
0: सार्वजनिक नल को बहता देख आगे न बढ़ जाएं।
1: उसे बंद कर अपना दायित्व निभाएं।
2: कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगे,
1: कभी कभी नहीं, रोज ही रखें इन बातों का ध्यान।
0: समय है पानी बचाने का,
1: पानी का मोल समझने और समझाने का।
0: पानी बचाएं, भविष्य सजाएं।
3: प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक की कुछ वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है।

0: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: इयम् आकाशवाणी, सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य एकदिवसीय आन्ध्रप्रदेश कर्नाटक यात्रायां भविष्यति। आन्ध्रप्रदेशे प्रधानमंत्री भोगापुरम इत्यत्र अल्लूरी सीताराम राजु अन्ताराष्ट्रिय विमानस्थानकस्य उद्घाटनं करिष्यति। सार्वजनिक निज सहभागिता प्रारूपस्यान्तर्गतं 600.5 लाख करोड़ रुपयाधिकेन व्ययेन निर्मितं तदन्ताराष्ट्रिय विमानस्थानकं प्रतिवर्षं 60 लाख यात्रिणां सेवा प्रदातुं विनिर्मितमस्ति। प्रधानमंत्री 80.8 लाख करोड़ रुपयाधिक व्ययुता राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाः राष्ट्राय समर्पयिष्यति, तासां शिलान्यासम् अपि करिष्यति। आन्ध्रप्रदेश यात्रानन्तरं प्रधानमंत्री कर्नाटकस्य मैसूरनगरं गमिष्यति, यत्र स्वामी विवेकानन्द सांस्कृतिक युवक केन्द्रस्य विवेक स्मारकस्य उद्घाटनं करिष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् अपशब्द प्रयोगः द्वेषभावना च कस्यापि समस्यायाः समाधानं न भवतः। असौ मार्गभ्रष्टेभ्यः युवभ्यः करुणाभावम् आवहन् अवदत् यत् ते दण्डनीयाः न, अपि तु राष्ट्रनिर्माणस्य राष्ट्रहितस्य च भावनया सम्यक् मार्गे प्रेरणीयाः। सामाजिकसञ्चारपटलेषु प्रसारिते एकस्मिन् दृश्यश्रव्यसन्देशे प्रधानमन्त्री राष्ट्रियराजधान्याः जन्तर्मन्तरस्थले सद्यः एव जातायाः तस्याः घटनायाः उल्लेखमकरोत्, यस्मिन् तस्मै तस्य दिवंगतमात्रे च अपशब्दाः प्रयुक्ताः आसन्। सः अवदत् यत् एषा घटना देशविदेशेषु बहुभिः जनैः दृष्टा। एतादृशस्य आचरणस्य विषये समाजे विद्यमानः आक्रोशः निराशा च स्वाभाविकौ स्तः। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् एतादृशान् युवकान् न्यायालयीय प्रक्रियासु न निवेशयेत्, सामाजिक तिरस्कारस्य भाजनं वा न कुर्यात्, अपि तु समाजेन तान् सस्नेहं स्वीकृत्य सम्यक् मार्गः प्रदर्शनीयः।
2: बचपन में गलतियां होती है और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
1: केन्द्रीय मंत्रिमण्डलेन प्रधानमन्त्री सूर्य सरोवर योजना अनुमोदिता। एषा योजना ऊर्जा संचयन प्रणालीभिः युक्तानां फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक इति परियोजनानां विकासाय प्रवर्तिता अस्ति। केन्द्रीय मंत्रिमण्डलस्य उपवेशनानन्तरं नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं 5,000 मेगावाट मितानां क्षमतायुतानां फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक इति परियोजनानां विकासः भविष्यति। ताभिः सह स्थापितानां ऊर्जा संचयन प्रणालीनां न्यूनतम संचयन क्षमता 2 होरात्मिका भविष्यति। केन्द्रीय मंत्रिमण्डलेन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनायाः अस्मात् वर्षात् 31,000 वर्षपर्यन्तं प्रवर्तनस्य निरन्तरतायै अपि अनुमोदनं प्रदत्तम्। भारतम् अव

0: अवदत् यत् पाकिस्तानाधिकृतस्य जम्मूकश्मीरप्रदेशस्य तथा कथितानि निर्वाचनानि पाकिस्तान प्रशासनस्य अपमानास्पदम् एव सन्ति। नवदिल्ल्यां वार्ताहरैः सह वार्तालापं कुर्वन् विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीरजायसवालः अवदत् यत् पाकिस्तानस्य प्रशासनं POJK इत्यत्र शान्तिप्रियाणां नागरिकाणां विरुद्धं निष्ठुरं बलप्रयोगं निरन्तरं करोति। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः गतसायं ईरान देशस्य विदेशमंत्रिणा अब्बास अराघची इत्यनेन सह दूरभाषया वार्तालापम् अकरोत्। अस्मिन् वार्तालापे सः अस्मिन् क्षेत्रे प्रवर्तमानायाः शत्रुतायाः विषये भारतस्य गभीरां चिन्तां प्रकटितवान्। राष्ट्रमंडल क्रीडासु भारतस्य पदक संख्या 23 यावत् वर्धिता, यस्मिन् 5 स्वर्ण पदकानि, 12 रजत पदकानि, 6 कांस्य पदकानि च सन्ति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखानी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत माता के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा है और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश तथा निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
2: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े।
1: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। उनसे एल्गोरिदम में पूर्वाग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि मेटा की ग्लोबल टीम से अगले सप्ताह के मध्य में पूछताछ होने की संभावना है। टीम को संसदीय समिति के समक्ष भी पेश होना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी पहले आंध्र प्रदेश जाएंगे, जहां वे विजयनगरम जिले के भोगपुरम में करीब 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। इस नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित किया गया है। प्रधानमंत्री कई और विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरू पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे। मंत्रिमंडल ने 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह निर्णय युवा विकास और राष्ट्र निर्माण के लिए खेलों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
3: कंप्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा, स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 ईयर्स के लिए और ये सीधा वीविन करेगी ओलंपिक, पैरालंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले हैं 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीविन करेगी।
1: भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में हुए तथाकथित चुनाव पाकिस्तानी सत्ता के खिलाफ जनता की कड़ी नाराजगी का प्रमाण है। नई दिल्ली में कल संवाद

मतदाताओं को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पीओजेके में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पाकिस्तान लगातार दमन कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई में 40 से अधिक लोगों की मौत हुई है और कई अन्य घायल हुए हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल शाम ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची से फोन पर बात कर पश्चिम एशिया क्षेत्र में जारी तनाव पर चिंता व्यक्त की। डॉ जयशंकर ने किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने देने का आग्रह किया। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने जूडो में पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में स्वर्ण पदक जीते। भारत के अब कुल 23 पदक हो गए हैं, जिसमें 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। श्रोताओं, इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ विशेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:20 पर आप सुनेंगे वार्ता। वार्ता का विषय होगा ग्वालियर चंबल संभाग के पुरातात्विक स्थल। जानकारी देंगे राजेश अवस्थी लावा। सुबह 7:30 से सुबह 8 तक आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत। 8:30 पर आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के क्रम में पॉडकास्ट कैच द रेन अभियान, वर्षा विज्ञान और विकास। इस पॉडकास्ट में आप सुन सकेंगे डॉक्टर अरविंद कुमार शुक्ला, कुलगुरु राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर से डॉक्टर विभूति सिंह की बातचीत। 9:00 आप सुनेंगे सूचना और समाचारों पर आधारित फिल्मी कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। 9:30 पर आप आनंद लेंगे शास्त्रीय संगीत का। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे सुनील पागवी का गिटार वादन, राग होगा विलास खानी तोड़ी। 10:05 पर आप सुन सकेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम सेहत की बात तरानों के साथ। आज इस कार्यक्रम में चर्चा के विषय हैं शिशु के प्रथम वर्ष का स्वास्थ्य। डॉक्टर अजय गौर से सुन सकेंगे आप तुलिका शर्मा की बातचीत। सुबह 11:00 से लेकर रात 11:00 तक सारे ही कार्यक्रम हमारे आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। हमारे शाम की सभा आरंभ होगी 5:00 हमारे युवा साथियों के कार्यक्रम युववाणी से। ये कार्यक्रम हमारे रीवा केंद्र की प्रस्तुति होगी। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे 5:33 पर, 6:30 पर, रात 8:30 पर और रात 10:00 आप सुन सकेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। शाम 6:00 आप आनंद लेंगे भजन संध्या का। 7:20 पर आप सुन सकेंगे विनोद पुरोहित से लोकगीत। 7:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। ये कार्यक्रम हमारे मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। 9:30 पर आप सुन सकेंगे अखिल भारतीय पत्रिका साहित्य भारती।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंतर मंतर विवाद पर वीडियो संदेश जारी कर कहा, गुमराह बच्चों को सजा नहीं, माफी और सही राह दिखाना चाहता हूं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज जबलपुर में 11 लाख पौधरोपण अभियान की शुरुआत के साथ शहरवासियों को देंगे विकास कार्यों की सौगात। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने जूडो में रचा इतिहास, पहली बार जीते 2 स्वर्ण पदक, मुक्केबाजी में 10 खिलाड़ी फाइनल में पहुंचे। और इंदौर उज्जैन संभाग सहित पश्चिमी जिलों में पिछले 48 घंटों के दौरान तेज बारिश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जंतर मंतर पर हुई घटना पर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि अभद्र भाषा का प्रयोग किसी भी सभ्य समाज के लिए स्वीकार्य नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस घटना में उन्हें और उनके दिवंगत माता के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां की गईं, लेकिन वे संबंधित युवाओं को सजा दिलाने के बजाय उन्हें सही राह दिखाना चाहते हैं।
1: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े।
0: वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी पहले आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगपुरम में करीब 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे भोगपुरम में नए अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे और विशाखापट्टनम में सेमी कंडक्टर परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूर पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद स्मारक विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज जबलपुर के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री शहरवासियों को विकास, स्वच्छता और पर्यावरण से जुड़ी कई बड़ी सौगातें देंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव डुमना नेचर पार्क में 11 लाख पौधरोपण अभियान की शुरुआत करेंगे और उमरिया, डुमना और कठौंदा में मियावाकी पद्धति से 5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री घंटाघर स्थित गीता भवन में 362 करोड़ रुपए की अमृत सीवेज परियोजना और 3 बड़े सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण करेंगे। इसका फायदा 89,000 घरों को मिलेगा। इसके अलावा गुरंदी में 2.25 करोड़ रुपए की लागत से बने नए मत्स्य बाजार का लोकार्पण भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल झाबुआ जिले के थांदला में स्वसहायता समूहों के क्षमता वर्धन और ऋण वितरण कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने स्वसहायता समूहों के सशक्तिकरण के लिए 300 करोड़ रुपए के ऋण का वितरण किया, जिसमें झाबुआ जिले के 215 समूहों के लिए 10.5 करोड़ रुपए का ऋण भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहनें अब हर महीने 10,000 रुपए की आमदनी कमा रही हैं और प्रदेश में 196 दीदी कैफे चलाए जा रहे हैं। उन्होंने झाबुआ जिले को

0: 74 करोड़ रुपए के 29 विकास कार्यों का भूमि पूजन, 109 करोड़ रुपए के 28 कार्यों का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा,
1: यहाँ पर आयुर्वेदिक कॉलेज झाबुआ के अंदर भूमि पूजन हुआ, जोरदार ताली बजाए अपने नए मेडिकल कॉलेज के लिए। धार झाबुआ में मेडिकल कॉलेज भी बनेगा, इंजीनियरिंग कॉलेज भी चलेगा, रोजगार के नए नए कारखाने खुलेंगे। अब तो थानला से होकर रेल भी जाने वाली है, नए दौर का नया समय आया। आदिवासी क्षेत्र में पट्टों के बजाय रजिस्ट्री करा करके आपके जीवन में बड़ी मदद करने का काम हमारी सरकार से कर रहे हैं।
0: प्रदेश के सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा है कि मूंग और उड़द खरीदी के दौरान किसानों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। श्री सारंग ने कल मंत्रालय में सहकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि खरीदी केंद्रों पर सभी व्यवस्थाएं समय पर रहें और उड़द खरीदी के लिए पर्याप्त बारदाना उपलब्ध कराया जाए। प्रदेश में पुलिस के नशे से दूरी है जरूरी 2.2 अभियान में जनभागीदारी से 5 विश्व रिकॉर्ड बने हैं। 15 दिन तक चले इस अभियान को 60 से ज्यादा जानी मानी हस्तियों का साथ मिला। इंदौर पुलिस कमिश्नरेट ने 1,75,000 से ज्यादा नागरिकों को नशा मुक्ति की ई शपथ दिलाई और 8,500 लोगों की मानव श्रृंखला बनाई। बड़वानी पुलिस ने 16,700 ड्राइंग शीट्स पर विद्यार्थियों से नशा मुक्ति के चित्र और स्लोगन बनवाए। बुरहानपुर के 113 स्कूलों के 32,000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने एक साथ नशा मुक्ति का संदेश दिया। वहीं बालाघाट में 1204 स्कूलों के करीब 1.25 लाख विद्यार्थियों ने नशा मुक्ति की शपथ ली। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने जूडो में पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अस्मिता डे और हर्ष सिंह स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय जूडो खिलाड़ी बने। वहीं यामिनी मौर्य ने रजत पदक हासिल किया। मुक्केबाजी में अरुंधति चौधरी, जैस्मिन लंबोरिया और लवलीना बोरगोहेन सहित 10 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में रजत और ऐश्वर्य सिंह ने कांस्य पदक जीता। तेजस्विन शंकर डेकथलॉन ने कांस्य पदक जीतकर ये पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया 128 पदकों के साथ पहले और भारत 23 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2025 के दूसरे भाग का आयोजन रविवार यानी 2 अगस्त को ऑफलाइन तरीके से किया जाएगा। ये परीक्षा 6 विषयों के लिए 2 सत्रों में इंदौर और भोपाल संभाग के केंद्रों पर होगी। पहला सत्र सुबह 10 बजे से 11 बजे तक और दूसरा सत्र दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। आयोग ने बताया है कि परीक्षा केंद्रों पर इस बार नई त्रिस्तरीय जाँच व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें CCTV निगरानी, बायोमेट्रिक जाँच और मेटल डिटेक्टर से तलाशी शामिल है। प्रदेश के वरिष्ठ साहित्यकार और पद्मश्री सम्मानित कैलाश चंद्र पंत का कल हृदय गति रुकने से निधन हो गया। वे 90 साल के थे और पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। कल उन्होंने भोपाल में अपने निवास पर अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार आज भोपाल के भदभदा विश्राम घाट पर किया जाएगा। और अब बात मौसम की। प्रदेश में जुलाई में 2 लंबे ब्रेक के बावजूद बारिश का कोटा पूरा हो गया है, लेकिन जून में कम बारिश की वजह से आंकड़ा 13% कम है। इस वजह से 55 में से 42 जिलों में सामान्य से कम पानी गिरा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिन भारी बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन अगस्त में कोटा पूरा हो सकता है। इंदौर उज्जैन संभाग सहित पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई जिलों में पिछले 48 घंटों के दौरान तेज बारिश हुई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में कलेक्टर ने 2 आदतन अपराधियों को जिले तथा उसके सीमावर्ती जिलों की सीमा से 6 माह के लिए सिलावदर किया है। खंडवा में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान आगामी 7 अगस्त से शुरू होगा। इसके तहत प्रत्येक शुक्रवार अधिकारी गांवों और नगरीय क्षेत्रों में पहुंचकर नागरिकों से संवाद करेंगे। कटनी में कल शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मंदसौर कलेक्टर दिव्यांग सिंह ने पिपलिया मंडी ट्रेंचिंग ग्राउंड का निरीक्षण कर स्वच्छता व्यवस्था देखी और पौधरोपण किया। आगरमालवा जिले के ग्राम आवर में संचालित स्वसहायता समूहों द्वारा निर्मित मिट्टी के खिलौने और अन्य हस्तनिर्मित उत्पादों का कलेक्टर ने अवलोकन किया। सतना पुलिस द्वारा जिले भर में नशे से दूरी है जरूरी अभियान के तहत व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर।

0: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। श्रोताओं, इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में 7:20 होने को है। अब प्रस्तुत है वार्ता। आज की वार्ता का विषय है ग्वालियर चंबल संभाग के पुरातात्विक स्थल, और वार्ताकार हैं राजेश अवस्थी लावा। आइए सुनते हैं इनसे ये वार्ता।
1: हमारे जीवन में पर्यटन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब अपने घर शहर से दूर घूमने जाते हैं तो बदले हुए वातावरण व प्रकृति को नज़दीक से देखने का अलग ही सुख है। पर्यटकों के घूमने के स्थान और पसंद अलग अलग होती हैं। इसी पसंद का एक हिस्सा है प्राचीन विरासतें, तो जिन्हें प्राचीन पुरातत्व धरोहरों को निहारना, देखना, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की इच्छा रहती है, उनके लिए ग्वालियर चंबल संभाग के दूर तक फैले क्षेत्र में बहुत कुछ देखने मिलता है। यहाँ पुरातात्विक स्मारक, प्राचीन मठ, मंदिर, महल, हवेलियाँ, किले, गढ़ियाँ, प्राचीन कुएँ, तालाब, बावड़ियाँ, झरने, पहाड़, नदियाँ बहुतायत मात्रा में हैं, जिन्हें सभी पर्यटक लोग सराहते हैं, देखते हैं। ग्वालियर किला स्थित गोपाचल पर्वत एवं पर्यटन स्थलों पर नज़र डालें तो ग्वालियर में मानसिंह का किला, लधेड़ी गेट, मोती महल, बैजाताल, जैवलास पैलेस, महाराजा बाड़ा, गंगादास की बड़ी साला, महारानी लक्ष्मीबाई स्मारक सहित जनकताल और दर्जनों प्राचीन इमारतें हैं। मध्य प्रदेश के पर्यटन को समृद्धशाली बनाने में मुरैना जिला, श्योपुर जिला, श्योपुर सहित शिवपुरी जिलों का अति महत्वपूर्ण योगदान है। सर्वाधिक प्रचलित पुरातात्विक प्राचीन पर्यटन केंद्र के लिए जाने जाने वाले स्थानों की सूची में मुरैना स्थित शनिचरा मंदिर है। इस मंदिर को हिंदुओं का तीर्थ स्थान कहा जाता है। यह मंदिर त्रेता काल का बताया जाता है। इसकी खास बात यह है कि मंदिर में भगवान शनि की जो मूर्ति है उसको उल्का पिंड से तराशकर बनाया गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर शनिचरी अमावस्या को यहाँ बड़ा मेला लगता है, जिसमें देश भर से सैलानी, पर्यटक व शनि भक्त आते हैं और शनिचरा नामक मंदिर जो कि ग्राम ऐति में स्थापित है उसका आनंद लेते हैं। पर्यटन के अलावा भी इस क्षेत्र का धार्मिक महत्व इसलिए भी है क्योंकि यहाँ के पहाड़ों आसपास का जो क्षेत्र है उसमें 8वीं और 9वीं सदी के प्राचीन स्थान पुरातत्व विभाग को मिले हैं। इसी कड़ी में शनिचरा पर्वत से 10 किलोमीटर दूरी पर बटेश्वर मंदिर है जो कि अंचल के जंगलों में है। यहाँ छोटे बड़े 200 से ज़्यादा मंदिर बने हैं जो 8वीं सदी में निर्मित हैं। ये जीर्ण ध्वस्त मंदिर अब पुरातत्व विभाग द्वारा अच्छी स्थिति में 60 से ज़्यादा मंदिर बना दिए गए हैं, जिन्हें देखने बड़ी मात्रा में देश भर से पर्यटक आते हैं। ये मंदिर प्रतिहार वंश के राजाओं ने बनवाए थे। बटेश्वर से लगा हुआ स्थान पढ़ावली है, तो पढ़ावली भी पर्वत पर किला रूप में बनाया गया है। यह प्राकृतिक दृष्टि से पर्यटकों को आकर्षित करता है। जमीन से 20 फीट ऊंचा यह पत्थरों की विभिन्न आकृतियों वाला मंदिरनुमा प्राचीन पुरातात्विक स्थान है। इसकी सीढ़ियां बड़ी आकर्षक हैं, इसको आकर्षक बनाती हैं। पत्थरों को उकेर कर पुराण ग्रंथों के कथानक बयां करती मूर्तियां इसके शिला मंडप में बनी हैं। इसके भीतर तोपखाने, बावड़ियां व अन्य मंदिर हैं जो कि तत्कालीन धर्म आसक्ति को बयां करते हैं। मध्य प्रदेश के गौरवशाली इतिहास के स्वर्ण पन्नों में जड़ित मुरैना जिला स्थित मितावली महादेव

मंदिर है जो ऊंची पहाड़ी पर चंबल के बीहड़ों जंगलों के सुनसान बियाबान में बनाया गया है। विशाल शिला पर टिका यह शिव मंदिर 64 योगिनियों का मंदिर कहलाता है। गोलाकार बना यह मंदिर कच्छप घाट के राजा देवपाल द्वारा सन 1323 ईस्वी में बनवाया गया था। वे शिव उपासक थे। उन्होंने अपनी साधना के लिए 64 आकृतियों के शिव मंदिर को एक रूप दिया और विभिन्न प्रकार के शिवलिंग बनवाकर गोल रूप में स्थापित किए। जब हम 64 योगिनी मंदिर के लिए पहाड़ पर चढ़ते हैं तो प्रारंभ में एक ही चट्टान से निर्मित विशाल नंदी खड़े दिखते हैं। यहाँ के और भी मंदिर हैं जो तपोभूमि के रूप में सुविख्यात हैं। मुरैना जिला स्थित अंचल भर में मिलने वाले कई स्थानों में से पर्यटकों को पुरातात्विक स्थानों में ककनमठ का बड़ा योगदान देखने मिलता है। सिहोनिया स्थित यह ककनमठ 1000 वर्ष पूर्व निर्मित था। यह रथ के आकार में बनाया गया है। विशाल शिव मंदिर है ये, जिसे ककनावती रानी की पूजा भक्ति के लिए उस समय के तत्कालीन राजा ने बनाया था। पुरातात्विक स्थानों से संपन्न मुरैना जिला में कुतवार भी है, जिसे भगवान कृष्ण की बुआ कुंती का मायका कहा जाता है। कुतवार यानी कि तत्कालीन कुंतलपुर। तो कुंतलपुर में आज भी कर्णखार नामक वह कुआ बना है जहां कर्ण को माता कुंती ने बहा दिया था और वह नदी में बहता हुआ आगे निकल गया था। मुरैना जिला के प्रातत्व में 8वीं सदी के नरेश्वर शिव मंदिर भी देखे जाते हैं, जिनकी की बनावट और शानदार शैली हमें आश्चर्य में डाल देती है। कला निर्माण के बेजोड़ ये स्मारक मध्य प्रदेश की शान है, पहचान है। पर्यटन के क्षेत्र में भिंड जिले का अपना अलग ही स्थान है। ग्वालियर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर गोहद स्थित है, जो कि अपने प्राचीन किले के लिए जाना जाता है। गोहद क्षेत्र में प्राचीन मंदिर हैं और उस क्षेत्र की प्राचीन धरोहरों में किला है, जो कि अपना एक अलग ही स्थान रखता है। थोड़ी ही दूरी पर सीताराम की लावण नामक गांव है। यहाँ के मंदिर श्री सीताराम भगवान के बने हैं और खास बात यह है इस मंदिर की कि सीताराम की लावण गांव में सबसे पहले रामायण लिखी गई थी। तत्कालीन पंडित विष्णुदास व्यास जी, जो कि तुलसीदास जी से भी 132 वर्ष पूर्व उन्होंने रामायण की रचना की, जिसका उल्लेख श्री रामचरितमानस के रचनाकार श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में किया है। सीताराम की लावण गांव में तत्कालीन समय के बेजोड़ मंदिर अभी भी देखे जाते हैं। बाकायदा परंपरागत तरीकों से इन मंदिरों में आज भी पूजा अर्चना होती रहती है। क्योंकि यह स्थान सर्वाधिक चर्चित परिचित नहीं है, लेकिन जो पर्यटक इसके बारे में जानते हैं वो यहाँ आना नहीं भूलते। पर्यटकों के लिए सीताराम की लावण अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान है। इसी क्षेत्र में भगवान परशुराम का आश्रम व मंदिर भी है। माता रेणुका जी का मंदिर है, जिसकी अनुपम छटा देखते ही बनती है। यह स्थान भी आस्था का प्रमुख केंद्र है। इसी कड़ी में क्षेत्र के प्राचीन पर्यटकों को अपनी अहमियत बताते हुए यहाँ का बेहट, जो कि तानसेन की साधना स्थली तपोभूमि है, संगीत सम्राट तानसेन जो कि विश्वविख्यात हैं, यहाँ की झिलमिल नदी को देखना अत्यधिक सुखद प्रतीत होता है। संगीत प्रेमियों और स्वर की समझ रखने वालों के लिए बेहट का यह प्राचीन शिव मंदिर, जो कि एक तरफ झुका हुआ प्रतीत होता है, बहुत ही आदर और सम्मान वाला तीर्थ स्थान जैसा है। भिंड में भी कई स्थान पर्यटन के केंद्र हैं, जिनमें भिंड का किला जो कि पुरातात्विक धरोहर है, वहीं प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत नज़ारा, गौरी सरोवर,
जिसे सुंदर बाग के रूप में

0: में देखा जाता है। यहाँ की शांत पक्षियों का कलरव और शांत वातावरण बड़ा ही मनमोहक है। भिंड का बनखंडेश्वर मंदिर भगवान शिव की आराधना के लिए प्रसिद्ध है। भिंड जिले में अपनी अलग ही पहचान रखने वाला अटेर का किला है, जो कि चंबल नदी के किनारे और भी आकर्षक बनाता है। 17वीं सदी में निर्मित यह किला भदौरिया राजाओं द्वारा बनवाया गया था, जो अपनी शानदार वास्तुकला सहित खूनी दरवाजे के लिए भी प्रसिद्ध है। इसे उस समय की प्रचलित मुगल तथा राजपूत शैली के मिश्रण शैली में बनाया गया है। इसकी दीवारें, बुर्ज, महल लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। धन्यवाद।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे वार्ता। आज की वार्ता का विषय था ग्वालियर चंबल संभाग के पुरातात्विक स्थल, और वार्ताकार थे राजेश अवस्थी लावा। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है।

श्रोताओं, आकाशवाणी ग्वालियर के इस मधुर और संगीतमय कार्यक्रम फिल्म संगीत में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी अपनी रेडियो मित्र स्मिता। सावन केवल एक ऋतु नहीं बल्कि प्रकृति का सबसे मनभावन उत्सव है। ये वह मौसम है जब बादल आसमान में गीत लिखते हैं और हवाएं मधुर धुन छोड़ती हैं और वर्षा की बूंदें धरती के आंगन में संगीत रचती हैं। हरियाली से सजी वादियां, मिट्टी की भीनी भीनी सौंधी खुशबू और पेड़ों पर झूलों की रौनक मन को आनंद से भर देती हैं। ऐसे ही मनभावन मौसम को समर्पित है आज की हमारे फिल्म संगीत की यह विशेष प्रस्तुति। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का सबसे पहला गीत, जो आधारित है सावन पर ही। सावन की फुहारें जहां धरती की प्यास बुझाती है दोस्तों, वहीं मन की गहराइयों में छिपी भावनाओं को भी जागृत कर देती है। कभी ये मौसम मिलने का संदेश लेकर आता है तो कभी किसी प्रिय के इंतज़ार को और भी गहरा कर देता है। आइए इस भाव को स्वर देता हमारा ये पहला गीत सुनते हैं फिल्म दहक अ बर्निंग पैशन ट्रेन से।

अभी आप सुन रहे थे हरिहरन और साधना सरगम के युगल स्वरों में फिल्म दहक अ बर्निंग पैशन का गीत। दोस्तों, बारिश की रिमझिम फुहारें जब शहर की गलियों, पेड़ों की डालियों और दिलों की धड़कनों को एक साथ छूती है, तब हर दृश्य कविता सा लगने लगता है। आइए अब सुहाने एहसास को महसूस करते हैं इस सदाबहार गीत पे। सुनते हैं फिल्म मंजिल का ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए सावन पर कुछ सदाबहार गीत। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।

0: So, your place or mine?
1: उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डम है?
0: कॉन्डम? लेकिन हम
1: तो क्या हुआ? ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
0: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
2: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओ, बारिश का ये मौसम अपनेपन का एहसास तो जगाता ही है, लेकिन यदि अपनों से दूरी हो तो यही फुहारें यादों की बारिश बन जाती है, और प्रेम, प्रतीक्षा और विरह की इन्हीं भावनाओं को बेहद खूबसूरती से प्रस्तुत करता है ये हमारा अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म रोटी कपड़ा मकान से। गीत के बोल लिखे हैं वर्मा मलिक ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में ये सदाबहार गीत।

0: श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। आकाशवाणी ग्वालियर आपकी सेवा में है।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे।
2: सो इजी।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: दोस्तों, सावन की हर बूंद जीवन में नई ताजगी और नई उमंग भर देती है, और ये मौसम प्रेम, अपनत्व और मुस्कुराहटों का संदेश लेकर आता है। आइए भीगी भीगी रुत के इस मधुर अनुभूति की साथ सुनते हैं ये प्यारा सा गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म 1942 अ लव स्टोरी से। आवाज़ें हैं कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की।

सावन का खुला आकाश, उड़ते बादल और बहती ठंडी हवाएं मन को भी आज़ाद कर देती हैं। ऐसा लगता है मानो मन हर बंधन से निकलकर प्रकृति

की गोद में खो जाना चाहता है। इन्हीं भावों को अभिव्यक्त करता है आज की प्रस्तुति का ये अंतिम गीत। आइए सुनते हैं अगला गीत जिसे हमने लिया है फिल्म

तो श्रोताओं, सावन की भीगी फुहारों और फिल्मी गीतों का ये मधुर सरगम यही हम संपन्न करते हैं। आशा है कि इन्हीं गीतों ने आपके मन को भी हरियाली की ताजगी, बारिश की सुकून भरी ठंडक और सावन की मधुर अनुभूतियों से सराबोर कर दिया होगा। फिलहाल इजाज़त दी।

जी अपनी दोस्त स्मिता को नमस्कार। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: है सोलर पैनल लगवाने के लिए। बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं। वीडियो संदेश में कहा, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए युवाओं को दंडित करना चाहिए। प्रधानमंत्री आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर, वे वहां कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता के खिलाफ जनता की कड़ी नाराजगी का प्रमाण। भारत ने ईरान से किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने देने को कहा। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। जूडो में 2 ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीते। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यादगार दोहरा पोडियम स्थान हासिल किया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। ये विधेयक बृहस्पतिवार को संसद से पारित किया गया था। इसका उद्देश्य कठोर दंड का प्रावधान करने और फास्ट ट्रैक अदालत बनाकर लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। यह अधिनियम विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा करते हुए एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करके परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और सत्य निष्ठा को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है। अधिनियम में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति की जब्ती जैसे कठोर दंड शामिल हैं। मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्टैग अदालत स्थापित करने की आवश्यकता है। इसमें यह भी अनिवार्य है कि प्राथमिकी दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर अपराधों की जांच पूरी की जाए, जबकि आरोप पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत माता के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा है और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
3: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार

0: करें। मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े।
1: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। उनसे एल्गोरिदम में पूर्वाग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी पहले आंध्र प्रदेश जाएंगे, जहां वे विजयनगरम जिले के भोगपुरम में करीब 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री भोगपुरम स्थित अल्लूर सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित किया गया है। प्रधानमंत्री विशाखापत्तनम में 460 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से विकसित की जा रही ASIP सेमीकंडक्टर परियोजना की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी कुर्नूल 4 नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के एकीकरण के लिए 4.5 गीगावाट क्षमता वाले ट्रांसमिशन सिस्टम के प्रथम चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसे पावर ग्रिड द्वारा एक विशेष प्रयोजन वाहन द्वारा लगभग 5,550 करोड़ रुपए के निवेश से कार्यान्वित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री लगभग 3,550 करोड़ रुपए की लागत से कार्यान्वित कुर्नूल पवन ऊर्जा क्षेत्र और सौर ऊर्जा क्षेत्र भाग ए और भाग बी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम का भी उद्घाटन करेंगे। वे अनंतपुरम में 2,500 मेगावाट और कुर्नूल में 1,000 मेगावाट के सौर ऊर्जा क्षेत्रों के लिए पावर ग्रिड द्वारा 800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के कार्यान्वित ट्रांसमिशन सिस्टम का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी 1,880 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। विजयवाड़ा से अलू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरु पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।
3: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फीथिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम के ओर से यहाँ शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: पश्चिम बंगाल में आज से जनगणना शुरू हो रही है। ये प्रक्रिया 2 चरणों में डिजिटल माध्यम से संपन्न की जाएगी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से अद्यतन जनसंख्या के आंकड़े एकत्र करना है। 2 चरणों वाली ये प्रक्रिया राज्य में व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है।
4: पहले चरण में नागरिक आज से 15 अगस्त तक आधिकारिक जनगणना पोर्टल se.census.gov.in पर अपनी जानकारी देकर सेल्फ इन्यूमरेशन करने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इस चरण का दूसरा भाग 16 अगस्त से 14 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान जनगणना अधिकारी मकान सूचीकरण और शुरुआती गिनती के लिए घरों का दौरा करेंगे। आखिरी चरण अगले साल फरवरी में होगा, जब जनगणना करने वाले कर्मचारी वास्तविक जनसंख्या गणना के लिए प्रत्येक के हर सदस्य के नाम, उम्र, लिंग, जाति और धर्म के बारे में जानकारी एकत्र करेंगे। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
5: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में तथा कथित चुनाव के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता को नकारे जाने का प्रमाण है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पीओजेके में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों का पाकिस्तान लगातार दमन कर रहा है।
2: पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ लगातार निर्मम बल रूथलेस फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है और इस सख्त कार्रवाई में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई एक और लोग घायल हुए हैं। एक हिंसक शासन का सामना करते हुए वहां के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जाँच की मांग की है। हम आग्रह करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की हरकतों की बारीकी से जाँच करनी चाहिए और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह जाना चाहिए।
1: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल शाम ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से फोन पर बात कर पश्चिम एशिया क्षेत्र में जारी तनाव पर चिंता व्यक्त की। डॉ जयशंकर ने किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने देने को कहा। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी पक्ष द्वारा किए गए ऐसे किसी भी हमले की निंदा करता है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने कल जूडो में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक जीते। भारत ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यादगार डबल पोडियम फिनिश हासिल की। डेकाथलॉन में पहला कांस्य पदक जीता और 10 मुक्केबाजों ने अपनी अपनी स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई। एक रिपोर्ट।
3: अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में भारत के लिए पहले राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अस्मिता ने महिलाओं का 48 किलोग्राम वर्ग का खिताब जीता, जबकि हर्ष ने पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। यामिनी मौर्य ने महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। एथलेटिक्स में ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 85.83 मीटर के साथ रजत पदक जीता, जबकि यशवीर सिंह ने 85.41 मीटर के थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता। तेजस्विन शंकर डेकाथलॉन में कांस्य पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। भारत के 10 मुक्केबाजों ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत अब कुल 23 पदक के साथ तालिका में 10वें स्थान पर है, जिसमें 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डेकाथलॉन स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर एथलीट तेजस्विन शंकर को बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंध्रीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, केरल और माहे में मूसलाधार वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी आज बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
4: धन्यवाद कनक। जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और उनकी माता के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले बच्चों के लिए श्री मोदी का बयान अनेक अखबारों की हेडलाइन है। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम पर कहा, हमें इन गुमराह बच्चों को माफ करना चाहिए। पत्र ने अंदर के पृष्ठ पर आप बीती शीर्षक से छात्रों के प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों का वक्तव्य दिया है, वर्दी के पीछे भी एक परिवार होता है। दैनिक भास्कर ने परिजनों की पीड़ा का उल्लेख किया है, पिता को भीड़ ने खींचा, खून से सनी वर्दी में घर लौटे। आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन सहित 5 को उम्र कैद की सजा की खबर भी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण लिखता है, अदालत ने कहा, अंकित शर्मा की हत्या इतनी क्रूर और बर्बर कि समाज की अंतर आत्मा को झकझोर देती है। पत्र ने अपने संपादकीय में लिखा है, अदालत के फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीदें बंधी। दंगों में धर्म के नाम पर आम लोगों को निशाना बनाया गया, जिसके जख्म आज भी हरे हैं। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार तो है, पर इसकी आड़ में उपद्रव फैलाने की छूट किसी सूरत में नहीं दी जा सकती। कुलगाम में आतंकी हमला, मजदूर की मौत, नवभारत टाइम्स के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला लिखता है, कश्मीर में आतंकियों के नाम पूछकर बरसाई गोलियां, प्रवासी की मौत, टीआरएफ ने ली जिम्मेदारी। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल को जूडो में पदक मिलने की अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स लिखता है, जूडो में अस्मिता हर्ष की स्वर्ण गाथा, जीते दो गोल्ड मेडल। अमर उजाला ने हर्ष सिंह और अस्मिता का चित्र देते हुए लिखा है, 92 साल में पहली बार देश को जूडो में स्वर्ण, पहली बार जिंदा दिल लेकर दौड़ी वंदे भारत, लोकसत्य में है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं। वीडियो संदेश में कहा, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए युवाओं को दंडित करने

0: in West Asia region urges Iran to avoid attacks on commercial shipping and seafarers. Italy suspends free border travel with Spain over Ceuta migrant crisis. And at Commonwealth Games, India clinched two historic gold medals in judo, secure double podium finish in men's javelin throw, and win a first ever bronze in decathlon. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के क्रम में विशेष पॉडकास्ट। इस विशेष प्रस्तुति में कुलगुरु राजमाता विजयाराजे सिंधिया के डॉक्टर अरविंद कुमार शुक्ला से जल संरक्षण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा सतत विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत कर रही हैं डॉक्टर विभूति सिंह। आइए सुनते हैं ये विशेष पॉडकास्ट, कैच द रेन अभियान, वर्षा, विज्ञान और विकास।
2: श्रोताओं नमस्कार, आकाशवाणी ग्वालियर के इस पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। इस नए एपिसोड में आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, कैच द रेन अभियान, जो जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने की दिशा में एक राष्ट्रीय पहल है। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के माननीय कुलगुरु डॉक्टर अरविंद कुमार शुक्ला जी। कृषि एवं जल प्रबंधन के क्षेत्र में आपका व्यापक अनुभव और योगदान रहा है, तो चलिए बिना देर किए इनसे बातचीत शुरू करते हैं। सर, हमारे स्टूडियो में स्वागत है आपका।
3: धन्यवाद मैडम जी।
2: सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे आकाशवाणी के साथ आपकी जुड़ाव के विषय में, कब आपका परिचय हुआ और उस परिचय से जुड़ी अगर कोई स्मृति है तो हमारे साथ साझा करें।
3: हमारा सबसे पहले आकाशवाणी से जुड़ाव विद्यार्थी जीवन में हुआ। जब मैं PhD कर रहा था तो एक पत्रकार महोदय थे, वो पहले हमको उन्होंने कक्षा 8 में पढ़ाया भी था, तो उन्होंने हमारा एक लेख लिखा अखबार में, ऊसर जमीन का सुधार कैसे करें। तो उस समय उस लेख को देख के हमको आकाशवाणी में बुलाया गया और हमने उसको विस्तृत रूप से पूरी परिकल्पना देश के सामने रखी कि हमारे देश में कितनी ऊसर जमीन है, उसका सुधार के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उससे उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसमें जल संरक्षण कैसे किया जा सकता है, उसमें और भी तरीके के जो खेती के अलावा जैसे कि वन लगाना, उसके अलावा हमारा था कि कोई रिक्रीशन से संबंधित कार्य है वो भी हम उसमें लेके आए थे। तो पहला परिचय हमारा 1989 में हुआ। मैं 1989 से आकाशवाणी से जुड़ा हुआ हूँ
2: जी। एक लिसनर के तौर पर भी,
3: एक लिसनर के तौर तो हम 1983 से जुड़े हुए हैं। 1983 में हम लोग जब BSc में पहुंचे, क्लास करके आते थे तो शाम को हमारा आकाशवाणी से न्यूज सुनना ये पहली प्राथमिकता होती थी।
2: शुक्ला जी, अब आप अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि, शिक्षा और अब तक का जो सफर है इसके विषय में थोड़ा संक्षेप में बताएं हमारे श्रोताओं को।
3: मैं एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ। हमारा जन्म कानपुर के एक गांव बेदीपुर में हुआ और हमारे पिताजी किसान थे तथा हमारे चाचा लोग पूरा देशभक्त थे, तो वो देशभक्ति के काम में लगे रहते थे। हमारे भाई लोग पढ़ लिख गए, एक भाई गांव में रहे, लेकिन मेरा जुड़ाव खेती के साथ साथ विज्ञान से ज़्यादा था, तो हम विज्ञान की तरफ बढ़े और आगे चलते हुए हमने चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय से जो है अपनी डिग्रियां हासिल की, वहीं से हमने PhD की। हमारा जो PhD का विषय था वो था स्टडीज ऑन जिंक इन साल्ट अफेक्टेड सॉइल। जैसा कि हमने अभी बताया आपको कि ऊसर जमीन को सुधारने के लिए एक नया विषय था, इसलिए हमारी जो PhD का थीसिस का विषय था वो भी ऊसर जमीन में जिंक का क्या अध्ययन किया जाए, कैसे अध्ययन किया जाए, उस पर आधारित था। उसके बाद हमारी एक लंबी कहानी चली, हम पुलिस की नौकरी में चले गए और वहाँ से आके वैज्ञानिक हो गए। वैज्ञानिक होने के साथ साथ बीच में हमने गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी जो है कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर, वहाँ पे हमने कुछ दिन असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में भी पढ़ाया। लेकिन मुख्य रूप से जब मैं वैज्ञानिक हो गया तो अपने आप को वैज्ञानिक की तरफ ज़्यादा मोड़ के लाया। हमने देश के कई संस्थानों में काम किया। हमारी शुरुआत वैज्ञानिक के रूप में फसल प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम मेरठ से हुई। उसके बाद में हमारा वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में चयन हुआ CPRI शिमला में आलू वाले संस्थान में, और वहाँ से फिर हम धान वाले संस्थान में चले गए, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक। तो वहाँ से आने के बाद में फिर हमारा चयन अखिल भारतीय परियोजना समन्वयक के रूप में हुआ, जहाँ पे मैं मुख्य रूप से भारतवर्ष में सूक्ष्म एवं गौड़ पोषक तत्वों पे जो भी अनुसंधान हो रहा है उसका पूरा लीडरशिप मैं करता था और उनकी कार्य योजना बनाता था। उसमें हमारे साथ में करीब 350 वैज्ञानिक काम करते रहे। 11 साल मैं उस पद पे रहा और पूरे देश के लिए सूक्ष्म तत्वों से संबंधित काफ़ी विस्तृत काम किया। एक बड़ा काम ये किया कि सूक्ष्म तत्वों का जो जमीन में है उनका मनुष्य के स्वास्थ्य के साथ कैसा संबंध है, ये एक बड़ी हमारी उपलब्धि थी। उसके साथ साथ पूरे देश के करीब 670 जिलों की जो सूक्ष्म तत्वों गौण पोषक तत्वों की थे उनकी मैपिंग की गई, मानचित्रीकरण किया गया, और उनका किस प्रकार से किसान उपयोग करे, किस प्रकार से उनके हम रिकमेंडेशंस जनरेट करें, उन सब पे हमने एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की और उस पर काम किया। अभी उसके बाद में मैं 2022 नवंबर से राजमाता कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में कुलपति के रूप में काम कर रहा हूँ। यहाँ पे मुख्य रूप से हमारा जोर प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती, बीज उत्पादन, संरक्षण खेती, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, उसके साथ साथ जो जल संरक्षण क्षमता है उसको कैसे बढ़ाएं, जल संचयन, उन पे मुख्य रूप से हम लोग पूरा विश्वविद्यालय विस्तृत रूप से काम कर रहा है।
2: बड़ी रोचक ये यात्रा है आपकी, और एक बात पे तो मैं आपको दोबारा ले जाना चाहूंगी, पुलिसमैन टर्न्ड एकेडमिशियन, कब आपको ये रियलाइज हुआ कि ये पुलिस की नौकरी नहीं है मेरे लिए?
3: जब मैं पुलिस में गया तो हमने DSP ज्वाइन किया तो हमारे मिसेज ने कहा कि ये नौकरी ठीक नहीं है, इसमें आप दिन भर किन से मिलते हो, क्या करते हो, समझ नहीं आता है। आप जब इतने बड़े काबिल हो, आपकी इतनी काबिलियत है, तो आप किसी दूसरी नौकरी के लिए तलाश क्यों नहीं कर रहे। तो उसी बीच एक एग्जाम दिया हुआ था एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड का, तो वहाँ पे वैज्ञानिक में चयन हो गया। तो फिर फटाफट जो हमारे पुलिस के ऑफिसर थे उन्होंने कहा कि आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप पुलिस छोड़ के वैज्ञानिक बन जाओ, तो हितकर रहेगा। मैं इसलिए वैज्ञानिकता में आ गया। अब मैं समझता हूँ कि ये जीवन उससे ज्यादा बेहतर है।
2: तो कह सकते हैं कि जो एक लोकल होम मिनिस्ट्री होती है उसका प्रभाव है।
3: बिल्कुल, क्योंकि हमारी धर्मपत्नी का पूरा समाज से एक गहरा लगाव है और वो समाज को सुधारना चाहती हैं और वो चाहती हैं कि देश के लिए कुछ करो। इसलिए अगर हम पुलिस ऑफिसर रहते तो वहीं समेट कर रह जाते। यहाँ पे आने के बाद में हम किसानों के हित के काम कर सकते हैं, हम छात्रों के हित का काम कर सकते हैं, हम राष्ट्र हित के काम में लगे हुए हैं। तो ये एक बड़ा उद्देश्य है, पुलिस का काम एक छोटे उद्देश्य था।
2: हम विषय पे थोड़ी चर्चा करते हैं, कैच द रेन जो अभियान है, इसके बारे में सरल शब्दों में कैसे व्याख्यायित करेंगे हमारे श्रोताओं के लिए, और मुख्य उद्देश्य क्या है इस कैंपेन का?
3: देखिए, ये है कैच द रेन वेयर एवर इट इज एंड व्हेन इट इज, मतलब वर्षा को हम तुरंत कैच करें जहां भी हो और जब भी हो। पहले भी अगर आप वैदिक काल में जाएं तो उस समय हमारे देश में या पूरे संसार में कहीं रेन के अलावा पानी का कोई दूसरा स्रोत नहीं था। हम रेन से ही जल संचयन करते थे, रेन से ही खेती करते थे, और वर्षा से ही हम अपने तालाब भरते थे, वर्षा से ही पीने का पानी इकट्ठा होता था, और वही वर्षा जल नदियों में बहता था, उससे सिंचाई करते थे और पीने के काम में लाते थे। अभी क्या हुआ कि धीरे धीरे विकास हुआ, विकास में कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं कि हम विकसित हो गए, हमारे बड़े घर बन गए, बड़ी सड़कें बन गईं, खेती के तरीके बदल गए, लेकिन जो वर्षा का जल था उसका संचयन बिल्कुल बंद हो गया। अभी हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका सपना है कि सन 2047 तक क्या हम प्रत्येक गाँव को जल में आत्मनिर्भर बना सकते हैं, क्या हम प्रत्येक शहर में जल जो वर्षा जल संचयन किया हुआ है उससे उसके वाटर की सप्लाई कर सकते हैं, क्या हम 2047 तक जो हमारी कृषि में जल उपयोग क्षमता है उसको 50% तक बढ़ा सकते हैं, क्या हम अपने तालाबों को दोबारा पुनर्जीवित कर सकते हैं, क्या हम वर्षा जल पे आधारित होकर के एक नई क्रांति ला सकते हैं कि जहाँ पे हमारा ज्यादा दोहन हो गया वहाँ

0: जल भरण हो और जहाँ पे पानी नहीं रुक रहा है वहाँ जल संचयन हो, उस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए ये एक नया अभियान चलाया गया है। इसमें क्या है कि हमको इंतजार नहीं करना है, इसीलिए कहा गया कि जहाँ भी वर्षा हो और जब भी वर्षा हो। पहले लोग प्लानिंग करते थे कि वर्षा होगी, फिर प्रेडिक्शन करते थे हैवी रेन्स कब होंगी, हम उसको कैच करेंगे। अभी ये सिद्धांत खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं जलवायु परिवर्तन हो रहा है। ये वर्ष में भी एल नीनो इफेक्ट है, तो एल नीनो इफेक्ट में भी कहीं ज्यादा वर्षा है, कहीं कम वर्षा है, तो अनियमित रेनफॉल हो रही है। जलवायु परिवर्तन में वर्षा की जो दिन थे वो कम हो गए, लेकिन इंटेंसिटी रेनफॉल बढ़ गई, यानी जिस दिन बरसात होती है बहुत बरसात हो जाती है
1: जी।
0: और फिर 15-20 दिन बरसात नहीं होती है, तो ये सारे परिवर्तन हुए। अब हमें देखना होगा कि अगर हम उसका इंतजार करते रहेंगे तो मुश्किल आएगी, तो हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी पहले से ही। पहले से प्लानिंग मतलब जैसा कि गवर्नमेंट कर भी रही है, नए जितने भी बिल्डर हैं उनको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं कि शहर में जो भी बिल्डिंग बनेगी उसका हम जो रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग करके नीचे लाएंगे उसको और जमीन में डालेंगे। उसके साथ साथ में लगातार फार्म पांड का कॉन्सेप्ट चल रहा है कि हर खेत में एक पांड हो। उसके साथ साथ ये भी हो रहा है कि जो गांव के तालाब थे उनको रिवाइव किया जाए। उसके साथ साथ ये भी चल रहा है कि वर्षा जल सिर्फ जल इकट्ठा करने से नहीं होगा, इसके लिए हम पेड़ पौधे लगाएं, यानी जंगलों की एरिया बढ़ाएं। जितने ज्यादा पेड़ लगाएंगे, हमें ये नहीं सोचना है कि हम कौन सा पेड़ लगा रहे हैं, इसका महत्व क्या है। अभी ये जरूरत है कि पेड़ लगाएं, अंधाधुंध पेड़ लगाएं। आप पहले देखते थे कि पेड़ खेतों में लगे रहते थे, अब आप जाइए खेतों में कोई पेड़ ही नहीं मिलते, लंबी दूरी तक आपको पूरा मैदान मिलेगा। तो भारत सरकार का एक कॉन्सेप्ट है मेड़ पर पेड़ लगाएं। अगर हर मेड़ पे पेड़ लगने लगेगा तो धीरे धीरे पेड़ बरसात का एक माध्यम है, वो बरसात को प्रभावित करते हैं, तो हम पेड़ लगाएं। उसके साथ साथ जल का रिसाइकिलिंग करें, ये भारतवर्ष में बिल्कुल नहीं हो रहा, जहाँ पानी का एक ही बार उपयोग हो रहा है, एक बार उपयोग होकर फिर उसे हम फेंक देते हैं। अब जैसे पूरे शहर का पानी जा रहा है नालों में, तो उसको रिसाइकिलिंग करें। नाले जाने के बाद में अमेरिका वगैरह में पूरा प्योरिफिकेशन होकर दोबारा सप्लाई हो जाता है, तो हमारे पास में वो संयंत्र नहीं है, वो सुविधा नहीं है, उस तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो वर्षा का एक भी बूंद जहाँ कहीं, कहाँ जहाँ कम वर्षा हो रही है, कहीं 300 mm हो रही है, कहीं 1200 mm हो रही है, तो जहाँ 300 mm हो रही है वहाँ पे भी हमें चांसेस हैं उसको हार्वेस्ट करने के। हम रेन को हार्वेस्ट करें जहाँ 300 mm है, वहाँ पे भी आपने देखा होगा राजस्थान के छोटे छोटे गांव में बहुत सारा वर्षा जल का संचयन हुआ, उसके बाद में कितने लोगों को बहुत सारे अवार्ड मिले। तो निर्भर करता है कि हमारी मनोस्थिति क्या है, हम क्या करना चाहते हैं और हमारी प्लानिंग क्या है, उसके हिसाब से निश्चित रूप से हम वर्षा के एक एक बूंद को बचाने का प्रयास करें। यही है कैच द रेन कैंपेन।
1: बड़े सरल शब्दों में आपने समझाया, उम्मीद है हमारे श्रोता इस अभियान को बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। बताइए कि मध्य प्रदेश, खासकर जो हमारा एरिया है ग्वालियर चंबल क्षेत्र, यहाँ पर जल संरक्षण की वर्तमान स्थिति को लेकर आपके क्या विचार हैं, आप किस तरह देखते हैं?
0: देखो, आप मध्य प्रदेश को अगर देखें तो पूरे मध्य प्रदेश में 1000 से लेकर के 1400 mm तक रेनफॉल होती है, और ये काफ़ी रेनफॉल कहलाती है। यदि आप सिर्फ चंबल बिहड़ ये एरिया देख लें तो यहाँ पे भी पिछले 4 सालों में किसी साल में 1022, किसी में 1100, किसी में 1200, पिछली साल तो 1235 mm रेनफॉल हुई थी। ऐसी हर साल बरसात होती है, लेकिन हमें एक प्लान बनाना पड़ेगा, हमें इस अपनी जो पूरा मध्य प्रदेश है उसको 4-5 भागों में बांटना पड़ेगा। एक हमारा मालवा क्षेत्र है, वहाँ पे पानी का दोहन बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो उस क्षेत्र में पानी के दोहन के लिए संचरण करके जमीन में पुनर्जीवन करें, यानी जमीन में पानी दोबारा ले जाए, जितने भी एक्वीफर्स सूख गए उनको रिचार्ज करें, तो वो एक बड़ा काम होगा। हम भूजल संरक्षण को बढ़ावा दें। जो बुंदेलखंड एरिया है वहाँ पे जल संचयन का काम किया जा सकता है, और जो सूखा प्रभावित क्षेत्र है बुंदेलखंड, तो सूखा के प्रबंधन के काम किए जाए, ये नहीं कि सिर्फ पानी इकट्ठा कर रहे हैं। कौन सी फसल उगाएं सूखा प्रबंधन में, वो फसल उगाएं जो कम पानी चाहती है, कौन सी एग्रीकल्चर की तकनीकी अपनाएं, वो तकनीकी अपनाएं जिससे कि सूखा प्रबंधन में काम आ सकती है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में हम जरूरी नहीं है कि पांड बनाए, छोटी छोटी क्यारियां बना करके भी हम पानी भर सकते हैं कि किसी भी तरीके से पानी वहां पे रुके। जो हमारा चंबल ये बिहड़ वाला क्षेत्र है, इनमें मुख्य रूप से जल संग्रहण की जरूरत है और इनके विकास की जरूरत है। विकास की मतलब यहाँ पे इरोजन बहुत ज्यादा है, पूरा जमीन सहित बह जाती है पानी के साथ में, इतना ज्यादा जल और मृदा क्षरण है। पानी रहता है तो मृदा क्षरण होता है, जल क्षरण होता है। तो उस तरीके से

0: पहले यहाँ विकास किया जाए, वो ज़मीन को लेवल किया जाए, ठीक किया जाए, उनमें बन लगाए जाएँ। जब विकास हो जाएगा तो निश्चित रूप से जन संरक्षण की तकनीकी उनमें अपनाई जाएंगे तो विकास हो जाएगा। जो निर्माण वाला क्षेत्र है उसमें अभी ज़रूरत है कि सूक्ष्म सिंचाई के साधन अपनाए जाए। वैसे तो सूक्ष्म सिंचाई के साधन पूरे मध्य प्रदेश में अपनाए जा रहे हैं, लेकिन उनको और प्रचार प्रसार की आवश्यकता है, जिससे हर किसान या तो स्प्रिंकलर पे काम करे या ड्रिप इरीगेशन पे काम करे। मैं देखता हूँ जहाँ कहीं भी सिंचाई का पानी थोड़ा बहुत भी मिल जाता है, खास करके ग्वालियर चंबल संभाग में, तो यहाँ पे तुरंत ही किसान ड्रिप रखी रहती है लेकिन पानी नहीं लगाता उसको। खेत में ड्रिप का सब सुविधा लगी हुई, फिर भी पानी वो उससे लगा देता है सीधे कटाई करके।
1: क्यों?
0: अब उसको सुविधा लगती है कि पानी ज्यादा है तो लगा दो, लेकिन उसको बताना पड़ेगा कि इसका महत्व क्या है। और इसके लिए एक क्या है कि नया अभियान चलाना पड़ेगा कि अभी क्या है, पानी के बारे में हम घर में हमारी माताएं तो बताती हैं, उनका बड़ा योगदान है, बताती हैं बच्चों को पानी संभाल के खर्च करो, उनका ही सबसे बड़ा योगदान। लेकिन उसके बाद फिर स्कूल में भी उनकी शुरू से स्कूलिंग हो तब बताया जाए कि जल हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, खाने से ज़्यादा पानी का महत्व है, ये बताना पड़ेगा। हम खाने के बिना 20-25 दिन रह सकते हैं लेकिन पानी के बिना शायद एक दिन भी रहना मुश्किल होता है। जब लोग निर्जला व्रत करते हैं आप उनसे जाके पूछिए कि उस एक दिन में उनकी क्या हालत होती है। तो हमें देखना पड़ेगा कि उसका महत्व कैसे समझाएं बच्चों को, तो छोटे छोटे चित्र बनाएं, छोटे छोटे कैरिकेचर बनाएं, और उस तरीके से नीचे से जो एजुकेशन शुरू होती है वहां से वर्षा जल के संचयन और संग्रहण, उनके मतलब समुचित उपयोग के बारे में जब हम बात करेंगे तब वो बात दिमाग में बैठ जाती है। फिर स्कूल कॉलेजेज महाविद्यालय विश्वविद्यालयों में जल के ऊपर कार्यक्रम हो, जल के ऊपर कार्यक्रम ऐसे ना हो कि वो जल पे कार्यक्रम हो रहा है एसी रूम में। जल के ऊपर कार्यक्रम का मतलब खेत में जाओ और उनको बताओ मेड़ कैसे बनती है, बंधे कैसे लगते हैं, जल संरक्षण कैसे होता है, कैसे हम मल्चिंग करते हैं, उनको ये बताना है। जल के कार्यक्रम का मतलब ये बिल्कुल नहीं है एक रूम में बैठ के और स्लाइड से प्रेजेंटेशन दिखा दिया, उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो हमें खेत में जाके धरातल पे काम करना पड़ेगा, उस स्थिति में कार्यक्रम आयोजित किए जाए तो मुझे लगता है निश्चित रूप से समाज में जन जागरूकता आएगी और अभियान चलाया जाए। उदाहरण के लिए ग्वालियर में ही इतना पानी बरसता है, पर इसके संरक्षण का हमारे समुचित कैसे उपयोग हो इस पे एक कार्य योजना तैयार होनी चाहिए, पूरी कार्य योजना, कौन क्या कर सकता है। इतने यहाँ पे विश्वविद्यालय हैं, इतने यहाँ पे कॉलेजेज हैं, कौन क्या कर सकता है, किसकी क्या भूमिका होगी, इस पे एक बृहद कार्य योजना बना करके अगर लागू की जाए तो काफ़ी पानी का संरक्षण किया जा सकता है और उसको काफ़ी समुचित उपयोग करके आगे हम उसका खेती में प्रयोग कर सकते हैं, या सिंचाई के लिए या पीने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, आपने एक जो पंक्ति बोली कि खाने से ज्यादा महत्वपूर्ण पानी है, ये हमारी जो बेसिक नीड्स हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उसके परिभाषा को ही बदलने वाला है। ये बड़ी प्रभावशाली पंक्ति है और ये जागरूकता अगर आए तो निश्चित रूप से निर्णायक सिद्ध हो सकती है। अगला मेरा प्रश्न विश्वविद्यालयों की भूमिका पर ही है कि इस अभियान में क्या भूमिका हो सकती है कृषि विश्वविद्यालय की, और विशेषकर किसानों के बीच जागरूकता बढ़ाने में किस तरह आप काम कर सकते हैं?
0: जी देखिए, कृषि विश्वविद्यालय इस पे चार प्रकार से काम कर रहा है। एक, हम उनको बताते हैं कि फार्म पांड डेवलप करें, उनको अपने खेतों पे पांड बनाएं और अपने खेतों पे जो तालाब वहाँ पे पानी इकट्ठा करें। दूसरा, कृषि विश्वविद्यालय उनको ट्रेनिंग देता है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करता है, किसानों की कैपेसिटी बिल्डिंग इसलिए करता है कि वो सिंचाई के नए तरीके कौन से अपनाएं और कैसे अपनाएं। और तीसरा जो तरीका है वो कृषि विश्वविद्यालय करता है प्राकृतिक खेती अपना करके, ऑर्गेनिक खेती अपना करके। जो चौथा तरीका है वो हमने अपने कॉलेजों में विश्वविद्यालय में सब जगह लागू किया, तो हम सारे जो छतों का पानी है वो नीचे उसको संचयन करते हैं, बहुत सारे वाटर सम्प बना दिए हैं वहाँ इकट्ठा करते हैं, एक भी बूंद पानी हमारे कैंपस से बाहर नहीं जाता। यहाँ तक कि ग्वालियर से बाहर जो सड़क का पानी आता है वो भी हम कैंपस के अंदर ही ऑब्जर्व कर लेते हैं।
1: ये कब से है ये व्यवस्था?
0: ये व्यवस्था पीछे एक साल से शुरू की गई। अभी क्या है, एक और तरीका है अपनाया जा रहा है, हम जल के कई उपयोग ला रहे हैं। जो हमने अभी वाटर साइकिलिंग की बात की थी
1: जी।
0: तो पहले हमने जैसे तालाब बनाया, हमारे यहाँ ये था कि तालाब बना दिया उसमें मछली पाल दी, अभी उस तालाब में मछली तो है लेकिन उसका जो पानी होता है उसको हम हमारे ऑर्गेनिक खेती है, ये सब्जियां हैं, उनको सिंचाई के लिए प्रयोग करते हैं क्योंकि वो जल ऑर्गेनिक जल है,
1: मछलियां जिसमें,
0: हाँ जिसमें मछलियां, उससे उसमें हमें खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ती, पेस्टिसाइड डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, और जो सब्जियां हैं वो बढ़िया हेल्दी पैदा होती हैं। ऊपर उसके हमने डक पाल दी है या मुर्गियां पाली हैं, तो मुर्गियों का जो बीट है वो मछलियों को जाता है, उससे पानी में शैवाल पैदा होते हैं, वो मछलियां उसको खाती हैं। तो उसका जो पानी तालाब में भरते हैं हम, वो वर्षा जल से भरते हैं,

0: रूफ टॉप से लाते हैं, और जो रूफ टॉप का बचा हुआ पानी हमने सम्प में भर रखा है, तो जब गर्मी का सीजन होता है तो उस पानी को हम तालाब को दोबारा भरने में यूज करते हैं। इस प्रकार से हम एक भी बूंद पानी बाहर से प्रयोग नहीं करते हैं, पूरा का पूरा वर्षा जल संचयन करके ही उस तालाब को चलाते हैं, उसी से खेती और उसी से मछली पालन करते हैं। तो वर्षा का जल का साइक्लिंग करना वो बहुत इम्पोर्टेंट है।
1: तो ये जो इनोवेशन है, हमारे श्रोता जो हमें सुन रहे हैं क्या वो विजिट कर सकते हैं अगर वो लोकल प्लांट देखना चाहें?
0: बिल्कुल, उनका स्वागत है, वो आए तो देख लें, हमारे जहाँ सम्प बने वो भी देख लें, तालाब भी देखें, और इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉडल लगा हुआ वो देखें, एक हमने डेंस फॉरेस्ट तैयार कर रहे हैं वो भी देखें, एक वैदिक काल में कैसे हट बने होते थे, कैसे पेड़ पे लोग घर बनाते थे वो भी देखें, पूरा का पूरा आके वो विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं।
1: और आप अपना जो रिफ्रेशमेंट है साथ ले जाएं, चाय कुलपति जी मुहैया करा देंगे।
0: हाँ, रिफ्रेशमेंट साथ लेके आए, आगे फ्यूचर में विश्वविद्यालय की ये प्लानिंग है कि हम उनको कुछ पेमेंट बेस पे चाय और मिलेट्स के प्रोडक्ट उपलब्ध करा सकें। तो मिलेट के प्रोडक्ट पे हमारी ज़्यादा जोर चल रहा है, तो अभी हमने एक मिलेट प्रोसेसिंग मशीन भी खरीदी है, तो अब मिलेट हमारे हर केवीके में एक हेक्टेयर में मिलेट पैदा होते हैं, तो वो सब लेके आगे से हमारी प्लानिंग है कि हम पूरे ग्वालियर को कुछ ऐसे प्रोडक्ट खिलाएं जो उनके लिए हेल्दी हों और अच्छे हों।
1: अब डॉक्टर साहब कोई गीत अपनी पसंद का बताएं जो मैं आपकी ओर से अपने श्रोताओं को सुनवा सकूं।
0: गीत तो हमको ज़्यादा आते नहीं मैडम, और लंबे समय से हम गीतों से दूर भी हैं। हम लोगों को एक दो गीत सुने जरूर हैं, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, लेकिन उसके भी ज़्यादा लाइनें हमको याद नहीं है, लेकिन चूँकि खेत से जुड़ा है तो इसलिए कभी कभी गुनगुना लेते हैं।
1: अच्छा
0: जी,
1: तो फिर ऐसा अगर है तो मुझे लगता है कि हर किसी के जीवन में अगर गीत नहीं है तो एक कविता तो अवश्य होगी, तो आप चाहे तो प्लीज एक कविता अपनी लिखी हुई हमारे श्रोताओं को सुनवाएं।
0: जी, कविताएं तो हमने बहुत लिखी हैं, और एक कविता के कुछ पंक्तियां आपको सुनाता हूँ, वो मेरे ही ऊपर है। जब मैं विद्यार्थी था तो उस समय, तभी से मैं दाढ़ी रखता हूँ, दाढ़ी के कारण कई बार हमको बड़े अलग टाइप के कमेंट सुनने पड़ते थे उस जमाने में। दाढ़ी का
1: लड़कों को भी कमेंट्स पढ़ते हैं सर, मैं पहली बार सुन रही।
0: जी जी, और उस समय दाढ़ी का क्रेज नहीं था, अभी तो आप देख रहे होंगे हर लड़का दाढ़ी रखे हुए, तो बदल गया है जमाना। शायद हमारी कविता को किसी के जहन में आया होगा तभी उन्होंने दाढ़ी रखना शुरू किया होगा। तो उस समय मैंने एक कविता लिखी, भारत ही नहीं दुनिया भर के हर दाढ़ी वाले को प्रणाम, भारत ही नहीं दुनिया भर के हर दाढ़ी वाले को प्रणाम, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी उनके सुयोग्य सुत मुनि वशिष्ठ, विश्वामित्रादिक मुनियों युत श्री जनक महाशय थे सुशिष्ट, ये सब क्यों रखे थे दाढ़ी, क्या मिला नहीं इनको हजाम, भगवान राम के पूज्य पिता राजा दशरथ के थी दाढ़ी, भृगुकुल पतंग श्री परशुराम ने भी रखी लंबी दाढ़ी, आचार द्रोण दाढ़ी के बल धनु विद्या में बन गए राम, भारत ही नहीं दुनिया भर के हर दाढ़ी वाले को प्रणाम, दाढ़ी चरित्र को बल देती अंकुश की याद दिलाती है, मत करना छोटा काम कभी दाढ़ी ऐसा सिखलाती है, पर केवल दाढ़ी रख लेने से दार्शनिक नहीं बनता कोई, छोटों का बढ़ जाता घमंड ऊंचों ने कब इज्जत खोई, मत रखें सब दाढ़ी वरना महंगे होंगे साबुन तमाम, भारत ही नहीं दुनिया भर के हर दाढ़ी वाले को प्रणाम। इस तरीके से हमने 20 छंद लिखे, आपको लास्ट वाला सुना देता हूँ, उतने ही छंद लिखे हमने जिस वय तक आ जाती दाढ़ी, वय मीन्स उम्र, उतने ही छंद लिखे हमने जिस वय तक आ जाती दाढ़ी, यदि नहीं किसी को आई हो तो औषधि से लाए दाढ़ी, यानी 20 साल के बाद भी अगर किसी को दाढ़ी नहीं है तो वो अपनी टेस्टिंग करवाए वेदर ही इज मैन आर नॉट। उतने ही छंद लिखे हमने जिस वय तक आ जाती दाढ़ी, यदि नहीं किसी को आई हो तो औषधि से लाए दाढ़ी, दाढ़ी रटते रटते मैं देता इस कविता को विराम, भारत ही नहीं दुनिया भर के हर दाढ़ी वाले को प्रणाम।
1: बहुत बहुत ही इनोवेटिव ये कविता है, कभी किसी ने सोचा नहीं होगा ये पक्ष भी है दाढ़ी के। मेरा भी प्रणाम सभी दाढ़ी वालों को भी, और उनको भी जिनके पास दाढ़ी नहीं है। अंत में डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं विशेषकर युवाओं और किसानों को कैच द रेन अभियान से जुड़ने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि हम अपने शरीर से सीखें, हमारे जो शरीर है उसमें 70% पानी है, यदि वो पानी घटने लगता है तो कहते हैं डिहाइड्रेशन हो गया। आजकल देख रहे होंगे कि पीने के पानी के लिए हमें बॉटल्स पे निर्भर होना पड़ता है, हर घर में आरओ या मशीन लगे हुए हैं।

क्या ऐसा हम कर सकते हैं कि जो प्रकृति का आसूत जल है उसको पीने के लिए नई प्लानिंग करें, नई स्ट्रेटजी करें, और जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त जल है

0: धन्यवाद मैडम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में प्रस्तुत विशेष पॉडकास्ट कैच द रेन अभियान वर्षा विज्ञान और विकास, जिसमें कुलगुरु राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के कुलपति डॉक्टर अरविंद कुमार शुक्ल जी से बातचीत की डॉक्टर विभूति सिंह ने। दोस्तों, आज की इस विशेष चर्चा से ये स्पष्ट होता है कि जल केवल एक प्राकृतिक संसाधन नहीं बल्कि जीवन का आधार है। प्रकृति हमें वर्षा के रूप में अमूल्य जल प्रदान करती है, किंतु उसका संरक्षण करना हमारा ही कर्तव्य है। यदि वर्षा की प्रत्येक बूंद को सहेजने का संकल्प हम आज ही ले लें तो आने वाली पीढ़ियों को जल संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। डॉक्टर शुक्ल ने अत्यंत सरल शब्दों में बताया कि जल संरक्षण केवल सरकार या किसी एक संस्था का दायित्व नहीं है। दोस्तों, ये जन जन की भागीदारी से ही सफल हो सकता है। घरों में वर्षा का जल संचयन, खेतों की मेड़ों पर वर्षारोपण, तालाबों और बावड़ियों का पुनर्जीवन, जल का पुनर्चक्रण, सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों का उपयोग और जल के प्रति संवेदनशील जीवन शैली, ये छोटे छोटे प्रयास मिलकर एक बड़े परिवर्तन का आधार बन सकते हैं। और इस पॉडकास्ट में डॉक्टर शुक्ल ने ये भी बताया कि यदि हम प्रकृति से उतना ही लें जितनी हमारी आवश्यकता है और उसे लौटाने का भी प्रयास करें तो जल, जंगल और ज़मीन तीनों का संतुलन बना रहेगा। बहुत ही सुंदर बात हुई इस पॉडकास्ट में और बहुत ही ज्ञानवर्धक ये पॉडकास्ट रहा। उम्मीद है आप सभी को ये पसंद आया होगा। और जल की एक एक बूंद बचाना वास्तव में जीवन की रक्षा करना है, इस पॉडकास्ट से हमने सीखा है। तो श्रोताओं, भारतीय संस्कृति में जल को सदैव पूजनीय माना गया है। हमारी नदियां, सरोवर और वर्षा सिर्फ संसाधन नहीं बल्कि हमारी सभ्यता और संस्कृति की पहचान है। इसी संदेश के साथ, जल है तो कल है, जल बचेगा तो जीवन बचेगा, अर्थात आप समझ ही गए होंगे आज के इस पॉडकास्ट का महत्व। फिलहाल आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और अब प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें, जिन्हें हम अपने भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जंतर मंतर पर हुई घटना पर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो संदेश जारी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस घटना में उन्हें और उनके दिवंगत माता के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां की गईं, लेकिन वे संबंधित युवाओं को सजा दिलाने के बजाय उन्हें सही राह दिखाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज जबलपुर में घंटाघर स्थित गीता भवन में 362 करोड़ रूपये की अमृत सीवरेज परियोजना और 3 बड़े सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री गुरंदी में मत्स्य बाजार का लोकार्पण और दुमना नेचर पार्क में 11 लाख पौधरोपण अभियान की शुरुआत भी करेंगे। प्रदेश में पुलिस के नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान में जनभागीदारी से 5 विश्व रिकॉर्ड बने हैं। 15 दिन तक चले इस अभियान को 60 से ज्यादा जाने माने हस्तियों का साथ मिला। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2025 के दूसरे भाग का आयोजन कल रविवार को ऑफलाइन तरीके से होगा। ये परीक्षा 6 विषयों के लिए 2 सत्रों में इंदौर और भोपाल संभाग के केंद्रों पर होगी। प्रदेश के वरिष्ठ साहित्यकार और पद्मश्री सम्मानित कैलाश चंद्र पंत का कल हृदय गति रुकने से निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार आज भोपाल के भदभदा विश्राम घाट पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि हिंदी भाषा और साहित्य के प्रचार प्रसार में उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने जूडो में पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया 128 पदकों के साथ पहले और भारत 23 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9 बज रहे हैं। अब प्रस्तुत है सूचनाओं और समाचारों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

सूचनाओं, समाचारों और नगमों के कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी दोस्त स्मिता। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने दैनिक कार्य में लगे होंगे पूरी स्फूर्ति के साथ। और उम्मीद है कि आपका दिन ऊर्जा, उत्साह और नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ रहा होगा। दोस्तों, जीवन में सफलता केवल उन्हीं को नहीं मिलती जो मंच पर दिखाई देते हैं, बल्कि उन लोगों को भी मिलती है जो बिना किसी पहचान की चाह के पूरे समर्पण से अपने कर्तव्य निभाते रहते हैं। और हर बड़ी सफलता के पीछे कई अनदेखे हाथ होते हैं जिनका योगदान इतिहास के पन्नों में भले कम दिखाई दे, लेकिन उनका महत्व कभी कम नहीं होता। उम्मीद है ऐसे ही आप भी कहीं ना कहीं अपना योगदान दे रहे होंगे किसी की सफलताओं में, और आपकी सफलताओं में भी किन्हीं का महत्वपूर्ण योगदान होगा। फिलहाल आज हम बात करेंगे एक प्रेरणादायक विचार के साथ भारतीय सिनेमा की एक ऐसी महान महिला की जिनका नाम बहुत कम लोग जानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सरस्वती बाई फाल्के की। दोस्तों, ऐसा मानना है कि जब भी हम भारतीय सिनेमा की शुरुआत की बात करते हैं तो सबसे पहले दादा साहेब फाल्के का ही नाम लिया जाता है, लेकिन उनकी इस ऐतिहासिक यात्रा में उनकी धर्मपत्नी सरस्वती बाई फाल्के का योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण था। ऐसा माना गया है और ऐसा बताया गया है कि साल 1913 में बनी भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र केवल एक फिल्म नहीं थी बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास की नींव थी। इस सपने को साकार करने में सरस्वती बाई ने हर कदम पर अपने साथी का, अपने पति का साथ दिया। आर्थिक कठिनाइयों के समय उन्होंने अपने निजी गहने तक बेच दिए ताकि फिल्म का निर्माण पूरा हो सके। दोस्तों, इतना ही नहीं, ऐसा बताया जाता है और हमने कई जगह ऐसा सुना है कि उन्होंने फिल्म संपादन का कार्य भी सीखा है और भारत की पहली महिला फिल्म संपादक बनने का गौरव प्राप्त किया। उस समय संपादन कंप्यूटर से नहीं बल्कि बड़ी कठिनाइयों से फिल्म की पट्टियों को हाथ से काटकर जोड़कर किया जाता था। और दोस्तों, उन्होंने हनुमान जन्म, भक्त सुदामा जैसी शुरुआती मूक फिल्मों में, यानी जिसमें आवाज़ नहीं होती थी, ऐसी फिल्मों के संपादन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो केवल एक संपादक ही नहीं थी बल्कि शूटिंग के दौरान कलाकारों को और पूरी टीम के लिए भोजन बनाना, आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करना, उत्पादन से जुड़े अनेक कार्य संभालना, इन सब जिम्मेदारियों को उन्होंने बहुत ही निष्ठा से निभाया। सरस्वती बाई फाल्के, हमें इनसे ये सीखने को मिलता है दोस्तों कि सच्ची सफलता केवल प्रसिद्धि में नहीं बल्कि अपने कार्य के प्रति समर्पण और विश्वास में होती है। यदि हमारे इरादे मजबूत हों और हम अपने कर्तव्य को

ईमानदारी से निभाएं तो हमारा योगदान हमेशा प्रेरणा बनकर जीवित रहता है। तो आइए आज इस महान महिला को नमन करते हुए उनके संघर्ष, त्याग और समर्पण से प्रेरणा लें और अपने जीवन में भी पूरे मान सम्मान के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने का संकल्प लें। अब समय है एक ऐसे सदाबहार गीत का जो पुराने दौर की मधुर यादों को ताज़ा कर देती है, तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, गुड मॉर्निंग ग्वालियर में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त स्मिता, और हम बात करेंगे अब कुछ आज की जुड़ी तारीख के बारे में। दोस्तों, हर नई सुबह हमें संदेश देती है कि अपने विचारों को, अपने कर्मों को और संकल्पों को हम समाज और अपने देश को बेहतर बनाने के लिए उपयोग करें।

जिन लोगों ने अपने जीवन को राष्ट्र और समाज की सेवा के लिए समर्पित कर दिया, उनके बारे में अब थोड़ी सी बात करते हैं और कुछ विशेष जो आज हम दिवस मना रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। आज है 1 अगस्त और हम आज के दिन स्मरण कर रहे हैं महान स्वतंत्रता सेनानी, प्रखर राष्ट्रभाषा समर्थक और भारत रत्न पुरुषोत्तम दास टंडन जी की जयंती का। दोस्तों, उनका जन्म 1882 में प्रयागराज में हुआ था और वे स्वतंत्रता आंदोलन के सक्रिय सेनानी थे और उन्होंने राष्ट्रभाषा हिंदी को सम्मान दिलाने के लिए आजीवन संघर्ष किया। उनका मानना था कि अपनी भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं होती, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी पहचान और हमारी आत्मा का प्रतीक भी होती है। वे भारतीय संविधान सभा के सदस्य रहे और बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। उनके सादगीपूर्ण जीवन, ईमानदारी और राष्ट्रभक्ति ने उन्हें जन जन का प्रिय बना दिया। उनके अमूल्य योगदान के लिए उन्हें वर्ष 1961 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। दोस्तों, आज के समय में जब अनेक भाषाओं का ज्ञान आवश्यक है, तब भी अपनी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा का सम्मान करना उतना ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, भाषा हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है, अपनी संस्कृति पर गर्व करना सिखाती है। तो आइए, पुरुषोत्तम दास टंडन जी की जयंती पर हम ये संकल्प लें कि अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपने राष्ट्र के सम्मान को सदैव सर्वोपरि रखेंगे और अपनी हिंदी भाषा को कभी भी नंबर 2 पर नहीं, हम हमेशा नंबर 1 पर रखें, क्योंकि ये हमारी पहचान है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: दोस्तों, हर सुबह हमें याद दिलाती है कि यदि हम अपने भीतर दृढ़ निश्चय कर ले और देश के प्रति प्रेम हो हमारे अंदर, तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। इतिहास ऐसे महान व्यक्तित्वों से भरा पड़ा है जिन्होंने अपने साहस और विचारों से पूरे राष्ट्र को नई दिशा दी है। दोस्तों, आज 1 अगस्त को हम भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और प्रखर राष्ट्रवादी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। लोकमान्य तिलक का प्रसिद्ध उद्घोष आप जानते ही होंगे। उनका उद्घोष ये था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। आज भी हर भारतीय के मन में देशभक्ति की भावना ये उद्घोष जगा देता है। और जब बात अपने राष्ट्र की होती है, अपने हित की होती है, तो हम भी कहीं ना कहीं अपने जो दायित्व है उसको समझते हुए उसका निर्वाह करते हैं, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए। और दोस्तों, उन्होंने शिक्षा, पत्रकारिता और सामाजिक जागरूकता को स्वतंत्रता आंदोलन का सशक्त माध्यम बनाया। लोकमान्य तिलक जी ने समाचार पत्र केसरी और मराठा जैसे समाचार पत्रों से लोगों में एक राष्ट्रीय चेतना का संचार किया। उन्होंने सार्वजनिक गणेश उत्सव और शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की और इन समाज को एकजुट करने का कार्य किया। लोकमान्य तिलक का जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व वही होता

होता है जो समाज जागृत करे, लोगों में आत्मविश्वास जगाए और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखे। तो आज आइए दोस्तों, उनकी पुण्यतिथि पर हम भी ईमानदारी, साहस और कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने दायित्वों को परिपूर्ण करने का, उसका सही तरीके से पालन करने का संकल्प लेते हैं।

दोस्तों गुड मॉर्निंग ग्वालियर में एक बार फिर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपकी दोस्त स्मिता। दोस्तों जीवन का सबसे सुंदर उपहार है स्वस्थ जीवन। स्वस्थ जीवन की शुरुआत होती है जन्म के तुरंत बाद मिलने वाले माँ के अमृत समान पहले आहार से। हर वर्ष 1 अगस्त से 7 अगस्त तक पूरे विश्व में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है और इसका उद्देश्य माताओं और परिवारों को स्तनपान के महत्व के प्रति जागरूक करना है। श्रोताओं, विशेषज्ञों के अनुसार जन्म के पहले घंटे के भीतर शिशु को स्तनपान कराना और पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध देना शिशु के संपूर्ण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। माँ का दूध बच्चों को आवश्यक पोषण, रोग प्रतिरोधक क्षमता और भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करता है। स्तनपान केवल बच्चे के लिए ही नहीं बल्कि माँ के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभकारी होता है। यह माँ और शिशु के बीच स्नेह, विश्वास और अपनत्व का गहरा संबंध स्थापित करता है। तो विश्व स्तनपान सप्ताह हमें ये संदेश देता है दोस्तों कि परिवार, समाज और कार्यस्थल सभी को मिलकर ऐसी परिस्थितियाँ बनानी चाहिए जहाँ हर माँ अपने शिशु को सुरक्षित और सहज वातावरण में स्तनपान करा सके। आइए इस सप्ताह का हम ये जो बहुत अच्छा मूल्यवान संदेश है सब तक पहुँचाएँ और हम स्वस्थ मातृत्व, स्वस्थ शिशु और स्वस्थ समाज के निर्माण का संकल्प लें, क्योंकि स्वस्थ बचपन ही एक मजबूत और समृद्ध भारत की नींव है।

अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, तो फ़िलहाल अनुमति दीजिए अपनी दोस्त स्मिता को। हम फिर इस वादे के साथ विदा लेते हैं कि कल इसी कार्यक्रम में कुछ नए संदेश, कुछ नए समाचार और कुछ नई बातचीत और नगमों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर, आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं सुनील पावगी का गिटार वादन। राग है विलास खानी तोड़ी। आइए सुनते हैं सुनील पावगी से उनका ये गिटार वादन।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत में सुनील पावगी का गिटार वादन, राग था विलास खानी तोड़ी। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी, जिन्हें हम अपने भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है रीवा जिले की चिट्ठी, आलेख आरती श्रीवास्तव, वाचन स्वर दीपा सिंह। सावन का महीना शुरू होते ही रीवा के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। महामृत्युंजय मंदिर, मन कामेश्वरनाथ, देवतालाब, खजुआ महादेव और गुड़ के शिव मंदिरों में सुबह शाम हर हर महादेव और बोलबम के जयकारे गूंज रहे हैं। दूर दूर से श्रद्धालु भोले बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जिले को टीबी मुक्त बनाने के लिए निक्षय भारत अभियान लगातार आगे बढ़ रहा है। जिले में 2,286 टीबी मरीजों का इलाज चल रहा है। उन्हें 6 महीने तक पोषण आहार

किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने 100 मरीजों की फूड बास्केट की जिम्मेदारी लेते हुए विधायक निधि से 3,60,000 रुपए दिए हैं। साथ ही समाज सेवियों और जनप्रतिनिधियों से भी निक्षय मित्र बनने की अपील की है। स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भी रीवा ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कायाकल्प योजना के तहत कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल को पूरे प्रदेश में दूसरा स्थान मिला है। अस्पताल को स्वच्छता में जिला स्तर पर पहला स्थान भी मिला है। वहीं दूसरी तरफ कृष्णा राजकपूर ऑडिटोरियम में पूर्व सैनिक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 70 पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं और वर्तमान में सेवा दे रहे जवानों का सम्मान किया गया। समाज, शिक्षा, चिकित्सा और साहित्य के क्षेत्र में योगदान देने वाले लोगों को भी सम्मानित कर उनका उत्साह बढ़ाया गया। इसी कड़ी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत मेधावी बालिका सम्मान समारोह भी आयोजित हुआ। जिले की प्रतिभाशाली बेटियों और महिलाओं को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई और छात्राओं को शिक्षा, आत्मविश्वास और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। रीवा जिले को सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए भी सम्मान मिला है। तय लक्ष्य से ज्यादा राशि जुटाने पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी को प्रशस्ति पत्र और सम्मान शील प्रदान की। ये राशि शहीदों के परिवारों, पूर्व सैनिकों और सैन्य विधवाओं के कल्याण पर खर्च की जाएगी। वहीं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी परिवार संगठन सम्मेलन भी रीवा में आयोजित हुआ। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान पूरे समाज का सम्मान है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किया जाएगा ताकि नई पीढ़ी उनके त्याग को जान सके। गंगेव विकासखंड के हिनौती गोधाम में भी नई सौगात मिली है। यहां नंदनी गौशेड और प्राकृतिक खेती पर आधारित बायो इनपुट प्लांट का लोकार्पण किया गया। उप मुख्यमंत्री ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। गोधाम को निराश्रित गायों के आश्रय के साथ प्राकृतिक खेती के केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। दूसरी तरफ रीवा में प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी PIB का मीडिया संवाद कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने पत्रकारों को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताते हुए कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में मीडिया की अहम भूमिका है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पत्रकार और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। धार्मिक आयोजनों की बात करें तो रीवा में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा भी पूरे उत्साह के साथ निकाली गई। लक्ष्मण बाग संस्थान से शुरू हुई यात्रा का शहर भर में पुष्प वर्षा और आरती के साथ स्वागत किया गया। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने भी पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। प्रशासनिक तैयारियों के तहत जिले में जनगणना का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। क्षेत्रीय अधिकारियों और चार्ज अधिकारियों को गणना हैंडबुक भरने का प्रशिक्षण दिया गया। इस हैंडबुक के जरिए जिले की सामाजिक, आर्थिक और आधारभूत संरचना से जुड़ी जानकारियां ऑनलाइन दर्ज की जाएंगी। वहीं जिला न्यायालय में आयोजित विशेष लोक अदालत में चेक बाउंस के मामलों का त्वरित निपटारा किया गया। कुल 82 मामलों में से 54 का आपसी सहमति से मौके पर ही समाधान हुआ। इन मामलों में 1,05,00,000 रुपए से अधिक की समझौता राशि पर फैसला सुनाया गया। महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी जिले में लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों और ग्राम पंचायतों में महिलाओं और बालिकाओं को शिक्षा, समानता, सुरक्षा और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य और वन स्टॉप सेंटर की सेवाओं के बारे में भी विस्तार से बताया गया। और आखिर में बात गुरु पूर्णिमा की। जिले भर में ये पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। मंदिरों और शैक्षणिक संस्थानों में विशेष कार्यक्रम हुए जहां लोगों ने अपने गुरुजनों का सम्मान कर गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह किया। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:05 होने को है। अब प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम सेहत की बात तरानों के साथ। आज इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय है शिशु के प्रथम वर्ष का स्वास्थ्य। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर अजय गौर और आपसे बात कर रही हैं तुलिका शर्मा। आइए सुनते हैं ये विशेष बातचीत विश्व स्तनपान सप्ताह के उपलक्ष्य में।

0: सेहत की बात तरानों के साथ। इस कार्यक्रम का ताज़ा तरीन अंक लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं। हमारे सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम का विषय है शिशु के प्रथम वर्ष का स्वास्थ्य, और इस विषय पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अजय गौड़। आप विभागाध्यक्ष हैं बाल एवं शिशु रोग विभाग गजरा राजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर के। डॉक्टर साहब, आपका पहले तो हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए।
0: डॉक्टर साहब, शिशु के प्रथम वर्ष के स्वास्थ्य पर हम बात करेंगे, तो पैदा होते से ही जब तक बच्चा एक साल का नहीं हो जाता तब तक बहुत ज़्यादा केयर की उसको ज़रूरत पड़ती है, बहुत देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। माँ के गर्भ से ठीक बाहर निकलते समय क्या बच्चे को किसी तरह की विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है जो डॉक्टर और नर्स करते हैं, और परिवार के सदस्यों की उसमें कोई जिम्मेदारी होती है?
1: बच्चे का अगर हम स्वास्थ्य देखें तो जो प्रथम वर्ष होता है वह बच्चे के स्वास्थ्य की नींव होती है, उसका फाउंडेशन होता है। और जैसी ये कहावत है कि अगर उसकी नींव अच्छी है तभी इमारत बुलंद होती है, और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जो बच्चे के जन्म के समय की जो देखभाल होती है वह उसके प्रथम वर्ष के स्वास्थ्य, और केवल स्वास्थ्य ही नहीं लेकिन बच्चे के विकास के लिए भी बहुत बहुत आवश्यक होती है। क्योंकि एक बच्चा जो सामान्यतः हमारे भारतवर्ष में जो है 2.5 किलो का एक बच्चा जो है वो होता है, और अगर बच्चा किसी वजह से माँ के गर्भ में कम दिन का रहता है या कम वजन का रहता है तो ऐसे बच्चे में कुछ समस्याएं अपने आप ही आ जाती हैं, क्योंकि जो समय उसको माँ के गर्भ में व्यतीत करना था वह पूरा समय व्यतीत नहीं कर पाता। जिन ऐसे बच्चों को हम प्रीटर्म या प्री मैच्योर बेबी जो है हम उन्हें कहते हैं, और इनकी एक अलग ही समस्या होती हैं। लेकिन आप ये मान के चलिए कि जो बच्चे 1.5 किलो के ऊपर जिनका वजन होता है, जो माँ के पेट में 9 महीने रहते हैं, और जिनको कि जन्म के समय किसी तरह की कोई समस्या नहीं आती, जिनका नॉर्मल सामान्य प्रसव होता है या अगर सीजेरियन सेक्शन से भी वह हुए हैं, लेकिन अगर जन्म लेते ही बच्चे की क्राई इमीडिएट आ जाती है, बच्चा तुरंत पैदा होकर रोने लगता है अच्छे से, और अगर बच्चे का रंग गुलाबी होता है तो ऐसे बच्चे अधिकतर सामान्य ही रहते हैं और उनमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं आती। तो डिलीवरी के वक्त इसीलिए हम चाहते हैं कि प्रत्येक डिलीवरी जो है वो किसी स्वास्थ्य केंद्र में हो, चाहे वो सरकारी में हो या प्राइवेट में हो, लेकिन बच्चे के जन्म के समय वहाँ पर कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जरूर उपस्थित रहना चाहिए जो कि बच्चे की जन्म के समय की देखभाल कर सके। जिस प्रकार जैसे अगर बच्चा नहीं रो पा रहा है तो उसको रुलाने में मदद करे, बच्चे को सांस लेने में कोई तकलीफ हो रही है तो उसको सांस दिलाने में मदद करे, अगर बच्चे का रंग जो है वो गुलाबी नहीं है, नीला पड़ा हुआ है, तो उसको पहचान कर और उसका समुचित उपचार कर सके। तो ये बिल्कुल सही है कि बच्चे के जन्म के समय की देखभाल जो है वह उसके प्रथम वर्ष का निर्धारण करती है। और इसमें समस्या क्या आती है कि आप जैसा जानते हैं कि एक प्रथम 2 वर्ष का जो बच्चा होता है तो 90% जो हमारे ब्रेन की ग्रोथ होती है, जो बच्चे का जो मस्तिष्क का जो विकास होता है वो पहले 2 साल में ही हो जाता है। अगर आप घर पे भी देखें तो 2 साल का जो बच्चा होता है वो सब करता है, उठता है, बैठता है, चलता है, बोलता है, केवल 2 साल के बाद उसके कार्यों में परिपक्वता आ जाती है। अन्यथा 2 साल का बच्चा सब काम कर लेता है, और वो इसीलिए करता है क्योंकि 90% जो मस्तिष्क का विकास है वो प्रथम 2 वर्ष में हो जाता है, जिसमें कि प्रथम 1 वर्ष तो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल भी होता है और बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्व वाला होता है।
0: जन्म के समय, पैदा होते समय आपने कहा कि एक विशेषज्ञ का होना वहाँ बहुत ज़रूरी है जिससे कि वो बच्चे की शुरुआती देखभाल कर सके, लेकिन एक बार जब अस्पताल से निकल कर जच्चा और बच्चा दोनों घर जाते हैं तो घर पर एक अलग तरह के देखभाल की आवश्यकता होती है, और उसके लिए अक्सर घरों में देखा जाता है कि दाइयाँ रखी जाती हैं, और दाइयाँ जो हैं वो बच्चे की देखभाल करती हैं, उन्हें नहलाती धुलाती हैं, और अक्सर मैंने देखा है कि मुंह में उंगली डाल करके और सफाई करती हैं, क्या ये सही है?
1: नहीं, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये प्रथा केवल घर पे ही नहीं, पहले बहुत साल पहले अगर देखा जाए तो अस्पतालों में भी ये प्रथा होती थी बच्चे के गला साफ़ करने की, लेकिन ये प्रथा ठीक नहीं है। इससे बच्चे को फ़ायदा की जगह नुकसान होने का ज़्यादा भय रहता है। और ये भी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जितनी देखभाल की ज़रूरत अस्पताल में है उससे ज़रूरत से ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत प्रथम 1 महीने में है। अगर आप भारत की एक वो देखें, हम सांख्यिकी देखें, तो आप ये देखेंगे कि जो प्रथम वर्ष की जो मृत्यु दर है, जो शिशु मृत्यु दर है, उसकी दो तिहाई मृत्यु दर जो है वो प्रथम एक माह की है।
0: अच्छा।
1: नवजात शिशु मृत्यु दर जो है, चाहे वो आप प्रदेश का आंकड़ा लें या हम अपने देश का आंकड़ा लें, दो तिहाई जो बच्चों की मृत्यु दर है वो नवजात शिशुओं में है, और ये प्रथम जो एक महीना है ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमें अब ये ऐसा लग रहा है और

0: हम लोग अभी अस्पतालों में, शासकीय अस्पतालों में इसे हम फॉलो भी करने लगे हैं कि माँ का हम उत्तरदायित्व बढ़ाएं, मतलब माँ को हम एम्पावर करें. माँ का एक रोल जो है, माँ का बहुत ज़्यादा इसमें वो है कि माँ अपने बच्चे की और अपनी दोनों की देखभाल के लिए जो है वो समझदार हो और वो उसका बीड़ा उठाए कि मुझे अपने से ज़्यादा अपने बच्चे की देखभाल करनी है. सामान्य सी बातें होती हैं, जैसे बच्चा जो है ठंडा नहीं पड़े, बच्चे को स्नान कब कराएं, 6 महीने तक जो है वो बच्चे को केवल माँ का दूध ही मिले. इसके अलावा अगर किसी भी तरह के कोई खतरे का लक्षण है तो वो आजकल अगर आप देखें तो हर माँ को बताया भी जाता है और लिख के भी दिया जाता है. जैसे अगर बच्चा जो है वो दूध नहीं पी रहा है, बच्चा जो है अगर किसी तरह के उसमें अब नॉर्मल मूवमेंट आ रहे हैं, कोई झटका आ रहा है या सुस्त हो गया है, दूध नहीं पी रहा है या पीलापन उसमें ज़्यादा है या सफ़ेद बच्चा माँ को दिख रहा है, तो ऐसे मौक़ों पर वह तुरंत अस्पताल वापस लेकर आए. तो माँ का इन सब चीज़ों को समझना जो है वो बहुत आवश्यक है और बहुत ज़रूरी भी है. क्योंकि अगर आपने भी ऐसा महसूस किया होगा कि अगर हम पहला महीना बच्चे का अच्छे से काट लेते हैं और इस दौरान माँ और बच्चा स्वस्थ रहते हैं तो 75% उसकी जो मृत्यु का खतरा है वो टल जाता है. और ये बहुत ज़रूरी भी है
1: क्योंकि पेट के अंदर तो बच्चा प्राकृतिक रूप से अपने आप पोषण ले रहा है, बाहर आने के बाद उसको पर्याप्त पोषण भी मिलना चाहिए और साथ ही उसकी केयर भी जो है उसकी देखभाल भी सही तरीके से होनी चाहिए. इसके लिए माँ और बच्चे के बीच में ट्यूनिंग बनना पहले महीने
0: इमोशनल बॉन्डिंग जो एक बोलते हैं, माँ और बच्चे के बीच में जो एक भावनात्मक संबंध होता है, जो इमोशनल बॉन्डिंग होती है, वह केवल जो है वो माँ के दूध से ही आती है. क्योंकि जब माँ बच्चे को स्तनपान कराती है तब आपने भी महसूस किया होगा, देखा होगा कि माँ और बच्चे के बीच में आई टू आई कॉन्टैक्ट रहता है, आंखों से आंखों को माँ और बच्चा देखते हैं. उससे माँ भावनात्मक रूप से बच्चे से जुड़ती है और बच्चा भी अपनी माँ से भावनात्मक रूप से जुड़ता है.
1: और यही चीजें हैं, वाइस वर्सा भी अगर कहें कि इसी भावना की वजह से वो हार्मोन सिक्रीट होते हैं जिनकी वजह से दूध
0: बनता है और निकलता भी है. क्योंकि दूध बनना तो चूंकि माँ ने गर्भ धारण किया है 9 माह का, तो हर माँ को दूध तो बनेगा, लेकिन निकलने का जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है उसके लिए माँ का स्वस्थ, माँ का खुश, माँ का प्रसन्न, माँ किसी तरह के दिमागी तनाव से दूर, ये सब रहना जरूरी है. क्योंकि अगर माँ को यही सब चीज़ें हैं तो वो हार्मोन बनता है लेकिन निकलता नहीं है, जिससे कि दूध बच्चे को पीता है लेकिन वो निकलता नहीं है. माँ किसी भी तरह की अगर परेशानी उसके दिमाग में है, उलझन है, कोई समस्या है, तो उनको इन सब चीज़ों को त्याग देना चाहिए और केवल अपने बच्चे के लिए सोचना चाहिए.
1: बिल्कुल. और शिशु को एकदम जन्म से लेकर ही टीके लगने शुरू हो जाते हैं तमाम तरीकों के, और उसके लिए अक्सर अस्पताल में एक कार्ड भी बनाकर दिया जाता है याद रखने के लिए कि कब कौन सा टीका लगना है. इसमें से यदि कुछ मिस होता है तो
0: इसमें देखिए, आजकल पहले माँ का कार्ड अलग बनता था, बच्चे का कार्ड अलग बनता था. अब जो नए कार्ड हैं उसमें उन्होंने MCP कार्ड दे दिए, मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड, और उसमें अगर जैसे ही माँ गर्भवती होती है उस दिन से उसके गर्भावस्था की देखभाल, उसके डिलीवरी के समय की देखभाल, बच्चे का विकास, बच्चे का टीकाकरण सब सम्मिलित है, जिसमें कि सभी टीके शामिल हैं. आपने सुना होगा कि जो है अब जो दस्तों का जो बचाव का टीका है रोटा वायरस, वो भी अब लगने लगा है. जो पेंटावेलेंट टीका है, क्वाड्रीवेलेंट टीका है, निमोनिया के टीके हैं, ये सभी लगने लगे हैं. तो हमें उस तालिका को देखकर और लगवाना चाहिए. जिन लोगों का मिस हो गया है तो टीकाकरण में यह है कि अगर आपका थोड़ा समय निकल भी गया है तो भी आप शुरू कर सकते हैं, जिससे कि बच्चे के अंदर प्रोटेक्शन आता है.
1: थोड़ी सी जागरूकता भी आवश्यक है इसके लिए, और साथ ही साथ अपने डॉक्टर के साथ पूरी तरह से संपर्क.
0: एक संपर्क आपका जो भी स्वास्थ्य केंद्र है, नजदीकी केंद्र है, आप उनसे एक संपर्क में रहें, सतत संपर्क में रहें
1: और ईमानदार रहें.
0: हाँ, बच्चे के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति मैं कहूंगा कि ईमानदार रहें.
1: जी डॉक्टर साहब, हमारे इस कार्यक्रम जिसका नाम है सेहत की बात तरानों के साथ, इसका एक फॉर्मेट है कि हम डॉक्टर साहब से बातें तो करते हैं, सेहत की बातें करते हैं, लेकिन साथ साथ में जो भी डॉक्टर आमंत्रित होता है उसकी पसंद के गीत भी सुनते चलते हैं. तो पहले तो हमें बताइए कि गीत संगीत सुनना आपको पसंद है और क्या मौका मिलता है इसके लिए.
0: नहीं, गीत संगीत तो कहा ही जाता है कि संगीत जो है वो मस्तिष्क को रिलैक्स करने के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम है, और मेरे ख्याल से भारत में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो संगीत को सुनना पसंद नहीं करता
1: और फिल्मी गाने सुनना पसंद नहीं
0: फिल्मी
1: करता.
0: गाने हाँ. और सभी तरह के उसमें तो हाँ. गाने सुनने का या संगीत का हाँ मुझे भी शौक है, सुनना
1: मौका
0: पसंद
1: मिल पाता
0: करना.
1: है
0: आजकल जब से ये नए नए रेडियोज आए हैं और सफर के दौरान घर में मोबाइल में हाँ. सुन लेते हैं जब समय मिलता है.
1: तो हमारे श्रोताओं को कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे सबसे पहले आप?
0: किशोर कुमार के गाए हुए गीत जो हैं वो मुझे काफ़ी पसंद हैं, तो उसमें से

0: एक बार फिर स्वागत है हमारे श्रोताओं का कार्यक्रम सेहत की बात तरानों के साथ में। आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है शिशु के प्रथम वर्ष का स्वास्थ्य, और हमारे साथ विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अजय गौड़। आप बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि अक्सर माताएं जो हैं वो पोषण पर पूरा ध्यान नहीं दे पाती, न स्वयं के और ना ही बच्चे के, तो ये पोषण आहार कितना आवश्यक है बच्चे के लिए, क्योंकि 6 महीने तक तो माँ के दूध पर ही निर्भर रहता है बच्चा, लेकिन उसके बाद भी ये आहार कितना आवश्यक होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें सम्मिलित होनी चाहिए?
1: मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा हर परिवार के लिए ज़रूरी है, और जब से ये परिवार थोड़े से छोटे हुए हैं और जब से ये न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट आया है और वर्किंग मदर का कंसेप्ट जो है वो दिन पे दिन बढ़ रहा है, तब वास्तव में बच्चों का पोषण जो है वो माता पिता के लिए एक चैलेंज भी बन गया है, एक समस्या भी बन गई है। और 6 महीने तक बिल्कुल आपने ठीक कहा, अगर हम अधिकतर बच्चों का हेल्थ का रिकॉर्ड देखें तो प्रथम 6 माह तक जब तक बच्चा माँ के दूध पर रहता है वजन उनका बिल्कुल सही बढ़ता है, सही जो उनके वृद्धि के मापक हैं उसके अनुसार बढ़ता है, लेकिन 6 महीने के बाद और 1 साल के बीच में बहुत गिरावट आती है, और ये पीरियड सबसे ज़्यादा क्रूशियल पीरियड है। और इस 6 महीने से 12 महीने के बीच में ही घर वालों को, माँ को और परिवार के अन्य सदस्यों को जो है बच्चे के पोषण का ख्याल रखना चाहिए। इसमें मैं केवल 3 बातें कहूँगा। पहली बात ये कि हमें सबसे पहले बच्चे का विकास देखना है कि 1-6 महीने से और 1 साल का

0: बच्चा क्या कर सकता है। अधिकतर मौक़ों पर क्या होता है कि हम उससे ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं, या दो साल से छोटे बच्चे से हम ऐसी उम्मीद रखते हैं कि जैसे हम घर में बैठ के खाना खा लेते हैं, ऐसे वो भी दाल चावल रोटी सब्जी सब खा लेगा। और हमें सबसे पहले देखना है कि 6 महीने तक बच्चे ने केवल माँ का दूध पिया है, तो हम उसको एक लिक्विड डाइट से, एक तरल पदार्थ से, हम उसको एक सेमी सॉलिड डाइट पे, मतलब एक ठोस डाइट पे हम शिफ्ट कर रहे हैं,
1: धीरे धीरे करना है ना।
0: तो सबसे पहला आपने जैसा बोला कि यह एक दिन में नहीं होगा, कोई भी परिवर्तन रातों रात नहीं होता है, वह धीरे धीरे होता है, पहला। दूसरा हमें यह देखना है कि हम बच्चे का पेट भरना चाहते हैं या हम उसको एक अच्छी क्वालिटी का खाना या प्रोटीन हम देना चाहते हैं। दरअसल अगर आप 6 महीने से 1 साल के बच्चे का पेट देखें, हम उसके पेट की अगर कैपेसिटी देखें, तो वह कुल 200 ग्राम की होती है। 2 साल तक बच्चे का पेट की कैपेसिटी 200 ग्राम की होती है। 200 ग्राम का मतलब यह है कि अगर आपने मान लीजिए उसको आपने 1 गिलास दूध पिला दिया,
1: पेट भर
0: तो उसका पेट भर गया। और नॉर्मल जो हमारे पेट का जो खाली होने का एक समय होता है, वो 2 से 3 घंटे का होता है। फिर आपने उसको दूध पिला दिया, तो उससे क्या होगा कि आपने बच्चे का पेट भर दिया और दूध से उसको उतनी ऊर्जा नहीं मिल रही जितनी ऊर्जा उसको अपना वजन बढ़ाने के लिए चाहिए। और दूध एक संपूर्ण आहार नहीं है, प्रथम 6 माह तक है, लेकिन प्रथम 6 माह के बाद वो संपूर्ण आहार नहीं है।
1: देखिए श्रोताओं, ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि दूध एक संपूर्ण आहार नहीं है
0: 6 महीने के बाद,
1: 6 महीने के बाद ये ध्यान रखना चाहिए।
0: जब तक हम उस गैप को नहीं भरेंगे, जो हमको उससे कैलोरी जो हमारे को नहीं मिल रही है, जो प्रोटीन हमें नहीं मिल रहा है, जो आयरन हमें नहीं मिल रहा है, वो गैप हमको खाने से ही भरना होगा। और खाना देते समय हमको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि बच्चे के पेट की कैपेसिटी कम है, बच्चे में अभी दांत नहीं आए हैं और वह चबाना भी नहीं जानता। बच्चे का जो दूध पीते समय जो जीभ का मूवमेंट होता है वो आगे पीछे होता है, जबकि जब वो खाना खाता है तब उसके जीभ को चारों तरफ घूमना होता है। तो ये सब करने के लिए बच्चे को थोड़ा सा वक्त दीजिए। तो हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, चीज़ों को धीरे धीरे लाना चाहिए, ग्रेजुअली लाना चाहिए। और हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि जितना हम बच्चे से मेहनत करेंगे उतना बच्चा जल्दी खाना खाना सीखेगा, क्योंकि खाना खाना सीखना एक सीखने वाली प्रक्रिया, एक लर्निंग जो है वो प्रोसेस है। दूसरा एक पोषण में और ज़रूरी चीज़ है, वो है रिस्पॉन्सिव फीडिंग। रिस्पॉन्सिव फीडिंग का मतलब आपने घरों में, हमने भी अपने घरों में देखा है कि जो दादाजी या नानी या बड़ी बुआ ये लोग हैं, वो बच्चे के साथ खेल खेल में उन्हें खाना खिलाती हैं, और बच्चे से कांटेक्ट रखना, बच्चे को कोई कहानी सुनाना, कोई चिड़िया आया और ये आया और ऐसा ले गया, लाइक दैट। तो इससे क्या होता है कि बच्चा आपके साथ इन्वॉल्व रहता है। तो कृपया करके जो है वो टीवी के साथ में खाना खिलाने का प्रयास ना करें, मोबाइल में वीडियो दिखाते हुए खाना खिला, क्योंकि बच्चा उस समय उसका जो ध्यान है वो इन चीज़ों पर है, उसका ध्यान खाने में नहीं है। बीच बीच में माँ का ध्यान भी उन चीज़ों पे जाएगा, तो उससे क्या होगा कि एकाग्रता माँ और बच्चे दोनों की भंग होगी। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हमें पोषण में ख्याल रखना है। बाकी तो जो घर में जो चीज़ें हैं वो हमेशा अच्छी होती हैं, साफ़ सुथरी होती हैं, अधिक पोषण वाली होती हैं। मौसम का एक फल जो है वो हमें हमेशा देना चाहिए। माओं के अधिकतर सवाल होते हैं कि क्या हम बाजार में बने हुए उत्पाद दें या ना दें। इसमें मेरा यही कहना है कि हम घर में ही उनको बहुत अच्छा बना के दें। यदि हम शुरू से ही बाजार में बनी चीज़ों की आदत बच्चों को डालते हैं तो फिर वो घर की चीज़ें नहीं खाते।
1: यूं भी कहते हैं कि पैकेज्ड फूड जो होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, तो ताज़ा बना के यदि आप बच्चे को देते हैं तो सबसे बेहतर माना जाएगा।
0: और उसमें एक कहते हैं ना, खाना बनाने वाले के प्यार का इन्वॉल्वमेंट भी होता है, तो बच्चा उसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट भी करता है।
1: जी जी जी। यहाँ हम आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चा हर महीने लगभग कितना वजन अपना बढ़ाना चाहिए सामान्य तौर पर उसका?
0: एक सिंपल सा फॉर्मूला है, बच्चा हिंदुस्तान में 2.5 से 3 किलो का पैदा होता है और वो 3 महीने पे अपना वजन जो है डबल कर लेता है। यानी अगर बच्चे का जन्म का वजन 2.5 किलो है तो 3 महीने पे वो 5 किलो हो जाता है और 1 साल पर उसका भी डबल हो जाता है, 9 महीने पे 9 किलो वजन होता है। ये एक रफ फॉर्मूला है जिसके द्वारा हम जो है बच्चे का सामान्य वजन कितना होना चाहिए इसका हम एक अंदाज जो है लगा सकते हैं। लेकिन हर बच्चे की वृद्धि और हर बच्चे का विकास जो है वो अलग अलग होता है, हम किन्हीं 2 बच्चों के वृद्धि या विकास को एक साथ तुलना नहीं कर सकते।
1: डॉक्टर साहब, आपने अभी ये जो बात बताई ये शारीरिक विकास की सारी बात है, और शारीरिक विकास के लिए क्या करना चाहिए पेरेंट्स को ये बताया आपने। हम एक बस छोटा सा और विराम लेंगे गीत का और उसके बाद मानसिक विकास की बात करेंगे। हमें अब ये बताइए कि अगला गीत हमारे श्रोताओं को आप क्या सुनवाना चाह रहे हैं।
0: एक मूवी आई थी गजनी, काफ़ी मेरे को बहुत अच्छी लगी थी वो मूवी,
1: और निश्चित तौर पर बहुत अच्छी थी,
0: बहुत अच्छे उसके सभी गीत थे। मैं टॉकीज में बहुत कम जा पाता हूँ मूवी देखने, लेकिन मैंने वो टॉकीज में देखी थी और उसका एक गाना है कैसे मुझे, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है,
1: कैसे मुझे तुम मिल गए।
0: जी जी जी,
1: चलिए हम ये गीत सुनवा रहे हैं आपको, और साथ में अपने श्रोताओं को ये बता दें कि डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि टॉकीज में मूवी देखने गए और वो अभी तक उनके दिमाग पे चस्पा है, जो चीज़ बहुत बड़े विशाल पर्दे पर देखी है वो काफ़ी समय तक याद रहती है। और चलिए डॉक्टर साहब की इस याद को ताज़ा करते हैं और सुनवाते हैं ये गीत।

0: श्रोताओं, एक बार फिर स्वागत है आपका। कार्यक्रम है सेहत की बात तरानों के साथ। हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है शिशु के प्रथम वर्ष का स्वास्थ्य। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अजय गौड़। डॉक्टर साहब, इस गीत से पहले हमने बात की थी शारीरिक विकास की। मानसिक स्वास्थ्य या मानसिक विकास बच्चे का कितना आवश्यक है और उसमें किस तरह से रोड़े आते हैं, क्योंकि अक्सर मैंने सुना है कि तेज़ बुखार में बच्चे को झटके आने लगते हैं और उसका असर काफ़ी दिमाग पर पड़ता है।
1: जैसा इस कार्यक्रम के शुरुआत में हमने बात की थी कि बच्चा अगर सामान्य पैदा हो रहा है, जन्म के समय उसे किसी तरह का पूरा वजन है, पूरे दिन है, बच्चा अच्छे से क्राई कर रहा है, रो रहा है, गुलाबी रंग है और अच्छे से बच्चा माँ का दूध पी रहा है, तो ऐसे बच्चों में अधिकतर किसी तरह की विकृति सामान्यतः नहीं आती है, अनटिल एंड अनलेस अगर उनमें कोई और दूसरा कोई रोग हो या कोई दूसरी बीमारी हो। लेकिन आज का समय आपने देखा, प्रतियोगिता का समय है, हर बच्चे प्रतियोगी परीक्षा में रहते हैं और ये बिल्कुल वैज्ञानिक तथ्य है। हमने स्तनपान की भी बात करी कि जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं उन बच्चों का IQ, जो बच्चे दूसरे कोई स्पीसीज का दूध पीते हैं उनमें दोनों में काफ़ी अंतर होता है। तो बच्चे के IQ, बच्चे का रेटिना जो आँख का पर्दा होता है और बच्चे का जो दृष्टि होती है, इन तीनों के बनावट और इन तीनों के विकास के लिए माँ का दूध बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसके अंदर जो DHA नाम का एक जो कंपाउंड होता है ये बहुत ज़रूरी होता है मस्तिष्क विकास के लिए। और यह DHA केवल माँ के दूध में ही कुदरती तौर पर पाया जाता है और अन्य किसी दूध में नहीं पाया जाता। तो बात वहीं घूम के आती है कि अगर माताएँ ऐसा चाहती हैं कि उनके बच्चे का मानसिक वृद्धि अच्छी हो तो उन्हें स्तनपान जरूर अपने बच्चों को कराना चाहिए। अब बात आती है कि हम विकास में क्या देखें। तो नॉर्मली एक बच्चे के विकास जो है वो 3 तरह से होता है और अगर हम उसको और बारीकी से देखें तो 4 तरह से होता है। पहला विकास जो होता है, जिसको कि हम कहते हैं बच्चे का उठना, बैठना, गर्दन साधना, चलना, ये कब हो, तो एक सामान्य बच्चा जो है 2 महीने पे अपनी माँ से इंटरेक्ट करता है, मतलब अगर माँ जैसे उससे बात कर रही है तो वो मुस्कुराता है। एक 4 महीने का बच्चा गर्दन साधता है, 1-6 महीने का बच्चा बैठने लगता है, 1-9 महीने का बच्चा जो है उससे पहले बच्चा घुटने चलने लगता है, 10 महीने का बच्चा जो होता है वो सपोर्ट से खड़ा हो जाता है, 1 साल का बच्चा जो है वो हाथ पकड़ के या बिना हाथ पकड़े भी थोड़ा थोड़ा एक एक कदम चलने का प्रयास करता है। तो ये तो एक विकास हुआ जो कि हम घर पर भी अधिकतर लोग इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। दूसरा विकास जो होता है उसमें थोड़ा फाइन काम होता है, जैसे बच्चे का किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ना, किस तरह से बच्चा उसको पकड़ता है। शुरुआत में अगर आप देखें तो बच्चे मुट्ठी से चीज़ों को उठाते हैं, फिर बाद में वो केवल अंगूठा और एक जो पहली इंगली होती है उसको पकड़ के उठाते हैं, तो ये सब विकास की अवस्थाएं हैं। तीसरा जो विकास होता है वह बच्चे का बोलने का विकास होता है। चौथा जो विकास होता है उसमें हम बच्चे का जो बिहेवियर होता है और बच्चे का जो एडॉप्टेशन होता है, यानी बच्चा किस तरह से किसी अपरिचित को देख के रिएक्ट करता है। आपने भी ऐसा महसूस किया होगा, कोई बच्चे होते हैं छोटे, किसी भी अपरिचित के पास चले जाते हैं उसकी भी गोद में खेलने लगते हैं, कई अपरिचित को देख के ही केवल रोने लगते हैं। कई बच्चे आपने ऐसे भी देखे होंगे कि अगर कोई घर में मिलने आता है तो वो एक कोने में जाके चुपचाप बैठ जाते हैं। इसके कंट्रास्ट भी देखे होंगे कि वो घर पे उधम करने लगते हैं, ऐसा उधम करते हैं जो कि जो व्यक्ति आपसे मिलने आता है वह अपना सब काम छोड़ के बच्चे की तरफ ही
0: करने की कोशिश करते हैं।
1: तो बच्चे का व्यवहार वास्तव में बच्चों जैसा ही, कहते हैं ना किसी बड़े से भी क्या बच्चों जैसा व्यवहार कर रहे हो, तो बच्चे के व्यवहार को परिभाषित करना वास्तव में कठिन भी है, समझना भी कठिन है और उसके लिए हमें हमेशा एक निगाह बच्चे के विकास पे रखनी चाहिए। और प्रथम 2 वर्ष में तो हम यही कह सकते हैं कि जो उसका मोटा मोटा जो उसका विकास है, जैसे मैंने भी आपको बताया कि बच्चे ने बोलना कब शुरू किया, बच्चे ने

0: गर्दन कब साधी, बच्चा बैठा कब, सहारे से कब बैठा, बिना सहारे के कब बैठा, कितनी उम्र पे चला, तो ये हमें इस पे गौर करना चाहिए। यहाँ एक बात और कहना चाहूँगा कि किन्हीं भी दो बच्चों का, या हम कहें कि भाई बहन तक का विकास एक सा नहीं होता
1: जी।
0: तो कई बार क्या होता है कि हम एक मुकाबला करते हैं कि भाई हमारे पास में ये रहते हैं, या हमारी दीदी का बच्चा है, हमारे भाई साहब का बच्चा है, वो तो ये कर लेता है, हमारा बच्चा ये नहीं कर पाता। तो ये इसमें किसी को मन छोटा करने वाली बात नहीं है, हमें ये समझना चाहिए कि दो लोगों का एक सा विकास, जैसे दो लोगों की शक्ल एक सी नहीं होती, ऐसा दो लोगों का विकास भी एक सा नहीं होता। और विकास कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है कि आज बच्चा की सालगिरह है तो वो एकदम लेटे से उठ के खड़ा हो गया,
1: बिल्कुल,
0: कि अभी एक साल पर बच्चा खड़ा हो जाना चाहिए। यह एक सतत निरंतर प्रक्रिया है जो कि बच्चे के पैदा होने के दिन से ही जो है वो शुरू हो जाती है। और जितना हम बच्चे के साथ खेलेंगे, बात करेंगे, बोलेंगे, जितना हम उसमें इन्वॉल्व होंगे, उतना बच्चे का जो है वो विकास अधिक होगा।
1: यही मैं भी आपसे कहना चाह रही थी कि इन्वॉल्वमेंट, जो आपने एक शब्द बोला था कि जितना आप इन्वॉल्व होंगे उतना वो चीज़ें सीखेगा, जो लर्निंग की प्रोसेस है तभी से शुरू हो जाती है। आवाज़ के प्रति कैसे रिएक्ट कर रहा है, या किसी अपनी पसंद के खाने के लिए या खिलौने के लिए बच्चे का मचलना और खाना, ये सारी चीज़ें उस पर निर्भर करती हैं।
0: छोटे परिवार में आजकल और एक समस्या आई है, आपने भी ऐसा महसूस किया होगा कि माताएं कहती हैं हमारा बच्चा अब कम बोलता है, या देर से बोलता है, या बोल नहीं पाता है। तो जब आप उनसे एक विस्तृत रूप से बात करते हैं तो ये बात निकल के आती है कि वो बच्चा टीवी काफ़ी देखता है, कार्टून काफ़ी देखता है। तो ये क्या होता है कि जब बच्चा टीवी के सामने 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे अगर व्यतीत कर रहा है तो ये एक वन वे ट्रैफिक होता है, एक वन वे माध्यम है ये, मतलब टीवी बोल रहा है, बच्चा नहीं बोल रहा है। तो क्या होता है कि बच्चा शांत रहता है और वो टीवी को केवल सुनता रहता है, लेकिन उससे वो चूंकि वार्तालाप नहीं कर सकता,
1: वो आदत में आ जाता है।
0: तो फिर बच्चे की कम बोलने की ही जो है वो एक आदत हो जाती है। तो एक छोटा सा अनुरोध श्रोताओं से ये भी है कि बच्चे के साथ समय ज़्यादा दें, और एक जो स्क्रीन टाइम होता है जिसमें टीवी और लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल, 2 घंटे से ज़्यादा का स्क्रीन टाइम जो है वो बच्चे के लिए किसी भी रूप में ठीक नहीं है। ये
1: डॉक्टर साहब एक चीज़ और, हमारे एक परिचित हैं, उनके बच्चे को डॉक्टर ने ये बताया था, वो बोलता नहीं था बच्चा, वो लेकर के डॉक्टर के पास पहुँचे तो डॉक्टर साहब ने ये बोला कि बच्चे के कुछ कहने से पहले उसकी आप फरमाइश पूरी कर देते हैं, तो वो कुछ कह ही नहीं पाता, बोल ही नहीं पाता, पानी तब बोलेगा जब अब प्यास लगेगी और उसे चाहिए होगा तो बोलेगा वो, लेकिन उसको प्यास लगने से पहले पानी का ग्लास आपने पकड़ा दिया तो वो शब्द वो बोल नहीं पाएगा, क्या ऐसा होता है?
0: देखिए ये जैसा मैंने पहले भी बताया कि विकास जो है वो इंडिविजुअल होता है, एक किन्हीं दो लोगों से हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन ये बात तो अब जैसे मैंने बताया कि परिवार छोटे हो गए हैं, एक एक परिवार में एक बच्चा या दो बच्चा होता है, और तो हर बच्चा माँ के लिए या पिता के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। माँ बाप भी चाहते हैं उनका बच्चा अच्छा रहे, स्वस्थ रहे और खुश रहे। तो कई बार क्या होता है कि अति उत्साह में या अति हम प्रोटेक्ट करने के लिए अगर इस तरह का व्यवहार रखते हैं तो वास्तव में इस व्यवहार से आगे जाके समस्या तो हो सकती है, क्योंकि बच्चे को एक खुलने का मौका हम कहें या बच्चे को अपनी बात कहने का मौका, ये तो हमें देना ही चाहिए, दोनों ही सूरतों में देना चाहिए।
1: ओवर प्रोटेक्टिव
0: हम ना रहें, क्योंकि एक जैसा कहते हैं ना कि हम सामान्य रूप से अगर किसी फूल को खिलने दें तो वो ज़्यादा अच्छा खिलता है, और अगर हम उसे बहुत प्रोटेक्ट करके खिलाने की कोशिश करें तो उसके खिलने में थोड़ी समस्या आ सकती है।
1: डॉक्टर साहब अब सामान्य चीज़ों के बारे में बात करते हैं, सामान्य बीमारियों के बारे में बात करते हैं जो आगे जाकर बच्चे को परेशानी खड़ा कर सकती है। कहते हैं कि चेंज वेदर जब होता है तो बच्चे को ज़्यादा प्रोटेक्शन की, ज़्यादा केयर की आवश्यकता होती है, तो अक्सर ऐसा होता है कि चेंज वेदर में बच्चे सर्दी, जुकाम या इसी तरह की कुछ और बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, और कभी कभी ये चीज़ ज़्यादा हो जाती है। छोटे बच्चों को अक्सर निमोनिया हो जाता है
0: जी।
1: तो ये कितना घातक है और आगे चलकर इसका कितना असर पड़ता है बच्चे के स्वास्थ्य पर?
0: ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब भी किसी मौसम में, तापमान में या वातावरण में परिवर्तन होता है तो उसमें जो सबसे पहले प्रभावित होते हैं वो बच्चे ही प्रभावित होते हैं, क्योंकि बाहर के मौसम, बाहर के तापमान या बाहर के एनवायरनमेंट से अपने आप को एक तालमेल बिठाने में सबसे ज़्यादा बच्चों को समस्या आती ही है। और गर्मी के मौसम में भी देखें तो उनको सर्दी जुकाम हो जाता है, और सर्दी जुकाम जो सर्दी का मौसम है उसमें उन्हें रहता ही है। यहाँ मैं केवल एक बात ये कहना चाहूँगा कि निमोनिया एक बहुत वाइडर टर्म है, एक बहुत बड़ी, एक विस्तृत, उसके अंदर बहुत सारी बीमारियाँ छोटी छोटी आती हैं, और सामान्य भाषा में सर्दी जुकाम को भी जो है वो निमोनिया कह देते हैं, जबकि निमोनिया में एक्सरे और

0: उसके अंदर जो चेंजेस हैं, परिवर्तन है, वो आना ज़रूरी है। या हम बच्चे की अगर सांस की गति तेज़ चल रही है तो माँ के लिए तो दो ही बात ज़रूरी हैं। यदि बच्चा दूध पीना कम कर देता है, बच्चे को बुखार है और बच्चे के सांस की गति अधिक है, उसे गिनने की भी ज़रूरत नहीं है, उसे केवल बस ये देखना है कि जो सामान्य रूप से उसकी सांस की गति थी पहले, वो क्या अब उतनी ही है या उससे तेज हो गई है। कई माताएं जो थोड़ी और समझदार होती हैं, वह ये भी पता कर लेती हैं कि बच्चे के सांस में नीचे गड्ढे तो नहीं पड़ रहे हैं पसलियों में। तो ये दो निमोनिया के ऐसे लक्षण हैं, एक पसली चलना जिसको बोलते हैं, या सांस नीचे वाली पसलियों के गड्ढे पड़ना, और दूसरा जो है वो ये करना। तो ये मेरे ख्याल से दो ऐसे लक्षण हैं जो कि हमें देखना चाहिए। और प्रथम वर्ष में डायरिया, निमोनिया, ये दो ही मेजर बीमारी हैं जिनसे कि अधिकतर बच्चों को समस्या रहती है।
1: क्या ये आगे चलकर भी परेशान करती हैं? निमोनिया बार बार बच्चे को होता है तो किसी और तरह की समस्या हो जाए?
0: बार बार अगर होता है, डेफिनेटली कोई भी बीमारी अगर बार बार हो रही है तो एक तो बच्चे के वो वजन पे प्रभाव करती है, नंबर एक। नंबर दो, बच्चे के जो डाइट है उस पे भी प्रभाव डालती है। नंबर तीन, अगर ये समय पर रहते हुए उसको हम ठीक नहीं कर पाते हैं तो, और वो ब्लड में बहुत समय तक अगर वो बैक्टीरिया रहता है, कीटाणु रहता है, तो वो भी बच्चे में आगे जाके समस्या कर सकता है।
1: डॉक्टर साहब, बातें हमने बहुत सारी कर ली, लेकिन हमारे अपने श्रोताओं को हम बताना चाहेंगे जो रेडियो के माध्यम से आपको सुन रहे हैं कि डॉक्टर अजय गौड़ हमारे रेडियो से बहुत पुराने समय से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब कब से जुड़े हैं हमारे रेडियो से, बताइए।
0: सन तो मुझे अभी इस वक्त अचानक याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं जब बहुत छोटा था, स्कूल में था, तब एक यहाँ से बालकुंज कार्यक्रम प्रसारित होता था।
1: वो अब भी होता है?
0: वो अभी भी होता है, कभी भी मैंने बीच बीच में कभी सुन लेता हूँ, दो तीन चार साल में। तो उसमें मेरे को एक बार बुलाया गया था, जो सवाल पूछते हैं एक्सपर्ट से बच्चे, हाँ, तो उसमें मुझे बुलाया गया था। और उसके बाद मेरा भी कहें कि कुछ रुझान हो गया, प्लस जो उस कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रहे थे उन्होंने शायद मुझ में कुछ ऐसा देखा होगा कि फिर उन्होंने मुझे बालकुंज में बुलाना शुरू किया नियमित रूप से कार्यक्रम प्रस्तोता के रूप में। उसके बाद जब मैं बड़ा हुआ, युवा हुआ, तो फिर मैं युवाणी कार्यक्रम में भी करीब 7-8 साल जो है वो जुड़ा रहा मेरे अपने MBBS के दौरान। उसके बाद से जब अब एक एक्सपर्ट के रूप में आप श्रोताओं से जुड़ा हुआ हूँ,
1: तो निश्चित तौर पर श्रोता भी आपसे उतना ही जुड़ाव महसूस करते हैं और आपकी बताई बातों को ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं।
0: जी
1: डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं को चलते चलते कोई एक ऐसा गीत सुनाइए जो हमारे श्रोता आपको उस रूप में याद रखें कि कार्यक्रम की प्रस्तोता भी आप रह चुके हैं।
0: फिर से किशोर कुमार का ही एक गीत है, याराना मूवी का, छूकर मेरे मन को। क्योंकि वास्तव में जब भी मैं अब इस स्टूडियो में आता हूँ आकाशवाणी के, तो मेरे मन को पुरानी स्मृतियाँ छू जाती हैं और बहुत लोग पुराने भी मुझे यहाँ पर अभी भी मिलते हैं और उनको देखकर बहुत अच्छा लगता है, और वो भी मुझे आज उतना ही स्नेह करते हैं जितना मैं पहले जब इस कार्यक्रम में आता था और तब इसने करते थे। तो ये छूकर मेरे मन को जो गीत है, ये मैं अपने श्रोताओं को सुनवाना चाहूँगा।
1: बहुत खूबसूरत गीत है और इस गीत के माध्यम से डॉक्टर साहब आप अपनी खूबसूरत यादों को ताज़ा कीजिए। लीजिए, सुनिए ये गीत।

0: सेहत की बात तरानों के साथ। इस कार्यक्रम में श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे शिशु के प्रथम वर्ष के स्वास्थ्य के बारे में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित थे डॉक्टर अजय गौड़, आप विभागाध्यक्ष हैं बाल एवं शिशु रोग विभाग गजरा राजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर में। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे श्रोताओं की इतनी अच्छी जानकारी दी और इतने अच्छे अच्छे गीत सुनाए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए।

सेहत की बात तरानों के साथ अभी आप सुन रहे थे। और इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय था शिशु के प्रथम वर्ष का स्वास्थ्य। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर अजय गौर और उनसे बात कर रही थी तुलिका शर्मा। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म वजीर से। गुरप्रीत सैनी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाए हैं रोचक कोहली ने। आवाज़ है अमिताभ बच्चन और फरहान अख्तर की।

0: दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे।
1: इतनी वफादारी, आजकल कौन सोचता है ये सब। जीने के हैं चार दिन तो जियो जी भर के।
2: तुम्हें पता नहीं है शायद, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से एचआईवी एड्स और यौन संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है। इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी है और कंडोम का उपयोग भी स्वस्थ यौन व्यवहार के लिए जरूरी है। उससे एचआईवी एड्स के साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है, समझे?
1: हाँ भाई समझा।
2: तो संयम, वफादारी और कंडोम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाए। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है तनु वेड्स मनु। राजशेखर के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है कृष्णा सोलो ने। आवाजें हैं मोहित चौहान और उज्जैनी मुखर्जी की। आइए सुनते हैं इन्हीं की आवाज़ में फिल्म तनु वेड्स मनु का ये प्यारा सा गीत।

थे फिल्म तनु वेड्स मनु का गीत। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें, जिन्हें हम अपने भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही नए अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण व संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज जबलपुर में 362 करोड़ रुपए की अमृत सीवरेज परियोजना और 3 बड़े सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री गुरंदी में मत्स्य बाजार का लोकार्पण और डुमना नेचर पार्क में 11 लाख पौधरोपण अभियान की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री हरदा में आयोजित अन्नदाताओं की समृद्धि का महाअभियान बलराम कृषि महोत्सव में वर्चुअली सहभागिता भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्वतंत्रता संग्राम के महानायक प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक समाज सुधारक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रदेश में जुलाई में तो लंबे ब्रेक के बावजूद बारिश का कोटा पूरा हो गया है, लेकिन जून में कम बारिश होने की वजह से आंकड़ा 13% कम है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिन भारी बारिश की संभावना नहीं है। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने जूडो में पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया 128 पदकों के साथ पहले और भारत 23 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी भोपाल है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय 11 बज चुके हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं फोन इन कार्यक्रम बात आपकी, गीत हमारे।

नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे लेकर हाजिर हूं मैं आपकी रेडियो दोस्त रक्षा तंवर। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम में आज का विषय बताएं उससे पहले आपको एक सूचना दे दें कि हम इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करते हैं हर रोज सुबह 10:30 से 11 तक, और हमारा फोन नंबर है 07552660902। आज का हमारा विषय है बदलते मौसम के साथ खान पान में बदलाव। इसमें हम बात करेंगे कि जिस तरह मौसम बदल रहा है उसके साथ हमें अपने खान पान में किस तरह का बदलाव करना चाहिए ताकि हमारा

0: स्वास्थ्य बेहतर बना रहे। तो आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है, आइए बात करते हैं हमारे पहले श्रोता से। नमस्कार, बात आपकी गीत हमारे।
1: जी मैं मोरेना मध्य प्रदेश से हरविलास सिंह तोमर बोल रहा हूँ।
0: हरविलास जी कैसे हैं आप?
1: आपकी दुआ ईश्वर के पास से बहुत अच्छी तरह से।
0: बहुत अच्छी बात है। क्या करते हैं हरविलास जी?
1: खेती किसानी करता हूँ महोदया में।
0: खेती किसानी तो अभी क्या लगा रखा है?
1: अभी बाजरे की फसल लगा रखी है।
0: अच्छा, कार्यक्रम है बात आपकी गीत हमारे, और आज का विषय मैं आपको बता दूं कि जो मौसम जिस तरह से बदल रहा है उसमें हमें खान पान में क्या बदलाव करना चाहिए।
1: देखिए मौसम बदल रहा है, कई बीमारियों का प्रकोप भी हो सकता है, हमें खान पान में बदलाव करना चाहिए। जो चीजें अपन गर्मी के मौसम में खा रहे थे, ठंडी चीजें वगैरह जैसे बेल वगैरह है, बेल का शरबत वगैरह खा पीते थे, वो अब नहीं करना चाहिए। तो पत्तियोंदार सब्जी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पत्तियोंदार सब्जियों में कीड़े बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जैसे पालक है, चौरई है, सब्जियों को त्याग देना चाहिए इस समय।
0: अच्छा।
1: तो इस तरह के खान पान में बदलाव करना चाहिए। जैसे 12 महीने का खान पान निर्धारित किया है, सामन सागन भादो दही, क्वार करेला कार्तिक मही, अगहन जीरा पूष धना, माह मिश्री फागुन चना, चैते गुड़ बैसाखे तेल, जेठे गरी अषाढ़े बेल, इन चीजों को नहीं खाना चाहिए।
0: बढ़िया, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी हरविलास जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में फोन करने के लिए।
1: धन्यवाद, नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
1: जी नमस्कार, मैं राम नरेश बोल रहा हूँ, ग्राम कटारिया खेड़ी मेरा गांव है और जिला राजू।
0: जी कैसे हैं आप?
1: जी हम ठीक हैं और आशा करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे और जी. हमारे जो श्रोता गण हैं, श्रोता मित्र हैं, वो भी ठीक होंगे। कार्यक्रम की सुन रहे हैं।
0: कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम का विषय मैं आपको बता दूं कि मौसम में जिस तरह का बदलाव हो रहा है उसके साथ साथ खान पान में किस तरह का बदलाव आप करते हैं जिससे कि आपका स्वास्थ्य जो है बेहतर बना रहे।
1: अब जो खान पान का जो रूटीन होता है जो साल भर से चला आता है, विशेष तो कोई बदलाव नहीं होता है, परंतु जो मौसमी सब्जियां होती हैं या मौसमी फल होते हैं इनका तो खैर सेवन करते ही हैं, यही बदलाव होता है, परंतु खान पान में तो कोई बदलाव नहीं होता। जो साल भर से जो सब्जियां या दालें खाते आते हैं वही रूटीन चलता है। एक और बारिश के दिनों में एक ग्रामीण क्षेत्रों में भी शायद शहरी क्षेत्रों में भी इसको खाया जाता हो, हम यहाँ इसको किकोड़ा बोलते हैं, शायद करेला होता है, करेला ही होता है जो वो छोटा छोटा सा होता है, वो छोटे आकार में जो बारिश के मौसम में ही मिलता है।
0: अच्छा।
1: और उसके बाद नहीं मिलता है, जंगलों में ये उगता है और ये जो सब्जी होती है ये वहाँ जंगलों से गांव से तोड़कर लोग शहरों में लाते हैं। कुछ ग्रामीण भी अगर इस चीज को देखें कहाँ ये किकोड़ा करके जो एक करेला होता है, छोटा छोटा करेला, वो उसका सेवन अवश्य किया जाता है और वो जाने के बाद थोड़ा याद भी आता है कि इंतजार करते हैं कहाँ बारिश आएगी तो उस तरह का जो सब्जी है
0: अच्छा
1: खाने को मिलेगा।
0: मतलब आकार उसका करेले जैसा, जैसे करेले में कांटे से निकले होते हैं, मतलब खुरदुरा सा जो आकार होता है वैसा।
1: हाँ वो करेले अलग होते हैं
0: जी।
1: वो जो कड़वे जो रहते हैं वो अलग रहते हैं और ये अलग है।
0: अच्छा।

0: चिकोड़ा बोलते हैं।
1: चिकोड़ा।
0: यदि कोई ग्रामीण हमारी इस बातचीत को सुनेगा तो वो इस चीज को अवश्य
1: समझ पाएंगे। बिल्कुल।
0: चिकोड़ा जो हमारे क्या कहते हैं, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट राजगढ़ जो मालवा क्षेत्र है या इससे जुड़ा हुआ हमारा पड़ोसी जो राज्य है राजस्थान, इन क्षेत्रों में काफी जो है खाया जाता है। ये भोपाल में भी ये काफी मिलता है। हमारे जो श्रोता मित्र हैं उनसे हम चर्चा करते हैं क्या इस तरह की मिलती है, तो वो बताते हैं कि हाँ ये मिलता है भोपाल में भी।
1: अच्छा, इसके कुछ फायदे भी हों तो बताइए।
0: अब इस तरह का तो हमने अपने शरीर में बदलाव देखा नहीं, परंतु शौकिया तौर से अवश्य खाते हैं इसको।
1: बहुत अच्छा लगा राम नरेश जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी उसके लिए, कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है।
1: हेलो
0: जी, नमस्कार।
1: मैं खातेगांव से गोविंद जलोदिया बोल रहा हूँ।
0: गोविंद जी, आज कार्यक्रम का विषय है मौसम में जो बदलाव होने हैं उसके साथ खान पान में क्या बदलाव आप करते हैं या करना चाहिए?
1: मैडम, मौसम का क्या है, मौसम तो पहले तो सबसे पहले तो बरसात में पानी का ये विशेष ध्यान रखना चाहिए, गर्म पानी वगैरह ये वो।
0: जी
1: पहली बात तो ये है। और थोड़े आसपास से जो गड्ढे वगैरह रहते हैं ये भी सफाई होना, पानी नहीं होना रुका हुआ।
0: बिल्कुल सही बात है,
1: इसमें भी मच्छर रहते हैं।
0: हाँ?
1: और रात्रि के समय तो बहुत कम ही रहना चाहिए, एक एक रोटी कम ही खाओ।
0: अच्छा,
1: अब खाना तो खाने के ऊपर है, वो खाना तो जो चल रहा है वही चलना चाहिए। विशेष तौर पर ज्यादा जैसे कहीं गए हुए और खूब कम ज्यादा कर लो तो बीमारी का घर है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
1: खाना तो खाने पे तो विशेष ध्यान देना चाहिए, कम ही खाना चाहिए, कम खाओ और कम खाओ।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है गोविंद जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
1: हेलो
0: जी, नमस्कार, किन से बात हो रही है?
1: नमस्कार जी, मैं कोठिया से बोल रहा हूँ, नेत्राम कोठिया।
0: कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है, कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं जी।
0: जी, आज कार्यक्रम का विषय है बदलते मौसम के साथ खान पान में किस तरह का बदलाव करना चाहिए।
1: हाँ जी, हमें अब ये चीजें ठंडी चीजें न खाने चाहिए।
0: अच्छा,
1: मौसम बदल रहा हो, गर्मी पे गर्मी चीज से गर्मी चीज से ये खाने भाई हो जाते।
0: अच्छा,
1: आवाज सही नहीं आ रही।
0: हेलो हेलो,
1: आवाज सही नहीं आ रही।
0: नेत्राम जी से तो संपर्क टूट गया है, कोई बात नहीं, अगला गीत सुनते हैं कार्यक्रम में।

0: नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारी।
1: नमस्कार, हम ग्राम काना थोड़ा तहसील कालपी जिला जालौन उत्तर प्रदेश राजेश विश्वकर्मा बोल रहे हैं।
0: कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है।
0: क्या करते हैं राजेश जी?
1: हम ब्रांड में दुकान चलाते हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, कार्यक्रम है बात आपकी गीत हमारे, जिसमें हमारा एक विषय होता है जिस पर हम चर्चा करते हैं। तो कार्यक्रम का आज का विषय है बदलते मौसम के साथ खान पान में किस तरह का बदलाव होना चाहिए।
1: अब खान पान में ये है कि विशेष तौर से साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, और जैसे गर्मी पड़ रही है, खाना है तो खाना बासा आसा नहीं यूज करना चाहिए।
0: अच्छा
1: ये, और मच्छरों से विशेष तौर से सावधानी, मतलब इन दिनों मच्छर बहुत लगते हैं, तो अपना मच्छरदानी का उपयोग करें, ज्यादा से ज्यादा अपने शरीर का सुरक्षा करें
0: जी।
1: जितना मतलब यूज हो उतना बनाओ, उतना खाओ, ताजा ताजा खाओ।
0: अच्छा,
1: यही सब सारी चीजों को ध्यान रखना चाहिए। जैसे आम का सीजन तो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन फिलहाल जैसे आम बड़ा अच्छा फायदा करता है, आम ज्यादा से ज्यादा आदमी यूज करना चाहिए। हाँ, ये फल वगैरह तो खैर सीजनी फल तो खैर जरूर खाना चाहिए, मौसमी फल जो आ रहे हैं
0: जी,
1: हाँ तो वो तो खैर खाना चाहिए।
0: अच्छा,
1: वो शरीर के लिए फायदा करता है।
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा राजेश जी आपसे बात करके, कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

0: નમસ્કાર, કાર્યક્રમ બાત આપી ગઈ તમારી.
1: મોહનલાલ પ્રજાપત ખમાગણી હુકમ.
0: નમસ્કાર મોહનલાલજી.
1: હા, જિલ્લા બાલોત્રા રાજસ્થાન સે.
0: કેસે હૈ મોહનલાલજી?
1: બહોત બઢિયા મેમ.
0: ક્યા કરતે હૈ મોહનલાલજી?
1: મેં કિરાના કી રેડી લગાતા હું ઓર આપ 1996 સે પ્રોગ્રામ સુન રહા હું.
0: અરે વાહ, બહોત અચ્છી બાત હૈ. યે તો કાર્યક્રમ મેં હમ બાત કર રહે હૈ આજ मौसम में जो बदलाव होते हैं उसके साथ साथ खान पान में कैसा बदलाव करना चाहिए जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहे.
1: जैसी रीति ने वैसी नीति अपनानी चाहिए. जैसे गर्मी है तो हल्का भोजन लेना चाहिए, और सर्दी है तो उसके हिसाब से, और बरसात के मौसम में तो पूरा ध्यान रखना मच्छर का है. जैसे अंदर कुछ सब्जी में मच्छर भी पड़ जाए तो पूरा ख्याल रखना. हाँ, मतलब वो भारी भारी खाना नहीं खाना चाहिए, जो अपने शरीर को पसे ना वो नहीं खाना चाहिए.
0: अच्छा.
1: हाँ, वैसे हम क्या कहते तो कुछ शरीर में तकलीफ होती है ना हमारे यहाँ, तो जैसे सर्दी में जुकाम हो गया तो हम चाय पत्ती के और दाने होते ना, आग के दाने, मतलब पीछे हुए नहीं
0: जी,
1: उससे हम ऊँचा भी बोलते हैं उनको
0: जी,
1: और आप कांडे बोलते हो तो हम वो कांडे बना के पीते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है.
0: अच्छा, किस चीज का काढ़ा बता रहे हैं आप?
1: दाने होते ना, ये दाना मतलब हरिया धनिया होता है ना, वो इसी तरह का वो दाना दाना होते हैं.
0: अच्छा, हरे धने की तरह का कोई दाना होता है?
1: हाँ, दाने मतलब वो पीले कलर में आते हैं गेहूँ के दाने के आकार का.
0: अच्छा.
1: हाँ, तो उसको क्या के आपने वो जैसे अदरक कूटते ना, इसी में कूट कर अपना चाय पत्ती के साथ डाल देते हैं.
0: अच्छा, जिससे आपका जुकाम सर्दी वगैरह से आपका बचाव होता है.
1: उसमें दूध नहीं डालना पड़ता, सिर्फ चाय पत्ती, शक्कर और दाने.
0: अच्छा.
1: तीन चीजों का मिलान होने पर पीने से मतलब जुकाम हट जाता है, और सुबह लैम का पीते हैं.
0: अच्छा अच्छा, अरे वाह.
1: वो बाजरे का होता है, बाजरा डालते हैं.
0: हाँ.
1: तो तेल में भिगो कर घी में डालकर वो पीते हैं.
0: अच्छा, बहुत अच्छा मोहनलाल जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी.
1: बहुत
0: बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में फोन करने के लिए.

0: नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारी।
1: हेलो, नमस्ते मैडम जी।
0: जी, किनसे बात हो रही है?
1: मैं छत्तीसगढ़ कटोरा तालाब रायपुर से मोहनलाल दिवांगन मास्टर मॉन्टेनर बोल रहा मैडम जी।
0: अच्छा, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास।
0: क्या करते हैं मोहनलाल जी?
1: मैं टेलर मास्टर हूँ, यहाँ पर लेडीज और जेंट्स टेलर मतलब सिलाई होता है। और मेरा बेटा है दो, जो भूपेश कुमार देवांगन और तुषार देवांगन, ये फैशन डिजाइनर है मैडम जी।
0: अच्छा, अरे वाह, बहुत अच्छी बात है।
1: मैं भोपाल कार्यक्रम में बहुत के बाद लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले लगाते था, मैं पुराना बहुत पुराना सोचता हूँ मैडम जी आपका इस कारण। और बाकी तो कार्यक्रम चलता रहता है, और आपके जो पहले जो कार्यक्रम चलता था, जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का एक साथ कार्यक्रम चलता था मैडम जी,
0: आप तो चलिए अब कार्यक्रम पे वापस आते हैं। कार्यक्रम है बात आपकी गीत हमारे, जहां आज का विषय है बदलते मौसम के साथ खान पान में बदलाव, जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहे।
1: ये देखिए, बरसात के मौसम में हमें सावधानी बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए अभी बरसात हो रही है, आपके को ज्यादा भीगना नहीं है, अब भीगना है अगर जरूरी है तो उसके लिए रेनकोट हो गया, छाता हो गया या और चीज हो गया ऐसा करके। और उसके बाद जो है अपन मान लो भीग गए तो तुरंत कपड़ा अपना चेंज कर दीजिए, और उसके बाद
0: बिल्कुल ठीक है, रेनकोट वगैरह पहनना चाहिए, बारिश से बचना चाहिए, लेकिन खाने पीने में क्या बदलाव करना चाहिए?
1: खाने पीने में बिल्कुल ताजा ताजा खाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ताजा जो खाएंगे ना, वह क्या बात है। अभी भी हम जब बरसात होता है तो ताजा ताजा भजिया वगैरह खाते रहते हैं, आपको बताए आपको हमारी पसंद की बात है ना। तो अब ज्यादा कहने के बाद होटल का भी ज्यादा नहीं खाना चाहिए, घर का ही मतलब बनाया हुआ कोई भी पकवान ज्यादा खाए तो ज्यादा।
0: अच्छा, घर का खाना चाहिए और ताजा खाना खाना चाहिए आप कह रहे
1: हैं? ताजा खाना चाहिए खासकर, शरीर के लिए फायदा है उसको खाना चाहिए। जैसे कि फल फ्रूट हो गया, जैसे आज के मौसमी जो फल चल रहा है वो उनको खाना चाहिए। और जो बार बार जो अब आम का आखिरी आ गया है, बल्कि आम को नहीं खाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि उसमें अब कीड़े उड़े आने के डर है
0: ना। अच्छा।
1: तो इस तरह से वो जो फल है उसको, और जो सेहत जो इस समय झाप करे वो फल को नहीं खाना चाहिए, ना ही ऐसा व्यंजन खाना चाहिए जो कि हमारे शरीर के लिए नुकसान हो।
0: अच्छा जी मोहनलाल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में फोन करने के लिए।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्कार, किन से बात हो रही है?
1: मैं पेंटर मुखर्जी नगर इंदौर से बोल रहा हूँ। मैं
0: जी, आज का विषय है कार्यक्रम का, बदलते मौसम के साथ में खान पान में कैसा बदलाव होना चाहिए जिससे कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहे।
1: बारिश के मौसम में तो मैडम आजकल क्या है,
0: क्या बनाते हैं? आवाज आपकी ठीक से नहीं आ रही।
1: वो जो मीठे रोटी बनाते हैं गुड़ के साथ में
0: जी,
1: हाँ वो तो एक तो बहुत फेमस है
0: जी।
1: और एक दूसरी बात क्या है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अच्छा मतलब गंदी चीज नहीं खाना चाहिए, नदी नाले की चीजें नहीं खाना चाहिए, सब्जी भाजी भी जो लेके आते हैं जो किसान तोड़ के ले आते हैं और वो मतलब बेच देते हैं मंडी में जाके, वो चीजों को कोई भी चीज हो चाहे खेत की हो चाहे नदी नाले की हो, वो चीजों को धो ला के साफ सुफ करके फिर उसको बना के खाना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: और क्या अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए हमेशा
0: जी,
1: कोई गलत चीज नहीं खाना चाहिए। और बदलते मौसम में तो मौसम कम ज्यादा अभी चल ही रहा, पानी भी बराबर नहीं गिर रहा मैडम।
0: जी ठीक है, बहुत अच्छा लगा जगदीप जी आपने फोन किया उसके लिए।
1: ठीक है मैडम, थैंक यू मैडम।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य कठोर दंडों का प्रावधान करने और फास्ट ट्रैक अदालत की स्थापना करके लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज जबलपुर में 362 करोड़ रुपए की अमृत सीवरेज परियोजना और 3 बड़े सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री गुरंदी में मत्स्य बाजार का लोकार्पण और डुमना नेचर पार्क में 11 लाख पौधरोपण अभियान की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री हरदा में आयोजित अन्नदाताओं की समृद्धि का महाअभियान बलराम कृषि महोत्सव में वर्चुअली सहभागिता भी करेंगे। प्रदेश के 10 शासकीय महाविद्यालयों में अत्याधुनिक डिजिटल स्टूडियो स्थापित किए गए हैं। यहां रिकॉर्डिंग, संपादन और डिजिटल प्रसारण की आधुनिक सुविधाओं से तैयार अध्ययन सामग्री का उपयोग विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षण और गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध कराने में किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रथम जन विश्वास दौरे पर 7 अगस्त को छिंदवाड़ा में जिला स्तरीय समाधान कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज चिन्हित शिकायतकर्ताओं से संवाद करेंगे और जिला स्तरीय विकास कार्यों और शासकीय योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। प्रदेश में 2 लंबी ब्रेक के बावजूद बारिश का कोटा पूरा हो गया है, लेकिन जून में कम बारिश की वजह से आंकड़ा 13% कम है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिन भारी बारिश की संभावना नहीं है। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने जूडो में 2 ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीते। पदक तालिका में भारत 23 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण इस समय आप सुन रहे हैं, दोपहर के 12 बजे हैं। अब आपको सुनवाते हैं फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का पहला गीत बंधन फिल्म से है, उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की मिली जुली आवाज़ें। भैरव अरुण ने इसे लिखा है, आनंद राज आनंद की धुन। और गीत को सुनने के लिए पत्र हमें आप सभी ने लिखे हैं, महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार, विशाल कुमार, शीला और गायत्री, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा, नीतू, सारणी जिला बैतूल से अमित खातरकर, निहारिका, शिवपाल यादव, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारसमणि, पंजाब राव निम्बालकर और संदीप पाटिल। और इसी गीत को पसंद किया है इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिकेश, साक्षी, मनन और तानियानी।

प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया, ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका, प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम, और कंवर कॉलोनी बड़वाह के हमारे श्रोता हैं प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति शिवानी और मीनू राज श्रीमाली। आप सभी ने पसंद किया है चाइना गेट फिल्म का गीत। अलका याग्निक, शंकर महादेवन, विनोद राठौड़ और साथियों की आवाज़ में। गीतकार हैं समीर, संगीतकार अनु मलिक। आइए सुनते हैं।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और अब इन सभी श्रोताओं की पसंद का गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। राजा बाजार बिटियन से सुरेश केशरी, पूनम केशरी, प्रतीक केशरी, नया बाजार बक्सर से राजेश, पंकज और रोहन, आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मेंडी, सौरभ, शाइना और निवान शर्मा, ग्राम महेशवाणी मलकापुर महाराष्ट्र के हमारे श्रोता हैं शत्रुघ्न धाड़े, वाल्मीकि धाड़े, नीनाजी, स्वप्निल और अजय खिरोडकर, और करूला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के श्रोता हैं अयूब खान, इरम गुड़िया और श्वेब खान। आप सभी ने पसंद किया है कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में समीर का लिखा गीत, जिसका संगीत तैयार किया जतिन ललित ने और फिल्म का नाम गुलाम।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम का अंतिम गीत इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर हम पेश कर रहे हैं। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, सारिमपुर से राज एस डी अंसारी, इंदिरा विहार दिल्ली से डब्ल्यू अंसारी, जेल रोड बक्सर से नरेंद्र यादव, छठिया पोखरा डुमराव से सुनील कुमार वर्मा, मुस्तफाबाद दिल्ली से लाल बाबू दीवाना। आशा रेडियो श्रोता संघ मैहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र के अभिजीत गवाणकर, श्रीमती सरिता गवाणकर, प्रिंस और एकांश, आकार हाइट्स बहादुर नागपुर से वैशाली शैलेश गवाणकर, मुकाम पोस्ट बोरी खुर्द से हमारे श्रोता हैं सुधाकर राजे यादव, प्रशांत जगुताई, साक्षिताई, संचित प्रथमेश देशमुख, स्वामी देशमुख, प्रणाली सानवी और उनके साथी। आप सब सुनना चाहते हैं अलका याग्निक और सोनू निगम की मिलीजुली आवाज़ों में आनंद बख्शी का लिखा गीत, जिसकी धुन तैयार की है जतिन ललित ने और फिल्म का नाम है जब प्यार किसी से होता है।

नसंसनी ना उत्तेजना नशोर दिन रात ना ही अहंकार, केवल मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सच्चे समाचार। जी हां, यही बिखेरता है आपके जीवन में आकाशवाणी परिवार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है संग्रहालय से कार्यक्रम कामिनी काय कांतारे।
1: प्रस्तुत है महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति। रूपांतरकार हैं प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन। आज प्रस्तुत है कामिनी काय कांतारे के रेडियो नाट्य रूपांतरण का 17वां भाग। अब तक आपने सुना कि राजा भर्तृहरि को चंद्रपुर के लिए स्वयं देवी मणिभद्रा नदी पार करवा देती है। इधर त्रिलोचन दोबारा उज्जैनी जाते हैं। वे वैसिका से मिलना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वो उनकी बिछड़ी हुई सत्या दीदी हैं। अब आगे

0: उज्जैनी से निराश होकर भीषण के त्रिलोचन सेवाश्रम लौट आए थे। मृगांक ने उन्हें आश्वस्त किया था कि जैसे ही महादेवी पिंगला और वयसिका के अवंती आने की सूचना मिलेगी, वो त्रिलोचन को समाचार पहुंचा देगा। इसकी प्रतीक्षा में भी धीरे धीरे डेढ़ महीना बीत गया। चंद्रसेन भी उदास सा था। त्रिलोचन ने उसे कह रखा था कि वयसिका के विषय में वो किसी से कुछ नहीं कहे। आचार्य नागदत्त त्रिलोचन और चंद्रसेन में आए हुए इस परिवर्तन को कई दिनों से अनुभव कर रहे थे और एक दिन पूछ ही बैठे।
1: त्रिलोचन, देख रहा हूं कि उज्जैनी से लौट कर तुम चुप से रहने लगे हो। कदाचित कोई चिंता आ जुड़ी है तुम्हारे साथ।

0: कर्तव्य पालन में कोई त्रुटि हुई है क्या? अरे
1: अरे सो नहीं, उज्जैनी से लौटकर चंद्रसेन भी गंभीर रहने लगा है।
0: आचार्य, कोई विशेष बात नहीं है, अपने सहपाठी मृगांक से कुछ जानकारी चाहिए थी, शायद भूल गया है, उसकी ओर से कोई संकेत नहीं मिल रहा है।
1: क्या फिर उज्जैनी जाना चाहते हो?
0: हाँ, सुना है महामात्य पूर्ण रथ से आपकी मित्रता है।
1: मित्रता थी, अब उनका अनुग्रह है, सेवा आश्रम को सहयोग करती हैं। उज्जैनी में वसुंधरा और पुत्र के अभिभावी हैं। उनसे तुम्हें कोई कार है क्या? राजकीय सेवा में जाने की इच्छुक हो क्या?
0: अरे नहीं आर्य, सुना है वहां सदैव स्वार्थ के प्रति सतर्क रहना पड़ता है। संदेह, दुत्कार, विद्वेष, विलासिता के पंख में धंसकर तुष्टि पाने का कभी सोचा ही नहीं। वहां सहज जीवन संभव ही नहीं है आर्य। मृगांक दत्त उज्जैनी में श्रीमानों की चिकित्सा करने वाला ख्यात चिकित्सक है। उसके संदेश की एक माह से प्रतीक्षा कर रहा हूं, संभवतः भूल गया है वो। अतः सोचता हूं स्वयं ही चला जाऊं। किसी आत्मीय को खोजना है, महामात्य से भेंट सहायक होगी।
1: ठीक है, मैं महामात्य को पत्र लिख दूंगा। इन दिनों वो बहुत व्यस्त हैं, महाराज किसी अनुष्ठान में है, वे लौटे नहीं हैं। मुझे सूचना मिली है कि नगर में सप्त दिवसीय राजकीय उत्सव की घोषणा हुई है, अतः ये एक सुअवसर भी है। तुम उज्जैनी चले जाओ, रानी पिंगला और उनकी सेविका के लौट आने का समाचार भी है।

0: त्रिलोचन जब उज्जैनी के भेषज्ञ मृगांक के आवास धन्वंतरी कुंज के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो द्वारपाल ने उन्हें चिन्हते हुए तत्काल द्वार खोल दिए। शुभंकर अतिथि को देखकर ही आदर से उठ खड़ा हुआ और मृगांक तो जैसे उनकी प्रतीक्षा ही कर रहा था। दोनों सहपाठी गले मिले, वार्तालाप का सिलसिला प्रारंभ हुआ।
1: चलो, तुमने मेरे किसी कार्य की सराहना तो की मित्र। हाँ, इन दिनों महारानी पिंगला किसी से भेंट नहीं करती, वो गर्व से हैं। पूजा और प्रजाजन को दर्शन देने के लिए अवश्य एक बार राजभवन से बाहर आती हैं। सुनने में आया है कि महाराज भर्तहरि कहीं अज्ञातवास में हैं और कोई अनुष्ठान कर रहे हैं। हाँ, वयस्का से भेंट हो सकती है। महारानी की संरक्षा सास संभार का दायित्व उस पर ही है। फिर भी कल हम उससे मिलने की जुगत करेंगे, अभी तुम विश्राम कर लो। हाज उत्सव के अंतर्गत किसी लोक गायक बसंत का गायन है। सुना है राजा भर्तहरि के पदों को लोक भाषा में प्रस्तुत करता है वो।
2: मृगांक, मेरा एक आग्रह है।
1: कहो मित्र, कहो, आदेश के रूप में मानना पड़ेगा।
2: सायं जब हम भ्रमण के लिए निकलेंगे तो किसी वाहन का सहारा नहीं लेंगे।
1: क्यों?
2: मैं उज्जैनी को भीतर से देखना चाहता हूँ। गलियों, बीथियों, संकीर्ण मार्गों पर जाकर देखना चाहता हूँ कि बाह्य भव्यता के आवरण में यह यशस्वी नगरी कैसी है, कैसा है उसका यथार्थगत सत्य।
1: तुम नहीं बदले त्रिलोचन, वैसे के वैसे ही हो। तुम्हें जो देखना है देख लेना भाई। कोई है?
3: प्रस्तुत हूँ स्वामी।
1: इन्हें पहचानते हो?
3: जी।
1: इन्हें अतिथि कक्ष तक ले जाओ, सांध रात्रि में ये भ्रमण पर निकलेंगे। इन्हें तैयार रखना है।
3: जो आज्ञा स्वामी।

0: मृगांक, ऐसा वैभव तो इंद्रपुरी में भी नहीं होगा।
1: उज्जैनी का एक दूसरा रूप भी है त्रिलोचन, वहां भी चलेंगे। शायद कोई बुला रहा है।
2: स्वामी, आपको पुकारा गया था, आप सुन नहीं पाए। स्वामी जी, मुझे भेजा है, उनका निवेदन है कि क्षण भर गादी पर ठहर कर उन्हें मान देने की कृपा करें स्वामी।
1: हाँ, कौन है वो, किसने कहलवा भेजा है?
2: आप उनसे परिचित हैं, श्रेष्ठ जी ऋतु सागर।
1: अच्छा जाओ, हम आ रहे हैं। त्रिलोचन, यह अभिज्ञात धनपति हैं अवंती का, मेरा रोगी है मित्र। वो राज महालय का विश्व

0: स्वस्थ रत्न विक्रेता है, हमारे काम का हो सकता है। हाँ, चलो मिल लेते हैं।
1: मृगांक दत्त और त्रिलोचन दोनों ऋतु सागर के निकट पहुंचते हैं।
2: ओ भाग्य जो आपने कृपा की, पधारिए, आसन ग्रहण करें। जब आप यहाँ से निकल रहे थे तो मैंने पुकारा था, शायद सुन नहीं पाए। धन्य हो गया मैं, आपके साथ ये जो है इनका परिचय पाने की उत्सुकता है।
0: ये मेरे मित्र, सहपाठी और अत्यंत निपुण भेषज्ञ हैं त्रिलोचन, उत्सव देखने के लिए उज्जैनी आए हैं।
2: ओहो, हमारा परम सौभाग्य, और आप इनके परिचय लाभ से वंचित कर रहे थे। अरे सुनो, कोई अतिथियों के लिए मधुर पेय तो लाना।
0: और आपका स्वास्थ्य कैसा है, कुछ लाभ हुआ?
2: यत्किंचित सफलता मिलने लगी है, महाकाल की कृपा हुई तो अपेक्षित फल भी शीघ्र मिलेगा।
0: करते रहिए अभ्यास और प्रयास। अरे हाँ, राजमहालय में रत्न और आभूषण तो कदाचित आप ही पहुंचाते हैं।
2: हाँ, लेकिन क्यों पूछा आपने?
0: यूं ही, ये मेरे मित्र हैं ना।
2: हाँ।
0: ये अवंती के पूर्व महाश्रेष्ठी आर्य नागदत्त द्वारा स्थापित सेवाश्रम के इन दिनों प्रमुख चिकित्सक हैं। आश्रम विषय कोई कार्य है इन्हें।
2: अच्छा,
0: ये महारानी पिंगला से भेंट करना चाहते हैं।
2: ओ,
0: ये सुझाव इन्हें मैंने ही दिया। चूंकि महाराज इस समय उपलब्ध नहीं है तो मैंने कहा महादेवी से ही भेंट कर लें। इन दिनों राज महालय पर महाकाल की कृपा दृष्टि है।
2: हाँ वैद्यराज, आज मैं स्वयं महालय गया था। आपको आश्चर्य होगा कि महादेवी ने मुझसे भी भेंट नहीं की। मुझे महादेवी की कृत दासी वयसिका से ही भेंट करके संतुष्ट होना पड़ा।
0: अच्छा।
2: राजमहल में इन दिनों उसी की आज्ञा चल रही है। मुझे नहीं लगता कि महादेवी से भेंट संभव हो पाएगी। हाँ, ये संभव है कि वो उत्सव में पधारें। लेकिन ऐसे सार्वजनिक अवसर पर नमस्कार प्रणाम ही हो पाता है। सुन रहे हैं आप?
0: हाँ हाँ, कहते चलिए।
2: समझ लीजिए कि महादेवी से भेंट तभी हो सकती है जब या तो वो स्वयं बुलाएं अथवा महामात्य को लगे कि ये भेंट आवश्यक है। इस गर्भ के लिए संभवतः महामात्य उन्हें असुविधा में नहीं डालना चाहते। वैसे आप तो चिकित्सक हैं, सीधे महामात्य से क्यों नहीं मिल लेते? क्या पता आपका कार्य वही कर दे। अच्छा ये बताइए कि आज इधर कैसे आना हुआ?
0: कोई विशेष बात नहीं थी। हमारे ये मित्र उत्सव के रंग देखना चाहते थे। अच्छा, अब हम चलेंगे श्रेष्ठी।
2: कृपा बनाए रखिए वैद्यराज, फिर कभी पधारे।
0: अवश्य।
3: खूब रोचक है व्यक्तित्व श्रेष्ठ ऋतु सागर का।
0: हाँ, राजधानी में कुशल व्यवसायी होने के सर्वथा अनुकूल, ऊपर से विनम्र भीतर से कुटिल। देखा तुमने किस सफाई से उसने अपनी तरफ से ना कर दी। महादेवी से हमारी भेंट के आयोजन में वो सहायता नहीं करेगा मित्र, कोई अन्य उपाय देखना पड़ेगा। इस समय महामात से मिलने और महादेवी से भेंट की अनुमति पाने का एक ही मार्ग है।
4: वो क्या?
0: देवी वसुंधरा का सहयोग लो। प्रातः तुम देवी वसुंधरा से मिल लो, वो तुम्हें जानती भी हैं। अब चलें, रात्रि विश्राम किया जाए, आज कुछ और तो शेष रहा नहीं।

त्रिलोचन सारी रात सो नहीं पाए। वर्षों पहले का वो भयानक दुस्वप्न बार बार उन्हें झकझोरता रहा, जब जलदस्यु उनके पालियान को घेर कर चारों ओर से टूट पड़े थे, गोदावरी के वक्ष पर खड़क खड़कने लगे थे। मुट्ठी भर यान रक्षक देखते देखते काट डाले गए।

0: पांचों विश्वस्त नाविकों ने सांस रहने तक संघर्ष किया, वे भी जीवित नहीं रहे। दस्युओं ने हिंसक पशुओं की भांति माँ के शरीर पर से सारे आभूषण नोच लिए। एक दस्यु जब दीदी को हाथ पकड़कर खींचने लगा तो माँ सह नहीं सकी और कृपाण लेकर उस पर झपटी। तभी किसी दस्यु ने उनकी पीठ में पीछे से भाला घुसेड़ दिया। एक ने बाल त्रिलोचन को गोदावरी की थरथराती लहरों में उछाल दिया। लहरों के बीच किसी ने उन्हें थामा। वो उन्हीं के यान का एक स्वामी भक्त नाविक था, जो त्रिलोचन की धोखनी सी चलती सांसों के साथ वक्ष से लगाकर डूबता तैरता तट तक ले आया और तट छूते ही निश्चेष्ट हो गया।
1: जीवन की वो अंधेरी रात भयावह, पीड़ाजनक और बार बार आंखों में उतरती हुई, मन मस्तिष्क पर गहरी छापों में पुनर्जीवित सदा सदा।
0: जब एक सुकुमार बालक मृत्यु के तांडव का असहाय एकाकी दर्शक था और नियति क्रूर अट्टहास कर रही थी, नाविक की शव के पास बैठा रात भर रोता रहा। वो शव के अतिरिक्त और कौन

0: प्रणाम देव। कहीं चलना है देव? वाहन तैयार करूं?
1: तुम्हारे स्वामी कब तक उपलब्ध होंगे मित्र?
0: मैं क्या जानूं?
1: देवी वसुंधरा का आवास जानते हो?
0: हाँ देव, यहां से अधिक दूर नहीं है।
1: अपने स्वामी से कहलवा दो कि हम देवी वसुंधरा की ओर गए हैं। चलो भाई।
0: जो आज्ञा।
2: कहो भेषज्ञ, तुम्हारे आश्रम में सब कुशल तो है?
1: महाकाल की कृपा है, आर्य नागदत्त सहित हम सभी कुशल से हैं।
2: कहो फिर, यहाँ आने का क्या हेतु है? मैं तुम्हारा क्या प्रिय कर सकती हूँ?
1: देवी, मुझे राजमहालय में महादेवी से भेंट करने की अनुमति चाहिए। ज्ञात हुआ है कि महामाते की अनुमति के बिना वहाँ कोई पहुँच नहीं सकता है।
2: ठीक ही सुना है तुमने, स्यात ये आवश्यक भी है। महारानी गर्भ से हैं और बहुत सावधानी से वो केवल देवार्चन और जन दर्शन के लिए ही बाहर निकलती हैं, वो भी कठोर अभिरक्षा में। फिर भी मैं प्रयत्न करती हूँ। महामात्य अति व्यस्त रहते हैं, किंतु उन्हें ये तो बताना ही पड़ेगा कि तुम महादेवी से क्यों मिलना चाहते हो।
1: आर्य, वस्तुतः बात यह है कि मैं महादेवी से नहीं, उनकी सेविका वैशिका से भेंट करना चाहता हूँ।
2: पहले क्यों नहीं बताया भेषज्ञ? तुम जलपान करो, मैं सूचना भेजकर वैशिका को यहीं बुलवा लेती हूँ। भेषज्ञ, क्या मुझे ये बताना चाहोगे कि वैशिका से क्यों मिलना चाहते हो? अरे ये क्या, तुम्हारी आंखों में आंसू?
1: क्या कहूं आर्य, जन्म हुआ कांचीपुरम की विश्व विभूत कलाधरी अनुप्रिया देवी के गर्भ से, जिन्हें अपने गृह राज्य से इसलिए निर्वासित होना पड़ा क्योंकि उन्होंने शक्ति और वैभव संपन्न नरेश की उपेक्षा करके एक विपन्न गायक संगीतज्ञ का वरण कर लिया। वो मेरे पिता थे, उन्होंने उस राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में आश्रय लिया। माँ बताती थी कि पिता से मिलने से पहले वो नर्तकी के रूप में एक कठपुतली तुल्य थी। पिता ने उनकी कला में प्राणों का संचार किया। आजीविका के लिए दोनों ने प्रतिष्ठानपुर के निकट नृत्यशाला का निर्माण किया, जो स्वेद और साधना से सिंचित होकर कलाओं का प्रसिद्ध संस्थान बन गया।

0: माँ ने इतना ही बताया कि पिता की अकाल मृत्यु हुई। आर्य, राजा भले ही कितना कलारसिक गुण ग्राहक हो, पर सबसे पहले वो राजा होता है। राजा की आंखों में आंखें डालकर जीवित नहीं रह जा सकता। मां ने नहीं बताया कि मेरे पिता की अकाल मृत्यु कैसे हुई। इसके पश्चात काल रात्रि का वो भीषण भंवर जिसमें सब कुछ टूट गया। एक साक्षी शेष जो मैं अभागा हूं और अकेला।
1: शांत हो जाओ वत्स, शांत हो जाओ, दारुण संस्मरणों से बाहर निकलो।
0: मुझे लगता है कि मेरी दीदी अभी जीवित है कहीं। अरुंधति नाम था उनका। उस यान पर आखिरी झलक देखी थी जब एक दस्यु उनकी बांह पकड़कर खींच रहा था और मां ने उस पर कृपाण से प्रहार किया था। भटक रहा हूं मैं उन्हें खोजता हुआ। कदाचित वैसिका से कोई सूत्र हाथ में आ जाए।
1: ठीक है बेशज्ञ, मैं अश्ववाही सेवक द्वारा वैसिका को संदेश भेजती हूँ, घड़ी भर में लौट आएगा। तब तक तुम आर्य नागदत्त के उस उपवन में भ्रमण करो जिसे मैंने संवार कर वैसा ही रखा है। उधर स्वल्पाहार भी तैयार हो रहा है।
2: संदेशवाहक लौटा और उसने सूचना दी कि महामात्य की अनुमति के बिना अंतेवास तक कोई नहीं जा सकता, यहां तक कि वहां प्रवेश के लिए स्वयं महामात्य को भी सयात अनुमति लेना पड़े।
0: अब
1: इतना दुस्साहस, मुझे महामात्य के घर पहुंचना ही होगा। चलो।
2: महामात्य आलय के प्रवेश द्वार पर देवी वसुंधरा का वाहन फिर रोक दिया गया। कहा गया, प्रवेश की अनुमति नहीं है।
3: रक्षक, अपने अधिपति को तत्काल बुलाओ। सुना नहीं तुमने?
4: देवी, उन्हीं की आज्ञा है कि अगले आदेश तक किसी को प्रवेश की अनुमति न दी जाए।
3: क्यों अनुमति न दी जाए?
4: देवी, मैं क्या जानूं? आज्ञा का पालन कर रहा हूं।
3: हम कहते हैं अपने अधिपति को बुलाओ रक्षक।
4: इस समय मैं ही अधिपति हूँ।
3: तुम जानते हो मैं महामात्य पूर्ण रथ की भावज हूँ।
4: मैं आपका क्रोध किसी भी सीमा तक सह सकता हूँ, किंतु अनुज्ञा के बिना प्रवेश नहीं दे सकता।
3: अवंती में नए आए प्रतीत होते हो, तो हमें लौटना ही होगा, यही ना? यदि कह सको तो अपने स्वामी को बता देना कि वसुंधरा आई थी।
4: ठीक है।
3: चलो त्रिलोचन।

0: सम्मानित नागरिकों, कृपया मार्ग दें। महामहिषि महादेवी पिंगला उत्सव में पधार रही हैं। सावधान, मार्ग दें।
1: महारानी के पीछे सतर्कता पूर्वक खड़ी हुई उस स्त्री को देखो मृकांक। क्या वही वैशिका है?
2: इस ओर मुंह करे तो बताऊं, बहुत समय से देखा नहीं है। देखा भी होगा तो ध्यान नहीं दिया। महादेवी की एक अन्य विश्वस्त सेविका है चंपा, वो भी हो सकती है। ठहरो, मैं पूछकर बताता हूँ।
3: तभी कोलाहल को चीरते हुए मंच से उद्घोषणा होती है।
0: कृपया शांत हो जाएं। महादेवी ने आसन ग्रहण कर लिया है। अब हम उत्सव की संध्या का शुभारंभ करते हैं। पूर्व घोषणा के अनुसार आज लोक गायन और लोक नृत्य का कार्यक्रम है। आज यहाँ प्रसिद्ध लोक गायक बसंत अपनी प्रस्तुतियाँ आपके सामने रखेंगे। वह गायन के साथ साथ बांसुरी और मृदंग के कुशल

0: वादक हैं और उनकी विशेषता ये है कि वो महाराजा द्वारा रचित पदों को लोक भाषा में गाएंगे। तो महानुभाव, लोक गायक वसंत का स्वागत करें।
1: मैं तो अशिक्षित ग्रामीण हूँ, ये तो कालों के काल महाकाल भगवान भूतेश्वर की कृपा है कि आज मुझे गुणी जनों की इस पवित्र नगरी उज्जैनी में अपनी कला प्रदर्शित करने का स्वअवसर मिला है। मेरी बरसों पुरानी साथ थी कि कवियों के कवि महाराज भर्तृहरि के काव्य को अपनी टूटी फूटी भाषा में उनके समक्ष गाऊं। महाराज नहीं तो मेरा सौभाग्य है, स्वयं अवंती की राज लक्ष्मी, महाराज की अर्धांगनी साक्षात देवी स्वरूपा महारानी यहाँ विराजमान है। हम वनवासी उनके चिर सेवक चिर ऋणी हैं। मैं अपने समस्त जनपद का प्रणाम उनके श्री चरणों में निवेदित करता हूं। मैं आपको मृदंग और मुरली सुनाऊंगा, किंतु गुणीजनों, इतनी देर तक स्यात हमारी महिमामयी महादेवी के लिए यहां बैठना श्रम साध्य होगा। अतः प्रथमा महाराज के काव्यांश का रसास्वादन करें। सुर गुरु सेनाधीश सुरन की सेना जाके, शस्त्र हाथ में वज्र स्वर्ग सा दृढ़ गढ़वा के, ऐरावत असवार प्रभु को परम अनुग्रह, ऐसी संपत्ति साज सहित सोहित देवेश ये, सो युद्ध माही लहत पराजय दान बनी सो दारुण, संपत्ति साज जब होए वृथा सब ते अद्भुत काल गति। गुणीजनों, काल की चाल अद्भुत है, कोई नहीं जानता, सो काल के भी महाकाल की शरण में है ये वसंत। दान भोग अरुनाश होत तीन गति द्रव्य की, द्वय का जहां न वास वहां तीसरो अवसी है। साधु साधु।
0: सावधान नागरिकों, महारानी पिंगला अब प्रस्थान कर रही हैं। सभी जन कृपया अपने अपने आसन पर बैठे रहें। लोक कवि वसंत अभी रसिकों के मध्य उपस्थित रहेंगे। कृपया राज महिषी को मार्ग दें।
2: अरे उधर हटो, मारी नहीं जा रही है, हटो हटो।
3: अरे वैशिका को हम देख भी ना पाए,
1: अब क्या प्रयास करते रहना है।
4: नेपथ्य से मृदंग की थाप पूर्ववत गूंजती है।
5: अभी आप महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति का 17वां भाग सुन रहे थे। रूपांतरकार थे प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित।

कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार शीलू अस्थाना, नागदत्त इरफान सौरभ, त्रिलोचन ओबेदुल्ला खां, मृगांक बालेंद्र सिंह, सेवक रामरतन सेन, ऋतुसागर राकेश चैमिनी, वसुंधरा ज्योति केने, रक्षक विकार हुसैन और उद्घोषक आसफा बानू।

परिकल्पना पंडित रामस्वरूप रतौनिया, संयोजक राकेश ढौंडियाल और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन।

आपको याद होगा कि राजा महालय छोड़ देते हैं और पैठार होते हुए चंद्रपुर पहुंचते हैं। चंद्रपुर में वे चारुमित्रा से मिलते हैं, जो उनके काव्य की प्रशंसिका है। चारुमित्रा ही उन्हें भेष बदलकर उज्जैनी वापस लेकर आती है। उज्जैनी

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक कामिनी काय कांतारे की 17वीं कड़वी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य कठोर दंडों का प्रावधान करने और फास्ट ट्रैक अदालत की स्थापना करके लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज जबलपुर में विकास, स्वच्छता और पर्यावरण से जुड़ी कई बड़ी सौगातें देंगे। वे गुरंदी में मत्स्य बाजार का लोकार्पण भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव हरदा में आयोजित अन्नदाताओं की समृद्धि का महाअभियान बलराम कृषि महोत्सव में भी वर्चुअली शामिल होंगे। प्रदेश पुलिस के नशा विरोधी अभियान नशे से दूरी है जरूरी के दूसरे चरण ने 5 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। लंदन स्थित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इन सभी पांच उपलब्धियों को मान्यता दी है। प्रदेश के 10 शासकीय महाविद्यालयों में अत्याधुनिक डिजिटल स्टूडियो स्थापित किए गए हैं। इसके माध्यम से तैयार अध्ययन सामग्री का उपयोग विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षण और गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध कराने में किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रथम जन विश्वास दौरे पर शुक्रवार 7 अगस्त को छिंदवाड़ा में जिला स्तरीय समाधान कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज जनहित शिकायतकर्ताओं से संवाद करेंगे और जिला स्तरीय विकास कार्य और शासकीय योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। प्रदेश में जुलाई में 2 लंबे ब्रेक के बावजूद बारिश का कोटा पूरा हो गया है, लेकिन जून में कम बारिश की वजह से आंकड़ा 13% कम है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिन भारी बारिश की संभावना नहीं है। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। भारत ने जूडो में 2 ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीते। पदक तालिका में भारत 23 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा केंद्र की है।

न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, कुछ काम करो कुछ काम करो। मैं पुनः दोहराती हूँ कि न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, कुछ काम करो कुछ काम करो। श्रोताओं नमस्कार, मैं हूँ आपकी बहन स्मृति और मैं लेकर आई हूँ आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा, जिसमें होगी ढेरों बातें और संगीत। तो बिना देर किए शुरू करते हैं कार्यक्रम महिला सभा। श्रोताओं, हम जिस स्वतंत्र देश में निवास कर रहे हैं, उसे स्वतंत्र करने में हमारे भारतवर्ष की अनेक वीर एवं वीरांगनाओं ने अपना भरपूर योगदान और जीवन दान दिया है, तब कहीं जाकर हमारा देश आजाद हो पाया है। लेकिन कई ऐसी भी वीरांगनाएं हैं जिनकी वीरता को इतिहास में पर्याप्त स्थान नहीं मिला, जिनमें से कुछ हैं मातंगिनी हाजरा, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में 73 वर्ष की आयु में सीने में गोली लगने के बावजूद वंदे मातरम गाते हुए तिरंगे को ऊंचा रखा था। तारा रानी श्रीवास्तव, 1942 में सीवान बिहार में पुलिस थाने में झंडा फहराते समय पति के शहीद हो जाने के बाद भी झंडा फहराती रही। उपा देवी, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में लखनऊ में पीपल के पेड़ के पीछे छिपकर 36 ब्रिटिश सैनिकों को मार गिराया था। रानी गाय दिल्ली, नागालैंड की क्रांतिकारी, जिन्होंने मात्र 13 वर्ष की आयु में

अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छेड़ा था। दुर्गावती देवी, जिन्हें हम भाभी दुर्गावती देवी के नाम से भी जानते हैं, जो भगत सिंह और उनके साथियों की गुप्त रूप से सहायता करने वाली एक निडर क्रांतिकारी थी। असगरी बेगम 1811 से लेकर 1857 के बीच इन्होंने उत्तर प्रदेश के थाना भवन मुजफ्फरनगर की एक निडर स्वतंत्रता सेनानी रही। सन 1857 में उन्होंने महिलाओं का एक सशस्त्र दस्तान तैयार किया और अंग्रेजों के खिलाफ जोरदार मुकाबला किया, जिन्हें अंग्रेजों ने बंदी बनाकर जिंदा जला दिया था। इसी कड़ी में शामिल है एक गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी महिला अस्मतुल्लाह खान। श्रोताओं, अस्मतुल्लाह खान भारत की स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी उन महिलाओं में मानी जाती हैं जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। उनके जीवन के बारे में और संघर्ष को इतिहास में बहुत ही कम जगह मिली है। वो हमेशा देशभक्ति एवं समाज सेवा के कार्यों से जुड़ी रहीं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महिलाओं को भी आगे आने को प्रेरित किया। उनका उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासक से मुक्त कराना और लोगों में राष्ट्रीय चेतना जगाना था। अगर बात की जाए उनके इस योगदान के महत्व की, तो अस्मतुल्लाह खान सहित ऐसी अनेकों महिला हैं जिनका योगदान इतिहास में यथाउचित नहीं हुआ, फिर भी उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके साहस और देश प्रेम से आज भी लोगों को प्रेरणा मिलती है। श्रोताओं, हमने आज जाना कि किस प्रकार हमारी भारतीय बहनों ने एकजुट होकर आपस में कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों को लोहे के चने चबाए और इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम दर्ज किया है। हमारे लिए इससे सीखने वाली बात यह है कि हर युग में, हर समय में नारी शक्ति ने अपनी बुद्धिमत्ता और वीरता का प्रमाण दिया है। हमें उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। आज तो बालिका शिक्षा पर भी किसी प्रकार की रोक नहीं है, तो हम सब और अधिक सूझबूझ और समझदारी से देश हित में कार्य करें, जिससे हमारा और हमारे देश समाज का कल्याण हो। श्रोताओं, हमारी बातें अभी और होंगी, तब तक सुने यह देशभक्ति से ओतप्रोत गीत, जिसे आवाज दी है आनंद राज आनंद ने।

0: तो श्रोताओं, अभी हमने सुना यह गीत जिसे सुरों से सजाया था आनंदराज आनंद ने। श्रोताओं, आपको बता दें कि हम आज यानी 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक विश्व शिशु स्तनपान सप्ताह मना रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की सलाह है कि जन्म के बाद पहले 6 महीने तक केवल माँ का दूध पिलाया जाए। इसके बाद 2 वर्ष तक पूरक पोषण आहार के साथ माँ का दूध पिलाएं। तो बहनों, शिशु स्तनपान के और क्या क्या फायदे हैं और यह क्यों है जरूरी, इसकी बृहद जानकारी दे रही हैं शिक्षिका श्रीमती प्रतिभा सिंह जी। तो आइए जानते हैं शिशु स्तनपान की और अधिक जानकारी।
1: प्रतिज्ञा जी नमस्कार।
2: जी नमस्कार।
1: कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी धन्यवाद।
1: प्रतिज्ञा जी, इस समय 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक शिशु स्तनपान सप्ताह मना रहे हैं, तो आप आज हमारे श्रोता बहनों को स्तनपान के फायदे और ये क्यों जरूरी है जरा बतलाइए।
2: सबसे पहले तो हम माताओं बहनों को ये बताना चाहेंगे कि बच्चे के जन्म के तुरंत बाद 1 घंटे के अंदर यदि माँ बच्चे को स्तनपान कराती है तो उससे माँ को भी फायदा होता है और बच्चे को भी फायदा होता है। बच्चा मानसिक रूप से मजबूत होता है, रोगों से लड़ने की उसके पास क्षमता बढ़ती है, प्रतिरोधक क्षमता, और माँ के जो ब्लीडिंग होती है उसमें उसको सहायता मिलती है, और माँ के जो कैंसर जैसी भयानक बीमारी से बचने के फायदे हैं यदि माँ अपने बच्चे को सही समय पर स्तनपान कराती है तो। एक चीज, दूसरी चीज और उसमें क्या है, एक चीज और ध्यान देने की बात है कि बच्चे को जितना ज्यादा माँ अपना स्तनपान कराती है बच्चा उतना फिजिकल मजबूत होता है, मानसिक रूप से बहुत तेज दिमाग का होता है और उसकी भविष्य में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। वो क्या करता है, वो बच्चा जो माँ का जितना ज्यादा स्तनपान करेगा वो बच्चा बीमार कम होगा, उसके पास शुगर जैसी बीमारी कभी नहीं होगी। और भी कई दिक्कतें हैं जो बीमारियां होती हैं जो बच्चों को देखने में मिलती है, कम उम्र में शिशु अवस्था में बच्चों को बीमारियां आने लगती हैं तो वो बाहर का दूध पिलाने से होता है और माँ का स्तनपान कराने से बच्चे को बीमारी बहुत कम आती है और माँ भी स्वस्थ रहती है, मानसिक रूप से बच्चा बहुत तेज होता है।
1: बिल्कुल प्रतिज्ञा जी, आपका कहने का तात्पर्य है कि जो माँ का दूध होता है ये बच्चे के लिए एक बहुत शक्तिवर्धक,
2: अमृत पान, उसे अमृत पान कहते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि माँ का स्तनपान बच्चों के लिए अमृत साबित होता है, एक वरदान बनता है।

0: कई माताएं ऊपर का दूध पिलाने लगती हैं, तुरंत से कहती हैं दूध नहीं निकल रहा है, तो ये नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जहां तक हमारा सुझाव है माताओं बहनों को कि बच्चों को हमेशा अपना स्तनपान कराएं, जन्म के एक घंटे के पहले ही अपना स्तनपान कराएं, तो माँ भी स्वस्थ रहेंगी और बच्चा तो पूरी तरह से स्वस्थ ही रहेगा।
1: बिल्कुल, हम जानना चाहेंगे कि माँ का दूध, केवल माँ का दूध कब तक पिलाना चाहिए?
0: 6 महीने तक। एक प्राकृतिक तौर पे जो माँ के पास पोषण आहार बच्चों को देने के लिए रहता है वो 6 महीने तक। 6 महीने के बाद फिर बच्चों को बाहर की थोड़ी सी, जैसे दाल का पानी है, पिला सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके, दो दो चम्मच, दो दो तीन तीन घंटे के अंतराल में बाहर की चीजें पिलाने लगे, देखने लगे कि बच्चे पचा पाता है कि नहीं पचा पाता। और बच्चे के जन्म के बाद माँ का तो रोल जितना रहता है उससे ज्यादा नानी दादी का भी रोल रहता है। यदि बच्चा दादी के यहाँ पल रहा है तो बच्चा माँ का दूध पी के सही समय से पचा रहा है कि नहीं, तो पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए, फिर दादी के यहाँ बच्चा है तो दादी का रोल रहता है कि वो जन्म घुट्टी वगैरह जो हर्रा बहेर बनाती थी, छुआड़ा वगैरह, जिसे आप जी अच्छे से जानती होंगी,
1: बिल्कुल बिल्कुल, जिसे हम जन्म घुट्टी,
0: उसे जन्म घुट्टी, बाल जन्म घुट्टी के नाम से आता ही है वो, तो उसे माए लोग, माताएं लोग तो जो बच्चे जन्म देती हैं वो नहीं, उनकी दादी, बच्चे की जो दादी है नानी, इनका अहम रोल रहता है अपने नाती पोते को स्वस्थ रखने में।
1: बिल्कुल,
0: ये जहाँ तक घर घर ये बात सबको पता होगी, पर उसे बाल जन्म घुट्टी के नाम से ही जाना जाता है।
1: ये जो बाल जन्म घुट्टी है ये भी बच्चे के लिए बहुत ही आवश्यक मानी जाती
0: है। बहुत पाचन क्षमता बढ़ती है उससे, बच्चे का दूध तुरंत पाचन शक्ति में बदल जाता है और उसकी प्रतिरोधक क्षमता और बढ़ती है। आगे चल के बच्चा दिमाग से बहुत तेज होगा, मानसिक तौर पे इतना मजबूत होगा, फिजिकल मजबूत होगा, कहना चाहिए बहुत, मतलब पूरी तरह से बच्चा स्वस्थ रहेगा। वो थोड़ी मोड़ी बीमारियां जैसे हल्की बुखार है, उल्टी है, तो बहुत ज्यादा असर नहीं करेंगी, एक बार में ठीक हो जाएगा, ऐसा देखा गया है, ऐसा बच्चों के साथ होता है। यदि सही ढंग से बच्चों की देखभाल की जाए तो फिर ये बीमारियों पे कंट्रोल किया जा सकता है।
1: प्रतिज्ञा जी, कहा जाता है कि जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, तब माँ और बच्चे में एक अनोखा लगाव पैदा होता है, भावनात्मक जुड़ाव होता है।
0: आपने बहुत सही सवाल किया, बहुत सही सवाल किया। एक माँ और बच्चे का जिस तरह एक पेड़ और मिट्टी की जड़ से जुड़ी रहती है, जब तक पेड़ एक मिट्टी से जुड़ा रहता है तभी तक वो हरा भरा रहता है और बच्चा तभी स्वस्थ रहेगा जब तक वो माँ का स्तनपान करेगा। वो एक प्राकृतिक लगाव, मातृत्व बढ़ता है, माँ का मातृत्व बढ़ता है और बालक का जो है माँ के प्रति स्नेह, अटूट स्नेह होता है। देखिए, बच्चा जब माँ से जुड़ा रहेगा तो एक महीने में बच्चा माँ को पहचानने लगता है, माँ की तरफ देख के बहुत सारे ऐसे बाल कीड़ाएं करता है जिसे आपको आभास हो जाता है कि ये बच्चा मुझे पहचान रहा है।
1: बिल्कुल,
0: तो इस बात को तो आप भी समझ रही होंगी, हम भी समझ रहे हैं, जो हमारी श्रोता बहने हैं वो भी बहुत अच्छे से इस चीज का अनुभव किया जाता है जी।
1: तो आपने बहुत अच्छी बात कही। और प्रतिज्ञा जी, आखिरी में आप हमारी श्रोता बहनों को स्तनपान के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगी आज का जो परिवेश है, मेरे श्रोता बहने यदि सुन रही हैं मेरी बात को, जहां तक मेरी बात जा रही है, तो मेरी सभी श्रोता बहनों से मेरा निवेदन है, अनुरोध है कि अपने बच्चे को स्वस्थ रखना है तो ज्यादा से ज्यादा समय, मतलब 6 महीने तक तो पूरी तरह से बच्चे की देखभाल में अपना स्तनपान कराएं, जो सबसे अहम योगदान रहेगा बच्चे को स्वस्थ रखने में। और इसके अलावा बच्चों को 6 महीने का समय माँ को वैसे भी अब शासन प्रशासन छुट्टियां भी दे रहा है, मेंटेलिटी दे रहा है, आपको छुट्टियां दे रहा है बच्चों को, उस छुट्टियों के दौरान पूरा समय आप बच्चे में लगाएं, ताकि 6 महीने तक यदि बच्चा स्तनपान आपका कर लेगा, आपके पास रहेगा, तो वो भविष्य में बच्चा भी स्वस्थ रहेगा और आपको भी बहुत अच्छा अनुभव होगा।
1: यानी कि बच्चे की भविष्य की यहाँ से नींव रखी जाती है, जिसे हमें मजबूत बनाना है।
0: जी बिल्कुल।
1: प्रतिज्ञा जी, आपने अपना बहुमूल्य समय, चूंकि आप शिक्षिका हैं, घर भी देख रही हैं, अपना विद्यालय भी देख रही हैं, इसके साथ साथ आपने हमारे कार्यक्रम के लिए बहुमूल्य समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।
2: तो श्रोताओं, अभी हमने सुनी यह भेंटवार्ता जिसमें शिक्षिका प्रतिभा सिंह जी ने बताया कि शिशु स्तनपान से क्या क्या फायदे हैं और यह किस तरह से माँ और बच्चे के बीच भावनात्मक जुड़ाव पैदा करता है। और इसी के साथ सुने यह गीत जिसे आवाज दी है उदित नारायण, प्रीति उत्तम और साथियों ने। श्रोताओं

जहां बात चल रही है महिलाओं के शौर्य और उनकी वीरता की, वही महिलाएं कला जगत की मलिका भी मानी जाती हैं, जो अपनी कला और अभिनय से लोगों के दिलों में राज करती हैं, जीते जी और मरने के बाद भी। हमारी भारतीय अभिनेत्रियां हमारी कला, संस्कृति और सिनेमा की पहचान हैं। वे अपने अभिनय से, अपनी प्रतिभा और मेहनत से देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करती हैं और समाज में भी हम महिलाओं को सकारात्मक तथा संघर्षशील बनने की प्रेरणा देती हैं। कई अभिनेत्रियां फिल्मों के साथ साथ शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कार्यों में भी महत्वपूर्ण योगदान देती आई हैं, जिनकी सफलता लाखों लोगों को, विशेषकर महिलाओं को, अपने सपने पूरा करने की प्रेरणा देती है। इन्हीं अभिनेत्रियों के बीच आज हम बात करते हैं अभिनेत्री मीना कुमारी के बारे में, जिनका सादगी से भरा अभिनय लोगों को आकर्षित करता था। श्रोताओं, मीना कुमारी का जन्म 1 अगस्त 1933 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। उनका वास्तविक नाम महजबी बानो था। वो हिंदी सिनेमा की महान अभिनेत्रियों में गिनी जाती थी और अपनी भावपूर्ण अभिनय शैली के कारण उन्हें ट्रेजेडी क्वीन भी कहा जाता है। मीना कुमारी का जीवन संघर्ष, सफलता और कठिनाइयों से भरा हुआ था। मीना कुमारी ने कम उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। बचपन का अधिकांश समय खेल कूद या पढ़ाई के बजाय फिल्म के सेट पर बीतता था। उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर हिंदी फिल्म उद्योग की उस समय की सबसे सफल अभिनेत्रियों में शामिल थी। उन्होंने बैजू बावरा, परिणीता, साहब बीबी और गुलाम और पाकीजा जैसी यादगार फिल्मों में काम किया। अगर बात करें उनके व्यक्तिगत जीवन की, तो उन्होंने निर्देशक कमल अमरोही से विवाह किया, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच तनाव बढ़ा और वह दोनों अलग अलग रहने लगे। अकेलापन की वजह से धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा और वे गंभीर रूप से बीमार पड़ने लगी और 31 मार्च 1972 को महज 38 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। मीना कुमारी की फिल्म पाकीजा उनकी मृत्यु के कुछ दिन, लगभग 50 से 55 दिन पहले ही सिनेमा में धूम मचाई थी। हालांकि मीना कुमारी की असमय मृत्यु से लोगों का भावनात्मक जुड़ाव और अधिक हो गया था। पाकीजा आज भी हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी क्लासिकल फिल्मों में गिनी जाती है, जो मीना कुमारी के कैरियर की सबसे ज्यादा यादगार फिल्मों में एक है। तो बहनों, इसी के साथ सुने मीना कुमारी पर फिल्माया गया यह गीत, जिसे सुरों से सजाया है लता मंगेशकर ने।

श्रोताओं, बरसात का मौसम चल रहा है, ऐसे में हमें अपने भोजन में बहुत ही संतुलित आहार शामिल करना चाहिए, क्योंकि बरसात के मौसम में हमारा पाचन तंत्र सबसे कमजोर होता है, जिससे संक्रमण के साथ साथ पाचन समस्या होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए इस मौसम में खान पान का विशेष ध्यान देना चाहिए। आइए जानते हैं, खाने पीने के मामले में इस मौसम में थोड़ी सावधानी रख लें तो हमारा स्वास्थ्य एकदम सही रहेगा। तो खुद को स्वस्थ रखने के लिए जानते हैं कुछ उपाय, जैसे ताजा और गर्म भोजन करें, बासी भोजन करने से बचें, पानी को फिल्टर किया हुआ या उबाल कर पिएं, हल्का भोजन हरी सब्जियां और मौसमी फल का सेवन करें, दही, कटे हुए फल या सड़क किनारे मिलने वाले खाद्य पदार्थ का सेवन कम से कम करें, ज्यादा तली भुनी या मसालेदार चीजें कम खाएं, क्योंकि ये पाचन करने में समय ज्यादा लेती हैं। फल सब्जियों को अच्छी तरह धोकर ही उपयोग में लाएं। तो श्रोताओं, ऐसी सावधानी रखकर हम बरसात के मौसम का भरपूर आनंद उठाएंगे। तो श्रोताओं, इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक दीजिए अपनी बहन स्मृति को इजाजत। स्वीकारे, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम, प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा केंद्र की थी। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है एक अंतराल का।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
5: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना।
2: घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ
2: आकाशवाणी।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम। आज आप सुनेंगे आकांक्षा पांडे के गाए कुछ लोकगीत, प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा केंद्र की है।

इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आज आप सुन रहे थे आकांक्षा पांडे के गाए कुछ लोकगीत, प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा केंद्र की थी।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए प्रस्तुत है कनकलता रवि के प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा केंद्र की है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज कलाकार हैं कनकलता रवि।

इस रचना के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आज आप सुन रहे थे कनक लता रवि के गाए कुछ गीत और भजन। प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। अब समय है एक अंतराल का।

0: जसपाल सिंह के गाए फिल्म श्याम तेरे कितने नाम के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आंध्र प्रदेश में विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा, बीते 12 वर्षों में देश के एविएशन सेक्टर ने असाधारण प्रगति की है। 2014 तक देश में केवल 74 एयरपोर्ट ऑपरेशनल थे, आज ये संख्या 166 है।
2: एनडीए सरकार में आज छोटे शहर के साधारण लोग भी फ्लाइट से आ जा रहे हैं। 12 इयर्स में सिर्फ एयरपोर्ट की संख्या ही नहीं बढ़ी है, हमारी उड़ान योजना के कारण आज गरीब परिवार के लोगों को भी जहाज में बैठने का अवसर मिल रहा है। इस योजना ने गरीब से गरीब को अपना सपना पूरा करने में मदद की। कुछ दिन पहले ही सरकार ने उड़ान योजना के दूसरे फेज की शुरुआत की। इस पर भी 29,000 करोड़ रुपीज खर्च किए जाएंगे।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में 362 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार अमृत 1.0 सीवेज परियोजना और कठौंदा, ललपुर और तेवर में बने 3 बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री डुमना नेचर पार्क में कैच द रेन अभियान के अंतर्गत 11 लाख पौधारोपण अभियान की शुरुआत करेंगे, जिसके तहत उमरिया, डुमना और कठौंदा में मियावा की पद्धति से 5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इसके अलावा उमरिया में 5 एकड़ के पौध पहचान पार्क, डुमना में नवग्रह वाटिका और जल संरक्षण के लिए कैच द रेन अभियान के तहत सोक पिट्स बनाने का भी शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री कार्यक्रम के दौरान पीएम स्वनिधि के 500 हितग्राहियों को डिजिटल कार्ड प्रदान करेंगे। इसके साथ ही तिलवारा स्थित नवनिर्मित थाना और पुलिस आवासों का लोकार्पण भी करेंगे। ग्वालियर में सावन मेले का औपचारिक शुभारंभ आज शाम 5 बजे श्रीमंत माधवराव सिंधिया व्यापार मेला परिसर में किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर होंगे। व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा आयोजित इस सावन मेले में विभिन्न प्रकार के आकर्षक झूले, मनोरंजन के लिए आधुनिक साधन, स्वादिष्ट व्यंजनों के फूड स्टॉल और खरीदारी के लिए विविध प्रकार की दुकानें लगाई गई हैं, जिसमें सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए मनोरंजन और खरीदारी का विशेष आकर्षण उपलब्ध है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहले जन विश्वास दौरे पर 7 अगस्त को छिंदवाड़ा में आयोजित जिला स्तरीय समाधान कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर दर्ज चिन्हित शिकायतकर्ताओं से व्यक्तिगत रूप से संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं के निराकरण की समीक्षा करेंगे। प्रदेश भर में 8 जनवरी 2027 तक चलने वाले मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान का उद्देश्य शासन और नागरिकों के बीच विश्वास को सुदृढ़ करना, शिकायतों के त्वरित और प्रभावी निराकरण को सुनिश्चित करना और जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा करना है। इस दौरान मुख्यमंत्री, मंत्रीगण और वरिष्ठ अधिकारी नियमित मैदानी भ्रमण कर

0: आमजन से संवाद करेंगे। तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत लगभग 200 रुपए कम कर दी है। कटौती के बाद दिल्ली में वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमत 2738 रुपए हो गई है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अनुसार वाणिज्यिक सिलेंडर की नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। इस फैसले से रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल और खाने पीने के कारोबार से जुड़े लोगों को राहत मिलेगी। बात मौसम की। प्रदेश में पिछले 48 घंटों के दौरान मालवा, निमाड़ क्षेत्र, विशेषकर इंदौर और उज्जैन संभाग में कई स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश दर्ज की गई। खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, रतलाम और धार समेत पश्चिमी जिलों में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित रहा। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में सक्रिय मानसूनी सिस्टम अब कमजोर पड़ रहे हैं। ऐसे में अगले 4 दिनों तक कहीं भी भारी बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि आगामी दिनों में मानसून फिर रफ्तार पकड़ सकता है और बारिश की कमी काफी हद तक पूरी होने की उम्मीद है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में समग्र शिक्षा और शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अभियान के अंतर्गत कल एक दिवसीय महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आगरमालवा जिले के ग्राम तनौड़िया स्थित एक बगिया मां के नाम का कलेक्टर ने कल निरीक्षण करते हुए योजना के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति की जानकारी ली और युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार, इनोवेशन और अप्रेंटिसशिप के अवसर एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए इंदौर जिला रोजगार कार्यालय द्वारा 3 अगस्त को एक दिवसीय युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही, अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10
1: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आधारभूत ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र के लिए 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले में कल हुए आतंकी हमले में घायल दूसरे मजदूर की भी मौत। 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 200 रुपए कम हुई। उड़ीसा में महानदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से बाढ़ की स्थिति गंभीर और ताइपे ओपन बैडमिंटन में तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है और केंद्र सरकार व्यापक अवसंरचना और औद्योगिक विकास के माध्यम से स्वर्ण आधार और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने भोगपुरम में आज अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हवाई अड्डे, सड़क और ऊर्जा अवसंरचना सहित लगभग 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं।
2: आज यहाँ करीब 18,000 करोड़ रुपीस की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र की स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने भारत में विमानन क्षेत्र के तेजी से होते विस्तार का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश में परिचालित हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर 166 हो गई है और उड़ान योजना ने आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को किफायती बना दिया है।
2: एक समय था जब हवाई उड़ानें सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित थी। एनडीए सरकार में आज छोटे शहर के साधारण लोग भी फ्लाइट से आ जा रहे हैं। 12 इयर्स में सिर्फ एयरपोर्ट की संख्या ही नहीं बढ़ी है, हमारी उड़ान योजना के कारण आज गरीब परिवार के लोगों को भी जहाज में बैठने का अवसर मिल रहा है। इस योजना ने गरीब से गरीब को अपना सपना पूरा करने में मदद की। कुछ दिन पहले ही सरकार ने उड़ान योजना के दूसरे फेज की शुरुआत की। इस पर भी 29,000 करोड़ रुपीज खर्च किए जाएंगे।
1: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने इस हवाई अड्डे के उद्घाटन को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के विकास में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरू पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।
3: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंदा के विचार और

0: सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फीथिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम के ओर से यहाँ शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक LPG सिलेंडर की कीमतें लगभग 200 रुपए कम कर दी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस फैसले से रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल और खाने पीने के कारोबार से जुड़े लोगों को राहत मिलेगी।
2: वाणिज्यिक LPG सिलेंडर की कीमतें कम होने के बाद दिल्ली में वाणिज्यिक सिलेंडर का मूल्य अब 2738 रुपए हो गया है। वहीं कोलकाता में अब वाणिज्यिक सिलेंडर 2872 रुपए 50 पैसे, मुंबई में 2691 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 2906 रुपए में मिलेगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अनुसार वाणिज्यिक सिलेंडर की नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: वस्तु और सेवा कर GST संग्रह में पिछले महीने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है और ये 2,11,205 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये जुलाई 2025 में 1,83,065 करोड़ रुपए के मुकाबले 15.4% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सकल घरेलू GST राजस्व 1,44,695 करोड़ रुपए रहा। ये एक वर्ष पहले की तुलना में 10.1% अधिक है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के केलम में आतंकी हमले में घायल दूसरे श्रमिक की आज सवेरे मृत्यु हो गई। इससे मृतकों की संख्या 2 हो गई है। एक रिपोर्ट।
3: वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि घायल श्रमिक की मौत श्रीनगर के एक अस्पताल में चिकित्सा के दौरान हुई। कल शाम ईंट भट्टे पर काम कर रहे इन दो श्रमिकों पर अज्ञात आतंकवादियों ने गोलीबारी की थी। घटना के तुरंत बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए तलाश अभियान जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मजदूरों की हत्या की कड़ी निंदा की और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। कुलगाम जिला प्रशासन की ओर से 6-6 लाख रुपए की तत्काल सहायता भी दी जाएगी। श्रीनगर से इश्फाक शाह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: तेलंगाना में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के लिए निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम में संशोधन किया है। इसमें बूथ स्तर के अधिकारी 10 अगस्त तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा अब 17 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 17 अगस्त से 16 सितंबर तक जारी रहेगी, जबकि उनका निपटान 15 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 19 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। उड़ीसा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तिथि निर्वाचन आयोग ने बढ़ाकर इस महीने की 19 तारीख कर दी है। दावों और आपत्तियों के निपटान की समय सीमा भी 17 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। आयोग ने बताया कि उड़ीसा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर इस समय सारणी में संशोधन किया गया है। दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल आज से शुरू हो गया है। पात्र महिलाएं आधिकारिक वेबसाइट dly.delhi.gov.in पर पंजीकरण कर सकती हैं। दिल्ली सरकार ने पिछले महीने दिल्ली मंत्रिमंडल की इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी इसका ऐलान किया था। वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 5,110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस के नशा मुक्त अभियान नशे से दूरी है जरूरी के दूसरे चरण ने 5 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। लंदन स्थित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इन सभी 5 उपलब्धियों को मान्यता दी है। इस अभियान ने कई विश्व रिकॉर्ड भी बनाए हैं। इंदौर पुलिस आयुक्त कार्यालय ने 17 लाख से अधिक लोगों को नशा विरोधी ई शपथ दिलाई और 8,534 प्रतिभागियों की मानव श्रृंखला बनाई। रेलवे ने पूर्वी मध्य रेलवे के 29 किलोमीटर लंबे दानापुर से फतोहा खंड पर 976 करोड़ रुपए की लागत से एक से अधिक लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस परियोजना से पटना रेल कॉरिडोर के सबसे व्यस्त खंडों में से एक पर भीड़ कम होगी और यात्री और माल ढुलाई सेवाओं में वृद्धि संभव होगी। मंत्रालय ने बताया कि परिचालन के पहले वर्ष में इस परियोजना से प्रतिदिन 22 अतिरिक्त यात्री ट्रेन और 18 अतिरिक्त मालगाड़ी चल सकेंगी। इससे प्रति वर्ष 52 लाख टन अतिरिक्त माल ढुलाई की क्षमता भी बढ़ेगी। आयकर विभाग ने

0: बताया है कि वर्ष 2026-27 के लिए 31 जुलाई 2026 तक 59 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए। सोशल मीडिया पोस्ट में करदाताओं को धन्यवाद देते हुए विभाग ने कहा कि उनका विश्वास और समय पर अनुपालन ही भारत के विकास को गति देने वाली ऊर्जा प्रदान करता है। वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने आज नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। गोवा स्थित नौसेना अकादमी के 38वें एकीकृत कैडेट पाठ्यक्रम के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल एएन प्रमोद जुलाई 1990 में नौसेना में कमीशन हुए थे। 36 वर्ष से अधिक के अपने विशिष्ट करियर में कई पदों पर उन्होंने कार्य किया। दिसंबर 2023 से जुलाई 2026 के बीच नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में वे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नौसेना की योजना तैयारी और तत्परता में सक्रिय रूप से शामिल रहे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, इससे राज्य में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने राज्य में अधिक बारिश का अनुमान व्यक्त किया है।
1: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है क्योंकि महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे कटक, पुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रापड़ा और खुर्दा जिलों के निचले इलाकों में फिर से बाढ़ आने की खतरा पैदा हो गया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज भद्रक, बालेश्वर, जाजपुर और केंवझर जैसे बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया ताकि स्थिति का जायजा लिया जा सके और राहत कार्यों की समीक्षा की जा सके। भद्रक में कई गाँव बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं, सड़कों का संपर्क टूट गया है और संचार व्यवस्था बुरी तरह बाधित है, जिससे हजारों लोग भोजन, पीने का पानी और जरूरी सामान के लिए जूझ रहे हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, केरलम और माहे में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, विदर्भ और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले दो दिन बिजली गिरने की स्थिति बनी रहेगी। राजधानी दिल्ली में आज शाम कई स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: ताइपे ओपन बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा ने आज सेमीफाइनल में शानदार जीत के साथ महिला सिंगल्स के फाइनल में अपनी जगह पक्की की। 17 वर्षीय तन्वी ने चीनी ताइपे की हुआंग यू हुसून को सीधे गेम में हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई है। फाइनल में अब तन्वी का मुकाबला वियतनाम की थुई लिन्ह गुएन से होगा। उन्नति हुडा सेमीफाइनल में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। उधर ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत के पास कई पदक जीतने के मौके हैं। बॉक्सिंग में ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहन की अगुवाई में 10 मुक्केबाज फाइनल मुकाबले खेलेंगे। अस्मिता डे और हर्ष सिंह के कल जूडो में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने के बाद जूडो खिलाड़ी भी मैदान में उतरेंगे। लॉन बाउल्स में नवनीत सिंह और दिनेश कुमार की पुरुष डबल्स जोड़ी इंग्लैंड के खिलाफ महत्वपूर्ण मैच खेलेगी, विजेता सेमीफाइनल में पहुंचेगा। खिलाड़ी पैरा एथलेटिक्स और ट्रैक साइकिलिंग में भी पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे।
0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति बढ़ती जा रही है। पिछले चार दिनों में पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के सदस्य सरदार उमर नजीर कश्मीरी ने आरोप लगाया कि इन मौतों के लिए सुरक्षा बल जिम्मेदार हैं। एक और बयान में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कहा कि मुजफ्फराबाद इलाके में देर रात तक विरोध प्रदर्शन जारी रहे। लोग अपने बुनियादी अधिकारों की सुरक्षा और स्थानीय अधिकारों द्वारा गए वायदों को पूरा करने की मांग को लेकर सड़कों पर डटे रहे। इस बीच अमेरिका स्थित मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने निहत्ते प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा बल प्रयोग की निंदा की है। संगठन ने पाकिस्तानी अधिकारियों से कार्रवाई रोकने, मोबाइल संचार सेवाएं बहाल करने और बल के किसी भी गैर कानूनी इस्तेमाल के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच सीमा पार व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। दोनों देशों के बीच व्यापार 6 वर्षों से रुका हुआ था, इससे 6 साल से ज्यादा समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। भारत और रवांडा ने आपसी व्यापार को बढ़ाने के अपने संकल्प को दोहराया है। नई दिल्ली में हुई भारत रवांडा संयुक्त व्यापार समिति की बैठक के पहले चरण में दोनों पक्षों ने वस्तुओं और सेवाओं के आपसी व्यापार की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष आपसी व्यापार के दायरे को विविधतापूर्ण बनाने, व्यापारिक संबंधों को आसान बनाने और बाजार तक पहुंच से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने से जुड़ी

पहलों पर सहमत हुए। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने रात भर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। इसमें 9 लोग मारे गए और 22 घायल हो गए। ये हमला पूरे यूक्रेन में रूस के बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले के ठीक 2 दिन बाद हुआ है, जिसमें 10 नागरिकों की मौत हो गई थी और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने कहा कि देश सेवा के प्रति समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोजपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आधारभूत ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र के लिए 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में कल हुए आतंकी हमले में घायल दूसरे मजदूर की मौत। 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी लगभग 200 से कम हुई। ओडिशा में महानदी के जलस्तर में लगातार से बाढ़ की स्थिति गंभीर। और तन्वी शर्मा इसके साथ ही नमस्कार।

श्रोताओं कार्यक्रम में हम करते हैं पत्रों के माध्यम से को पहला गीत आपको सुनाया उसके पहले हमारे के कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी भोपाल श्यामला हिल्स भोपाल 462 है कार्यक्रम आप द्वारा निदेशक

राजेश और श्रीमती शीतल राजेश की, गांधी चौक से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतिक बिरक और मीका बिरक की, से परमानंद आर्य, पंकज मोद, रोहित और मोहित, प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले अपनी पसंद भेजते हैं गौतम नगर जिला नांदेड़ से। सुनना पसंद किया है बेताब फिल्म का गीत, लता मंगेशकर शब्बीर कुमार का गाया, आनंद बख्शी ने गीत लिखा है और धुन बनाई है आर डी बर्मन ने।

अगला अनुरोध शामिल कर रहे हैं बनियापारा धमतरी से रामचंद्र माखीजा का, फिर श्रीमती सविता, बेबी स्वाति माखीजा, बेबी पूजा, छुटकी, शरद कुमार ढोंडवानी और पूरा माखीजा परिवार। कंवर कॉलोनी बढ़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनूरा श्रीमाली की, जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली अपने अनुरोध के साथ लिखते हैं दौलत बाग मुरादाबाद से। जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान रेलवे कॉलोनी से लिखते हैं। दुबिहा नेवेदा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय, नवनीत राय, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अरुण कुमार राय और हैप्पी राय, ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, श्री डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमारी संचित वायल, मौताला से कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, करड़ा सिरोड से कुमारी सानवी और कुमार सर्वद्र देशमुख। बरसात की एक रात फिल्म का गीत है, लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया, आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत है, स्वर बत किया आर डी बर्मन ने।

अगली पसंद का गीत फिल्म बरसात से है, कुमार सानू और अलका याग्निक ने इसे गाया है। नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में समीर का लिखा यह गीत सुनना पसंद किया है। तालुका बुरहानपुर ग्राम मोहद मध्य प्रदेश से भैया तड़वी, रीना तड़वी, सनी बाबूर, रोजूबाई तड़वी, परू, मुबारक बारेकर, मनोहर ठाकुर और तैमूर बारेकर के मुकाम पोस्ट भोकरी महाराष्ट्र से अरसद तड़वी, आरिश अरसलान, यूनुस तड़वी की, सदाबहार रेडियो श्रोता संघ मोहद जिला बुरहानपुर से मुशर्रफ खान तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक, परवेज, बिटिया रोजमीन, तैमूर तड़वी और तड़वी परिवार के सदस्य, सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा सालिया, शुएब खान, पोतरा मुस्तबा खान, रऊफ भाई, शाहिद भाई, गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर की, मोहम्मद हलवाईयान, शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजिदा रानी और हिना कौसर। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास माणिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और चर डोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू की।

गर्म मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और बेबी आरजू जाजोरिया की। छबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो की। शत्रुघ्न धाड़े, वाल्मीक धाड़े, निनाजी धाड़े, स्वप्निल धाड़े, अजय खिरोड़कर अपनी पसंद भेजते हैं मलकापुर महाराष्ट्र से। सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार और नसीम बानो की ये पसंद है। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका रूबिन राणा की है। और ये पत्र है देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री की। सुनना पसंद किया है गुप्त फिल्म का गीत, अलका याग्निक और कुमार सानू का गाया हुआ है। विजू शाह के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी ने गीत लिखा।

0: अलका याग्निक और कुमार सानू के गाए फिल्म गुप्त के इस गीत के साथ ही आपके फरमाइश कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि उड़ान योजना ने आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को किफायती बना दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज जबलपुर में 362 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार अमृत 1.0 सीवेज परियोजना का लोकार्पण करेंगे। प्रदेश भर में 7 अगस्त से 8 जनवरी 2027 तक मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान चलाया जाएगा। अभियान का उद्देश्य

0: वाइस एडमिरल A.N. प्रमोद ने आज नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। दिसंबर 2023 से जुलाई 2026 के बीच नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में वे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नौसेना की योजना तैयारी और परिचालन तत्परता में सक्रिय रूप से शामिल रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कई आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक LPG सिलेंडर की कीमत लगभग 200 रुपये कम कर दी है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। मीडियम वेब पर सभा समापन के पूर्व बता दें आपको संध्याकालीन सभा के मुख्य आकर्षण। शाम 5:02 पर युवाओं का कार्यक्रम युववाणी आप सुनेंगे। प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा केंद्र की होगी। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा शाम 5:33 पर और शाम 6:00। शाम 6:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान प्रसारित करेंगे। इस सप्ताह संसद में रात्रि 8:00 दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में रात्रि 8:15 पर। रात 9:30 पर साहित्य भारती कार्यक्रम होगा और रात 10:00 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम में आप सुनेंगे चिन्मय सिस्टर उमा और राधिका का कर्नाटक वोकल ड्यूएट। ये दोनों कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण में किसान वाणी कार्यक्रम शाम 7:30 पर आप सुनेंगे। ये थे सांध्यकालीन सभा के मुख्य आकर्षण। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्स DTH के ऑडियो चैनल न्यूज ऑन AIR ऐप और साथ ही वेव्स OTT ऐप पर हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 3:02 होने वाले हैं। मीडियम वेब पर हमारा ये प्रसारण समाप्त होता है। शाम 5:00 अपने कार्यक्रमों के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए और इस बीच हमारा प्रसारण DTH पर जारी है। DTH के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। दोपहर के 3:02 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। आज आप सुनेंगे आकांक्षा पांडे के गाए कुछ लोकगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा केंद्र की।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे आकांक्षा पांडे के गाए कुछ लोकगीत। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए सुनिए सुगम संगीत के कार्यक्रम में कनकलता रवि के गाए कुछ गीत और भजन। प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा केंद्र की है।

इस रचना के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आज आप सुन रहे थे कनकलता रवि के गाए कुछ गीत और भजन। प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा केंद्र की थी। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत।

0: किस्मत हमारी।
1: उसे और क्या चाहिए जिंदगी में, जिसे मिल गई है मोहब्बत तुम्हारी।
2: तरकीब फिल्म की ये गजल थी, जगजीत सिंह और अलका याग्निक ने इसे गाया था, निदा फाजली ने गीत लिखा था और आदेश श्रीवास्तव ने संगीतबद्ध किया था। शिकारी फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं। इस गीत को गाया है अभिजीत ने, समीर का लिखा गीत, आदेश श्रीवास्तव ने स्वरबद्ध किया।

0: डीटीएच के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार बुनियादी ढांचे और निवेश पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिससे रोजगार के अवसर सृजित होंगे, विनिर्माण और निर्यात मजबूत होगा और लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज जबलपुर में 362 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार अमृत 1.0 सीवेज परियोजना का लोकार्पण कर रहे हैं। शासन और नागरिकों के बीच विश्वास को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रदेश भर में 7 अगस्त से 8 जनवरी 2027 तक मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान चलाया जाएगा। ग्वालियर में सावन मेले का औपचारिक शुभारंभ आज शाम 5 बजे श्रीमंत माधवराव सिंधिया व्यापार मेला परिसर में किया जाएगा।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर होंगे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल की अध्यक्षता में स्काउट एवं गाइड विश्व स्कार्फ दिवस लोक भवन में आज मनाया गया। राज्यपाल श्री पटेल ने भारत स्काउट्स और

0: आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: डीटीएच के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विज्ञान लोक।

नमस्कार श्रोताओं, विज्ञान लोक के इस नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शालिनी मिश्रा। आज हम बातें करेंगे विज्ञान की उपयोगिता विषय पर। श्रोताओं, विज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान, अगर हम इसकी परिभाषा दें तो वो कुछ इस प्रकार होगी। हमारे इस भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे कई किलोमीटर दूर बैठकर भी सुन पा रहे हैं तो ये विज्ञान के कारण ही संभव है। ना सिर्फ सुन पा रहे हैं बल्कि विदेश में बैठे लोगों को हम देख भी पाते हैं, बात भी कर सकते हैं और चंद घंटों में पृथ्वी के दूसरे कोने में पहुंच भी सकते हैं। पृथ्वी ही क्यों, पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में स्थित अनेक ग्रहों तक हम पहुंच सकते हैं। श्रोताओं, आज हम विज्ञान की उपयोगिता के विषय पर जब बात करने जा रहे हैं तो मैं रहीमदास जी का ये दोहा आपको याद दिलाना चाहूँगी। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी। इस दोहे में जिन दो वस्तुओं की बात की गई है वो भी विज्ञान के ही उपकरण हैं। जी हाँ, सुई और तलवार। तो आइए देखते हैं ये विज्ञान किन किन रूपों में हमारे जीवन में उपयोगी है। सबसे महत्वपूर्ण है चिकित्सा का क्षेत्र, जिसमें व्यक्ति का जन्म, रोगों की पहचान, रोगों का निदान और शल्य चिकित्सा जैसी महत्वपूर्ण बातें सम्मिलित हैं। ये तो आप सभी जानते ही हैं कि एक्सरे, सोनोग्राफी, एमआरआई, सीटी स्कैन जैसी पद्धतियां विज्ञान की ही देन हैं, जो मानव के जीवन को कष्ट रहित और रोग रहित करने में सहायक हैं। समस्त औषधियां, चाहे वो एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो या आयुर्वेदिक हो, इनके निर्माण की प्रक्रिया भी वैज्ञानिक पद्धतियों पर ही आधारित है। और आजकल तो ऑपरेशंस भी रोबोट्स की सहायता से अत्याधुनिक तरीके से किए जा रहे हैं। श्रोताओं, ये तो हुई चिकित्सा क्षेत्र में विज्ञान की उपयोगिता। आइए अब हम देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान कैसे हमारी सहायता करता है। शिक्षा पहले तो पारंपरिक तरीके से दी जाती थी, जिसमें केवल ताड़पत्र और स्याही से, जो कि पौधों से निकाली जाती थी, उससे ही काम चल जाता था। किंतु अब हर एक स्कूल में कंप्यूटर्स, स्मार्ट बोर्ड्स, टैब्स जैसे आधुनिक उपकरण आपको मिलेंगे। न सिर्फ स्कूल कैंपस बल्कि स्कूल बसेस भी ऐसे कैमरे और कंप्यूटर से कनेक्टेड होती हैं जिन्हें आप अपने मोबाइल में घर से ही ट्रैक कर सकते हैं। श्रोताओं, कोरोना काल में जब विद्यार्थी स्कूल और कॉलेज नहीं जा पा रहे थे तो उन्हें घर बैठे कक्षाओं का वातावरण हमारे विज्ञान ने ही दिलाया। आइए शिक्षा के बाद अब चलते हैं रोटी, कपड़ा और मकान की ओर। रोटी यानी अनाज, जिसका उत्पादन खेतों में अत्याधुनिक मशीनों और उर्वरकों की मदद से बेहतर तरीके से किया जा रहा है। इनका संग्रहण भी वैज्ञानिक विधियों से अत्यधिक समय के लिए किया जा रहा है। बढ़ती जनसंख्या का दबाव जिस तरह से खाद्यान्न उत्पादन पर बढ़ते जा रहा है, उसे केवल हम विज्ञान की सहायता से ही पूरा कर सकते हैं। अब हम रोटी के बाद कपड़ा उद्योग की ओर चलते हैं। कपड़ा यानी टेक्सटाइल। एक जमाना था हाथकरघे से कपास के कपड़े बनाए जाते थे। आज टेक्सटाइल मिल्स न केवल बेहतरीन विविधतापूर्ण कपड़ों का उत्पादन करती हैं बल्कि हजारों करोड़ों लोगों को रोजगार भी देती हैं। तो ये हुई कपड़ा उद्योग में विज्ञान की सहायता। आइए अब हम चलते हैं मकान यानी बिल्डिंग अर्थात शहरीकरण की ओर। लद गए वो जमाने जब कच्चे घरों में लोग रहते थे, जिन्हें हर मौसम में सुधारने की आवश्यकता होती थी। अब

कंक्रीट के मजबूत मकान, भवन आदि बनाए जा रहे हैं। और यहाँ हम ये भी उल्लेख करना चाहेंगे कि अब भूकंप रोधी ईंटें और भवन भी बनाए जा रहे हैं, जिनके लिए अत्याधुनिक मशीनों की आवश्यकता पड़ती है, जो कि विज्ञान की सहायता से ही संभव है। आइए अब हम बात करते हैं रक्षा विभाग यानी हमारे सैन्य क्षेत्र की। जब जब भारत भूमि की रक्षा की बात आती है तो एक गीत हमेशा याद आता है, नन्ना मुन्ना राही हूँ, जिसकी एक पंक्ति, नया है जमाना मेरी नई है डगर, देश को बनाऊंगा मशीनों का नगर, भारत किसी से रहेगा नहीं कम। श्रोताओं, ये गीत 1962 में लिखा गया, जो आज सही साबित हो रहा है। आज हमारे सैनिक भाभा कवच जैसे आधुनिक रक्षक ड्रेस पहनकर युद्ध क्षेत्र में सुरक्षित भी रहते हैं और BM-21 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स, मिसाइल्स जैसे अत्याधुनिक मशीनों का उपयोग करके देश की सुरक्षा में अपना योगदान भी देते हैं। आज वैज्ञानिक तरक्की ने हमें ऐसे बहुत सारी दूरबीन दी हैं, जिनसे न सिर्फ हम कई किलोमीटर दूर धरती पर छुपे हुए दुश्मन को ढूंढ लेते हैं, बल्कि खगोलिक दूरबीनों से नक्षत्र विज्ञान का अध्ययन करके अनेक ग्रहों, उपग्रहों और तारों का अध्ययन भी हम कर सकते हैं। अब बात निकली है आकाशीय पिंडों की, तो चलिए आपको ये भी बता दें कि सन 1975 में आर्यभट्ट नाम का पहला कृत्रिम उपग्रह भारत ने भेजा। उसके बाद 1979 में भास्कर 1, 1980 में रोहिणी और अब तक GSLV, F-14 जैसे अनेक सैटेलाइट्स हमने अंतरिक्ष में भेजे हैं। श्रोताओं, आप सभी जानते हैं ये सैटेलाइट्स हमें कृषि क्षेत्र, आपदा प्रबंधन और नौका परिचालन में मदद करते हैं। अब हम आते हैं मनोरंजन के क्षेत्र की ओर। यदि हम मनोरंजन के क्षेत्र को देखें तो आप पाएंगे कि पुरानी फिल्में श्वेत श्याम यानी ब्लैक एंड वाइट होती थी, किंतु अब हमें कलर्ड और हाईटेक नवीन तकनीकी युक्त कैमरों से फिल्माई गई फिल्में देखने मिलती हैं, जिससे हम और आप बेहतर तरीके से मनोरंजन कर पाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान की उपयोगिता। इसके अलावा कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जिसमें हम विज्ञान की सहायता लेते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये है पर्यावरण संरक्षण का क्षेत्र, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा, सौर, पवन, जल विद्युत, जल शुद्धिकरण, कचरा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन की भविष्यवाणी और आपदा प्रबंधन का समाधान आदि सम्मिलित होते हैं। परिवहन और ऑटोमोबाइल का क्षेत्र की यदि हम बात करते हैं तो इसमें भी इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन, हवाई यात्रा, हाई स्पीड ट्रेन तकनीकी, ट्रैफिक मैनेजमेंट और स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम सम्मिलित है, जिसे हम आज के आधुनिक युग में विज्ञान की सहायता के बिना पूरा नहीं कर सकते। इसके अलावा दैनिक जीवन में हमारे लिए विज्ञान हमेशा साथ खड़ा होता है, हर गृहिणी के साथ, घरेलू उपकरण के रूप में जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, स्मार्टफोन और स्वच्छ जल आपूर्ति तकनीकी। विज्ञान के बिना आधुनिक समाज की कल्पना करना असंभव है। ये प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति और विकास का मुख्य आधार है। इसके अलावा घरों में उपयोगी डोरबेल, बिजली के उपकरण जैसे पंखे, बल्ब, ट्यूबलाइट, मिक्सी आदि विज्ञान की ही देन है। विद्युत का उत्पादन भी वैज्ञानिक तकनीकी से ही संभव हुआ है। आज हम डीजल पेट्रोल की जगह ई व्हीकल्स का उपयोग करना शुरू कर चुके हैं, जिससे पर्यावरण को भी बचाया जा सके और सतत विकास किया जा सके। दैनिक जीवन में मोबाइल और कंप्यूटर के जरिए अनेक प्रकार के रोजगार चलाए जा रहे हैं, विभिन्न व्यवसायों में लोगों को मदद मिल रही है। कंप्यूटर की मदद से हमारा आवागमन सरल हुआ है। आज हम ई टिकट लेकर घर बैठे विदेश यात्रा के लिए अपने आप को सक्षम कर पाते हैं। लंबी लाइनों में लगकर बिजली का बिल, रेल टिकट लेना, फिल्म टिकट लेना अब गए जमाने की बात हो गई है। मानव को सहज, सरल और सुंदर जीवन विज्ञान ने ही दिया है। विशेषकर अगर हम बुजुर्ग लोगों की बात करते हैं, जिनका जीवन तकनीकी के बिना अत्यंत कठिन हो चुका था, आज वे सब अकेले रहकर भी अपने जीवन के आवश्यक काम कर सकने में समर्थ होते हैं। स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों के लिए सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन घर पर कंप्यूटर और मोबाइल में एक क्लिक में ही मौजूद होता है। घर पर बैठकर आप ऑनलाइन भोजन मंगवा सकते हैं, अपने मित्रों और रिश्तेदारों को गिफ्ट या कोई सामान भी भेज सकते हैं।
इस प्रकार विज्ञान के बिना आधुनिक समाज की कल्पना

करना असंभव है। यह प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति और विकास का प्रमुख आधार है। इसी के साथ विज्ञान की उपयोगिता विषय पर हमारी यह वार्ता यहीं संपन्न होती है। मुझे यानी डॉक्टर शालिनी मिश्रा को अनुमति दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विज्ञान लोक, डीटीएच के ऑडियो चैनल पर। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

लीजिए सुनिए फिल्म संगीत, ये दिल आशिकाना। इस फिल्म का ये गीत है, कुमार सानू और अलका याग्निक ने गाया है। समीर का लिखा गीत है, नदीम श्रवण ने स्वरबद्ध किया।

तुम बिन फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं। चित्रा ने इसे गाया है, फैज अनवर ने गीत लिखा है और निखिल विनय का संगीत है।

तुम बिन फिल्म का ये गीत था और अब राहुल फिल्म का गीत। कविता कृष्णमूर्ति और ए हरिहरन ने इसे गाया है, आनंद बख्शी ने गीत लिखा, अनुमलिक की धुन।

0: समाप्त हुआ। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत लीजिए सुनिए धारावाहिक कामिनी काय कांतारे की 17वीं कड़ी।
1: प्रस्तुत है महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति। रूपांतरकार हैं प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन। आज प्रस्तुत है कामिनी काय कांतारे के रेडियो नाट्य रूपांतरण का 17वां भाग। अब तक आपने सुना कि राजा भर्तृहरि को चंद्रपुर के लिए स्वयं देवी मणिभद्रा नदी पार करवा देती है। इधर त्रिलोचन दोबारा उज्जैनी जाते हैं। वे वैसिका से मिलना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वो उनकी बिछड़ी हुई सत्या दीदी हैं। अब आगे

0: उज्जैनी से निराश होकर भीषज्ञ त्रिलोचन सेवाश्रम लौट आए थे। मृगांक ने उन्हें आश्वस्त किया था कि जैसे ही महादेवी पिंगला और वयसिका के अवंती आने की सूचना मिलेगी, वो त्रिलोचन को समाचार पहुंचा देगा। इसकी प्रतीक्षा में भी धीरे धीरे डेढ़ महीना बीत गया। चंद्रसेन भी उदास सा था। त्रिलोचन ने उसे कह रखा था कि वयसिका के विषय में वो किसी से कुछ नहीं कहे। आचार्य नागदत्त त्रिलोचन और चंद्रसेन में आए हुए इस परिवर्तन को कई दिनों से अनुभव कर रहे थे और एक दिन पूछ ही बैठे।
1: त्रिलोचन, देख रहा हूं कि उज्जैनी से लौटकर तुम चुप से रहने लगे हो। कदाचित कोई चिंता आ जुड़ी है तुम्हारे साथ।
2: कर्तव्य पालन में कोई त्रुटि हुई है क्या? अरे
1: अरे सो नहीं, उज्जैनी से लौटकर चंद्रसेन भी गंभीर रहने लगा है।
2: आचार्य, कोई विशेष बात नहीं है, अपने सहपाठी मृगांक से कुछ जानकारी चाहिए थी, शायद भूल गया है, उसकी ओर से कोई संकेत नहीं मिल रहा है।
1: क्या फिर उज्जैनी जाना चाहते हो?
2: हाँ, सुना है महामात्य पूर्णरथ से आपकी मित्रता है।
1: मित्रता थी, अब उनका अनुग्रह है, सेवा आश्रम को सहयोग करते हैं। उज्जैनी में वसुंधरा और पुत्र के अभिभावी हैं, उनसे तुम्हें कोई कार्य है क्या? राजकीय सेवा में जाने की इच्छुक हो क्या?
2: अरे नहीं आर्य, सुना है वहां सदैव स्वार्थ के प्रति सतर्क रहना पड़ता है। संदेह, दुत्कार, विद्वेष, विलासिता के पंख में धंसकर तुष्टि पाने का कभी सोचा ही नहीं। वहां सहज जीवन संभव ही नहीं है आर्य। मृगांक दत्त उज्जैनी में श्रीमानों की चिकित्सा करने वाला ख्यात चिकित्सक है, उसके संदेश की एक माह से प्रतीक्षा कर रहा हूं, संभवतः भूल गया है वो, अतः सोचता हूं स्वयं ही चला जाऊं। किसी आत्मीय को खोजना है, महामात्य से भेंट सहायक होगी।
1: ठीक है, मैं महामात्य को पत्र लिख दूंगा, इन दिनों वो बहुत व्यस्त है, महाराज किसी अनुष्ठान में है, वे लौटे नहीं हैं। मुझे सूचना मिली है कि नगर में सप्त दिवसीय राजकीय उत्सव की घोषणा हुई है, अतः यह एक सुअवसर भी है। तुम उज्जैनी चले जाओ, रानी पिंगला और उनकी सेविका के लौट आने का समाचार भी है।

0: त्रिलोचन जब उज्जैनी के भेषज्ञ मृगांक के आवास धन्वंतरी कुंज के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो द्वारपाल ने उन्हें चिन्हते हुए तत्काल द्वार खोल दिए। शुभंकर अतिथि को देखकर ही आदर से उठ खड़ा हुआ और मृगांक तो जैसे उनकी प्रतीक्षा ही कर रहा था। दोनों सहपाठी गले मिले, वार्तालाप का सिलसिला प्रारंभ हुआ।
1: चलो, तुमने मेरे किसी कार्य की सराहना तो की मित्र। हाँ, इन दिनों महारानी पिंगला किसी से भेंट नहीं करती, वो गर्व से हैं। पूजा और प्रजाजन को दर्शन देने के लिए अवश्य एक बार राजभवन से बाहर आती हैं। सुनने में आया है कि महाराज भर्तृहरि कहीं अज्ञातवास

0: में हैं और कोई अनुष्ठान कर रहे हैं। हाँ, वयस्का से भेंट हो सकती है। महारानी की संरक्षा सास संभार का दायित्व उस पर ही है। फिर भी कल हम उससे मिलने की जुगत करेंगे। अभी तुम विश्राम कर लो। हाज उत्सव के अंतर्गत किसी लोक गायक बसंत का गायन है। सुना है राजा भर्तृहरि के पदों को लोक भाषा में प्रस्तुत करता है वो।
1: मृगांक, मेरा एक आग्रह है।
0: कहो मित्र, कहो, आदेश के रूप में मानना पड़ेगा।
1: सायं जब हम भ्रमण के लिए निकलेंगे तो किसी वाहन का सहारा नहीं लेंगे।
0: क्यों?
1: मैं उज्जैनी को भीतर से देखना चाहता हूँ। गलियों, बीथियों, संकीर्ण मार्गों पर जाकर देखना चाहता हूँ कि बाह्य भव्यता के आवरण में यह यशस्वी नगरी कैसी है, कैसा है उसका यथार्थगत सत्य।
0: तुम नहीं बदले त्रिलोचन, वैसे के वैसे ही हो। तुम्हें जो देखना है देख लेना भाई। कोई है?
2: प्रस्तुत हूँ स्वामी।
0: इन्हें पहचानते हो?
2: जी।
0: इन्हें अतिथि कक्ष तक ले जाओ। सांध रात्रि में ये भ्रमण पर निकलेंगे। इन्हें तैयार रखना है।
2: जो आज्ञा स्वामी।

0: मृगांक, ऐसा वैभव तो इंद्रपुरी में भी नहीं होगा।
1: उज्जैनी का एक दूसरा रूप भी है त्रिलोचन, वहां भी चलेंगे। शायद कोई बुला रहा है।
2: स्वामी, आपको पुकारा गया था, आप सुन नहीं पाए। स्वामी जी, मुझे भेजा है, उनका निवेदन है कि क्षण भर गादी पर ठहर कर उन्हें मान देने की कृपा करें स्वामी।
1: हाँ, कौन है वो, किसने कहलवा भेजा है?
2: आप उनसे परिचित हैं, श्रेष्ठी ऋतु सागर।
1: अच्छा जाओ, हम आ रहे हैं। त्रिलोचन, ये अभिज्ञात धनपति हैं अवंती का, मेरा रोगी है मित्र। वो राज महालय का विश्वस्त रत्न विक्रेता है, हमारे काम का हो सकता है। हाँ, चलो मिल लेते हैं।
3: मृगांक दत्त और त्रिलोचन दोनों ऋतु सागर के निकट पहुंचते हैं।
4: ओ भाग्य जो आपने कृपा की, पधारिए, आसन ग्रहण करें। जब आप यहाँ से निकल रहे थे तो मैंने पुकारा था, शायद सुन नहीं पाए। धन्य हो गया मैं आपके साथ, ये जो है इनका परिचय पाने की उत्सुकता है।
1: ये मेरे मित्र, सहपाठी और अत्यंत निपुण भेषज्ञ हैं त्रिलोचन, उत्सव देखने के लिए उज्जैनी आए हैं।
4: ओहो, हमारा परम सौभाग्य, और आप इनके परिचय लाभ से वंचित कर रहे थे। अरे सुनो, कोई अतिथियों के लिए मधुर पेय तो लाना।
1: और आपका स्वास्थ्य कैसा है, कुछ लाभ हुआ?
4: यत्किंचित सफलता मिलने लगी है, महाकाल की कृपा हुई तो अपेक्षित फल भी शीघ्र मिलेगा।
1: करते रहिए अभ्यास और प्रयास। अरे हाँ, राज महालय में रत्न और आभूषण तो कदाचित आप ही पहुंचाते हैं।
4: हाँ, लेकिन क्यों पूछा आपने?
1: यूं ही, ये मेरे मित्र हैं ना।
4: हाँ।
1: ये अवंती के पूर्व महाश्रेष्ठी आर्य नागदत्त द्वारा स्थापित सेवाश्रम के इन दिनों प्रमुख चिकित्सक हैं। आश्रम विषय कोई कार्य है इन्हें।
4: अच्छा।
1: ये महारानी पिंगला से भेंट करना चाहते हैं।
4: ओ।
1: ये सुझाव इन्हें मैंने ही दिया।
4: अच्छा।
1: चूंकि महाराज इस समय उपलब्ध नहीं है तो मैंने कहा महादेवी से ही भेंट कर लें। इन दिनों राज महालय पर महाकाल की कृपा दृष्टि है।
4: वैद्यराज, आज मैं स्वयं महालय गया था, आपको आश्चर्य होगा कि महादेवी ने मुझसे भी भेंट नहीं की। मुझे महादेवी की कृत दासी वयसिका से ही भेंट करके संतुष्ट होना पड़ा।
1: अच्छा।
4: राजमहल में इन दिनों उसी की आज्ञा चल रही है। मुझे नहीं लगता कि महादेवी से भेंट संभव हो पाएगी। हाँ, ये संभव है कि वो उत्सव में पधारें, लेकिन ऐसे सार्वजनिक अवसर पर नमस्कार प्रणाम ही हो पाता है। सुन रहे हैं आप?
1: हाँ हाँ, कहते चलिए।
4: समझ लीजिए कि महादेवी से भेंट तभी हो सकती है जब या तो वो स्वयं बुलाएं अथवा महामात्य को लगे कि ये भेंट आवश्यक है। इस गर्भ के लिए संभवतः महामात्यों ने असुविधा में नहीं डालना चाहते। वैसे आप तो चिकित्सक हैं, सीधे महामात्य से क्यों नहीं मिल लेते? क्या पता आपका कार्य वही कर दें। अच्छा, ये बताइए कि आज इधर कैसे आना हुआ?
1: कोई विशेष बात नहीं थी, हमारे ये मित्र उत्सव के रंग देखना चाहते थे। अच्छा, अब हम चलेंगे श्रेष्ठी।
4: कृपा बनाए रखिए वैद्यराज, फिर कभी पधारे।
1: अवश्य।
5: खूब रोचक है व्यक्तित्व श्रेष्ठ ऋतु सागर का।
1: हाँ, राजधानी में कुशल व्यवसायी होने के सर्वथा अनुकूल, ऊपर से विनम्र भीतर से कुटिल, देखा तुमने किस सफाई से उसने अपनी तरफ से ना कर दी। महादेवी से हमारी भेंट के आयोजन में वो सहायता नहीं करेगा मित्र, कोई अन्य उपाय देखना पड़ेगा। इस समय महामात से मिलने और महादेवी से भेंट की अनुमति पाने का एक ही मार्ग है।
6: वो क्या?
1: देवी वसुंधरा का सहयोग लो। प्रातः तुम देवी वसुंधरा से मिल लो, वो तुम्हें जानती भी हैं। अब चलें, रात्रि विश्राम किया जाए। आज कुछ और तो शेष रहा नहीं।

0: त्रिलोचन सारी रात सो नहीं पाए। वर्षों पहले का वो भयानक दुस्वप्न बार बार उन्हें झकझोरता रहा। जब जलदस्यु उनके पालियान को घेर कर चारों ओर से टूट पड़े थे, गोदावरी के वक्ष पर खड़क खड़कने लगे थे। मुट्ठी भर यान रक्षक देखते देखते काट डाले गए। पांचों विश्वस्त नाविकों ने सांस रहने तक संघर्ष किया, वे भी जीवित नहीं रहे। दस्युओं ने हिंसक पशुओं की भांति माँ के शरीर पर से सारे आभूषण नोच लिए। एक दस्यु जब दीदी को हाथ पकड़कर खींचने लगा तो माँ सह नहीं सकी और कृपाण लेकर उस पर झपटी। तभी किसी दस्यु ने उनकी पीठ में पीछे से भाला घुसेड़ दिया। एक ने बाल त्रिलोचन को गोदावरी की थरथराती लहरों में उछाल दिया। लहरों के बीच किसी ने उन्हें थामा। वो उन्हीं के यान का एक स्वामी भक्त नाविक था, जो त्रिलोचन की धोखनी सी चलती सांसों के साथ वक्ष से लगाकर डूबता तैरता तट तक ले आया और तट छूते ही निश्चेष्ट हो गया।
1: जीवन की वो अंधेरी रात भयावह, पीड़ाजनक और बार बार आंखों में उतरती हुई, मन मस्तिष्क पर गहरी छापों में पुनर्जीवित सदा सदा।
0: जब एक सुकुमार बालक मृत्यु के तांडव का असहाय एकाकी दर्शक था और नियति क्रूर अट्टहास कर रही थी, नाविक के शव के पास बैठा रात भर रोता रहा वो। शव के अतिरिक्त और कौन

0: प्रणाम देव, कहीं चलना है देव? वाहन तैयार करूं?
1: तुम्हारे स्वामी कब तक उपलब्ध होंगे मित्र?
0: मैं क्या जानूं?
1: देवी वसुंधरा का आवास जानते हो?
0: हाँ देव, यहां से अधिक दूर नहीं है।
1: अपने स्वामी से कहलवा दो कि हम देवी वसुंधरा की ओर गए हैं। चलो भाई।
0: जो आज्ञा।

0: कहो भेषज्ञ, तुम्हारे आश्रम में सब कुशल तो है?
1: महाकाल की कृपा है, आर्य नागदत्त सहित हम सभी कुशल से हैं।
0: कहो फिर, यहाँ आने का क्या हेतु है? मैं तुम्हारा क्या प्रिय कर सकती हूँ?
1: देवी, मुझे राजमहालय में महादेवी से भेंट करने की अनुमति चाहिए। ज्ञात हुआ है कि महामाति की अनुमति के बिना वहाँ कोई पहुँच नहीं सकता है।
0: ठीक ही सुना है तुमने, स्यात ये आवश्यक भी है। महारानी गर्भ से हैं और बहुत सावधानी से वो केवल देवार्चन और जन दर्शन के लिए ही बाहर निकलती हैं, वो भी कठोर अभिरक्षा में। फिर भी मैं प्रयत्न करती हूँ। महामाते अति व्यस्त रहते हैं, किंतु उन्हें ये तो बताना ही पड़ेगा कि तुम महादेवी से क्यों मिलना चाहते हो।
1: आर्य, वस्तुतः बात यह है कि मैं महादेवी से नहीं, उनकी सेविका वैसिका से भेंट करना चाहता हूँ।
0: पहले क्यों नहीं बताया भेषज्ञ? तुम जलपान करो, मैं सूचना भेजकर वैसिका को यहीं बुलवा लेती हूँ। भेषज्ञ, क्या मुझे ये बताना चाहोगे कि वैसिका से क्यों मिलना चाहते हो? अरे ये क्या, तुम्हारी आंखों में आंसू?
1: क्या कहूं आर्य, जन्म हुआ कांचीपुरम की विश्व विभूत कलाधरी अनुप्रिया देवी के गर्भ से, जिन्हें अपने गृह राज्य से इसलिए निर्वासित होना पड़ा क्योंकि उन्होंने शक्ति और वैभव संपन्न नरेश की उपेक्षा करके एक विपन्न गायक संगीतज्ञ का वरण कर लिया। वो मेरे पिता थे, उन्होंने उस राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में आश्रय लिया। माँ बताती थी कि पिता से मिलने से पहले वो नर्तकी के रूप में एक कठपुतली तुल्य थी। पिता ने उनकी कला में प्राणों का संचार किया। आजीविका के लिए दोनों ने प्रतिष्ठानपुर के निकट नृत्यशाला का निर्माण किया, जो स्वेद और साधना से सिंचित होकर कलाओं का प्रसिद्ध संस्थान बन गया। माँ ने इतना ही बताया कि पिता की अकाल मृत्यु हुई। आर्य, राजा भले ही कितना कलारसिक गुण ग्राहक हो, पर सबसे पहले वो राजा होता है। राजा की आंखों में आंखें डालकर जीवित नहीं रह जा सकता। माँ ने नहीं बताया कि मेरे पिता की अकाल मृत्यु कैसे हुई। इसके पश्चात काल रात्रि का वो भीषण भंवर जिसमें सब कुछ डूब गया। एक साक्षी शेष जो मैं अभागा हूं और अकेला।
0: शांत हो जाओ वत्स, शांत हो जाओ, दारुण संस्मरणों से बाहर निकलो।
1: मुझे लगता है कि मेरी दीदी अभी जीवित है कहीं। अरुंधति नाम था उनका। उस यान पर आखिरी झलक देखी थी जब एक दस्यु उनकी बांह पकड़कर खींच रहा था और माँ ने उस पर कृपाण से प्रहार किया था। भटक रहा हूं मैं उन्हें खोजता हुआ, कदाचित वैसिका से कोई सूत्र हाथ में आ जाए।
0: ठीक है बेशक, मैं अश्ववाही सेवक द्वारा वैसिका को संदेश भेजती हूँ, घड़ी भर में लौट आएगा। तब तक तुम आर्य नागदत्त के उस उपवन में भ्रमण करो जिसे मैंने संवार कर वैसा ही रखा है। उधर स्वल्पाहार भी तैयार हो रहा है।
2: संदेशवाहक लौटा और उसने सूचना दी कि महामात्य की अनुमति के बिना अंतेवास तक कोई नहीं जा सकता, यहां तक कि वहां प्रवेश के लिए स्वयं महामाति को भी स्यात अनुमति लेना पड़े।
1: अब
0: इतना दुस्साहस, मुझे महामाति के घर पहुंचना ही होगा। चलो।
2: महामाति आले के प्रवेश द्वार पर देवी वसुंधरा का वाहन फिर रोक दिया गया। कहा गया, प्रवेश की अनुमति नहीं है।
3: रक्षक, अपने अधिपति को तत्काल बुलाओ। सुना नहीं तुमने?
4: देवी, उन्हीं की आज्ञा।

0: है कि अगले आदेश तक किसी को प्रवेश की अनुमति न दी जाए।
1: क्यों अनुमति न दी जाए?
0: देवी मैं क्या जानूं? आज्ञा का पालन कर रहा हूँ।
1: हम कहते हैं अपने अधिपति को बुलाओ रक्षक।
0: इस समय मैं ही अधिपति हूँ।
1: तुम जानते हो मैं महामात्य पूर्ण रथ की भावज हूँ।
0: मैं आपका क्रोध किसी भी सीमा तक सह सकता हूँ, किंतु अनुज्ञा के बिना प्रवेश नहीं दे सकता।
1: अवंती में नए आए प्रतीत होते हो, तो हमें लौटना ही होगा, यही ना? यदि कह सको तो अपने स्वामी को बता देना कि वसुंधरा आई थी।
0: ठीक है,
1: चलो त्रिलोचन।

0: सम्मानित नागरिकों, कृपया मार्ग दें। महामहिषि महादेवी पिंगला उत्सव में पधार रही हैं। सावधान, मार्ग दें।
1: महारानी के पीछे सतर्कता पूर्वक खड़ी हुई उस स्त्री को देखो मृकांक। क्या वही वैशिका है?
2: इस ओर मुंह करे तो बताऊं, बहुत समय से देखा नहीं है, देखा भी होगा तो ध्यान नहीं दिया। महादेवी की एक अन्य विश्वस्त सेविका है चंपा, वो भी हो सकती है। ठहरो, मैं पूछकर बताता हूँ।
3: तभी कोलाहल को चीरते हुए मंच से उद्घोषणा होती है।
0: कृपया शांत हो जाएं। महादेवी ने आसन ग्रहण कर लिया है, अब हम उत्सव की संध्या का शुभारंभ करते हैं। पूर्व घोषणा के अनुसार आज लोक गायन और लोक नृत्य का कार्यक्रम है। आज यहाँ प्रसिद्ध लोक गायक बसंत अपनी प्रस्तुतियाँ आपके सामने रखेंगे। वह गायन के साथ साथ बांसुरी और मृदंग के कुशल वादक हैं और उनकी विशेषता ये है कि वह महाराजा द्वारा रचित पदों को लोक भाषा में गाएंगे। तो महानुभाव, लोक गायक वसंत का स्वागत करें।
2: मैं तो अशिक्षित ग्रामीण हूँ, ये तो कालों के काल महाकाल भगवान भूतेश्वर की कृपा है कि आज मुझे गुणी जनों की इस पवित्र नगरी उज्जैनी में अपनी कला प्रदर्शित करने का स्वअवसर मिला है। मेरी बरसों पुरानी साथ थी कि कवियों के कवि महाराज भर्तृहरि के काव्य को अपनी टूटी फूटी भाषा में उनके समक्ष गाऊं। महाराज नहीं तो मेरा सौभाग्य है स्वयं अवंती की राजलक्ष्मी, महाराज की अर्धांगनी साक्षात देवी स्वरूपा महारानी यहाँ विराजमान है। हम वनवासी उनके चिर सेवक चिर ऋणी हैं। मैं अपने समस्त जनपद का प्रणाम उनके शीचरणों में निवेदित करता हूँ। मैं आपको मृदंग और मुरली सुनाऊंगा, किंतु गुणीजनों, इतनी देर तक स्यात हमारी महिमामयी महादेवी के लिए यहाँ बैठना श्रम साध्य होगा। अतः प्रथमा महाराज के काव्यांश का रसा स्वादन करें। सुर गुरु सेनाधीश सुरन की सेना जाके, शस्त्र हाथ में वज्र स्वर्ग सा दृढ़ गढ़वा के, ऐरावत असवार प्रभु को परम अनुग्रह, ऐसी संपत्ति साज सहित सोहित देवेश ये, सो युद्ध माहि लहत पराजय दान वनी सो दारुण, संपत्ति साज जब होए वृथा सबते अद्भुत काल गति। गुणीजनों, काल की चाल अद्भुत है, कोई नहीं जानता, सो काल के भी महाकाल की शरण में है ये वसंत। दान भोग अरुनाश होत तीन गति द्रव्य की, द्वय का जहां न वास वहां तीसरो अवसी है। साधु साधु।
0: सावधान नागरिकों, महारानी पिंगला अब प्रस्थान कर रही हैं। सभी जन कृपया अपने अपने आसन पर बैठे रहें। लोक कवि वसंत अभी रसिकों के मध्य उपस्थित रहेंगे। कृपया राजमहिषी को मार्ग दें।
4: अरे

0: अरे
1: वैशिका को हम देख भी ना पाए,
2: अब क्या प्रयास करते रहना है।
3: नेपथ्य से मृदंग की थाप पूर्ववत गूंजती है।
4: अभी आप महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति का 17वां भाग सुन रहे थे। रूपांतरकार थे प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित।

कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार शीलू अस्थाना, नागदत्त इरफान सौरभ, त्रिलोचन उबेदुल्ला खां, मृगांक बालेंद्र सिंह, सेवक रामरतन सेन, ऋतुसागर राकेश चैमिनी, वसुंधरा ज्योति केने, रक्षक विकार हुसैन और उद्घोषक आसफा बानू।

परिकल्पना पंडित रामस्वरूप रतौनिया, संयोजक राकेश ढौंडियाल और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन।

आपको याद होगा कि राजा महालय छोड़ देते हैं और पैठार होते हुए चंद्रपुर पहुंचते हैं। चंद्रपुर में वे चारुमित्रा से मिलते हैं, जो उनके काव्य की प्रशंसिका है। चारुमित्रा ही उन्हें भेष बदलकर उज्जैनी वापस लेकर आती है। उज्जैनी में वे क्या परिवर्तन देखते हैं, इससे हम अगले भाग में परिचय प्राप्त करेंगे।

संग्रहालय से। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे कामिनी काय कांतारे की 17वीं कड़ी। ये आकाशवाणी भोपाल है। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी देर बाद होगा।

शुभ संध्या, नमस्कार। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्स, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और वेब्स ओटीटी तथा न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। 5 बजने वाले हैं। मीडियम वेव पर हमारी संध्याकालीन सभा अब आरंभ होती है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी।

अधिक की लागत से तैयार अमृत 1.0 सीवेज परियोजना का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के प्रभाव को और अधिक व्यापक बनाने के उद्देश्य से प्रदेश में आज से विशेष पीएम स्वनिधि पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। प्रदेश भर में 7 अगस्त से 8 जनवरी 2027 तक मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान चलाया जाएगा। अभियान का उद्देश्य शासन और नागरिकों के बीच विश्वास को सुदृढ़ करना, शिकायतों के त्वरित और प्रभावी निराकरण को सुनिश्चित करना और जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा करना है। 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर वस्त्र मंत्रालय 7 अगस्त को राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय समारोह का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में उपस्थित रहेंगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय से जुड़ी अटल पेंशन योजना में नियमित प्रीमियम जमा करने वाले जबलपुर के अमित कुमार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आगामी 15 अगस्त को नई दिल्ली में सम्मानित करेंगी। केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त जारी की है। मंत्रालय द्वारा जारी राज्यवार विवरण के अनुसार मध्य प्रदेश को 8,010 करोड़ रुपए मिले हैं और तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत लगभग 200 रुपए कम कर दी है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। शाम के 5:02 हो चुके हैं। अब युवा श्रोता सुने अपना कार्यक्रम युववाणी। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा की है।

दोस्तों शुरुआत करते हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी की। मैं आपकी रेडियो दोस्त इशिका, नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करेंगे 18वीं सदी के एक महान इस्लामी विद्वान, समाज सुधारक और दार्शनिक के बारे में, जिन्हें भारतीय उपमहाद्वीप में राजनीतिक और धार्मिक चेतना जगाने का श्रेय दिया जाता है। मैं बात कर रही हूँ स्वतंत्रता सेनानी शाह वली उल्लाह मुहदिस देहलवी के बारे में। उनका जीवन काल 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और अंग्रेजों के पूर्ण नियंत्रण से पहले का था, लेकिन उनकी विचारधारा और उनके द्वारा शुरू किए गए आंदोलनों ने आगे चलकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन की मजबूत वैचारिक नींव रखी। उन्हें देश में इंकलाब की बुनियाद रखने वाले विचारकों में गिना जाता है। उन्होंने दिल्ली के मदरसा रहीमिया को बौद्धिक क्रांति का केंद्र बनाया। यहाँ से ऐसे विद्वान तैयार हुए जिन्होंने आगे चलकर ब्रिटिश शासन का खुलकर विरोध किया। अंग्रेजों के खिलाफ शुरू हुआ प्रसिद्ध रेशमी रुमाल आंदोलन और देवबंद आंदोलन पूरी तरह से शाह वली उल्लाह की राजनीतिक और सामाजिक विचारधारा पर ही आधारित था। दोस्तों उन्होंने राजनीतिक सूझबूझ और देश को स्थिरता देने का प्रयास किया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बिखरते हुए भारत और मुगल सम्राट के गिरते नैतिक और प्रशासनिक स्तर को सुधारने का प्रयास किया। उन्होंने देश के तत्कालीन शासकों और नवाबों को पत्र लिखकर अपनी आपसी दुश्मनी भूलकर देश में न्याय, सामाजिक समानता, आर्थिक स्थिरता बहाल करने की अपील की। कुरान का अरबी से फारसी में अनुवाद किया। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों, अंधविश्वासों का कड़ा विरोध किया और स्वतंत्र सोच को बढ़ावा दिया। उनका मानना था कि किसी भी देश की तबाही तब होती है जब किसानों और मजदूरों का शोषण होता है और टैक्स का बोझ केवल आम जनता पर डाला जाता है। शाह वली उल्लाह ने सीधे तौर पर अंग्रेजों से युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन उन्होंने देश की जनता को गुलाम बनाने वाली ताकतों के खिलाफ मानसिक और वैचारिक रूप से तैयार किया। दोस्तों अब सुनते हैं ये गीत रोजा फिल्म से हरिहरन की आवाज।

दोस्तों, भारत और इसके कृषि प्रधान क्षेत्रों में मिट्टी की उर्वरता में गिरावट एक गंभीर समस्या है। साथ ही हर साल लाखों टन कृषि अवशेषों का जलाया जाना या उनका सही उपयोग ना होना ही एक बड़ी समस्या है। रासायनिक उर्वरकों और जैविक पदार्थों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की गुणवत्ता लगातार गिर रही है, जिसका दीर्घकालिक उत्पादकता, जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता और किसानों की आजीविका पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। फसल अवशेषों में मिट्टी को पुनर्जीवित करने, वायु प्रदूषण को कम करने और ग्रामीण समुदायों को आय प्रदान करने की क्षमता होती है और ब्राउन रिवॉल्यूशन 2.0 की अवधारणा इसी अवसर का एक रूप है, जिसके तहत देश भर के किसानों का एक जमीनी नेटवर्क कृषि अपशिष्ट की क्षमता का विकेंद्रीकरण करके प्रमाणित जैविक मृदा उत्पाद जैसे कंपोस्ट, बायोचार और जैविक उर्वरक तैयार करता है। ये पहली ब्राउन क्रांति से बिल्कुल अलग है, जो मुख्य रूप से कॉफी और चमड़ा उत्पादन को बढ़ावा देने से संबंधित है। ब्राउन रिवॉल्यूशन 2.0 भारत में कृषि अपशिष्ट को मूल्यवान जैविक खाद में बदलकर मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारने की एक प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य रासायनिक खादों पर निर्भरता कम करना और एक डेयरी मॉडल की तरह ग्रामीण सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि अवशेषों का प्रबंधन करना है। इस पहल को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्रों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों का तकनीकी सहयोग प्राप्त होगा। दोस्तों, अब करते हैं मनोरंजन और सुनते हैं ये गीत डॉन फिल्म से आशा भोसले की आवाज में।

0: दोस्तों अब हम जानेंगे युवा श्रोता नेहा मिश्रा से असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के विषय में।
1: आप सभी आदरणीय जनों को मेरा नमस्कार, मैं नेहा मिश्रा। हाल ही में मेरा चयन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित सहायक प्राध्यापक इतिहास के पद पर हुआ है। सबसे पहले मैं अपने माता पिता, गुरुजनों और उन सभी लोगों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगी जिनके मार्गदर्शन और आशीर्वाद से मैं इस मुकाम तक पहुंच पाई। यदि मैं अपनी तैयारी की बात करूं तो मेरा मानना है कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता का सबसे बड़ा आधार आपकी निरंतरता, अनुशासन, सही रणनीति और खुद के ऊपर विश्वास होता है। मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने के लिए सबसे पहले MPPSC के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो भी पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसका गहराई से विश्लेषण किया, जो भी पिछले वर्षों के पेपर रहे हैं, एग्जाम हुए हैं, उनका अध्ययन किया, जिससे मुझे यह समझ विकसित हुई कि किस प्रकार के क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे जाते हैं और इतिहास के किस भाग में मुझे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से इस विषय का भी ज्ञान हुआ कि किस प्रकार का ट्रेंड क्वेश्चंस का चलता है, कितने क्वेश्चन इजी, कितने मॉडरेट और कितने हार्ड लेवल के होते हैं। और इसकी मदद से मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की और कुछ मानक पुस्तकों का अध्ययन किया। उन पुस्तकों से मैंने अपनी सेल्फ नोट्स बनाई और मैंने अपनी ही सेल्फ नोट्स का मल्टीपल टाइम रिवीजन किया और मार्केट में उपलब्ध कुछ स्टैंडर्ड बुक्स का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर का बार बार अध्ययन किया, जिसकी मदद से मैंने अपना रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया और उसके बाद अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट की। अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए मैंने अपने गुरुजनों और मित्रों का सहयोग प्राप्त किया। मैंने इसमें मॉक इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन का भी सहारा लिया, जिससे मैं अपने उत्तर के प्रति कॉन्फिडेंट हुई और कहाँ मेरे उत्तर में गलती है, कहाँ मेरे व्यक्तित्व में कमी रह गई, इस चीज को भी बहुत अच्छे से जान पाई और उसे सुधारने का प्रयास किया। मैं सभी एस्पिरेंट जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि आप नियमित रूप से 10 से 12 घंटे अपनी पढ़ाई को दें, अपने विषय की समझ को मजबूत बनाएं और एक व्यवस्थित टाइम टेबल को फॉलो करें। यदि आपका लक्ष्य स्पष्ट है और आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी।
0: दोस्तों अब सुनते हैं ये गीत सुनिधि चौहान की आवाज में, अंकुर अरोरा मर्डर केस फिल्म से।

दोस्तों अब बढ़ते हमारे अगले स्तंभ रोजगार समाचार की ओर। बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान IBPS ने क्लर्क CSA ग्राहक सेवा सहयोगी की भर्ती के लिए सूचना जारी की है। न्यूनतम आयु है 20 वर्ष, अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त 2026 है। शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री। उम्मीदवारों के पास कंप्यूटर संचालन भाषा में प्रमाण पत्र, डिप्लोमा या कंप्यूटर की डिग्री भी होनी चाहिए। पंजाब नेशनल बैंक ने भी लोकल बैंक ऑफिसर के पदों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। कुल पद हैं 545। आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 20 जुलाई 2026, आखिरी तिथि 9 अगस्त 2026। न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष है। शैक्षणिक योग्यता भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। दोस्तों अब हम सुनते हैं ये गीत रूप कुमार राठौड़ की आवाज में, रब ने बना दी जोड़ी फिल्म से।

दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन चलने से पहले आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है आप हमें जरूर बताइएगा। आप अपनी शिकायतें और अपने सुझाव हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है yuvvaadiriva@gmail.com। तो फिर मिलने के वादे के साथ अपनी रेडियो दोस्त ईशिका यानी मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ संध्या।

ये था युवा श्रोताओं का दैनिक प्रसारण युववाणी, प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर बाद होगा।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा।
4: ऑफिस जाने की जल्दी, मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
5: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
3: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
4: आकाशवाणी है ना,
6: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
4: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
3: शाम सुहानी हो,
7: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना।
4: घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
3: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
4: सफर में
3: आपके साथ
4: आकाशवाणी।

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूँ और आप सभी से गुजारिश करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।

फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं सुनीता सिंह आप सभी तक भेजती हूँ मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, रिमझिम बारिश का समय है, चारों ओर हरियाली के गीत गूंज रहे हैं। जी हाँ, सारा वातावरण मुस्कुरा उठा है और हर मन में खेल उठा है रंगों का खूबसूरत सा इंद्रधनुष। जी हाँ, चारों ओर बहुत ही खूबसूरत रंग बिखरे हुए हैं। वैसे रंग केवल आंखों को ही नहीं मन को भी छूते हैं। हमारी जिंदगी भी रंगों से ही तो बनती है। कभी लाल का उत्साह होता है, कभी हरी सी ताजगी होती है, कभी नीले सा सुकून, कभी काले सी रहस्यमय गहराई और कभी उजले सी निर्मल मुस्कान। और यही रंग जब फिल्मी गीतों में उतरते हैं तो केवल शब्द नहीं रहते, वो भावनाओं की एक पूरी दुनिया बन जाते हैं। तो आज के इस सुरीले से सफर में हम उन गीतों से मिलेंगे जहां रंग सिर्फ दिखाई नहीं देते बल्कि सुनाई भी देते हैं। फिल्म संगीत ने रंगों को केवल देखा नहीं बल्कि उन्हें सुरों में ढालकर हमारी यादों का स्थायी हिस्सा बना दिया है। तो आइए आज फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में चुनते हैं फिल्मी गीतों में बिखरे हुए कुछ खूबसूरत रंगों को।

श्रोताओं, रंग केवल दिखाई नहीं देते हैं, वो महसूस भी होते हैं उतने ही। गुलाबी रंग जीवन के उन पलों का रंग है जब मन बिना किसी वजह के मुस्कुरा उठता है। ये प्रेम का शोर नहीं, उसका संकोच है। ये प्रेम का इजहार नहीं, उसकी पहली सी आहट है। शायद इसीलिए जब किसी की आंखों में गुलाबी रंग उतरता है तो दुनिया कुछ और ही खूबसूरत लगने लगती है।

श्रोताओं, दिन के रंग अलग होते हैं और रात के रंग अलग होते हैं। जब नीला आसमान रात की चादर ओढ़कर शांत हो जाता है, तब बाहर का शोर भी थम जाता है और भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है। कुछ रिश्ते भी तो ऐसे ही होते हैं ना, वो बोलते कम हैं लेकिन बहुत कुछ कह जाते हैं। तो नीले रंग में डूबा एक ऐसा ही रिश्ता इस गीत में, आइए देखते हैं, सुनते हैं।

श्रोताओं, हर रंग का आकर्षण उसकी चमक में नहीं होता है। कुछ रंग मिट्टी की तरह सादे होते हैं, लेकिन वही सबसे ज्यादा अपने भी लगते हैं। कत्थई रंग हमें धरती की सूंधी महक, अपनापन और सहजता का एहसास कराता है। शायद यही कारण है कि कत्थई आंखों वाली खूबसूरती बाहरी चमक नहीं, सादगी का जश्न मनाती है।

में हम रंगों की बात कर रहे हैं, कत्थई आंखों की बात हुई, नर्म उजालों की बात हुई, अब बात कर लेते हैं लाल रंग की। भारतीय संस्कृति में लाल रंग केवल एक रंग नहीं है, ये एक संस्कार है, ये प्रेम है, आस्था है, समर्पण है, जीवन की पूर्णता का प्रतीक भी। जब मन ईश्वर या अपने प्रिय के प्रेम में पूरी तरह से भीग जाता है, तब वो कह उठता है कि उसे भी उसी रंग में रंगना है। लाल रंग वो है जिसे हमने सौभाग्य माना, जीवंतता माना, आशा कहा और अपने सपनों से जोड़ा।

तो श्रोताओं, रंग प्रकृति का सबसे सुंदर उपहार है। ये केवल आंखों को ही आकर्षित नहीं करते, मन की भाषा भी बन जाते हैं। हिंदी फिल्म संगीत ने इन रंगों को केवल देखा नहीं, इन्हें महसूस किया। गीतकारों ने रंगों को शब्दों में ढाला, हमारे संगीतकारों ने उन्हें सुरों का स्पर्श दिया और गायक कलाकारों ने उसमें भावनाओं की ऐसी आभा भर दी कि ये रंग हमारी स्मृतियों का स्थायी हिस्सा बन गए। रंग बदलते रहते हैं, मौसम बदलते रहते हैं, समय भी बदलता रहता है, लेकिन मनुष्य की भावनाएं कभी नहीं बदलती। और शायद यही कारण है कि इन गीतों को हम जब भी सुनते हैं, हमारे जीवन में नए रंग ये भर देते हैं। तो इन्हीं रंगों की मधुर छटा के साथ अब इजाजत दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को इस कार्यक्रम से। नमस्कार।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबा से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। समय है इस घंटे की खास खबरों का।
1: नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत कल 2 अगस्त को नई दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के युवाओं को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक कर स्वस्थ, जिम्मेदार और नशा मुक्त जीवन शैली को बढ़ावा देना। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज जबलपुर में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जबलपुर स्थित मेडिकल यूनिवर्सिटी का विकास एम्स की तर्ज पर किया जाएगा। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के प्रभाव को और अधिक व्यापक बनाने के उद्देश्य से प्रदेश में आज से विशेष पीएम स्वनिधि पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। शासन और नागरिकों के बीच विश्वास को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश भर में 7 अगस्त से 8 जनवरी 2027 तक मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान चलाया जाएगा। 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर वस्त्र मंत्रालय 7 अगस्त को राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय समारोह का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में उपस्थित रहेंगी। और केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त जारी की है। मंत्रालय द्वारा जारी राज्यवार विवरण के अनुसार मध्य प्रदेश को 8,010 करोड़ रुपए मिले हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं सुनीता सिंह और आप तक भेजती हूँ मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं फिल्म संगीत के

कभी कोई बन जा रहा। ये पात्र केवल फिल्मों के चरित्र नहीं है, ये भारतीय जीवन की स्मृतियां हैं। इन्होंने हमारे लोक गीतों से जन्म लिया कभी तो कभी साहित्य से इन्होंने संस्कार पाए और फिल्म संगीत में अमर हो गए। इन्हें देखकर लगता है कि सिनेमा ने केवल कहानियां नहीं सुनाई, उसने भारत के साधारण मनुष्य को भी असाधारण सम्मान दिया। तो हमने सोचा कि क्यों ना फिल्म संगीत को आज एक अलग रंग दिया जाए। आज के इस कार्यक्रम में आपकी मुलाकात कुछ ऐसे ही खूबसूरत किरदारों से करवाई जाए। दोस्तों, धरती पर जन्म लेने वाला हर मनुष्य एक मुसाफिर है। कोई मंजिल की तलाश में निकलता है, कोई अपने भीतर पहुंचने के लिए निकलता है। रास्ते बदलते रहते हैं, साथ ही बदलते रहते हैं, लेकिन ये जो सफर है ये हमेशा चलता रहता है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि मुसाफिर कभी अकेला नहीं होता, उसके साथ उसके अनुभव चलते हैं। और मुसाफिर कभी ऐसा भी होता है जो अपने चलने को ही अपनी पहचान बना लेता है।

ये मुलाकात थी एक मुसाफिर से, और चलिए इसी सफर में आगे बढ़ते हैं। और ये सफर तय होगा पानी पर। जी हाँ, जहाँ आपका इंतजार कर रहा है एक माझी। वैसे श्रोताओं, माझी का विश्वास किनारे पर नहीं, अपनी पतवार पर होता है। लहरें उसे डराती नहीं, रास्ता दिखाती हैं। जीवन भी एक नदी है, कभी शांत तो कभी उफनती हुई। जो धैर्य और विश्वास के साथ पतवार थामे रखता है, वही अंततः किनारा पा लेता है, ये बात कहता है माझी। तो आइए सुनते हैं उस माझी की पुकार, जो हर लहर में उम्मीद खोज लेता है।

कितने संदेश देता ये गीत है माझी के स्वर में। एक यात्रा पर तो हम निकले ही हुए हैं श्रोताओं, और अब आप सोच रहे होंगे कि अगला किरदार कौन सा होगा। तो चलिए यात्रा को ही आगे बढ़ाते हुए उस सफर की बात करते हैं जो इन दिनों तो कम नजर आती है, लेकिन हाँ पुराने जमाने में ये यात्रा खूब होती थी और इसकी याद अब भी हमारे दिलों में बसी हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गाड़ीवान की, जो बैलों को हांकता है और सरपट गाड़ी दौड़ती है। गाड़ीवान जानता है कि हर यात्रा केवल तेज चलने से पूरी नहीं होती है, रास्ते की धूल, पेड़ों की छांव, बैलों की थकान और साथ चलने वालों की सांसों का सम्मान भी करना पड़ता है। शायद जीवन भी यही सिखाता है कि रफ्तार से ज्यादा जरूरी है संतुलन। तो आइए लोक की माटी से उपजी इसी सरल सी बात को सुरों में ढालता हुआ एक प्यारा सा गीत सुनते हैं।

और श्रोताओं, आइए आगे बढ़ते हैं और एक ऐसे किरदार से आपको मिलवाते हैं जो गुजरे ज़माने में भी हमारे समाज में खूब उपस्थित था, आज भी है। तो जाहिर सी बात है कि वो फिल्मों में भी इसी तरह रचा बसा किरदार था। हमारी जो संस्कृति है वो शब्द को ब्रह्म कहती है, स्वर को अमृतत्व प्रदान करने की बात करती है। तो इसी शब्द और स्वर से जुड़ा हुआ वो किरदार है शायर। शायर जानता है कि उसका जीवन सीमित है, लेकिन उसके शब्द समय से कहीं अधिक लंबे होते हैं। वो अपनी प्रसिद्धि का नहीं, अपनी संवेदना का उत्तराधिकारी होता है। शायर चला जाता है, पर उसकी पंक्तियाँ पीढ़ियों तक लोगों के दिलों में गूंजती रहती हैं। तो आइए आज इस कार्यक्रम में आपको भी मिलवाते हैं एक ऐसे ही शायर से।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आज आपके साथ हूं मैं सुनीता सिंह। श्रोताओं, इस खूबसूरत सी यात्रा में गीतों के जरिए अलग अलग किरदारों से हम आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे और मिलवाते हैं एक ऐसे किरदार से आपको जो गुजरे जमाने का ही किरदार कहा जा सकता है, क्योंकि इन दिनों तो नजर नहीं आता, लेकिन जब था तो इसकी धूम भी खूब थी और लोगों के मन में इसके लिए पसंदगी भी खूब थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जोकर की। जोकर शायद दुनिया का सबसे सच्चा कलाकार है। वो अपने चेहरे पर हंसी का रंग चढ़ाता है ताकि किसी और की आंखों में आंसू ना आए। उसकी मुस्कान एक अभिनय है, लेकिन उसका दर्द बिल्कुल सच्चा। तो आइए उस जोकर से मिलते हैं जो हंसी के पीछे छिपे जीवन का सबसे गहरा दर्शन आपको सुनाता है।

और दोस्तों, अब आपकी मुलाकात हम करवाने जा रहे हैं उस किरदार से जिसके बिना जीवन न तो पहले संभव था न आज संभव है। जी हाँ, वो है हमारा अन्नदाता। किसान जब खेत में बीज डालता है तो वो केवल अन्न नहीं बोता, आने वाले कल का विश्वास भी बोता है। उसकी हथेलियों की लकीरों में मौसम लिखे होते हैं और उसके पसीने में पूरे देश का भविष्य चमकता है। तो आइए लिए चलते हैं आपको उस खेत की ओर जहां हरियाली का उत्सव है और इस उत्सव के बीच गूंजती किसान की आवाज़।

और श्रोताओं, चलिए कार्यक्रम के अंत में उस किरदार से आपको मिलवाते हैं जो इस तरह से जीवन जीता है कि जाने कितनी बातें सिखा जाता है। हम कह सकते हैं कि उसका जीवन साधारण जीवन नहीं है, वो जीवन की एक पूरी अवधारणा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बंजारों की, जो किसी एक गांव या शहर के नहीं होते, पूरी धरती उनका घर होती है। वो ठहरना नहीं जानते क्योंकि उन्हें विश्वास है कि हर नया रास्ता एक नया अनुभव देगा। उनके गीतों में आज़ादी की खुली हवा है और जीवन का अनंत विस्तार है। तो आइए सुनते हैं उनकी मुक्त आत्मा का ये संगीत।

श्रोताओं, आज की इस खूबसूरत यात्रा में जिन किरदारों से आप मिले वो केवल फिल्मी पर्दे के पात्र नहीं थे, वो हमारे समाज की धड़कन थे और हैं। चलते रास्तों का मुसाफिर, लहरों से संवाद करता माझी, शब्दों से समय को अमर करता शायर, हंसी के पीछे दर्द छिपाए जोकर, मिट्टी में भविष्य बोता किसान, जीवन की रफ्तार को संयम से साधता गाड़ीवान, या खुले आकाश को अपना घर मानने वाले बंजारे। समय बदल गया है, बातें बदल गई हैं, लेकिन इन किरदारों की जो आत्मा है वो आज भी हमारे बीच, हमारे भीतर जीवित है, क्योंकि ये केवल पेशा नहीं था, जीवन के मूल्य हैं यात्रा, धैर्य, प्रेम, त्याग, श्रम, करुणा, उम्मीद और अपनापन। यही कारण है कि फिल्मी गीतों की उम्र कभी समाप्त नहीं होती है। इनके सुरों में हमारे समाज की स्मृतियां हमेशा धड़कती रहती हैं, हमारे लोक जीवन की खुशबू और हमारी संस्कृति की धड़कन इनमें गूंजती रहती है। तो उम्मीद है कि आज के जो गीत हमने आपके लिए खास तौर पर चुने आपको पसंद आए होंगे, बातें भी पसंद आई होंगी। अब इजाज़त दें इस कार्यक्रम से अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लीजिए अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
1: उड़ान हौसलों की, उड़ान सपनों की, उड़ान उन मंजिलों की ओर जो बाहें फैलाए आप सबका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हैं।
2: श्रोताओं, आपने अक्सर इस बारे में अपने आसपास के गांव, शहर में सुना होगा। घरेलू हिंसा का मतलब है हमारे घर या पड़ोस या कहीं भी किसी औरत के साथ मारपीट करना या उसको शारीरिक व मानसिक रूप से कष्ट पहुंचाना। यह एक बहुत ही घिनौना अपराध है जो आजकल हमारे समाज में बहुत ही चिंता का विषय बना हुआ है। आज का नाटक इसी विषय पर आधारित है। यह नाटक एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसकी माँ की मृत्यु हो गई थी।

0: और उसकी माँ के मर जाने के बाद उसके पिता उसकी शादी एक बहुत ही ज़्यादा उम्र के आदमी के साथ करा देते हैं। उसके बाद वह लड़की कैसे शारीरिक व मानसिक रूप से घरेलू हिंसा का सामना करती है और कैसे इस लड़ाई को जीत लेती है, आइए सुनते हैं इस पर आधारित एक नाटक।
1: अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो यह स्थिति ना होती। मेरी माँ तो मुझे बहुत प्यार करती थी और खुद से ज्यादा मेरी परवाह भी करती थी।
2: कोमल, ओ कोमल, कहाँ है तू? दरवाजा तो खोल, स्कूल नहीं जाना क्या? कितने दिन हो गए तुझे स्कूल गए हुए?
1: अरे सुमन, तू सब ठीक तो है ना? बहुत दिनों बाद आई है, आओ बैठो।
2: नहीं कोमल, बैठने का समय नहीं है, तुम जल्दी चलो, स्कूल के लिए देर हो रही है।
1: सुमन, तुझे तो पता है ना, मेरी माँ के चले जाने के बाद मैं घर से बाहर नहीं निकली हूँ और मेरे पापा ने मेरा स्कूल जाना भी बंद करवा दिया है।
2: क्यों, ऐसा क्यों हो गया? तेरा स्कूल जाना बंद क्यों करवा दिया?
1: माँ के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है, तो घर के सारे काम मुझे संभालने पड़ते हैं ना, इसीलिए तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगी।
2: ठीक है कोमल, जैसी तेरी मर्जी, बाय।
0: कोमल सुमन के घर से जाने के बाद बहुत उदास हो जाती है। तभी वहाँ पर उसके पिताजी आ जाते हैं जो नशे की हालत में होते हैं। कोमल उनको ऐसी हालत में देखकर डर जाती है और बिना कुछ बोले वापस अंदर चली जाती है और अपने काम में लग जाती है।
3: कोमल, ओ कोमल, कहाँ मर गई है तू? जल्दी से मेरे लिए पानी लेकर आ। अरे ये लोग ना मेरी सुनते नहीं है, इसकी माँ तो मर गई, अब इसका बोझ भी मुझे उठाना पड़ रहा है।
1: पिताजी लीजिए पानी।
3: रख दे पानी यहाँ पे, और अभी तक खाना नहीं बनाया? भूखा मारने का इरादा है क्या? तू भी अपनी माँ के साथ क्यों नहीं मर गई थी? मैं तो ये दुआ करते उसी दिन मर जाती तू भी।
1: पिताजी आप शराब क्यों पीते हो? आप शराब पीना छोड़ दो, क्योंकि मैंने माँ को खो दिया है, मैं आपको नहीं खोना चाहती हूँ पिताजी।
3: अरे मेरे सामने जुबान चलाती है? बहुत जुबान चलने लगी है तेरी, चल खाना ला। और सुन, सुबह तैयार रहना, तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं, ठीक है?
0: अगली सुबह कोमल को देखने के लिए लड़के वाले आ जाते हैं। जब यह बात कोमल की चाची और चाचा को पता चलती है तो वो बहुत गुस्सा होते हैं, क्योंकि कोमल की उम्र अभी बहुत ही कम थी और अभी उम्र शादी करने की नहीं थी, इसलिए कोमल के चाचा चाची उसके पिताजी के पास समझाने के लिए जाते हैं।
4: राजू कहाँ हो, बाहर आओ, ये सब हम क्या सुन रहे हैं? तुम कोमल बिटिया का रिश्ता कर रहे हो और हमें बताना जरूरी नहीं समझा?
0: हाँ भाई साहब, आपने हमें बताया क्यों नहीं, और लड़का कौन है और कैसा है, ठीक है या नहीं है, आपने कुछ पता भी किया है या नहीं?
5: अरे इसमें पूछने और बताने वाली कौन सी बात है, मेरी बेटी है, मैं उसके लिए जो भी करूँगा ठीक ही करूँगा ना।
4: फिर भी भाई होने के नाते बता तो देते, और वैसे भी कोमल की उम्र अभी है ही क्या, जो तुम्हें शादी कितनी जल्दी पड़ी है।
0: भाई साहब हम मानते हैं कि कोमल आपकी बेटी है, उसके पिता आप हैं, पर फिर भी एक चाचा चाची होने के नाते उस पर हमारा भी तो एक हक है।
5: वो तो आपकी बात ठीक है। आइए भाई साहब, आइए अंदर आइए, आपको आते समय कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना?
6: अरे नहीं भाई साहब, कोई तकलीफ नहीं हुई, आप सुनिए सब ठीक तो है ना?
5: हाँ जी सब ठीक है, आइए बैठिए।
7: आप जल्दी से अपनी बेटी को बुला दीजिए, हम भी तो देखें हमारी होने वाली बहू कैसी दिखती है।
5: कोमल बेटा जल्दी बाहर आओ।
7: आओ बेटा आओ, मेरे पास बैठो। भाई साहब मैं तो आपकी बेटी बहुत पसंद है, अगर आपको हमारा लड़का पसंद हो तो रिश्ता पक्का समझें।
5: हाँ जी बहन जी, हमें भी आपका लड़का बहुत पसंद है।
0: भाई साहब आपको लगता नहीं कि लड़के की उम्र कुछ ज्यादा ही है, और इसकी आंखें और शक्ल कुछ अजीब सी है, और इसकी आंखें कितनी लाल है।
5: भाभी आपको तो हर किसी में कमियां ही दिखती हैं, आपका तो काम दूसरों की कमियां निकालना है।
4: पर राजू भाई रीना ठीक कह रही हैं, मुझे भी लड़का सही नहीं लग रहा, कुछ तो गड़बड़ है।
3: आप दोनों तो चुप हो जाओ।

0: लड़का ठीक है और मुझे पसंद है, बात खत्म। मेरी बेटी है तो लड़का भी मेरी पसंद का ही होगा।
1: भाई साहब, अगर आपकी सहमति है तो रिश्ता पक्का समझे।
0: हाँ जी जरूर, मुबारक हो, ये लीजिए, मुंह मीठा करो, बधाई हो आपको।
1: आप भी कीजिए।
2: इस तरह कोमल की शादी तय हो जाती है और कोमल के चाचा और चाची के समझाने के बाद भी कोमल के पिता उनकी नहीं सुनते और कोमल की शादी उस अधेड़ उम्र के आदमी के साथ कर देते हैं। शादी के बाद कोमल अपने ससुराल चली जाती है।
3: कोमल बेटा, खाना बन गया है क्या? जल्दी से खाना लगा दो, तुम्हारे ससुर जी आते होंगे।
4: जी माँ जी, खाना तैयार है, आप बैठिए, मैं खाना लगा देती हूँ।
5: भाभी, आज खाने में क्या बनाया है? मुझे बहुत तेज भूख लगी है।
4: लौकी की सब्जी और चावल और साथ में रोटी।
5: भाभी, यह सब क्या घास फूस बनाया है? आपको पता नहीं है क्या, हमारे घर में ज्यादातर मसालेदार व तली हुई चीजें बनती हैं, और जो आपने ये बनाया है ये तो बिल्कुल फीका है, ना इसमें मिर्च है ना इसमें नमक है।
3: बहू, कविता ठीक कह रही है, हमारे यहाँ घास फूस नहीं खाते, क्योंकि हमारे घर में शुद्ध देसी घी में तली हुई चीजें ही और ज्यादातर मसाले वाले व्यंजन ही बनते हैं। तेरे बाप ने तुझे खाना बनाना भी नहीं सिखाया क्या?
4: माँ जी, आपको तो पता ही है ना कि मैं तो बचपन से ही बिना माँ के पली बड़ी हुई हूँ। मुझे तो सादा और सिंपल सा खाना बनाना आता है, ये मसालादार चटपटे व्यंजन मुझे बनाने नहीं आते।
3: बहू, तुम्हें यहाँ आए हुए अभी 4 दिन भी नहीं हुए और तुम हमारे सामने जबान चला रही हो। ये घर मेरा है, तुम्हारे बाप का नहीं, यहाँ वही होगा जो हम चाहेंगे।
4: पर माँ जी,
3: चुप हो जाओ।
6: अरे दरवाजा खोलो, कहाँ मर गए सारे के सारे?
5: भाई आ गए आप, आओ अंदर आओ, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ।
6: मुझे भूख नहीं है, कोमल कहाँ है? कहाँ है वो महारानी?
5: सो रही होंगी महारानी, उनको काम ही क्या है। भाभी ने आज मम्मी से भी बहुत बदतमीजी से बात की, मम्मी बहुत उदास है, बोल रही थी कैसी बेकार बहू घर में आ गई है।
6: अच्छा, इस कल की आई लड़की की इतनी हिम्मत होगी जो मेरी माँ को पलट के जवाब देती है और मेरी माँ को भी रुलाया। अभी बताता हूँ इस महारानी को।
4: आ गए आप, लीजिए पानी पी लो।
6: मुझे नहीं पीना तुम्हारे हाथ का पानी।
4: विनोद, आज क्या हुआ तुम्हें? आपको पता है आज क्या हुआ? माँ जी ने छोटी सी बात पर मेरे ऊपर हाथ उठाया।
6: मुझे सब पता है कि किसकी गलती है और किसकी नहीं। आज तुम्हारी वजह से मेरी माँ इतनी दुखी है और वो रो भी रही है।
4: पर मैंने तो उन्हें कुछ भी नहीं कहा।
6: अच्छा, तो अब तुम्हारी इतनी हिम्मत होगी कि तुम मेरी माँ को झूठी और गलत बता रही हो?
4: मेरी कोई गलती नहीं है।
6: चुप हो जाओ तुम, तुम्हारी जुबान ऐसे बंद नहीं होगी, रुको जरा।
4: आए, मर गई मैं तो। माँ मुझे बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे, मत मारो मुझे, छोड़ दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। हे भगवान, प्लीज मुझे भगवान के लिए मुझे छोड़ दो।
6: नहीं नहीं, अब तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा, आज जो तुम्हारी इस कैंची की तरह चलने वाली जुबान को काट कर फेंक दूंगा।
4: मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे प्लीज।
6: चलो, आज तो तुम्हें छोड़ रहा हूँ, अगर दोबारा मेरी माँ को कुछ कहा ना तो सच में जान से मार दूंगा तुझे।
2: कोमल सारी रात रोती रहती है और अपने जख्मों को देख देख कर जोर जोर से रोने लगती है, परंतु उसकी रोने की आवाज सुनकर भी कोई उसे देखने के लिए उसके पास नहीं आता और वो ऐसे ही सारी रात अपनी माँ को याद करते रोती रहती है। अगले दिन सुबह हो जाती है पर कोमल अपने कमरे से बाहर नहीं आती, क्योंकि पिछली रात उसके साथ शरीर पर इतने जख्म थे, कोमल से ठीक से चला ही नहीं जा रहा था। तभी उसकी सास और उसकी ननद कमरे में आ जाती है।
3: अब उठ भी जाओ, अपनी मरी हुई माँ का बहुत मातम मना लिया, अब जल्दी उठो और हमारे लिए खाना बना दो।
5: हाँ भाभी, बहुत भूख लगी है, जल्दी से मसालेदार बटर नान और दाल फ्राई और पकौड़े बना दो।
7: अरे भाई, आज सुबह का नाश्ता कुछ मिलेगा या ऐसे ही पानी से पेट भरना पड़ेगा? बहू के भी आने का कोई सुख नहीं है, समय पर ठीक से मनपसंद खाना भी नहीं मिल पाता।
4: माँ जी, वैसे मैंने कभी ये सब चीजें बनाई नहीं, ना मुझे किसी ने सिखाया है, पर फिर भी आप सभी की खुशी के लिए मैं बना देती हूँ।
7: बहू, तुम्हें अपनी सास की बात पहले से मान लेनी चाहिए थी, अगर पहले मान लेती तो इतना सब कुछ न सहन करना पड़ता। चलो छोड़ो इन बातों को, खाना लाओ जल्दी से, बहुत भूख लगी है।
2: इस तरह कोमल को ससुराल में कई महीने

0: गुजर जाते हैं, पर कोमल की स्थिति दिन प्रतिदिन पहले से भी खराब हो जाती है। हर रोज के लड़ाई झगड़े सहते सहते कोमल तंग आ चुकी थी। फिर एक दिन ऐसा आया कि कोमल को लगा मैं खुद की जिंदगी खत्म कर दूं, और इसी सोच के साथ वो एक कदम उठाती है।
1: हर रोज की मार पिटाई से तो तंग आ गई हूँ मैं, क्यों ना मैं ऐसा करूँ कि खुद को ही खत्म कर दूं? नहीं नहीं, मैं ऐसी अपनी जान नहीं ले सकती, क्योंकि अगर मैं मर गई तो मेरा बच्चा भी मेरे साथ मर जाएगा, और इन सब बातों में इस नन्ही सी जान का क्या कसूर है? नहीं नहीं, मैं नहीं मरूंगी, मैं अपने मायके चली जाऊंगी।
2: कोमल, तुम यहाँ? सब कुछ ठीक तो है ना? और दामाजी कहाँ है? और तुम्हारी यह हालत कैसे हुई?
1: पिताजी, ऐसे हैवान के साथ शादी करने से तो अच्छा आप खुद मुझे जान से मार देते, तो आज मुझे ये नरक वाली जिंदगी नहीं जीनी पड़ती।
0: देखो भाई साहब, मैंने तो पहले ही बोला था कि लड़का ठीक नहीं है।
3: हाँ राजू, यदि तुमने मेरी बात मान ली होती तो तुम्हें आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तुमने अपने नशे की वजह से बेटी को बोझ समझकर उसे नरक में फेंक दिया है।
2: मुझे आप सभी माफ कर दीजिए, सारी मेरी गलती है, जिसकी सजा मेरी फूल सी बेटी को भुगतनी पड़ी। कोमल, तुमने भी समझदारी से काम लिया है जो यहाँ वापिस आ गई और कुछ गलत कदम नहीं उठाया और बड़ा हादसा होने से बच गया।
0: इस तरह राजू इंस्पेक्टर के साथ कोमल के ससुराल जाता है।
4: इंस्पेक्टर साहब, आप सब इन लोगों को गिरफ्तार कर लीजिए, इन सभी ने मेरी बेटी की ये हालत की है और उसकी जिंदगी बर्बाद की है।
5: मैं मानता हूँ मैंने जो गलती की है वो माफी के लायक नहीं है, पर फिर भी मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो, हमारे होने वाले बच्चे के लिए माफ कर दो, एक मौका दे दो मुझे, आगे से ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा।
1: आप ऐसे हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, प्लीज आप ऐसा मत बोलिए, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफी है।
0: तो श्रोताओं, सुना आपने एक लड़की की समझदारी और सूझबूझ ने उसको मौत के मुंह में जाने से बचा लिया। सचमुच कोमल उन सभी औरतों के लिए एक प्रेरणा है जो अपने घर में घुट घुट कर जी रही हैं, और ना जाने कितनी औरतें ऐसे हालातों को सहन नहीं कर पाती और मौत को गले लगा लेती हैं। श्रोताओं, हम आपसे ये निवेदन करते हैं कि अगर आप ऐसे हालातों से लड़ रहे हैं तो डरे ना और ना हार माने, साहस और बहादुरी से काम लें और खुद की जिंदगी को एक नए सिरे से जीना शुरू करें, और जुर्म और हालातों के खिलाफ आवाज उठाएं, अपने हक के लिए लड़ें और साहसी बनें।
6: तो श्रोताओं, आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं या आप अपने अनुभवों को हमसे बांटना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं। हमारा फोन नंबर है
7: 8860088827। जी हाँ, 8860088827।
6: और हमारा पता है, कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ, कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। तो श्रोताओं, मुझे एना कर्मा को दीजिए अनुमति, आपसे हम जल्द मुलाकात करेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।

ये था प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म तमाशा से। आवाजें अरिजीत सिंह और अलका याग्निक की हैं, बोल इरशाद कामिल के और धुन ए आर रहमान की।

और अब आइए आपको सुनवाते हैं एनिमल फिल्म का गीत, अरिजीत सिंह की आवाज है। इसे लिखा है सिद्धार्थ गरिमा ने और संगीत श्रेयस पुराणिक का है।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। शाम के 7 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का युवा अब दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश का युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है।
1: स्वामी विवेकानंद जी युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं ये देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा

0: श्री मोदी ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं।
1: आज यहां करीब 18,000 करोड़ रुपीज की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र की स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री कल नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त जारी की। ये राशि 10 अगस्त को निर्धारित नियमित मासिक किस्त के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजी और विकास व्यय में तेजी लाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को आज महाराष्ट्र के पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लोकमान बाल गंगाधर तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने यह पुरस्कार प्रदान किया। श्री शाह ने कहा कि श्री डोभाल ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णयों को लागू करने में श्री डोभाल की प्रमुख भूमिका रही है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज भलसवां कचरा निस्तारण स्थल केंद्र का निरीक्षण किया और दिल्ली नगर निगम के अपशिष्ट निपटान कार्यों की समीक्षा की। श्री मनोहर लाल ने नगर निगम को निर्देश दिया कि लैंडफिल साइट पर आने वाले नए अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए हाल ही में आवंटित कार्य में तेजी लाई जाए। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार आज फिर शुरू हो गया। इसके साथ ही 6 वर्ष से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में सकारात्मक संकेत है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज अब तक भारत ने 3 और स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। महिला मुक्केबाजी में प्रीति पवार और जैस्मिन ने स्वर्ण पदक जीते। जदुमणि सिंह ने रजत पदक जीता। सोनम राणा ने पैरा एथलेटिक्स के शॉटपुट F57 वर्ग में स्वर्ण और शुभम जुआल ने रजत पदक जीता। ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने रजत और सेल्वा प्रभु तिरुमरन ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 8 स्वर्ण, 15 रजत और 7 कांस्य समेत कुल 30 पदकों के साथ 6ठे स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

पहले जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों की। शाम 7:25 पर आकाशवाणी भोपाल से आप सुनेंगे बुंदेली समाचार। किसान भाइयों के लिए किसानवाणी कार्यक्रम का प्रसारण होगा शाम 7:30 पर। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण के अंतर्गत रात 8 बजे हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम इस सप्ताह संसद में। इसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। सुर्खियों में ये कार्यक्रम होगा रात 8:15 पर। रात 8:30 का समय होगा फिल्म संगीत के कार्यक्रम का। रात 9:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से हम अनुप्रसारित करेंगे कार्यक्रम साहित्य भारती। और दिल्ली से ही रात 10 बजे सुनिए संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। इसमें आज आप सुनेंगे चिन्मय सिस्टर्स का युगल कर्नाटक गायन। ये थी जानकारी हमारे आज के शेष कार्यक्रमों की। और अब एक संक्षिप्त सा परिचय कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का। आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत सुबह 6:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। श्री रामचरित मानस गान सुनिए 6:30 पर। 6:40 का समय होगा

चिंतन का और कृषि चर्चा सुनी जा सकती है 6:45 पर। सुबह 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार भोपाल, सुरमई सवेरा। फिल्म संगीत पर आधारित ये कार्यक्रम होगा सुबह 8:30। 9:15 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में कल हम आपको सुनवाएंगे बहादुर सिंह नरवरिया और साथियों के गाए हुए कुछ बुंदेली लोकगीत, सिंधियत जी सुरहान। ये कार्यक्रम होगा सुबह 9:30 पर। इसमें कल आप सुनेंगे भारती ठाकुर की वार्ता, पर्यावरण संरक्षण आज की जरूरत। जिले की चिट्ठी सुनिए सुबह 10:00। 10:05 पर सामुदायिक गान शिक्षा पाठ का कार्यक्रम होगा। इसमें कल आप सुनेंगे हिंदी सामुदायिक गीत और उसका पाठ। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 10:30 पर। और शाम 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम होगा। इसमें कल शाम 7:30 से रात 8:00 के बीच किसान भाई सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा। विषय होगा खरीफ फसलों में समसामयिक कार्य। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण के अंतर्गत सुबह 11:00 आप सुन सकते हैं फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। आपकी फरमाइश का प्रसारण समय दिन में 12:00। संग्रहालय से इस कार्यक्रम में दोपहर 12:30 हम आपको सुनवाएंगे धारावाहिक कामिनी काय कांतारे की 18वीं कड़ी। महिला सभा का प्रसारण होगा दिन में 1:00। प्रस्तुति आकाशवाणी शिवपुरी की होगी। 1:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम होगा। 1:45 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये दोनों कार्यक्रम हमारे शिवपुरी केंद्र का योगदान होंगे। दिन में 2:00 आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत के कार्यक्रम का। 2:30 पर बच्चों के साथ आप शामिल हो सकते हैं उनकी अपनी महफिल बाल सभा में। प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की होगी। शाम 5:02 पर युवा श्रोताओं के लिए युववाणी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। प्रस्तुति आकाशवाणी शिवपुरी की होगी। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा शाम 5:33 पर और शाम 6:00। सुर्खियों में ये कार्यक्रम होगा रात 8:00। 8:15 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम डगर विकास की। कल का ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान विषय पर केंद्रित होगा। प्रस्तुतकर्ता प्रवीण चौरे। ये हमारे बैतूल केंद्र का योगदान होगा। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं रात 8:30। 9:30 आकाशवाणी दिल्ली से हम अनुप्रसारित करेंगे रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम। और रात 10:00 आकाशवाणी दिल्ली से हम अनुप्रसारित करेंगे अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा। इसमें कल आप सुनेंगे सुधाकर देवले का ख्याल गायन। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज जबलपुर में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। प्रदेश भर में 7 अगस्त से मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान चलाया जाएगा और आगामी 24 घंटों के दौरान राजगढ़, अलीराजपुर सहित प्रदेश के 10 जिलों में भारी बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा शामिल होंगे। माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों, युवा क्लबों, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, गैर सरकारी संगठनों, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठों और 125 से अधिक आध्यात्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। इस अभियान के अंतर्गत हर रविवार देश भर में जागरूकता और जनभागीदारी बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें खेल प्रतियोगिताएं, वॉकथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, परिचर्चाएं, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक कार्यक्रम शामिल हैं। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें समाज में सकारात्मक बदलाव का वाहक बनाना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में 362 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार अमृत 1.0 सीवेज परियोजना और कठौदा, ललपुर और तेवर में बने 3 बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण पहल करते हुए जबलपुर स्थित मेडिकल यूनिवर्सिटी का विकास एम्स की तर्ज पर किया जाएगा।
3: अब एम्स भारत सरकार के माध्यम से क्यों बनना चाहिए, एम्स हमारा प्रदेश का भी बने, इसलिए यहाँ मेडिकल यूनिवर्सिटी हमारा एम्स के रूप में विकसित होगी। भविष्य में ये जबलपुर का मॉडल बनेगा जो बाकी जगह हम लगाएंगे। विकास के लिए परिपूर्ण प्लान बनाने की जरूरत है। ऐसे में इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन सिटी बनी, भोपाल मेट्रोपॉलिटन सिटी बनी, तो मैं यहीं से घोषणा कर रहा हूं जबलपुर भी मेट्रोपॉलिटन सिटी बनेगा, 1 साल के अंदर बनेगा, ये हमारा संकल्प।
2: इस दौरान मुख्यमंत्री ने डुमना नेचर पार्क में कैच द रेन अभियान के अंतर्गत 11 लाख पौधारोपण अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत उमरिया, डुमना और कठौंदा में मियावी की पद्धति से 5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के प्रभाव को और अधिक व्यापक बनाने के उद्देश्य से प्रदेश में आज से विशेष पीएम स्वनिधि पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। नगरीय विकास और आवास विभाग द्वारा 15 अगस्त तक ये अभियान प्रदेश के सभी जिलों, नगरीय निकायों और संबंधित सेंसेक्स टाउन में एक मिशन मोड कार्यक्रम के रूप में संचालित किया जाएगा। अभियान की थीम स्वनिधि से समृद्धि, आत्मनिर्भर शहरी मध्य प्रदेश की ओर निर्धारित की गई है। अभियान के माध्यम से वित्तीय समावेशन, डिजिटल सशक्तिकरण, स्वरोजगार संवर्धन और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को गति प्रदान करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। प्रदेश भर में जन जागरूकता गतिविधियों, विशेष शिविरों, बैंक समन्वय बैठकों, हितग्राही संपर्क अभियानों और मीडिया और डिजिटल संचार गतिविधियों के माध्यम से अधिकतम पात्र पथ विक्रेताओं तक पहुँच बनाई जाएगी। केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त जारी की है। ये राशि 10 अगस्त को निर्धारित नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजी और विकास व्यय में तेजी लाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। मंत्रालय द्वारा जारी राज्यवार विवरण के अनुसार मध्य प्रदेश को 8,010 करोड़ रुपये मिले हैं।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
2: समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश भर में 7 अगस्त से मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पहले जन विश्वास दौरे पर 7 अगस्त को छिंदवाड़ा में आयोजित जिला स्तरीय समाधान कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर दर्ज चिन्हित शिकायतकर्ताओं से व्यक्तिगत रूप से संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं के निराकरण की समीक्षा करेंगे। 8 जनवरी 2027 तक चलने वाले मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान का उद्देश्य शासन और नागरिकों के बीच विश्वास को करना, शिकायतों के त्वरित और प्रभावी निराकरण को सुनिश्चित करना और जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा करना है। इस दौरान मुख्यमंत्री, मंत्रीगण और

वरिष्ठ अधिकारी नियमित मैदानी भ्रमण कर आमजन से संवाद करेंगे। प्रदेश में आज से विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है। आगामी 7 अगस्त तक चलने वाले सप्ताह के दौरान विभिन्न जनजागरूकता और स्वास्थ्य संवर्धन गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। सीहोर जिले में कलेक्टर ने जिले के सीएमएचओ, डीपीओ, जनपद सीईओ, सभी बीएलओ सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सप्ताह के दौरान सभी गतिविधियों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत लगभग 200 रुपये कम कर दी है। कटौती के बाद दिल्ली में वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमत 2738 रुपये हो गई है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अनुसार वाणिज्यिक सिलेंडर की नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। इस फैसले से रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल और खाने पीने के कारोबार से जुड़े लोगों को राहत मिलेगी। 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर वस्त्र मंत्रालय 7 अगस्त को राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय समारोह का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में उपस्थित रहेंगी। मंत्रालय ने कहा कि इस समारोह का उद्देश्य भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत का उत्सव मनाना और राष्ट्र के सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में हथकरघा बुनकर समुदाय के योगदान को मान्यता देना है। अब बात मौसम की। प्रदेश में पिछले 48 घंटों के दौरान मालवा निमाड़ क्षेत्र, विशेषकर इंदौर और उज्जैन संभाग में कई स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश दर्ज की गई। खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, रतलाम और धार समेत पश्चिमी जिलों में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित रहा। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के राजगढ़, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, गुना, शिवपुरी और श्योपुरकला जिलों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभागों के कई जिलों में बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर राजगढ़ पुलिस ने जिले भर में व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया। मानव तस्करी की रोकथाम और जन जागरूकता विषय पर बहुहितधारक कार्यशाला आयोजित की गई। खंडवा में महान गायक और अभिनेता किशोर कुमार के जन्म दिवस के अवसर पर 2 से 4 अगस्त तक 3 दिवसीय खंडवा गौरव दिवस का आयोजन किया जाएगा। शहडोल जिले में पुलिस विभाग पेपरलेस कामकाज की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। ऑनलाइन एफआईआर के बाद अब जिले में अपराधों की जांच पूरी तरह से डिजिटल होगी। खरगोन जिला सहकारी केंद्र बैंक ने रबी उपार्जन, रासायनिक खाद वितरण, ई विकास पोर्टल के सफल संचालन, कृषि ऋण वितरण और ऋण वसूली जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। और मंडला जिले में की अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर शुचि उपाध्याय का चयन राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी NCA के विशेष प्रशिक्षण शिविर के लिए हुआ है। ये शिविर 2 से 27 अगस्त तक बेंगलुरु में आयोजित होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

राष्ट्रभाषा हिंदी द्वारा ही भारतीय संस्कृति की रक्षा हो सकती है। पुरुषोत्तम दास टंडन।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

प्लास्टिक पॉलीथीन का छोड़ो साथ, प्रकृति से मिलाओ हाथ। प्लास्टिक पॉलीथीन थैलों का उपयोग भूमि की उर्वरा शक्ति के लिए है रोग। खरीदारी करते समय कपड़े से बना थैला हमेशा साथ रखें। यदि पर्यावरण बचाना है, पॉलीथीन दूर हटाना है। प्लास्टिक पॉलीथीन का छोड़ो साथ, प्रकृति से मिलाओ हाथ। प्लास्टिक पॉलीथीन थैलों का उपयोग भूमि की उर्वरा शक्ति के लिए है रोग। खरीदारी करते समय कपड़े से बना थैला हमेशा साथ रखें। यदि पर्यावरण बचाना है, पॉलीथीन दूर हटाना है।

0: वाणी। खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम किसान वाणी।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, प्रधानमंत्री।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन करें।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: भुंसारी से जब सावन

0: इनकी फुहारन से भीगी भई धरती नई उम्मीदों से महकत है, तो सबसे पहले एक किसान जागत है और उनके कदमों के संग जागत है उम्मीदें, उनके पसीना से लहलहात हैं फसलें और उनकी मेहनत से भरत है पूरे देश की थाली। सो उ अन्नदाता की आवाज, उनकी बात, उनकी तरक्की और उनके विश्वास को साथी बनके आकाशवाणी भोपाल लेके आओ है किसानन के लाने अपनो नव कार्यक्रम किसान वाणी। देखो भैया, खेती सिर्फ रोजी रोटी को जरिया नहीं होते है, बल्कि अपने जीवन और देश की खुशहाली को आधार भी है। सो मनु जय मारे, खेती से जुड़ी नई और सरकारी योजनाओं की सही जानकारियां, वैज्ञानिक सलाह और सफल किसानन के अनुभव अब नियमित रूप से आप तक पहुंचे किसान वाणी के माध्यम से हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार संजय बेरा 7:30 बजे से। तो राम राम भैया बहनों हरो, किसान वाणी कार्यक्रम में सभी जनों को स्वागत है। हमारा नाम है राधा चौरे। हम दो ही हाथ जोड़ के सभी किसान भैया बहनों को स्नेह भरी राम राम करत है, सो स्वीकार करवे। भैया हरो, आज किसान वाणी के ई पहले अंक में सबसे पहले बात कर है वर्षा जल संचयन की। जान है कि बरसात की हर बूंद को सहेज के अपनी खेती को कैसे और अधिक समृद्ध बनाओ जा सकत है। इके संगे सुने कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर प्रकाश अम्बालकर की उपयोगी सलाह, संगे बलराम कृषि योजना के बारे में सोई अपन चर्चा कर है। तो उतई जान है मौसम के मुताबिक खेती किसानी से जुड़ी जरूरी सलाह भी और मंडियों के भाव भी। तो भैया किसानन की बात होए और मनोरंजन ना होए, मनोज्यो कैसे हो सकत है। सो लोग की सोई सुन भी मिल है। तो शुरू करत है आज की पहली चर्चा से, विषय है वर्षा जल को संचयन। कहत है बरसात की हर बूंद आबिबारी काल की पूंजी होत है। सो अगर वर्षा के पानी को सही ढंग से सहेज लो जाए तो जोई पानी सूखे दिनन में फसलों को सहारो बन सकत है। वर्षा जल संचयन केवल पानी बचावे को उपाय नहीं है, बल्कि खेती को मजबूत, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनावे की भी एक महत्वपूर्ण पहल है। तो आओ जानत है कि कैसे बारिश के मौसम में खेतन से जल निकासी और जल स्तर प्रबंधन कर सकते हैं और कैसे बरसात की हर बूंद को बचा के हम अपनी खेती और अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं। इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर प्रकाश अम्बालकर जी और इनसे बातचीत करी है बहन अंशु तिलेठे ने। तो सुनत है जब भेंट वार्ता।
1: नमस्कार किसान भाइयों, भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत में कृषि बहुत हद तक मौसम पर निर्भर करती है। खास तौर पर यदि बारिश अधिक हो जाए तो किसानों को अपने खेतों में जल भरने की समस्या का सामना करना पड़ता है। फसलें पीली पड़ने लगती हैं या खराब भी हो सकती हैं। इसी समस्या का समाधान हम आज की अपनी भेंटवार्ता के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। हमारा आज का विषय है बारिश में खेतों से जल निकासी और जल स्तर प्रबंधन। हमारे आज के इस विषय के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रकाश अम्बालकर जी। आप सेवानिवृत्त मुख्य तकनीकी अधिकारी हैं केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल से। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार
1: सर। जैसा कि हमारा विषय है और सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि बारिश से खेतों में पानी ज्यादा हो जाता है, फिर वो खेतों के लिए मुसीबत कैसे बन जाता है?
2: देखिए, अगस्त माह में कहीं कहीं जगह आपने देखा होगा कि अधिक बारिश हो जाती है या भारी बारिश भी होती है तो पानी इकट्ठा होने लगता है खेतों में, जिससे खेतों में लगी हुई फसल जैसे मक्का है, सोयाबीन है, दलहनी फसलें हैं और तिलहनी फसलें के साथ साथ सब्जियां जो हैं उनकी जड़ें यदि 24 से 48 घंटे तक पानी में डूबी रहती हैं तो वो सड़ने लगती हैं, क्योंकि भरे हुए पानी में जड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। इस कारण जो पौधों की पैदावार पे असर आता है और ये केवल इन्हीं फसलें जो बताई उसमें ही नहीं, अगर धान की भी बात करें तो धान में भी यदि ज़्यादा देर तक पानी रुकता है तो धान में कल्ले निकलना कम हो जाते हैं और धान के जो जिसको टिलरिंग भी कहते हैं अपन, वो के कम होने कारण 30-50% तक धान के उत्पादन पे असर होता है। तो किसानों का अपनी फसल का उत्पादन कम मिलता है और इसीलिए किसानों को इस समय खासकर अगस्त महीने में जल निकासी की तरफ और जल को निकासी किए हुए जल को एकत्रित करके जल का दोहन करने के लिए तालाब का भी निर्माण करना चाहिए। तो इस तरीके से उनको ड्रेनेज, जिसको जल निकासी कहेंगे उसकी तरफ, और जल संचय जिसको अपन वाटर हार्वेस्टिंग कहेंगे उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। इस

0: खासकर इस माह में।
1: बहुत बहुत अच्छी जानकारी सर, आगे बढ़ेंगे हम और आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे किसान भाइयों को ये तो बताया कि ज़्यादा पानी की खेतों से निकासी तो जरूरी है, पर इसके लिए कोई कृषि यंत्र का उपयोग किया जा सकता है और हमारे किसान भाई इस कृषि यंत्र को कम खर्च पर कैसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।
0: देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसमें सबसे पहली बात है कि हम जल निकासी के लिए यदि हमारे पास 45 हॉर्स पावर का भी टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है या 50 हॉर्स पावर से 55 हॉर्स पावर का, जिसमें 50 हॉर्स पावर का फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है जिसका यदि वजन 2000 किलो से ज्यादा है तो इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं, पर 45 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है उसमें थोड़ा सा वो धीरे चलता है, जिसमें हम लगाते हैं मोल प्लाव। ये मोल प्लाव लगाने के ट्रैक्टर के बारे में मैंने बताया। अब ये मोल प्लाव जो होता है इसमें एक पाया होता है और जो 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर की गहराई में जा सकता है और इसमें एक गोलाकार जो जिसको अपन कहते हैं गोल एक्सपांडर, मतलब ये एक लोहे का गोला रहता है जो नीचे लगा हुआ होता है और ये सुरंग बनाने का काम करता है। तो जब ट्रैक्टर इसको खींचता है तो ट्रैक्टर इसको चीरते हुए जाता है, भूमि है उसको चीरते हुए जाता है खेत की भूमि में और ये सुरंग बनाता है। तो जो ये गोला रहता है वो क्या करता है, 5 से 7 सेंटीमीटर के नीचे सुरंग बनाता है 40 सेंटीमीटर गहराई पे और ये मजबूत बना देता है सुरंग को, और सुरंग को मजबूत बनाने के कारण ये सुरंग 3 से 4 साल तक बढ़िया चलती है और 6 से 8 मीटर के अंतराल पे अपन ये पूरे खेत में इस तरीके से सुरंग बना देते हैं तो जल की निकासी बड़ी अच्छी तरीके से इसके माध्यम से हो जाती है। तो इसमें क्या है कि केवीके में भी जाके वो बात करें या आत्मा परियोजना के जो अधिकारी होते हैं उनसे भी जा करके अपनी संपर्क करके डेमोन्स्ट्रेशन लिस्ट रेट देख करके भी वो अपने खेत के लिए मंगा सकते हैं।
1: जी सर, बहुत उम्दा जानकारी सर। हम आगे बढ़ेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ ज़रूरी है हमारे किसान भाइयों को यह जानना कि वर्षा के इस निकासी किए हुए जल को आगे फसलों की सिंचाई और भूजल रिचार्ज के लिए वे कैसे उपयोग में ला सकते हैं।
0: देखिए इसमें सबसे बड़ी बात यह जानने की जरूरत है कि बारिश तो अगस्त में अच्छी हो जाती है लेकिन सितंबर में पानी कम होता है और फिर अक्टूबर में भी और कम हो जाता है पानी। तो जो पानी अगर हम बहा देंगे ना तो यही पानी अब हमारे उपयोग में आएगा। तो इसके लिए क्या है कि किसानों को एक तालाब बनाने की आवश्यकता होती है जिसमें ये जल संग्रहित करें। यदि कुआं है तो वहां तक भी पानी ले जाएं, लेकिन जहां तक अगर नहीं है तो हमारे पास तालाब यदि हमको का निर्माण करना पड़े तो यदि हमारे किसान के पास 1 से लेकर 2 एकड़ तक की अभी जमीन है वो चाहे तो 30 फुट बाई 30 फुट और 10 फीट गहरा एक तालाब बना सकते हैं। अब वो तालाब बना करके पूरा का पूरा पानी उस तालाब में ला सकते हैं। अब ये क्या होता है जब ये तालाब में पानी लाते हैं तो कई बार इसके लिए भी उनको मशीन चाहिए होती है, तो जो अपन बैकहो मशीन कहते हैं जिसका नाम वो मॉडल है इसका, ज्यादातर किसान जेसीबी के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये क्या 1600 रुपए किराए पे प्रति घंटे के किराए से मिल जाता ही है और ये लगभग आप बताएं जिसमें डीजल का खर्च भी इसमें शामिल ही रहता है और यदि वो ट्रांसपोर्ट होके कहीं दूर से आती है तो वो लोग 2000 रुपए तक भी उसका ले लेते हैं। तो इस हिसाब से यदि ये आ जाती है मशीन तो किसान जो है ना 8 से 10 घंटे तक, मतलब यदि मिट्टी ढीली है और मिट्टी यदि सख्त है तो 12 से 15 घंटे तक तालाब बनने में ये लगता है। तो जो खेत में जो जल जब इकट्ठा हो जाता है ये ड्रेनेज का तो वो क्या होता है कई बार अपने साथ गाद भी लाता है, मतलब जिसको अपन कहते हैं सिल्ट। तो वो गाद जो है पहले अपन एक छोटा सा तालाब के पहले गड्ढा बना लें तो जो अच्छा पानी है वही तालाब में जाएगा और जो गाद है
1: जो
0: कीचड़ है वो जाके आपका गड्ढे में समा जाएगा। तो इस तरीके से क्या है जब वो प्रवेश द्वार पे एक सिल्ट ट्रैप जो छोटा गड्ढा बना देना चाहिए तो उसमें मिट्टी वहीं रुक जाएगी और साफ पानी अपने को हमेशा मिलता रहेगा। और अब ये पानी के कारण क्या होता है कि किसानों को साल भर पानी की समस्या नहीं आती है। तो ये पानी रोकना बहुत जरूरी है हमारे लिए और इससे जल प्रबंधन भी बहुत अच्छा होता है।
1: जी सर, बहुत अच्छी जानकारी। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जल स्तर प्रबंधन के लिए छोटे तालाब के निर्माण से अमूमन खेत का जल स्तर कितना बढ़ता होगा।
0: देखिए ये बहुत आवश्यक जानकारी है, किसान यदि ये जानेंगे तो उनको बहुत फायदा होगा। सबसे पहले देखिए तालाब यदि भरने के कुछ हफ्तों के भीतर जो खेत में मौजूद खुले कुएं हों या उथले हुए बोरवेल होते हैं जो ट्यूबवेल, उनका पानी तुरंत बढ़ जाता है तालाब के कारण। और यदि आपकी 2 एकड़ भी जमीन है किसान के पास में तो उनका जल स्तर करीब 1.5 मीटर से लेकर 1.25 मीटर तक बढ़ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा लाभ है किसान को कि उसका बढ़ा हुआ जो तालाब का स्तर है वो उसके कारण उसका जो बोरवेल है वो साल भर उसको पानी देता है, ये बहुत बड़ा लाभ है।
1: जी सर, सर हम जानना चाहेंगे आपसे कि छोटे तालाब के निर्माण के बारे में आपने हमें बताया, क्या किसान भाइयों को शासन की तरफ से इसके लिए कोई सहायता या अनुदान मिलता है।
0: बिल्कुल, देखिए भारत सरकार की जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है जिसको अपन कहते हैं PMKSY, और राज्य सरकारों की जैसे मध्य प्रदेश में बलराम तालाब योजना है के तहत खेत तालाब बनाने और ड्रिप सिस्टम लगाने के लिए 50-80% तक की सब्सिडी यानी अनुदान मिलता है। अब यदि किसान भाई अपने नज़दीकी कृषि विभाग में जाएँ, KVK में जाएँ, वहाँ के कार्यालय में जा करके इसका पूरा लाभ उठाने के लिए पूरी जानकारी इकट्ठी करके उस पर अपना कार्य आरंभ करें और सब्सिडी को प्राप्त करें।
1: किसान भाइयों, अभी हमने जाना बारिश में खेतों से जल निकासी और जल प्रबंधन विषय पर, ये महत्वपूर्ण जानकारी। हमें पूरी आशा और विश्वास है कि हमारे किसान भाई इस जानकारी का भरपूर फायदा उठाएंगे। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद जी।
2: तो अब अपन ने जाने बारिश के मौसम में खेतन से जल निकासी और जल स्तर प्रबंधन के बारे में जानकारी दे रहे थे डॉक्टर प्रकाश अंबालकर, और इनसे बातचीत करी थी बहन अंशु तिलेठे ने। उम्मीद है कि आज की चर्चा से आप हे समझने में मदद मिली हुई है कि अगर हर किसान अपने खेत में छोटे छोटे जल संरक्षण के उपाय अपना है तो पानी की बचत के संगे संगे सिंचाई को खर्च भी कम हुई है और फसल को समय पे पानी भी मिल जाए। भैयाहरो, अच्छी खेती में मेहनत के संगे संगे सही जानकारी हो वो भी बहुत ही जरूरी है। अच्छा, सरकार टेम टेम पे किसानन के लाने कई योजनाएं चलाते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में बहुत से किसान भैया उनको पूरा लाभ नहीं ले पाते। ऐसी एक महत्वपूर्ण पहल है बलराम कृषि योजना। ई योजना को उद्देश्य है किसानन की खेती के लाने आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करावो, आधुनिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावो देवो और खेती को अधिक लाभकारी बनावो। और तो और, योजना के अंतर्गत पात्र किसानन है सरकार निर्धारित प्रावधानन के अनुसार सहायता भी उपलब्ध कराते हैं। सो अगर आप और ई योजना को लाभ लेवो चाहते हो तो अपने नजदीकी कृषि विस्तार अधिकारी, कृषि विभाग के कार्यालय या फिर किसान कल्याण विभाग से संपर्क कर सकते हो। उतने से आप है आपकी पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन की पूरी जानकारी मिल जाए। और भैयारो, अब हम आपके लाने लेके आए हैं एक लघु वार्ता। कैसे भैयारो? अबे देखो, वर्षा ऋतु के संगे संगे खरीफ फसलन की बुआई को काम लगभग पूरा हो चुको है और अब फसलन की उचित देखभाल को समय है। कैसे? अच्छी पैदावार केवल समय पे बुआई से ही नहीं होती, बल्कि समय समय पे करी जावे वाले कृषि कार्यन पे भी निर्भर करत है। तो आओ जानत है कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर स्वप्निल दुबे से खरीफ फसलों के समसामयिक कार्यन पे उपयोगी जानकारी।
3: नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर स्वप्निल दुबे, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र रायसेन। आज हम खरीफ फसलों पर समसामयिक चर्चा करेंगे। जैसा कि इस समय हम देख रहे हैं कि प्रदेश में खरीफ फसलों की बुआई लगभग हो चुकी है, जिसमें सोयाबीन, मक्का, उड़द, अरहर, धान आदि फसलें लगाई गई हैं। इसमें अभी जो हम देख रहे हैं कि कहीं कहीं फसल 10 से 12 दिन की, कहीं 15 से 20 दिन की फसल हो गई है, और इस समय हमको जो है पौध संरक्षण का कार्य जो है विशेष रूप से ध्यान रखना है। जैसा कि इस समय हम देख रहे हैं कि खरीफ फसलों में जो है खरपतवार की समस्या रहती है, खरपतवार आते हैं, कहीं कहीं जो है कीटों का प्रकोप आता है। सोयाबीन में कहीं कहीं पत्ती काटने वाले कीट जो है ब्लू बीटल का प्रकोप आता है, कहीं इल्ली का प्रकोप आता है, मक्के में भी इल्ली का प्रकोप आता है। तो इस तरह से देखा जाए तो खरीफ फसलों में कहीं ना कहीं पौध संरक्षण के कार्य, तो किसान भाई सुबह और शाम के समय अपने खेत की निगरानी करें, और यदि उनको कोई कीट व्याधि रोग बीमारी दिखता है तो तुरंत अपने कृषि वैज्ञानिक केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक या हमारे कृषि विकास अधिकारी या कृषि अधिकारी से हम संपर्क करें। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस समय खरीफ की फसलों में खरपतवार का नियंत्रण होना बहुत आवश्यक है। इस बार मानसून भी कहीं कहीं जो है देर से आया है और कई जगह अच्छा तेज पानी भी नहीं गिरा है, तो जब भी हम कोई खरपतवार नाशक दवा का छिड़काव करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि उस समय खेत में पर्याप्त नमी का होना आवश्यक है। जैसा कि अभी पिछले 3-4 दिनों में प्रदेश के हर क्षेत्रों में कहीं ना कहीं बारिश हो रही है। सोयाबीन की फसल की यदि हम बात करें, खरपतवार नियंत्रण के लिए कई जो अच्छी दवाइयाँ आती हैं उनका हम उपयोग कर सकते हैं। जो पहले से ही दो दवाइयाँ मिलकर आती हैं, कॉम्बिनेशन वाली आती है, जैसे सोडियम एसीफ्लोरोफेन प्लस क्लोडिनोफाफ करके आती है, इसकी मात्रा रहेगी 400 ml एकड़ के हिसाब से, या प्रोपाक्यूजाफाफ प्लस इमिडाज़ेपाम रहेगी, ये भी जो है आपके 800 ml एकड़ के हिसाब से। तो कोई भी एक दवा का हम उपयोग कर सकते हैं। सोयाबीन की हम बात करें, अरहर उड़द की फसल भी लगाई जाती है, उसमें भी खरपतवार नियंत्रण आवश्यक है। इमिडाज़ेपाम करके दवा है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं 300 ml एकड़ के हिसाब से, या इमिडाज़ेपाम प्लस प्रोपाक्यूजाफाफ करके आता है 800 ml या 2 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से हम उपयोग कर सकते हैं। कई क्षेत्रों में किसान भाइयों ने इस बार मक्का की फसल भी लगाई है। मक्के में भी सक्रिय और चौड़ी पत्ती के खरपतवार आते हैं, उसके लिए जैसे टेम्बोट्रियान प्लस एट्राजिन है, इसका हम उपयोग कर सकते हैं, या होलोसल्फुरान प्लस एट्राजिन है, इसका हम उपयोग कर सकते हैं, तो कोई एक हम दवा का उपयोग करेंगे। कई क्षेत्रों में धान की रुपाई भी की गई है और धान की जो है सीधी बुआई भी की गई है। तो जिन क्षेत्रों में धान की सीधी बुआई की गई है वहाँ पे धान के बोने के तुरंत बाद पेटीराक्लोर प्लस पैरोजो सल्फुरान करके दवाई आती है, 800 ग्राम प्रति एकड़ की दर से हम उपयोग कर सकते हैं। और जहाँ पर रोपित धान जो है धान का रोपा करके लगाया जा रहा है उसमें यदि कचरे की समस्या आ रही है तो उसके लिए भी कॉम्बिनेशन वाले 2 जो हमारे खरपतवार नाशक आते हैं जैसे क्लोरीम्यूरान प्लस मेट सल्फुरान या साइलोफॉप ब्यूटाइल प्लस पेनाक्सोसुलम, तो कोई भी हमारी खरीफ की फसल हो, चाहे सोयाबीन हो, मक्का हो, मूँगफली हो, तो इसमें रासायनिक हम जो है खरपतवार का नियंत्रण जो है इसको हम कर सकते हैं। केवल सावधानी ये रखनी है कि हमको 1 एकड़ में लगभग 200 लीटर पानी का उपयोग करना है। खेत में जब पर्याप्त नमी हो तब हमको जो है खरपतवार नाशक दवा का छिड़काव करना है और खरपतवार नाशक की जो अनुशंसित मात्रा है उतनी ही मात्रा का घोल बना के छिड़काव करना है और अलग से 2-2, 3-3 दवाइयों को नहीं मिलाना है। यदि हमारे किसान भाई ये 3-4 बातों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित है खरीफ फसलों में हम खरपतवार को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि कई कई फसलों में कीटों का प्रकोप, जैसे सोयाबीन की फसल में इस समय देखें जिसको आप झिरझिरा कहते हैं और हम अपनी वैज्ञानिक भाषा में ब्लू बीटल कहते हैं, तो इसका भी प्रकोप देखा जा रहा है। कहीं कहीं हरीली का प्रकोप देखा जा रहा है। तो पहले हम ये देख लें कि 1 मीटर कतार में हमारे कितने कीट हैं, उनका आर्थिक क्षति स्तर क्या है, उस हिसाब से हम जो है कीटनाशक का उपयोग करेंगे। तो इसके लिए यदि हमारे ब्लू बीटल है तो जैसे क्लोरपाइरीफास आता है 50 cc या प्रोफेनो प्लस साइपर आता है, इस दवा का हम उपयोग कर सकते हैं। कहीं कहीं तना मक्खी का प्रकोप भी देखा जाता है, तो इसके लिए हम गर्डल बीटल है थायक्लोरपिट करके एक दवाई आती, इसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो इस समय चाहे सोयाबीन की फसल हो, उड़द की फसल में एक पीला रोग या सोयाबीन की फसल में एक पीला रोग एक मुख्य समस्या रहती है, तो इसका नियंत्रण भी करना बहुत आवश्यक है। तो पहले आप अपने खेत का जो है मुआयना करें। खेत में जैसी आपको 2-3 पत्ती 4 पत्ती 10 पत्ती या पौधे पीले दिखते हैं तो उन पौधों को उखाड़ के तुरंत नष्ट करें और एक जो है उपयुक्त कीटनाशक का उपयोग करें। सिंथेटिक पैराथ्राइड्स का उपयोग नहीं करना है, ये किसान भाई ध्यान रखें। इसकी जगह जैसे थायोमेथॉक्साम आता है या एसिटामिप्रिड आता है, इथोफेन प्राक्स आता है कोई, या हमारा जो है इमिडाक्लोरपिड आता है, कोई एक दवा का जो है आप घोल बना के आप छिड़काव करेंगे तो ये पीला रोग बड़े आसानी से नियंत्रित हो जाएगा। साथ ही कहीं कहीं जो अपन देख रहे हैं कि कहीं कहीं सोयाबीन की फसल जो है कहीं कहीं सूख रही है, अत्यधिक नमी या कहीं कहीं पानी का भराव हो रहा है, तो वहाँ राइजोक्टोनिया राट करके एक समस्या आती है, तो उसके लिए थायोफेनेट मिथाइल। तो इस समय किसान भाई बिल्कुल ध्यान रखें, यदि आप अपनी फसल में खरपतवार का, कीटों का, रोगों का प्रबंधन करते हैं तो निश्चित है आपकी खरीफ की फसल की पैदावार अच्छी होगी और आपको जो है अधिक आय प्राप्त होगी।
2: तो जे हते कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर स्वप्निल दुबे, जिनने खरीफ फसलन के समसामयिक कारण से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करी अपन के संगे। आशा करत हैं जे जानकारी हमारे किसान भैया हरों के लाने उपयोगी सिद्ध हुई है। और भैया अब चौमासे को बखत है और किसान वाणी में किसानन से जुड़ी लगभग सभी जरूरी बातें हो गई हैं, बल्कि खूब हो गई हैं। सो कायन आप तनक मनोरंजन सोई हो जावे। वैसे हम जानत हैं कि हमारे भैया अरे मन ही मन कह रहे हुई हैं, अरे राधा बहन नेकी और पूछ पूछ जिन करो सीधो सुनवाई दो, है नहीं जई है का भैया मन में? हाँ राधा बहन आपकी सब जानत है। सो भैया मौसम को देखत भाई सुनत है एक बढ़िया सो सावन गीत, जिए गाओ है गोविंद सिंह यादव और साथियों ने।

वाह भैया, आनंद आ गया सुन के लोक गीत। और जब बात बिल्कुल ही सही है, अपने लोक गीतन में भी अपनी मिट्टी की खुशबू रच बच जाते हैं। और अब अपने भैया हरों के लाने खेती किसानी से जुड़ी जरूरी सलाह सुई दे देवे। सबसे पहले बात करें मक्का की, तो भैयारो बुआई से पहले बीज को 2 ग्राम थायरम एवं 1 ग्राम कार्बन डाइजिम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर लेवे। उसके बाद 5 ग्राम एजिटोबैक्टर एवं 5 ग्राम PSB कल्चर प्रति किलोग्राम बीज से उपचारित कर लेवे। बुआई के समय कतार से कतार की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर, तो उतई पौधे से पौधा की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखने हैं अपन है। वृक्षारोपण के लाने उन्नत किस्म के पौधन की व्यवस्था करें और जो पहले से तैयार गड्ढे करे हैं उनमें पौधों को रोपण करें। सब्जियों की बात करें तो सबसे पहले बुआई से पहले बीज को 2 ग्राम थायरम एवं 1 ग्राम

0: कार्बन डाइजेम प्रति किलोग्राम बीज की दर से अपन है उपचारित करने हैं। बुआई के लाने खेत की मेड़ जो नालियां रथ हैं उन्हें पद्धति से तैयार करवें और अदरक हल्दी के खेतों में उचित दूरी पे जल निकासी के लाने नालियां जरूर बनावें। तो भैया हरो जे हते आपके लाने खेती किसानी से संबंधित जरूरी सलाह।
1: तो भैया हरो एक के संगे आज की किसान वाड़ी में बस इतनो ही। तो भैया आपको आज को जो कार्यक्रम कैसो लगो ई में अपन को और का सुधार करने हैं, और अगर आपके मन में भी खेती किसानी से जुड़ो कोनो सवाल होए या आप कोनो विषय पे जानकारी चाहत हो तो हमें जरूर लिख भेजियो। पतो रहे किसान वाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी श्यामला हिल्स भोपाल और पिन कोड है 462002। अब राधा बहन खो दो आज्ञा एक बार फिर दो ही हाथ जोड़ के सभी भैया बहनों को हमारी स्नेह भरी राम राम।
2: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: पुतला बोल रहे
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ,
3: पर हम तो सभी डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

0: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम किसान वाणी।
1: आकाशवाणी भोपाल से भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब आकाशवाणी दिल्ली से हम अनुप्रसारित करते हैं कार्यक्रम इस सप्ताह संसद में।

प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर भारी हंगामा किया। इस वजह से पूरे सप्ताह दोनों सदनों में गतिरोध बना रहा। हालांकि दोनों सदनों ने लंबी चर्चा के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी प्रदान कर दी। सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को पूर्वाह्न 11 बजे लोकसभा की बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में मीराबाई चानू समेत अन्य भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उल्लेख किया। सदन ने सभी विजयी खिलाड़ियों, उनके प्रशिक्षकों और टीम इंडिया को बधाई और शुभकामनाएं दी। इसके बाद प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस समेत कई विपक्षी सदस्यों ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर हंगामा किया। इस कारण सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे आरंभ हुई तो विपक्षी सदस्यों ने फिर नारेबाजी शुरू कर दी। इस हंगामे के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया, लेकिन सदन में हंगामा जारी रहने पर

अध्यक्ष ने दोपहर 12:08 पर सदन की बैठक 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन से संबंधित इस विधेयक में परीक्षाओं में

कि सारे सदस्य तैयारी के साथ आए हैं, लेकिन कांग्रेस और उसके कुछ साथी इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे। सदन में हंगामा जारी रहने के कारण कार्यवाही कुछ मिनट बाद ही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्यों ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर हंगामा किया। हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक बार बार बाधित हुई और चार बार के स्थगन के बाद शाम करीब 5:15 बजे की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। 11:00 बैठक शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को लेकर सदन में हंगामा जारी रखा और बैठक 12:00 तक के लिए स्थगित कर दी गई। 12:00 जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी सांसदों ने फिर यही मुद्दा उठाया और मांग की कि गृह मंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर सदन में बयान दें। हंगामे के कारण सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही 2:00 तक के लिए स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद 2:00 बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू कराने का प्रयास किया। सदन में हंगामे को देखते हुए उपसभापति ने बैठक 3:00 तक के लिए स्थगित कर दी। 3:00 बैठक शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और विपक्ष के कई सदस्य आसन के समीप आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। हंगामे को देखते हुए उपसभापति ने बैठक 5:15 तक और पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। मंगलवार को लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध समाप्त होने के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ कड़े प्रावधान वाले इस विधेयक को पेश करते हुए कहा कि यह विधेयक सरकार के विद्यार्थियों के कल्याण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि परीक्षाओं में गड़बड़ियों और प्रश्न पत्र लीक आदि की घटनाएं पहले भी होती रही हैं और विभिन्न राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारों के दौरान भी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने परीक्षा प्रश्न पत्र निरोधक कानून को मोदी सरकार की विफलता का स्मारक करार दिया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को सदन में इसका जवाब देना चाहिए कि प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया। भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि इस संशोधन विधेयक को लाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशीलता और उनकी सरकार की जिम्मेदारी का प्रमाण है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि जो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी नहीं रोक पाए वो पेपर लीक भला कैसे रोक पाएंगे। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि सरकार जेन ज़ी का भरोसा वापस जीतना चाहती है तो प्रधानमंत्री को कैमरे का एंगल नहीं बल्कि दिल का एंगल भी बदलना पड़ेगा। विधेयक पर देर रात तक चर्चा हुई जिसमें विभिन्न दलों के कई सदस्यों ने हिस्सा लिया, चर्चा अधूरी रही। उधर राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। वे विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहे थे। हंगामे के कारण बैठक एक बार के स्थगन के बाद 2:00 पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। 11:00 बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और फिर शून्यकाल शुरू करवाया। इसी दौरान विपक्षी सांसद अपनी सीटों से खड़े हो गए और विद्यार्थियों पर पुलिस द्वारा कथित बल प्रयोग का मुद्दा उठाया। सभापति ने हंगामा जारी रहने पर करीब 11:07 पर ही सदन की कार्यवाही 2:00 तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक दोबारा शुरू होने पर सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसी दौरान विपक्षी सदस्यों ने फिर से गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। मांझी ने कहा कि मूल विधेयक 2006 में बना था और इसमें समय तथा बदलती परिस्थितियों के अनुरूप सुधार करने की जरूरत है। उपसभापति ने सदस्यों से कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन सदन में व्यवस्था न बनते देख उन्होंने बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया।
बुधवार को लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। नीट पेपर लीक की पृष्ठभूमि में

लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में सख्त प्रावधान शामिल करने के लिए लाए गए इस संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की कुछ टिप्पणियों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस कारण सदन की कार्यवाही पहले एक बार करीब 40 मिनट के लिए अपराह्न 2:30 बजे तक और फिर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दिया और उनके जवाब के बाद सदन ने ध्वनि मत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। विधेयक पारित होने के बाद कांग्रेस सांसदों की नारेबाजी के बीच ही अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। चर्चा का जवाब देते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि नीट पेपर लीक के मामले में सरकार ने फौरन कार्रवाई की और 12 जुलाई को जांच सीबीआई को सौंप दी गई। उन्होंने कहा कि कल इस मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है और सुनवाई शुरू हो गई है। श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नए संशोधन विधेयक के प्रभाव में आने के बाद फास्ट ट्रैक अदालत में सुनवाई के साथ इस मामले में 5 महीने में फैसला आ जाएगा। इससे पहले विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक के खिलाफ विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए। इसका सत्ता पक्ष ने तीखा विरोध किया और उनसे माफी की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि या तो नेता प्रतिपक्ष बताएं कि किस आधार पर उन्होंने देश के एक जिम्मेदार व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाया है या फिर वह माफी मांगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष बिना किसी तथ्य, जांच और साक्ष्य के किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। उसी दिन गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु के पंजीकरण संबंधी कानून में संशोधन करने के प्रावधान वाला विधेयक भी सदन में पेश किया। उधर राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के कारण भोजनावकाश से पहले सदन की कार्यवाही बाधित रही। भोजनावकाश के बाद सदन ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनि मत से पारित कर दिया। इसके प्रावधानों के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान या उसका अपमान आपराधिक कृत्य माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। उच्च सदन में विधेयक पारित किए जाने के समय कांग्रेस सहित विपक्ष के सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे क्योंकि वे गृह मंत्री अमित शाह की गैर मौजूदगी सहित विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट यानी बहिर्गमन कर गए थे। हालांकि आम आदमी पार्टी, बीजू जनता दल, भारत राष्ट्र समिति और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपनी तुष्टिकरण की नीति के कारण वंदे मातरम को आजादी के बाद वह सम्मान नहीं प्राप्त होने दिया जो उसे प्राप्त होना चाहिए। विधेयक पारित होने के बाद कुछ सदस्यों ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। विशेष उल्लेख के बाद 3:15 पर बैठक पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। बृहस्पतिवार को लोकसभा में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों के शोरगोल के कारण सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित की गई। हंगामे के कारण कार्यवाही पहले दोपहर 2 बजे तक और उसके बाद 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उसके बाद बैठक शुरू होने पर सदन ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक को पारित कर दिया। उच्च सदन ने एक दिन पहले ही विधेयक को मंजूरी प्रदान की थी। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पर सदन में हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक

0: भारत इस पे बहुत कोशिश कर रही है। ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी तो बहुत पहले चल रहा है, लेकिन इस बार सरकार का जो एक स्कीम है कि हर घर एक अपने आप को अपने लिए भी ऊर्जा बनाने का एक जो स्कीम है सोलर स्कीम, और बाकी जो बचा हुआ है उनके वो ग्रिड में वो दे सकते हैं, बेच सकते हैं। ये कार्यक्रम लेकर सरकार ने बहुत इसके कदम लिया है, बहुत स्टेट्स भी इस कार्यक्रम को आगे ले जा रहा है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि कार्बन जो इमिशन की फुटप्रिंट, देखिए भारत एक देश जो है डेवलपिंग कंट्री है, जब हमारी रिक्वायरमेंट गरीबी को लड़ाई के लिए में काफी एनर्जी खर्चा करना पड़ रहा, फिर भी हम उस कमिटमेंट पर वचनबद्ध है जो पेरिस कॉन्फ्रेंस में हुआ था, उस हिसाब से जो नए नए प्रोजेक्ट्स किया जा रहे हैं जहां पे कैसे जो फॉसिल फ्यूल हो उसे हम जाके कैसे शिफ्ट करके कैसे ये हम अल्टरनेटिव सोर्सेस पर जाए। इसके साथ साथ आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जब भी विदेश जाते हैं रेयर अर्थ के लेकर भी, कि रेयर अर्थ भारत में हो या विदेश में, उसका भी नए एग्रीमेंट्स बना रहे जहां हमारे वैज्ञानिक हमारी इंडस्ट्री एक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में या ज्वाइंट वेंचर में बाहर जाके इसको एक्सप्लॉइट करने का भी कई समझौता हुआ है साउथ अमेरिका के कुछ कंट्रीज के साथ, यूरोप के कुछ कंट्रीज के साथ, अभी जो हाल में जो पीएम की जितनी फॉरेन विजिट रही है इस दिशा में रही है।
1: आज आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री ने 1880 करोड़ रुपए से ज्यादा की नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स की भी आधारशिला रखी, इन प्रोजेक्ट्स की मुख्य बातें क्या हैं?
0: देखिये ये जो कनेक्टिविटी की जो बात की जा रही है, देखिये प्राइम मिनिस्टर बार बार विकसित भारत की बात करते हैं जी, और प्राइम मिनिस्टर का ये भी एक लक्ष्य है कि जब तक हर राज्य का पूरा पोटेंशियल जब तक सामने नहीं आएगा तब तक भारत विकसित भी नहीं हो सकता। इसीलिए आज आंध्रा में स्वर्ण आंध्रा की बात की है, यानी गोल्डन आंध्र प्रदेश, उस दिशा में आज जो स्कीम्स है जो फाउंडेशन लगाया गया है, और प्राइम मिनिस्टर का आज जितने कार्यक्रम रहे हैं जो मतलब आप ले लीजिए जैसे विशाखपट्टनम से रायपुर एक्सप्रेस वे, वो एक उस क्षेत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो विशाखपट्टनम रायपुर के बीच में रेलवे लाइन तो है ही, जो ज्यादातर माइनिंग डिपॉजिट एरिया है वो जो उड़ीसा को भी टच करते हुए जाता है, और जो कनेक्टिविटी बढ़ा के जो वहां के जो हमारे जो मिनरल रिसोर्सेस है उसकी ठीक तरह से उपयोग करने के एक रास्ता खुला है
1: जी।
0: और उसके साथ साथ जो कोस्टल एरिया है कि जैसे विशाखपट्टनम तो पुराना बंदरगाह है
1: जी जी,
0: और कृष्णपट्टनम पुराने बंदरगाहों को जिसको माना जाता है हेरिटेज पोर्ट्स है उनकी आधुनिकीकरण वो भी एक बड़ा ये है। उसके साथ साथ में मैरीटाइम हब्स की बात की जा रही है जहां जैसे मुलपेट है, रामायपट्टनम है, ये जगह सब या फिशिंग भी हो सकती है, और साथ साथ सी फूड की इंडस्ट्री वहां आ सकती है, ये भी सरकार की बहुत बड़ी कोशिश है
1: जी। शिखर अय्यर जी, आप आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हुए और इस विषय पर अपने विचार हमारे साथ साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की आंध्र प्रदेश यात्रा और महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं के शुभारंभ पर चर्चा, इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार शिखर अय्यर, कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अनुभा रोहतगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: सुर्खियों में अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है फिल्म संगीत के कार्यक्रम का। आइए कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म सुहागन से, आवाजें लता मंगेशकर और मन्ना डे की हैं, गीतकार हैं हसरत जयपुरी और संगीतकार मदन मोहन।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, आनंद बख्शी का लिखा हुआ, एसडी बर्मन का संगीत है, आवाजें लता मंगेशकर और मन्ना डे की हैं, फिल्म का नाम है ज्योति।

राजा मेहदी अली खां का लिखा हुआ गीत अब आपको हम सुनवाने जा रहे हैं। मदन मोहन का संगीत है, आवाज लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम वो कौन थी।

कार्यक्रम का आखिरी गीत आपको हम सुनवाने जा रहे हैं दिल्ली का ठग फिल्म से। आवाजें आशा भोसले और किशोर कुमार की हैं। गीतकार SH बिहारी, संगीतकार रवि।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही पलों बाद।

सदियों बाद पैदा होता है एक महापुरुष और हमें दिखा जाता है रोशनी की अनगिनत राहें। आइए हम सब चलें उस मार्ग पर जो दिखाया महात्मा गांधी ने।

0: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा।
1: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
0: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
1: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
1: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
0: शाम सुहानी हो,
1: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
0: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
1: सफर में
0: आपके साथ
1: आकाशवाणी।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात के 8:45 होने वाले हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल में हुई प्रगति का श्रेय युवाओं को दिया।

0: प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्र ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता के लिए 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की अग्रिम राशि जारी की। भारत और चीन ने सिक्किम के नाथुला दर्रे से सीमा पार व्यापार फिर से शुरू किया। ओडिशा में बाढ़ का प्रकोप जारी, केरलम में लगातार बारिश से तबाही, 6 लोगों की मौत। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में जैस्मिन लैम्बोरिया तथा प्रीति पवार ने और पैरा एथलीट सोमन राणा ने शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीता। 7 भारतीय मुक्केबाज आज फाइनल में खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयां तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था।
1: स्वामी विवेकानंद जी युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं ये देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की है। आज युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है, भारत के युवाओं के सामर्थ्य से।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं। 4,000 से ज्यादा नई ITI बनाई गई, 9 नए IIM, 7 नई IIT और 13 नए MBA स्थापित किए गए हैं। आज देश में MBBS की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है।
0: श्री मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का अवसर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीतारामा राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में NDA सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं।
1: मुझे पूरा विश्वास है, आज यहाँ जितने भी प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है, जिनकी नींव रखी गई है, वो सारे प्रोजेक्ट स्वर्ण आंध्रा और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में बहुत बड़ा योगदान देंगे। आंध्र प्रदेश विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा ऊर्जा स्रोत बन रहा है। मैं एक बार फिर इन सभी परियोजनाओं के लिए आंध्र प्रदेश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: प्रधानमंत्री कल नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान

0: दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता देने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के केंद्रीय हिस्से की अग्रिम राशि के रूप में 2,117.85 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है।
1: बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए स्वीकृत सहायता के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को वित्त वर्ष 2026-27 की पहली किश्त की अग्रिम राशि के रूप में 44.55 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। वहीं असम के लिए पहली किश्त के रूप में 379.35 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जबकि गुजरात को 500 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश, जिससे वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली किश्त पहले ही जारी की जा चुकी है, उसे दूसरी किश्त की अग्रिम राशि के रूप में 193.95 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। वहीं ओडिशा को दूसरी किस्त के रूप में 500 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र के लिए पहली किस्त की अग्रिम राशि के रूप में 500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस मंजूरी का उद्देश्य बाढ़ प्रभावित राज्यों में जारी राहत और बचाव कार्यों को और सुदृढ़ करना है। प्रिया मंडल के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त जारी की है। यह राशि राज्यों को हर महीने मिलने वाली किस्त के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजी और विकास व्यय में तेजी लाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा 30 अगस्त को आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा ने कहा कि परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और अभ्यर्थी हितैषी बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को आज महाराष्ट्र के पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने यह पुरस्कार प्रदान किया। श्री शाह ने कहा कि श्री डोभाल ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है।
2: भारत की सेना को आधुनिक बनाना, समसामयिक परिवर्तन करना, सेना के अंदर टेक्नोलॉजी और वीरता दोनों का एक अद्भुत फाइन ट्यूनिंग करना, कई प्रकार के बड़े फैसले अजीत जी के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी ने लिए हैं।
0: दिल्ली भाजपा ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ संसद परिसर में कल धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। नई दिल्ली से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने आरोप लगाया कि संसद परिसर के मकर द्वार के पास हुए प्रदर्शन के दौरान विपक्ष ने धार्मिक आस्था का मजाक उड़ाया, सनातन संस्कृति का अपमान किया और संत समाज का अनादर किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। एक रिपोर्ट।
3: पूर्वी सिक्किम में 14,000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित नाथुला दर्रा सदियों से भारत को तिब्बत से जोड़ने वाले पुराने व्यापार मार्ग का एक प्रमुख हिस्सा रहा है। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद बंद हुआ सीमा व्यापार 2006 में औपचारिक रूप से फिर से शुरू हुआ। 2020 में कोविड महामारी के कारण रोके जाने तक ये बिना किसी रुकावट के जारी रहा। इसका फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। सीमा व्यापार सोमवार से बृहस्पतिवार तक चलेगा। इसमें गेट सवेरे 7:30 बजे खुलेंगे और हर रजिस्टर्ड व्यापारी को हर दिन 2,00,000 रुपए तक का व्यापार करने की अनुमति होगी। गंगटोक से मैनाक चटर्जी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: बलूच यकजहती कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चल रहे जन आंदोलन पर पाकिस्तानी अधिकारियों की क्रूर कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। समिति के अनुसार यह दमनकारी रवैया असहमति की आवाजों को कुचलने की व्यापक सरकारी नीति का हिस्सा है। पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं।

0: मौसम विभाग ने कल कर्नाटक, केरलम, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर बढ़ने से कटकपुरी, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा और खुर्दा जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हीराकुंड बांध से 22 फाटकों के माध्यम से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। 10 निचले जिलों में हाई अलर्ट जारी है। 8 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 2,59,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। केरलम में लगातार मूसलाधार बारिश के कारण भूस्खलन और जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग ने आज 9 जिलों के लिए रेड अलर्ट और 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश से 6 लोगों की मौत हो गई। प्रभावित जिलों में 65 राहत शिविरों में 1400 से अधिक लोगों को पहुंचाया गया है। और अब ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल की खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
1: राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने आज शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक देश के नाम किए। मुक्केबाजी में भारत ने 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। प्रीति ने महिलाओं की 54 किलोग्राम प्रतियोगिता में कनाडा की स्कारलेट सवाना डेल गाडो को 5-0 से हराया। वहीं जैस्मिन ने महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग में माइकेला वॉल्श को 5-0 से शिकस्त देकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में जादूमणि सिंह ने रजत पदक जीता।
2: काफी अच्छा लग रहा है, मेरा पहला कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल आया, तो काफी खुश। अगला कंपटीशन से और ज्यादा फोकस करूंगा और अच्छा आने वाला कंपटीशन में अच्छा मेडल लेऊं। मेडल मैं मेरे अंकल को दे करूंगा और BFI को, साई को और पूरा इंडिया जो हमारा टीम कोचेस है उन सबको दे करूंगा।
1: दिन का तीसरा स्वर्ण पदक आज एथलेटिक्स से आया, जब सोनम राणा ने पुरुषों के शॉटपुट F57 वर्ग में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया। शुभम जुयाल ने रजत पदक जीता। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने रजत पदक अपने नाम किया। सेल्वा प्रभु तिरुमरन ने कांस्य पदक हासिल किया।
0: इसके अतिरिक्त 7 भारतीय मुक्केबाज भी आज फाइनल में खेलेंगे। वॉल्ट फाइनल में देव कुमार मीणा और कुलदीप कुमार की चुनौती होगी। 5,000 मीटर दौड़ के फाइनल में गुलवीर सिंह ट्रैक पर उतरेंगे। मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले फाइनल में भारतीय टीम खेलेगी। जम्मू और श्रीनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 44 बंद होने के कारण रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए बडगाम और

चारगुणा 400 मीटर रिले फाइनल में भारतीय टीम खेलेगी। जम्मू और श्रीनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 44 बंद होने के कारण रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए बडगाम और

0: गया है। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, इख्तराआत और प्राइवेट सेक्टर के खलाई मिशन में नई नई पेशरफ्त हुई हैं। इसके अलावा जनाब मोदी ने आईटीआईज, आईआईएम्स, आईआईटीज और एम्स समेत नई यूनिवर्सिटियां और कॉलेज कायम करके नीज मेडिकल सीटों की तादाद में इजाफा करके तालीम के शोबे में गुज़श्ता 12 साल के दौरान की गई तरक्की को उजागर किया।
1: पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं। 4,000 से ज्यादा नई आईटीआई बनाई गई, 9 नए आईआईएम, 7 नई आईआईटी और 13 नए एम्स भी स्थापित किए गए हैं। आज देश में एमबीबीएस की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आंध्र प्रदेश रियासत तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है और मरकजी सरकार बड़े पैमाने के बुनियादी ढांचे और सनअती तरक्की के जरिए स्वर्ण आंध्रा और विकसित भारत के नजरिए को हकीकत की शक्ल देने के तई पूरी तरह अहदबंद है। भोगपुरम में अलूरी सीताराम राजू बैन अलावामी हवाई अड्डे का अफ्तताह करने के बाद एक जलसा आम से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हवाई अड्डे, सड़क और तवानाई से मुतालिक बुनियादी ढांचे समेत तकरीबन 18,000 करोड़ रुपए मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों से मरकज और रियासत में एनडीए सरकारों के तहत रियासत की तेज रफ्तार तरक्की की अक्कासी होती है। जनाब मोदी ने नए हवाई अड्डे को आंध्र प्रदेश, खासतौर पर शिमाली आंध्र की तरक्की के रनवे और रियासत के नौजवानों की उमंगों के लिए एक लॉन्च पैड से ताबीर किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने सैलाब से मुतासरा रियासतों की मदद के लिए कुदरती आफात की सूरत में काम आने वाले रियासती फंड SDRF के लिए मरकज के हिस्से की 2,117 करोड़ रुपए से ज्यादा की पेशगी रकम जारी करने की मंजूरी दी है। सैलाब से मुतासरा 7 रियासतों में से हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और नागालैंड को इससे कबल माली साल 2026-27 के लिए SDRF की पहली किस्त मौसूल हुई थी। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: मुतासरा रियासतों के लिए जिस इमदाद की मंजूरी दी गई है उसमें माली साल 2026-27 के लिए पहली किस्त की पेशगी रकम के तौर पर अरुणाचल प्रदेश के वास्ते 44,55,00,000 रुपए शामिल हैं। आसाम के लिए पहली किस्त के तौर पर 79,35,00,000 रुपए मंजूर किए गए हैं, जबकि गुजरात के लिए 500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। हिमाचल प्रदेश को पहले ही इमदाद की पहली किस्त मिल चुकी है और अब दूसरी किस्त की पेशगी रकम के तौर पर 193,95,00,000 रुपए मंजूर किए गए हैं, जबकि उड़ीसा के लिए 500 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त मंजूर की गई है। इसके अलावा महाराष्ट्र के लिए पहली किस्त की पेशगी रकम के तौर पर 500 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। उम्र दाखिला की वजारत ने कहा है कि मानसून की बारिश का सिलसिला शुरू होने के बाद से हुकूमत रियासती सरकारों के साथ करीबी तालमेल कायम रखते हुए सैलाब की सूरत हाल पर लगातार नजर रखे हुए है। वजारत ने यह भी कहा है कि सरकार ने जहां कहीं भी जरूरत पेश आई हर मुमकिन इमदाद फराहम की है। इसमें कुदरती आफात की सूरत में काम करने वाली फोर्स NDRF की टीमों को पहले से तैनात करना और दिफा की वजारत की तरफ से लॉजिस्टिक्स मदद फराहम करना शामिल है। दिल्ली से प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: सिक्किम में नाथुला पास के रास्ते भारत और चीन के दरमियान सरहदी तिजारत आज सुबह से फिर शुरू हो गई है। गुजश्ता 6 साल से ज्यादा अरसे से ही मुअत्तल थी। इस तजारत का दोबारा शुरू होना भारत और चीन के दरमियान बाहमी राब्तों में एक मुस्बत अलामत है। हमारे नामानिगार ने बताया कि भारत और चीन दोनों मुल्कों के अहदेदारों ने आज सुबह उस मुकाम पर मुलाकात की जो दोनों में से किसी के भी कब्जे में नहीं है। चीन की नुमाइंदगी कॉमर्स और सरहदी तजारत के महकमों के नुमाइंदों समेत तिब्बत खुद मुख्तार खत्ते के इंतजामी सरबराह ने की। पेश है एक रिपोर्ट।
3: सरहद के दोनों तरफ तिजारत की बहाली भारत और चीन के दरमियान बाहमी राब्ते के सिलसिले में एक मुस्बत कदम है। 1962 में भारत चीन महाज आराई के पेशे नज़र बंद रहने के बाद 2006 में सरहदी तिजारत बाज़ाब्ता तौर पर बहाल की गई थी और 2020 में कोविड-19 वबा के सबब मुअत्तल किए जाने से पहले बिला रुकावट जारी रही। ये सरहदी तिजारत पीर से जुमेरात तक अंजाम दी जा सकेगी और भारतीय वक्त के मुताबिक सुबह 7:30 बजे गेट खोले जाएंगे और हर इंदराज शुदा ताजिर को रोजाना की बुनियाद पर 2 लाख

रुपए की तिजारती सरगर्मियां अंजाम देने की इजाजत होगी। ओहदेदारों ने इस बात की तस्दीक की है कि मंजूर शुदा दर आमदाती और बर आमदाती अशिया

शुमार के मुताबिक उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा 19,208 करोड़ रुपए मौसूल हुए हैं, जबकि बिहार को 10,845 करोड़ रुपए और मध्य प्रदेश को 8,010 करोड़ रुपए मिले हैं। उधर मगरबी बंगाल को 7,866 करोड़ रुपए मौसूल हुए हैं, जबकि महाराष्ट्र को 7,022 करोड़ रुपए मिले हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान का आगाज करेंगे। मुनशियात के खिलाफ 100 हफ्तों की मुल्कगीर जन भागीदारी मुहिम शुरू होने के मौके पर इसका आगाज हो रहा है। इस प्रोग्राम में 10,000 से ज्यादा मकामात से मुल्क भर के नौजवान हिस्सा लेंगे। मस्कूरा मुहिम के तहत पूरे मुल्क में हर इतवार को हफ्तेवार सरगर्मियों का अहतमाम किया जाएगा, ताकि बेदारी को फरोग देने और एक ऐसा मुआशरा बनाने में अवाम की शमूलियत की हौसला अफजाई की जा सके, जहां मुनशियात की लानत ना हो। एयर मार्शल तेजपाल सिंह ने आज फजाइया के नायब सरबराह की जिम्मेदारी संभाल ली है। इस मौके पर उन्होंने कौमी जंगी यादगार पर गुलदायरा नजर किया और मुल्क की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुर सूरमाओं को खिराज अकीदत पेश किया। 16 जून 1990 को एक फाइटर पायलट के तौर पर फजाइया में शामिल हुए एयर मार्शल तेजपाल सिंह को 3,500 से ज्यादा घंटों की परवाज का तजुर्बा है। वो कैट ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और एक एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट हैं। एयर मार्शल तेजपाल सिंह भारतीय फजाइया में अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। आज दिल्ली बीजेपी ने लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, आजाद रुकने पार्लियामेंट राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट अवधेश प्रसाद और दीगर मुतालिका लोगों के खिलाफ कल पार्लियामेंट के अहाते में मुबैना तौर पर मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने के सिलसिले में एक शिकायत दर्ज की है। नई दिल्ली की रुकने पार्लियामेंट बांसुरी स्वराज की क्यादत में बीजेपी के वफद ने अपोजिशन लीडरान के खिलाफ FIR दर्ज किए जाने का मुतालबा किया। ग्लासगो में दौलत मुश्तरका खेलों में तमगों की तादाद 30 होने के बाद भारत आज छठे मकाम पर पहुंच गया। भारत ने सोने के 8, चांदी के 15 और कांसे के 7 तमगे जीते हैं। भारतीय मुक्केबाजों जैस्मीन लंबोरिया और प्रीति पवार ने अपने अपने फाइनल मुकाबले में सोने के तमगे जीते। प्रीति ने खवातीन के 54 किलोग्राम के जुमरे में कनाडा की स्कारलेट डेलगाडो को 5-0 से हराकर खिताब जीता। मौजूदा आलमी चैंपियन जैस्मीन ने खवातीन के 57 किलोग्राम के जुमरे में शिमाली आयरलैंड की मिशेला वाल्श को 5-0 से शिकस्त दी। पैरा एथलेटिक्स में मर्दों के शॉटपुट F57 मुकाबले में सुमन राणा ने सोने का और शुभम जोयाल ने चांदी का तमगा जीता। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मैसूरू में स्वामी विवेकानंद कल्चरल यूथ सेंटर का इफ्तिताह किया और साइंस टेक्नोलॉजी और खेलों के शोबे में पेशरफ्त का सिहरा भारतीय नौजवानों को दिया। वजीर आजम ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। मरकज ने सैलाब से मुतासर रियासतों के लिए इमदाद के तौर पर 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की पेशगी रकम जारी करने की मंजूरी दी है। सिक्किम में नाथुला पास के रास्ते भारत और चीन के दरमियान सरहदी तिजारत फिर शुरू हो गई है। और दौलत मुश्तरका खेलों में भारतीय मुक्केबाजों जैस्मीन लंबोरिया और प्रीति पवार ने सोने के तमगे जीते हैं, जबकि मर्दों के शॉटपुट F57 में पैरा एथलीट सुमन राणा ने भी सोने का तमगा हासिल किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है। ये पत्रिका शब्दों की उस यात्रा का हिस्सा है जो हमारी भाषाओं, हमारे साहित्यकारों और हमारी राष्ट्रीय चेतना को आपस में जोड़ती चलती है। आज के अंक में हम काव्य से लेकर गद्य तक, वीरता से लेकर भाषा एकता तक और वर्तमान से लेकर स्मृतियों तक एक संश्लिष्ट यात्रा करेंगे।

करगिल की चोटियां आज भी उस अदम्य साहस की गवाह हैं, जब हमारे सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति देकर मातृभूमि की रक्षा की थी। करगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में आज के संपादकीय में हम प्रस्तुत कर रहे हैं एक काव्यांजलि, काव्य अनुगूंज उस विजय की। विजय केवल युद्ध भूमि में प्राप्त होने वाला एक परिणाम नहीं, बल्कि राष्ट्र के स्वाभिमान, साहस और त्याग का अमर घोष है। करगिल विजय दिवस हमें उन वीर सैनिकों की अदम्य वीरता का स्मरण कराता है, जिन्होंने दुर्गम हिम शिखरों पर अपने प्राणों की आहुति देकर भारत की अस्मिता की रक्षा की। युद्ध के इतिहास में तलवारें और बंदूकें विजय का मार्ग प्रशस्त करती हैं, किंतु विजय को अमरत्व शब्द देते हैं। यही कारण है कि भारतीय काव्यधारा में वीर रस केवल उत्साह का संचार नहीं करता, बल्कि राष्ट्र चेतना को जागृत भी करता है। कवियों ने समय समय पर अपनी लेखनी से उन वीरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है, जिनके बलिदान ने स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा की। ये सभी ज्ञात अज्ञात सैनिकों के प्रति राष्ट्र की सामूहिक कृतज्ञता का स्वर है, जो हर मौसम, हर परिस्थिति और हर चुनौती के बीच हमारी सुरक्षा के प्रहरी बने खड़े हैं। देश के सैनिकों से कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं, फतह तिरंग आज क्यों न फिर गड़े, जगत प्रसिद्ध शूर सिद्ध तुम सभी, जवान हिंद के अडिग रहो डटे, न जब तलक निशान शत्रु का हटे, हजार शीश एक थौर पर कटे, जमीन रक्त रुंड मुंड से पटे, तजो न सूचिकाग्र भूमि भाग भी। युद्धरत सीमाओं पर सैनिकों को विदा करने का भाव दर्ज करते हुए कवि आमिर हमजा ने लिखा है, चौतरफा गूंजते सायरन के बीच जंग में जाते एक हथियार बंद सिपाही को सरेराह गले लगाने वाली स्त्री, जो उसकी माँ हो सकती है या कि बहन, प्रेमिका हो सकती है या कि दोस्त, या कि फिर पत्नी, उससे बेहतर भला कौन जान सकता है कि हर अलविदा एक यात्रा की समाप्ति है। इसी तरह एक और बेहद भावपूर्ण कविता की इन पंक्तियों में, जिनका अनुवाद किया है रमेश कौशिक ने, कवि अलेक्जेंडर प्रोकोफ्येव कहते हैं, किंतु सैनिक क्रांतिकारी चीखता है, मर नहीं सकता कभी मैं नहीं अब तक मरा हूं, मैं मरूंगा भी नहीं। तभी थर्राहट हुई, दीवार जो घेरे हुए थी उसमें दरारें पड़ गईं और सैनिक के हृदय से सेब तरु की शाख फूटी, फिर बड़ी हो वो खुशी से झूमती है मकबरे पर और गुलाबी श्वेत फल उस पर गिराती है, सैनिक के हृदय की शिरा अब तक धड़कती है। इसी क्रम में एक सशक्त भोजपुरी गीतकार और कवि राम जियावन दास बावला ने लिखा, करगिल न कुल कश्मीर छोड़ भागू, बापू क हमरे जगीर छोड़ भागू, भाई समझ के जुगवली बहुत हम, आगी लगवले मड़ैया में, छोड़त न बच्चू लड़ैया में, कसके कमरिया अखाड़े जवनवा, उमड़ल बा भीर जस बरसे सवनवा, के बावला मति मरले बा तोहरी, डाकेले ताती तलैया में, छोड़ब न बच्चू लड़ैया में। और हमारे समय के बहुत बड़े कवि रामधारी सिंह दिनकर ने वीर सैनिकों की प्रशस्ति में कहा, जाग रहे हम वीर जवान, जियो जियो जय हिंदुस्तान, हम प्रभात की नई किरण हैं, हम दिन के आलोक नवल, हम नवीन भारत के सैनिक, धीर वीर गंभीर अचल, हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्र के, सुरभि स्वर्ग की लेते हैं, हम हैं शांति दूत धरनी के, छां सभी को देते हैं, वीर प्रसू माँ की आंखों के, हम नवीन उजियाले हैं, गंगा यमुना हिंद महासागर के हम रखवाले हैं, तन मन धन तुम पर कुर्बान, जियो जियो ए हिंदुस्तान।

0: वीरता की अनुगूंज हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र केवल भूमि से नहीं बल्कि उसकी विविधता में एकता से बनता है, और इस एकता का सबसे सुंदर माध्यम है भाषा। भारत जैसे बहुभाषी देश में हर भाषा, हर बोली एक सेतु का काम करती है, जो हमें एक दूसरे से और राष्ट्र की सामूहिक चेतना से जोड़ती है। इसी विचार पर केंद्रित है हमारी अगली प्रस्तुति, भाषाओं का सेतु, राष्ट्र का स्वर। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कोंकणी मराठी साहित्यकार श्री दामोदर मावजो इस विषय पर कहते हैं,
1: भाषा एवं साहित्य अपनी संस्कृति की महत्वपूर्ण पहचान होती है। कोई भी भाषा हो, हमारे विविधताओं से भरे भारत देश की ज्यादातर भाषाओं में वाचन लेखन संभाषण जारी रखकर भाषा वृद्धि तथा समाज समृद्धि को बढ़ावा देना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा भाषाओं का ज्ञान हमें प्राप्त होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भाषाओं में वाचन लेखन संभाषण जारी रखना चाहिए। भाषा राष्ट्रीय एकात्मता सबल और संपन्न हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है।
0: स्वराज सौजन्य, आकाशवाणी पणजी। इसी विचार बिंदु को आगे बढ़ा रहे हैं केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर हितेंद्र मिश्र।
2: भाषाएं संवाद के लिए एक उपयोगी टूल्स के रूप में काम करती हैं, लेकिन केवल टूल्स ही नहीं होती, इनके साथ संस्कृति, समाज, लोगों के अपने जुड़ाव, लोगों की अपनी परंपराएं, लोगों के अपना अस्तित्व, सब कुछ का जुड़ा हुआ होता है। इसलिए भाषाएं जो जोड़ती हैं, जुड़िया काम करती हैं, वो केवल भाषाई आधार पर ही नहीं करती हैं, बल्कि वो सांस्कृतिक, सामाजिक सभी आधारों पर लोगों को जोड़ती हैं। और स्वतंत्रता आंदोलन में जो स्वतंत्रता आंदोलन की व्यापकता थी, जो उसे विस्तार मिला, जो उसे प्रचार प्रसार मिला, उस प्रचार प्रसार में भाषा की भूमिका सबसे अधिक केंद्रीय और अग्रणी भूमिका है। इस रूप में हम भाषा को देखते हैं और बस एक कह सकते हैं कि भारत में जो भाषाई वैविध्य है, इस भाषाई वैविध्य के साथ भी, लेकिन भारत में भाषाई वैविध्य जरूर है, लेकिन भारत में सांस्कृतिक एकता, जो जुड़ने के तार हैं आपस में लोगों के, वह एक हैं। हम सभी भारतीय हैं, इसलिए भाषाएं अलग होते होते भी हमारे भाव एक हैं, और इस भाव की जो एकता है वह हमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के समय में बड़े महत्वपूर्ण रूप से दिखाई देती है। इसलिए पहली बार जब अंग्रेजों का आगमन होता है और अंग्रेज भारत में अपनी सत्ता स्थापित करते हैं, मुगलों की सत्ता को विस्थापित करते हुए, तब हम देखते हैं कि उस समय जो लेखन है, उस लेखन का तरीका अलग है, लेकिन जब वो यहाँ के लोगों पर शासन करना और निरंकुशता और यहाँ के लोगों के साथ अत्याचार करना शुरू करते हैं, तब उनकी नियति और उनका कार्य पद्धति बदल जाती है। दोनों में जो पत्रकारिता है, जो भाषा है, जो हमारी भूमिकाएं हैं, वो अलग अलग ढंग से दिखाई देती हैं। इसकी ताकत भी है, और विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वह हम हिंदी की बात करें, चाहे हम बंगला की बात करें, चाहे मराठी की बात करें, चाहे गुजराती की बात करें, तमिल की बात करें, इन सभी भाषाओं में स्वाधीनता आंदोलन के लिए स्वर उठे और मजबूती के साथ खड़े हुए और देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। और भारत में पत्रकारिता की शुरुआत ही व्यवस्था के निरंकुश, व्यवस्था के व्यभिचारी, व्यवस्था के कदाचरण के विरुद्ध खड़ी हुई पत्रकारिता के रूप में भारत में पत्रकारिता विकसित हुई है। हम पहले ही पत्र से अगर देखें तो हम देखते हैं कि वह सत्ता के जो गलत मंशा है उसके खिलाफ पत्रकारिता खड़ी होती है। वह पत्रकारिता चाहे हिंदी की हो, चाहे अन्य भाषाओं की हो, हिंदी उसमें एक प्रमुख भाषा थी, हिंदी एक बड़ी भाषा थी, क्योंकि बोलने वाले समुदाय का व्यापकत्व ज्यादा था। तो देखें तो हिंदी में तमाम पत्र पत्रिकाएं थी, जिसमें प्रताप एक महत्वपूर्ण पत्र था, जिसे गणेश शंकर विद्यार्थी निकालते थे, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा संपादित अभ्युदय, माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित हिंदी का कर्मवीर, बंगला में हम देखें तो अमृत बाजार पत्रिका शिशु कुमार घोष ने संपादित की, मराठी में तो पत्रकारों की और पत्रिकाओं की सीरीज है पूरी, अगर संक्षेप में चर्चा करें तो केसरी जो प्रतिनिधि पत्र है मराठी का, बाल गंगाधर तिलक ने उसको संपादित किया, स्वयं महात्मा गांधी ने गुजराती में नवजीवन नाम का पत्र निकाला, स्वदेश मित्रन तमिल में सुब्रमण्य अय्यर ने निकाला, उर्दू में

0: मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने अल हिलाल नाम का पत्र निकाला, और इन सभी पत्र पत्रिकाओं को आप लेकर के देखें तो इन पत्र पत्रिकाओं का एक ही मंशा थी, वह मंशा थी कि भारत में स्वाधीनता की स्थापना करना। और यह स्वाधीनता सिर्फ राजनीतिक नहीं थी, यह स्वाधीनता स्वदेशी स्वदेश के प्रति एक प्रेम के जागरण की स्वाधीनता थी, जिसमें इन पत्रिकाओं ने अंग्रेजी नीतियों की आलोचना की, लोगों में जनमत तैयार किया, स्वदेशी के प्रति लोगों की में रुचि जागृत की, और इन सब के बाधक तत्व जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को खड़ा करने का काम किया। राष्ट्रीय आंदोलन विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार चल रहा है इसकी सूचना इन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचती थी। पत्र पत्रिकाएं वे साधन थे जिनके माध्यम से हम पूरे देश को एक साथ जोड़ पा रहे थे। आप देखेंगे कि यह समय था, यह दौर था, जब अखबारों की एक आवाज पर लाखों लोग सड़क पर इकट्ठा हो जाते थे। यह अखबारों के प्रति, पत्र पत्रिकाओं के प्रति लोगों का विश्वास था। लोगों को यह लग रहा था कि पत्र पत्रिकाएं, ये अखबार हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारी स्वाधीनता के लिए काम कर रहे हैं, हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए लोगों का विश्वास, लोगों का विश्वास जीतकर पत्र पत्रिकाएं इस देश को एकता के सूत्र में बांधने का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। हम भारतीय मेधा को, भारतीय जो हमारी इंटेलिजेंसिया है, इसको हम किस तरह से पीछे के समय से लेकर के बाहर आए हैं और हमारी क्या आवश्यकताएं हैं और हम पीछे किस प्रकार स्वाधीनता आंदोलन में हम इनके माध्यम से पूरे देश को एक सूत्र में बांध सके थे, इस सब की पूरी मुकम्मल जानकारी अनेक आयामों, अनेक विषयों, अनेक संदर्भों के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर दिया जा रहा है। जो कॉलोनियल माइंडसेट है, जो अंग्रेजों का एक माइंडसेट था, उस तरह के जो माइंडसेट को लेकर के हम जब चर्चा करते हैं तो हम यह देखते हैं कि उसके पीछे उनकी मंशा क्या थी, उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था। वह उद्देश्य था भारत पे अधिकतम समय तक शासन करना, यहाँ की संपदा को लूटना, यहाँ के संसाधनों को लूटना, अपने यहाँ ले जाना, और हमारे संसाधनों का जितना दोहन इस समुदाय ने किया, जिसे हम ब्रिटिश नाम से कहते हैं, वह लोगों को जानना चाहिए, और वह जानने का माध्यम ही है कि हम स्वतंत्रता आंदोलन के समय की पत्रकारिता की चर्चा करें, उस समय के इतिहास की चर्चा करें, उस समय के ज्ञान संपदा की चर्चा करें, उस समय हमारी स्कूलिंग सिस्टम की चर्चा करें, उस समय की हमारी सारी व्यवस्था, जो समाज की व्यवस्था थी, उसकी चर्चा करें, न्याय प्रक्रिया की चर्चा करें। तो लोगों में यह बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी कि जो 200 वर्ष बीता हमारा अंग्रेजी शासनकाल में, वो किस प्रकार का बीता। और इसीलिए स्वतंत्रता आंदोलन भारत की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण और अनिवार्य आवश्यकता थी जो एक समय में खड़ी हुई, और उसके आंदोलन के जरिए ही हम इस बड़े अपने अवरोधक तत्व को, जो हमारे विकास में, हमारे ज्ञान के क्षेत्र में जो बाधक था, उसे हम हटा सके। इसलिए तमाम तरह की जानकारियां दी जानी चाहिए और अनेक प्रकार से दी भी जा रही हैं। भाषा को लेकर के हमारा काम, जो निदेशालय का काम है हमारा, उसका जो मैंडेट है वो प्रोपगेशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज है। हम उसके माध्यम से, हम भाषाई परिवारों की संकल्पना के माध्यम से, हम भाषाई एकता के माध्यम से, हम सांस्कृतिक संदर्भों को पढ़ने और समझने की कोशिश करते हैं और लोगों के बीच जाकर के उसकी चर्चा करते हैं। हम तमाम प्रकार की संगोष्ठियां आयोजित करते हैं, और विशेष करके जो हिंदी क्षेत्र से इतर क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में उन क्षेत्रों के लोगों को हम भारत के साथ उनके कैसे सामाजिक सांस्कृतिक संबंध हजारों हजार वर्षों से रहे हैं, इसे एस्टेब्लिश करने का प्रयास करते हैं, जिससे भारत में एकता, एकात्मकता और एकीकरण का भाव हम प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक व्यक्ति के बीच जागृत कर सकें।
1: भाषाओं की इस विविधता में जब राष्ट्र प्रेम शब्दों में ढलता है तो वो कालजयी बन जाता है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की महाकाव्य कृति भारत भारती ऐसी ही एक रचना है जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी भारतीयों के हृदय में राष्ट्र प्रेम की ज्वाला प्रज्वलित रखी है। थोड़े शब्दों में गहन भाव समेटे इस कृति पर आधारित है हमारी अगली प्रस्तुति, लघु रूपक अत्यल्प में संपूर्ण।
2: किसी राष्ट्र के स्वाभिमान की वास्तविक संचेतना का पुनरुत्थान राजनीतिक मंचों से नहीं, बल्कि किसी निष्ठावान साधक की लेखनी से मिश्रित होता है। सन 1912 का वो दौर जब औपनिवेशिक सत्ता के दंश से संपूर्ण भारतवर्ष की चेतना सुप्त पड़ी थी, तब झांसी के

0: चिरगांव से एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला कर रख दी। एक ऐसी अमरकृति जिसने बहुत कम शब्दों में यानी अत्यल्प में पूरे भारत के गौरव, उसकी चेतना और उज्जवल भविष्य के सपनों को समेट लिया। भारत भारती, अत्यल्प में संपूर्ण, और इसे अपनी लेखनी से रचा था राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने। तीन खंडों की इस कृति में मैथिली शरण गुप्त ने भारतवर्ष के त्रिकाल का संपूर्ण दर्शन उखेड़ दिया। भारत भारती का पहला खंड था अतीत खंड। वो पन्ने केवल कविता नहीं थे, वो सोई हुई कौम को जगाने के लिए ऋषियों की वाणी की तरह गूंजे थे।
1: उन्नत रहा होगा कभी जो हो रहा अवनत अभी, जो हो रहा अवनत अभी उन्नत रहा होगा कभी। हंसते प्रथम जो पद्म है तम पंख में फंसते वही, मुरझे पड़े रहते कुमुद जो अंत में हंसते वही। उन्नति तथा अवनति प्रकृति का नियम एक अखंड है, चढ़ता प्रथम जो व्योम में गिरता वही मारतंड है। अतएव अवनति ही हमारी कह रही उन्नति कला, उत्थान ही जिसका नहीं उसका पतन ही क्या भला।
0: मैथिली शरण गुप्त का राष्ट्रप्रेम केवल अतीत के यशोगान तक सीमित रहने वाला भावुकता का संजाल नहीं था। भारत भारती की वास्तविक अग्नि उसके वर्तमान खंड में धधक रही थी।
1: तुम सभ्य हो मार्गित जिनका सात सागर पार है, पर ग्राम की वो हाट ही उनका बड़ा बाजार है। तुम हो विदेशों से मंगाते माल लाखों का यहाँ, पर वे अकिंचन नमक गुड़ ही मोल लेते हैं वहाँ। तुम दार्शनिक हो ईश का अस्तित्व सत्य न मानते, है भूत प्रेतों से अधिक वे भी न उसको जानते। हा देव इस ऋषि भूमि का ये आज कैसा हाल है, तू काल सचमुच काल ही है क्रूर और कराल है।
0: गुप्त ने जब औपनिवेशिक गुलामी के दंश, हमारी आपसी फूट और सामाजिक शिथिलता पर लेखनी चलाई तो पंक्तियां कविता ना रहकर सोई हुई चेतना पर एक करारा वैचारिक वज्रपात बन गई। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर महेश कटारे कहते हैं,
2: एक समय पर भारत भारती की भी स्थिति थी कि वो काव्य एक समय पर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का घोषणा पत्र जैसा हो गया था और आम जन के बीच में बहुत ही लोकप्रिय पुस्तक रही थी। वह ये हिंदी की पहली कृति थी जिसने राष्ट्रीयता के प्रसार प्रचार में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था।
0: प्रभात फेरियों से लेकर स्वाधीनता संग्राम की गुप्त बैठकों तक भारत भारती की पंक्तियां आजादी के दीवानों का पाठ्य बन गई। इसी अप्रतिम जनचेतना और अनूठी राष्ट्र सेवा को देखते हुए सन 1936 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के अमर समादर से अलंकृत किया।
1: हे नव युवाओं, देश भर की दृष्टि तुम पर ही लगी है, मनुज जीवन की तुम्ही में ज्योति सबसे जगमगी। दोगे न तुम तो कौन देगा योग देशोद्धार में, देखो कहां क्या हो रहा है आज कल संसार में। सुख शांति में सरकार का शासन समय है अब यहाँ, सुविधा समुन्नति के लिए है प्राप्त हमको सब यहाँ। अब भी न यदि कुछ कर सके हम तो हमारी भूल है, अनुकूल अवसर की उपेक्षा फूलती फिर शूल है।
0: भारत भारती का तीसरा और अंतिम खंड भविष्यत खंड मात्र एक राजनीतिक आजादी की मांग नहीं था, बल्कि वो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण, ज्ञान विज्ञान की उन्नति और विश्व बंधुत्व का संकल्प था। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर राजरानी शर्मा बताती हैं,
3: हमारे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने हमें आदर्श की ओर उन्मुख किया। भारत भारती काव्य उन्होंने रचा और किस प्रकार से जीवन की संचेतना को उभारता है, देशभक्ति जगाता है।

0: है, हमें हमारे अतीत के गौरव से मिलवाता है, वर्तमान का स्वरूप दिखाता है और भविष्य की राह बताता है।
1: भौतिक साम्राज्य नष्ट हो जाते हैं, शासकों के आदेश पन्नों में सिमट जाते हैं, किंतु राष्ट्र चेतना के प्रांगण में रोपे गए शब्द अजर अमर रहते हैं। भारत भारती केवल एक ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं, ये भारतीय संविधान संग्राम की वैचारिक पीठिका है, जिसने हमारी सांस्कृतिक अस्मिता को अक्षुण रखा है। साहित्य मनीषी KBL पांडे कहते हैं,
2: भारत भारती को याद करना न केवल इसलिए जरूरी है कि वो समय की एक प्रमुख पुस्तक है, बल्कि इसलिए कि स्वातंत्र्य चेतना की प्रेरणा के रूप में उसका मुख्य स्थान है। हम जब अपने त्रासद वर्तमान से मुक्ति कामना के लिए संघर्ष करते हैं, तो हमारे साथ हमारा वर्तमान ही नहीं होता, बल्कि हमारा प्रेरक और गर्वीला अतीत भी होता है और नए सूर्योदय के भविष्य का प्रकल्प भी होता है। जब हम समय के इन तीनों आयामों के बोध से संपन्न होते हैं, तो रचना की समग्रता के विचार में होते हैं, यानी जो हम करना चाहते हैं उसके प्रति हमारी पूरी दृष्टि होती है काल के तीनों आयामों के साथ।
1: राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का ये कालजयी शब्द शिल्प आज भी हमें यही स्मरण कराता है कि स्वदेश प्रेम ही हर राष्ट्र का शाश्वत प्राण तत्व है।
3: आलेख और वाचन प्रांजल, स्वरांश सौजन्य, आकाशवाणी ग्वालियर। राष्ट्र कवि की कविता के स्वर अभी थमे भी नहीं कि हमें याद आते हैं एक और कालजयी रचनाकार प्रेमचंद, जिनके कलम ने केवल कहानियां ही नहीं लिखी, आजादी के सपनों को भी शब्द दिए। उनकी महान कृतियों में बसा वतन का दर्द और आजादी की आकांक्षा आज भी उतनी ही जीवंत है। उदाहरण के लिए सोजे वतन, जिसकी रचना प्रेमचंद ने नवाब राय के नाम से की थी। सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति कलम का दम और सोजे वतन।
4: तारीख अक्सर युद्ध भूमि की चीखों, तोपों की गूंज और साम्राज्यों के ढहने का हिसाब रखता है, लेकिन किसी राष्ट्र के स्वाभिमान की वास्तविक इबारत किसी निष्ठावान साहित्यकार की मेज पर रखी स्याही से निस्तृत तो होती है। सन 1908 का वो दौर याद कीजिए, जब आजादी केवल एक राजनीतिक मांग नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष की आत्मा की आकुलता बन चुकी थी। ठीक उसी दौर में हमीरपुर की एक शांत मेज पर जन्म होता है सोजे वतन का। रचनाकार नवाब राय, यहां सोज केवल एक शब्द नहीं बल्कि पराधीनता के दंश से पीड़ित किसी स्वाभिमानी हृदय की वो अंतर्वेदना है जिसने आगे चलकर पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की नींद उड़ा दी। इसमें शामिल अमर रचनाएं दुनिया का सबसे अनमोल रतन शेख मखमूर, यही मेरा वतन है, शोक का पुरस्कार और सांसारिक प्रेम और देश प्रेम केवल कहानियां नहीं थी बल्कि पराधीन भारत की आत्मा की आकुलता थी। संग्रह की कहानी यही मेरा वतन है में प्रेमचंद ने अपनी मातृभूमि के प्रति जो भाव उकेरे थे वे किसी श्रेष्ठ कविता से कम नहीं थे।
3: साहित्य मनीषी डॉक्टर मनीषा कहती हैं,
5: जब वे सोजे वतन में दास्तानों की शैली में दुनिया का सबसे अनमोल रतन और शेख मखमूर कहानी सुनाते हैं, तो उनका लक्ष्य अपने समय की सबसे बड़ी सच्चाई से ही भेंट कराना था, जिसे हुब्बे वतन कहते हैं। प्रेमचंद के समक्ष कहानी की शैली के लिए कोई दुविधा या संकट की स्थिति कभी नहीं रही। इस संकटहीनता को समझने के लिए सोजे वतन एक सुंदर नमूना है, क्योंकि उसमें दास्तानों की शैली से भिन्न कथा रूप की इश्क दुनिया और हुब्बे वतन भी सम्मिलित है। इन सबसे अलग कहानी के कहन का एक रूप यही मेरा वतन है और सिले मातम दिखाई पड़ता है। ये दोनों उत्तम पुरुष शैली की कहानियां हैं। प्रेमचंद अपनी रचनाओं के आरंभ, विस्तार, अंत, घटनाओं के चुनाव, भाषा शैली आदि

0: विषय में बहुत सचेत थे। वे किसी परफेक्शनिस्ट से कम नहीं थे।
1: 20वीं सदी के प्रथम दशक में जब भारतीय स्वाधीनता संग्राम अपनी राजनीतिक चेतना के नए क्षितिज तलाश रहा था, तब इस संग्रह ने कथा साहित्य को क्रांति का एक सशक्त माध्यम बना दिया। संग्रह की 5वीं कहानी सांसारिक प्रेम और देश प्रेम में प्रेमचंद ने ये स्थापित किया कि व्यक्तिगत प्रेम से कहीं ऊंचा स्थान राष्ट्र प्रेम का है। निरंकुश साम्राज्यवादी सत्ताएं शास्त्रों से अधिक विचारों की शक्ति से भयभीत होती हैं। हमीरपुर के तत्कालीन अंग्रेज कलेक्टर ने जब सोजे वतन के पृष्ठ पलटे तो उसे प्रत्येक कथा में विद्रोह की गूंज सुनाई दी। इस कृति की 500 प्रतियों को जब्त करके सरेआम अग्नि के समर्पित कर दिया गया। ब्रिटिश हुकूमत को यह भ्रम था कि उन्होंने कागज जलाकर क्रांति की ज्वाला को शांत कर दिया, किंतु वे भूल गए थे कि विचारों की राख से ही नए इतिहास का प्रादुर्भाव होता है।
0: साहित्य मर्मज्ञ मजरुल वासे कहते हैं,
2: ये कहानी संग्रह अंग्रेज सरकार की बर्दाश्त से बाहर था। जिला कलेक्टर हमीरपुर उत्तर प्रदेश ने इसकी सभी उपलब्ध प्रतियां अपने सामने जलवा कर नष्ट करवा दी और लेखक नवाब राय, जो उस समय उप विद्यालय निरीक्षक थे, को सरकारी कर्मचारी होने के कारण और ये चेतावनी देकर क्षमा कर दिया कि आगे से वे अंग्रेज सरकार के विरुद्ध कोई साहित्य नहीं लिखेंगे। दो विशेष परिवर्तन हुए। प्रथम तो ये कि नवाब राय का नाम बदल गया और वे प्रेमचंद नाम से लिखने लगे। ये नाम उन्हें अखबार जमाना के संपादक दयाराम निगम ने दिया और दूसरा ये कि अब उनकी भाषा उर्दू से हिंदी हो गई।
1: आज जब हम स्वतंत्र भारत की अक्षुण हवाओं में सांस ले रहे हैं तो हमें उस समर्थ लेखनी को भी नमन करना होगा जिसने बंधनों के कालखंड में स्वाधीनता के दीप प्रज्वलित किए थे। सोजे वतन केवल एक पुस्तक नहीं, हमारी आजादी की साहित्यिक हुंकार थी।
0: वाचन आनंद श्रीवास्तव, स्वराज सौजन्य, आकाशवाणी आगरा। साहित्य की ये यात्रा उन सबके बिना अधूरी है जिन्होंने अपनी लेखनी से भारतीय साहित्य को समृद्ध किया और आज हमारे बीच शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन जिनकी रचनाएं आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रही हैं। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान, उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा, कथाकार भीष्म साहनी, उर्दू के मशहूर शायर फिराक गोरखपुरी, जंग के हस्ताक्षर हरिशंकर परसाई, कथा आलोचना के पुरोधा राजेंद्र यादव, कन्नड़ साहित्य के ज्ञानपीठ विजेता विनायक कृष्ण गोकक, असमिया साहित्यकार सैयद अब्दुल मलिक और कथा आलोचना के पुरोधा राजेंद्र यादव, भारतीय साहित्य में इन विभूतियों के अवदान को नमन करते हुए संपन्न होता है साहित्य भारती का ये अंक। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में श्रोताओं का स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम प्रस्तुत कर रहे हैं चिन्मया भगिनी श्रीमती उमा और श्रीमती राधिका का गायन। चिन्मया भगिनी ने अपनी संगीत शिक्षा पद्मभूषण विद्वान मदुरई श्री टी एन शेष गोपालन और कलईमा मणि विद्वान नैवेली श्री आर संतान गोपालन से प्राप्त की। आप अपने गुरु की प्रमुख शिष्याओं में से एक हैं। संगीत के प्रति विशेष अभिरुचि के कारण आप देश विदेश की विविध संगीत सभाओं में अपना गायन प्रस्तुत करती आ रही हैं। आकाशवाणी तथा दूरदर्शन टीवी चैनलों पर आपके द्वारा प्रस्तुत अनेकानेक कार्यक्रम अत्यंत लोकप्रिय हुए हैं। चिन्मया भगिनी अनेक पुरस्कार एवं उपाधियों से अलंकृत हैं। आज के कार्यक्रम में चिन्मया भगिनी के साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर श्रीमती श्रद्धा रविंद्रन, मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन।

0: चिन्मया भगिनी अब प्रस्तुत कर रही हैं मां मव मीनाक्षी, वराली राग और मिश्र चापुताल में मुत्तुस्वामी दीक्षितर की रचना।
1: चिन्मया सिस्टर्स श्रीमती उमा एंड श्रीमती राधिका फर्दर कंटिन्यूज देयर कॉन्सर्ट विद मां मव मीनाक्षी, अ कॉम्पोजिशन ऑफ मुत्तुस्वामी दीक्षितर इन रागा वराली सेट टू मिश्र चापुतालम।

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं चिन्मया भगिनी, श्रीमती उमा और श्रीमती राधिका का गायन। आपके साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर श्रीमती श्रद्धा रविंद्रन, मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा मोरसिंह पर श्री एन सुंदर।
1: इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी आर लिसनिंग टू अ कर्नाटिक क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय चिन्मया सिस्टर्स श्रीमती उमा एंड श्रीमती राधिका। दे आर अकंपनीड बाय श्रीमती श्रद्धा रविंद्र ऑन द वायलिन, श्री बी गणपति रामन ऑन द मृदंगम एंड श्री एन सुंदर ऑन मोरसिंग।
0: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चिन्मया भगिनी प्रस्तुत कर रही हैं मोहनम राग और आदिताल में रचना नन्नू पालिम्पा, रचनाकार हैं संत त्यागराज।
1: चिन्मया सिस्टर्स श्रीमती उमा एंड श्रीमती राधिका कंटिन्यूज देयर कॉन्सर्ट विद नन्नू पालिम्पा, अ कॉम्पोजिशन ऑफ सेंट त्यागराजा इन रागा मोहनम सेट टू आदितालम।

0: अभी आपने सुना तनिया वर्तनम। कलाकार थे मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा मोरसिंग पर श्री एन सुंदर।
1: यू जस्ट हियर टू अ तनि आवर्तनम प्लेड ऑन द मृदंगम बाय श्री बी गणपति रामन एंड बाय श्री एन सुंदर ऑन मोरसिंग।
0: कार्यक्रम का समापन करते हुए चिन्मया भगिनी

0: प्रस्तुत कर रही हैं जौनपुरी राग और आदिताल में पापनासम शिवन की रचना मुरुगनई बजी मनमे।
1: चिन्मया सिस्टर्स कंक्लूड देयर कॉन्सर्ट विद मुरुगनई बजी मनमे, अ कॉम्पोजिशन ऑफ पापनासम शिवन इन रागा जौनपुरी सेट टू आदितालम।

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे चिन्मया भगिनी श्रीमती उमा और श्रीमती राधिका का गायन। आपके साथ संगत कर रहे थे वायलिन पर श्रीमती श्रद्धा रविंद्रन, मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा मोरसिंह पर श्री एन सुंदर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के चेन्नई केंद्र में रिकॉर्ड किया गया तथा आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।
1: In tonight's national program of music, you just listened to a Carnatic classical vocal concert by Chinmaya sisters Srimati Uma and Srimati Radhika. They were accompanied by Srimati Shraddha Ravindran on violin, Sri B. Ganapati Raman on mridangam, and Sri N. Sundar on morsing. With that, we come to the end of tonight's national program of music. This program was recorded at the studios of Akashwani Chennai and was broadcast from Akashwani Delhi.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब आप समाचार सुनेंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
5: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
4: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं।
5: पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं। 4,000 से ज्यादा नई ITI बनाई गई, 9 नए IIM, 7 नई IIT और 13 नए MBBS स्थापित किए गए हैं। आज देश में MBBS की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है।
4: श्री मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स

युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का अवसर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। गृहमंत्री अमित शाह ने दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता देने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के केंद्रीय हिस्से की अग्रिम राशि के रूप में 2,117 करोड़ 85 लाख रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर बढ़ने से कटक, पुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा और खुर्दा जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हीराकुंड बांध से 22 फाटकों के माध्यम से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। 10 निचले जिलों में हाई अलर्ट जारी है।

ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 12 स्वर्ण, 16 रजत और 8 कांस्य पदकों सहित कुल 36 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घंघास, अरुधंती चौधरी और सचिन सिवाच ने अपने अपने फाइनल मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।